अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर रंजनी। आज के कार्यक्रम में आपने सुना विदुषी डॉक्टर शर्वरी बनर्जी का राग अहिर भैरव में गायन। स्वर रंजनी कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। प्रातः 6 बजने को है। अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बदलती प्रौद्योगिकी, अनिश्चित परिस्थितियों और भौगोलिक चुनौतियों के बीच भारत को अपनी तैयारियों में भू सामरिक सोच और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने की योजना को महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। नई दिल्ली में भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि भारत का लक्ष्य स्पष्ट है कि संकट आने से पहले ही हमारी तैयारियां इतनी मजबूत होनी चाहिए कि देश उससे निपटने के लिए तैयार रहे।
2: रक्षा मंत्री ने कहा है कि ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा ने देश की ऊर्जा आपूर्ति लाइनों और राष्ट्रीय हितों की रक्षा में भारतीय नौसेना की पेशेवर क्षमता और परिचालन तत्परता को एक बार फिर साबित किया है। उन्होंने कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में फर्स्ट रिसार और भरोसेमंद सहयोगी के रूप में अपनी भूमिका लगातार मजबूत कर रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि दक्षिण चीन सागर, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर में भारतीय युद्धपोतों की तैनाती देश की ब्लू वाटर नौसेना क्षमता को दर्शाती है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोआन की अनुचित टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि जम्मू कश्मीर भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा विषय है। रक्षा उद्योग और लॉजिस्टिक सहयोग पर भारत कोरिया गणराज्य की 10वीं संयुक्त समिति JCM की बैठक कल नई दिल्ली में आयोजित की गई। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने रक्षा संबंधों को और मजबूत तथा विस्तारित करने के लिए तरीकों पर चर्चा की। बैठक की सह अध्यक्षता भारत के रक्षा उत्पादन सचिव दिनेश माहौर और कोरिया गणराज्य के रक्षा अधिग्रहण कार्यक्रम प्रशासन के अपर और उप मंत्री किम इल डोंग ने की। भारत ने परमाणु हथियार मुक्त दुनिया बनाने के लिए सभी परमाणु हथियारों को पूरी तरह से खत्म करने के लिए अपने संकल्प को दोहराया है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में परमाणु हथियारों के पूरी तरह खत्म किए जाने के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में भारत का वक्तव्य दिया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आज नई दिल्ली में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत सफाई

मित्र सुरक्षा और सम्मान शिविर आयोजित करेगा। सम्मान सफाई मित्रों का, संकल्प स्वच्छ भारत का विषय पर आयोजित इस शिविर का उद्देश्य सफाई मित्रों के अहम योगदान को पहचानना और उन्हें सम्मानित करना है। वहीं देश भर से शहरी तथा ग्रामीण स्थानीय निकाय और संबंधित विभाग इसमें वर्चुअल रूप से शामिल होंगे। प्रधानमंत्री स्मृति चिन्ह ई नीलामी में इस वर्ष उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहर और समकालीन उपलब्धियों को 99 स्मृति चिन्हों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। इस संग्रह में आध्यात्मिक कलाकृतियां, पारंपरिक कला, खेल से संबंधित यादगार वस्तुएं और राज्य भर की प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं के मॉडल शामिल हैं। जापान एशियाई खेलों में भारत ने कल महिला 4x400 मीटर रिले टीम स्पर्धा में स्वर्ण और कांस्य पदक जीता। वहीं 4x100 मीटर मिक्स्ड रिले स्पर्धा में भारत ने कांस्य पदक हासिल किया। नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत निशानेबाजी स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक जीता। पदक तालिका में भारत 6 स्वर्ण, 21 रजत, 25 कांस्य सहित 52 पदकों के साथ 10वें स्थान पर आ गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 2 बजे शुरू होगा। नेपाल में पिछले सप्ताह हुई तेज बारिश से आई बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 35 हो गई है। पानी का स्तर कम होने के बाद भी पश्चिम नेपाल में भारी तबाही देखने को मिली है। इधर मौसम विभाग ने आज कर्नाटका के भीतरी इलाकों, केरलम, माहे, कारेकाल और पूर्वोत्तर राज्यों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारेकल में बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोताओं, अभी आप भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना सुन रहे थे। आइए बढ़ते हैं अगले कार्यक्रम की तरफ। सुनते हैं चिंतन, बचत पर गांधी जी के विचार।

हर व्यक्ति को जीवन यापन के लिए कुछ वस्तुओं की आवश्यकता होती है। हमारी न्यूनतम आवश्यकता के बाद जो भी वस्तुएं बचती हैं वे किसी अन्य व्यक्ति के काम आ सकती हैं। इसलिए हमारे पास जो साधन हैं हमें उनका मितव्ययता से प्रयोग करना चाहिए और इससे बची वस्तुएं दूसरों के लिए छोड़ देनी चाहिए। उस समय की बात है जब गांधी जी यरवदा जेल में थे। गांधी जी पैरों में खड़ाऊं पहनते थे। जब उनकी खड़ाऊं पुरानी हो गई तो जेल प्रशासन ने उन्हें नई खड़ाऊं मंगा दी जो बहुत भारी थी। एक रात की बात है, गांधी जी वही भारी खड़ाऊं पहनकर चल रहे थे। उन्हें पहनकर चलने में उन्हें बहुत ही कठिनाई हो रही थी। आश्रम के ही एक सहयोगी से उनका ये कष्ट देखा नहीं गया और जब गांधी जी सो गए तो उसने भारी खड़ाऊं के स्थान पर एक जोड़ी हल्की खड़ाऊं लाकर रख दी। सुबह जब गांधी जी ने जब भारी खड़ाऊं के स्थान पर हल्की खड़ाऊं देखी तो बोले, मेरी पुरानी खड़ाऊं कहाँ है? तभी आश्रमवासी उनके पास आया और बोला, बापू कल रात मुझसे आपका दुख देखा नहीं गया, इसलिए मैं आपके लिए नई खड़ाऊं ले आया हूं, आप इन्हें पहन लीजिए। इस पर गांधी जी बोले, मेरे पास एक जोड़ी खड़ाऊं पहले से है, मैं उन्हीं से अपना काम चला लूंगा, तुम ये दूसरी जोड़ी खड़ाऊं किसी अन्य जरूरतमंद को दे दो। वैसे भी हमें आश्रम के लिए मिले धन का मितव्ययता से उपयोग करना चाहिए ताकि लोगों का हम पर विश्वास बना रहे। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। बहुत मुश्किल से किसान एक एक दाने के लिए मेहनत करता है, तब कहीं भंडार भरता है। हमें उसी तरह एक एक दाने की रक्षा करनी चाहिए। अन्न और दौलत के बीच सामंजस्य स्थापित करके ही हम गरीबी अमीरी की खाई पाट सकते हैं। किसान अन्न पैदा करे और अमीर जन उन्हें उनका वास्तविक

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, DRM 810 किलो हर्ट्ज पर प्रस्तुत है रामचरितमानस अयोध्या कांड भाग 64।

भरत को श्री रामचंद्र के प्रेम की प्रतिमूर्ति मान सभी अयोध्यावासी उनके साथ राम को लौटा लाने के लिए वन जाने को उद्यत हैं। मंत्रियों को आदेश दिया गया है कि वे राज तिलक की सारी सामग्री वन में ले चलें, जहां वशिष्ठ जी श्री राम का राज तिलक करेंगे। सबसे आगे अरुंधति तथा अग्निहोत्र की सामग्री के साथ मुनि वशिष्ठ रथ पर सवार होकर चले। उनके पीछे तेज और तपस्या के धनी ब्राह्मणों के दल अनेक सवारियों पर आसीन हैं। नगर के नर नारियों के सुसज्जित रथों के साथ हैं रानियों की पालकियां। सबको विदा करके भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई पैदल चल पड़े तो माता कौशल्या ने भरत को बुलाकर उनकी पलैयां ली और उनसे रथ पर सवार होने को कहा। दोनों भाइयों ने माता की आज्ञा सिर पर धारण की।

0: ह्यः नवदिल्ल्यां पञ्चषष्ठितम्याः राष्ट्रियकलाप्रदर्शन्यां विंशतिपुरस्कारविजेतॄन् कलाकारान् पुरस्कृतवान्। ललितकला अकादम्या अस्य प्रदर्शनस्य आयोजनं कृतमासीत्। सभां सम्बोधयन् श्रीशेखावतः सृजनात्मकतायाः सुस्थिरतायाः च संयोजनस्य महत्त्वं सुदृढतया प्रतिपादितवान्। सः अवदत् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः जन्मदिवसावसरे आयोजितः सेवा हि संस्कृति इति उपक्रमः कथं सृजनात्मकता सेवाभावः च अर्थपूर्णरूपेण एकत्र भवितुमर्हन्ति इति प्रदर्शयति। रक्षा उद्योगानां तथा आपूर्ति व्यवस्था सहकारस्य विषये दशमं भारत कोरिया गणराज्यस्य JCM इति संयुक्त समिति सम्मेलनं ह्यः नवदिल्ल्याम् अभवत्। गतरात्रौ जम्मूकश्मीरस्य बडगाम जनपदस्य उच्चक्षेत्रेषु सुरक्षाबलैः सह जाते संघर्षे लश्करे तैयबा इत्यस्य एकः प्रमुखः आतंकी मृतः। यद्यपि भारतीयसेनायाः कश्मीरस्थितस्य चिनारकोरे इत्यनेन मृतस्य भयोत्पादकस्य परिचयः न प्रकटितः, तथापि अधिकारिणः तं सुलेमान शाह अथ मूसा इति नाम्ना अभिज्ञातवन्तः, यः पाकिस्तानस्थस्य लश्करे तैयबा इत्यस्य अत्यन्तम् अपेक्षितः भयोत्पादकः आसीत्। सामाजिकान्तर्जालीये पटले चिनारकोरे इत्यनेन उक्तं यत् बडगामनगरस्य यूस्मर्ग इत्यस्य समीपे कोराक्षेत्रे ऑपरेशन कोराग संचालितम् आसीत् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बदलती प्रौद्योगिकी, अनिश्चित परिस्थितियों और भौगोलिक चुनौतियों के बीच भारत को अपनी तैयारियों में भू सामरिक सोच और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने की योजना को महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। नई दिल्ली में भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि भारत का लक्ष्य स्पष्ट है कि संकट आने से पहले ही हम तैयारियां इतनी मजबूत कर लें कि देश उससे निपटने के लिए तैयार रहे।
2: रक्षा मंत्री ने कहा है कि ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा ने देश की ऊर्जा आपूर्ति लाइनों और राष्ट्रीय हितों की रक्षा में भारतीय नौसेना की पेशेवर क्षमता और परिचालन तत्परता को एक बार फिर साबित किया है। उन्होंने कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में फर्स्ट रिसर्वर और भरोसेमंद सहयोगी के रूप में अपनी भूमिका लगातार मजबूत कर रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि दक्षिण चीन सागर, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर में भारतीय युद्धपोतों की तैनाती देश की ब्लू वाटर नौसेना क्षमता को दर्शाती है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान की अनुचित टिप्पणियों को खारिज किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि जम्मू कश्मीर भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा विषय है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की सीमा पार आतंकवाद संबंधी टिप्पणी पर श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्री ने इसे गंभीर चिंता का विषय बताया है। रक्षा उद्योग और लॉजिस्टिक्स सहयोग पर भारत कोरिया गणराज्य की 10वीं संयुक्त समिति JCM की बैठक कल नई दिल्ली में आयोजित की गई। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने रक्षा संबंधों को और मजबूत तथा विस्तारित करने के तरीकों पर चर्चा की। बैठक की सह अध्यक्षता भारत के रक्षा उत्पादन सचिव दिनेश माहुर और कोरिया गणराज्य के रक्षा अधिग्रहण कार्यक्रम प्रशासन के अपर और उपमंत्री किम इल डोंग ने की। भारत ने परमाणु हथियार मुक्त दुनिया बनाने और सभी परमाणु हथियारों को पूरी तरह समाप्त करने के अपने संकल्प को दोहराया है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में परमाणु हथियारों की पूरी तरह खत्म किए जाने के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के मौके पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में भारत का वक्तव्य दिया। गृहमंत्री अमित शाह आज पंजाब दौरे पर रहेंगे और जालंधर में नशा मुक्त पंजाब यात्राओं को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इन यात्राओं का उद्देश्य पंजाब में मादक पदार्थों के खिलाफ लड़ाई को जन आंदोलन में बदलना है। निर्वाचन आयोग युवा मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए दिल्ली के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में विशेष नामांकन शिविर चला रहा है। विशेष शिविरों का अगला दौर अगले महीने की 7 और 8 तारीख को आयोजित किया जाएगा। आयोग ने

0: बताया कि दिल्ली में अब तक 4 लाख से अधिक सुनवाई की जा चुकी है। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूचियों के चल रहे SIR अभियान के कार्यक्रम में संशोधन किया है। दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि अगले महीने की 30 तारीख तक जारी रहेगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 4 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय आज नई दिल्ली में स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के अंतर्गत सफाई मित्र सुरक्षा और सम्मान शिविर आयोजित करेगा। सम्मान सफाई मित्रों का, संकल्प स्वच्छ भारत का विषय पर आयोजित इस शिविर का उद्देश्य सफाई मित्रों के अहम योगदान को पहचानना और उन्हें सम्मानित करना है। वहीं देश भर से शहरी तथा ग्रामीण स्थानीय निकाय और संबंधित विभाग इसमें वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। प्रधानमंत्री स्मृति चिन्ह ई नीलामी में इस वर्ष उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहर और समकालीन उपलब्धियों को 99 स्मृति चिन्हों के माध्यम से प्रदर्शित किया जा रहा है। इस संग्रह में आध्यात्मिक कलाकृतियां, पारंपरिक कला, खेल से संबंधित यादगार वस्तुएं और राज्य भर की प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं के मॉडल शामिल हैं। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज read by Shagun Chopra. Defense Minister Rajnath Singh has emphasized that India must make geostrategic thinking and contingency planning as integral parts of its preparedness amidst challenges arising from evolving technology, unpredictability and geographical proximity. Addressing the Indian Navy Commanders Conference in New Delhi, Mr. Singh said that the country's goal is clear, that preparedness must reach the crisis point before the crisis itself reaches the doorstep. More from our correspondent.
2: The minister underlined that the ongoing operation Urja Suraksha has once again demonstrated the Indian Navy's professionalism and operational readiness to protect the country's energy supply lines and national interest. He added that India stands firm as the first responder, preferred security partner and as a symbol of trust and reliability in the Indian Ocean region, strengthening the country's vision of Mahasagar. The defense minister noted that the presence of Indian warships in South China Sea, Mediterranean, Atlantic Ocean demonstrates the country's blue water force capability. He also commended the Indian Navy for maintaining a high level of combat readiness, noting that it is acting as a strategic anchor in realizing India's resolve of becoming a developed nation by 2047. With Priya Mondal, Netika Gupta, Akashwani News, Delhi.
1: Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan has said the government is working on a multidimensional strategy to ensure that farmers receive fair and remunerative prices for their produce. The strategy includes strengthening post-harvest management, scientific warehousing and marketing systems. Addressing the second day of the National Agriculture Conference Rabi Campaign 2026 in New Delhi, Mr. Chauhan assured 100% government procurement of Toor, Urad and Masoor at minimum support price.
3: It is our collective responsibility to ensure that farmers get a fair price for their produce. We need to connect farmers with the market through both systems, with MSP and without MSP. It has been decided that the government will purchase 100% of Toor, Masoor and Urad. However, whether it is a Kharif or a Rabi crop, the procurement arrangement should be made properly in advance so that farmers receive payment within 48 hours.
1: Home Minister Amit Shah is visiting Punjab today to flag in Nasha Mukt Punjab Yatras in Jalandhar. The Home Minister will also hold a gathering on the occasion. The Yatras, which were launched by BJP President Nitin Naveen on 18th of this month from Pathankot, have covered a distance of 4,000 kilometres in all the 117 assembly constituencies in 13 days. The objective of Yatras was to transform the fight against drugs in Punjab into a people's movement. In Jammu and Kashmir, a top Lashkar-e-Tayyaba terrorist was killed in an encounter with security forces in Budgam district yesterday evening. The terrorist was

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। समय हुआ है 7:10:15। प्रस्तुत है कार्यक्रम संगीतिका, जिसमें आप सुनेंगे भारत भूषण के गाए हुए भजन। तो आइए सुनते हैं भजन। कलाकार हैं भारत भूषण।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संगीतिका, जिसमें आपने सुना भारत भूषण के गाए भजन। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। समय हुआ है 7:30:25 और ये वक्त होता है कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग का।

गीतों भरी गुड मॉर्निंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। मैं कुसुम पवार, और दोस्तों बहुत ही प्यारे और मधुर गीत आपके लिए लेकर आई हूँ मैं। दोस्तों वक्त बहुत खास है, क्योंकि जो पल अभी हमारे पास है वो अगला पल आते ही बीत जाएगा। वक्त को जिसने समझ लिया उसने शायद जिंदगी को बहुत कुछ समझ लिया है दोस्तों।

जी हाँ दोस्तों, आने वाला पल जाने वाला है। जो वक्त आज हमारे पास है वो दोबारा लौट कर नहीं आएगा। आने वाला पल भी एक दिन बीता हुआ कल बन जाता है। फिर क्यों ना इन छोटी सी जिंदगी को हंसकर, खुश रहकर और अच्छे कर्म करते हुए बिताया जाए। किसी से बेवजह लड़ाई झगड़ा करने में, किसी से नाराज रहने में, किसी की कमियां ढूंढने में आखिर लोगों को मिलता ही क्या है। बेहतर यही है कि हम अपनी खूबियों पर ध्यान दें, अपने कर्मों को अच्छा रखें और जितना भी हो सके उतना प्यार, सम्मान और सुकून बांटें।

जी हाँ दोस्तों, जो भी है बस यही पल है। जी हाँ, आप सुन रहे हैं गीतों भरी गुड मॉर्निंग कुसुम पवार के संग, और हम आपको प्यारे प्यारे मधुर से गीत सुनवा रहे हैं। दोस्तों, जिंदगी बहुत छोटी है, इसे शिकायतों में नहीं, सुकून मुस्कान और अच्छे कर्मों में बिताइए, क्योंकि वक्त गुजर जाता है दोस्तों, लेकिन हमारे कर्म और हमारे व्यवहार ही याद रह जाते हैं। ऐसा बनिए कि लोग आपकी मौजूदगी को याद करें, आपकी अच्छाई को याद करें और आपसे दोबारा बात करने की चाह रखें। हम इतने बड़े बने ये नहीं कि हम कितने बड़े हैं, हम कितने अच्छे इंसान हैं ये बनना, ये ज़्यादा मायने रखता है। हमारी अच्छाई लोगों को प्रेरित करे, बस यही होना चाहिए, और लोग कहें कि तेरे पास आकर मेरा वक्त गुजर

जी हाँ दोस्तों, आप भी ज़रूर कहते होंगे कि रेडियो के पास आकर आपका वक्त गुजर जाता है, क्योंकि हम लाते ही इतने अच्छे अच्छे कार्यक्रम हैं, गीत संगीत से भरे कार्यक्रम, और अभी आप सुन रहे हैं गीतों भरी गुड मॉर्निंग। दोस्तों कहते हैं कि ज़िंदगी कोई दौड़ नहीं, हर पल आगे निकलने की जल्दी हो, क्योंकि जब हम कहते हैं ना कि चीज़ों को एंजॉय करना चाहते हैं, कभी कभी धीरे चलना भी ज़रूरी है ताकि रास्ते की खूबसूरती महसूस कर सके। हम कहते हैं जैसे अभी आपने सुना, तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है, क्योंकि कई बार मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत कभी कभी सफ़र होता है दोस्तों। तो आज इसी खूबसूरत एहसास के साथ सुनते हैं एक ऐसा गीत जो हमें याद दिलाता है कि ज़िंदगी को सिर्फ जीना नहीं, महसूस करना भी होता है।

जी हाँ दोस्तों, ज़िंदगी इतनी हसीन है कि ज़िंदगी को जब हम जीते हैं तो रास्ते में कुछ खूबसूरत पड़ाव भी आते हैं, जिन्हें दृश्यों को देखकर लगता है कि बस थोड़ा पल ही रुक जाए।

और हम सोचते हैं कि समय क्यों जल्दी भाग रहा है, और इस सफ़र की खूबसूरती महसूस करना चाहते हैं, और हम शायद इन्हीं खूबसूरत पड़ावों पर चलते चलते आंखों में कुछ ख्वाब भी आने लगते हैं, कुछ ऐसे ख्वाब जिन्हें देखकर लगता है कि जैसे चारों तरफ गुल खिल गए हों।

दोस्तों, जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। अकेले जब चलते हैं तो रास्ते लंबे लगते हैं, लेकिन कोई साथ चले तो हमारी धुन को अपनी धुन में मिला ले तो सफ़र बहुत आसान हो जाता है और संगीत बन जाता है। और कुछ ऐसी ही बात करी गई है इस गीत में। ख्वाब की भी बात हो रही है, लेकिन जब ख्वाब में सुर मिल जाए तो शायद वो ख्वाब एक खूबसूरत हकीकत बदल जाता है दोस्तों।

दोस्तों आप सुन रहे हैं गीतों भरी गुड मॉर्निंग, और अब हम बात करते हैं सुर की। दोस्तों जब हमारे ख्वाबों के साथ कोई अपनी धुन को मिला ले, हमारे साथ सुर से सुर मिला ले, तो क्या ही बात हो जाती है। दोस्तों इसी खूबसूरत एहसास के साथ मैं आपसे इजाजत लेती हूँ। मुझे यानी कुसुम पवार को दीजिए इजाजत, और किसी नई सुबह, नई धुन और नए ख्वाब के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गीतों भरी गुड मॉर्निंग। 8 बजने को हैं। ये दिल्ली आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। 8 बजने को हैं, कुछ ही देर में आप समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। नौसेना इस वर्ष अपने बेड़े में रिकॉर्ड 18 युद्धपोत शामिल करेगी। ये इतिहास में एक वर्ष का सबसे बड़ा सैन्य बल विस्तार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज अमेरिका में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। भारत ने विश्व को परमाणु हथियार मुक्त बनाने और सभी परमाणु हथियारों को समाप्त करने की प्रतिबद्धता दोहराई। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्करे तैयबा का शीर्ष आतंकवादी ढेर। आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, केरलम और उत्तर पूर्वी राज्यों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। एशियाई खेलों में भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने स्वर्ण पदक जीता। और भारत वेस्टइंडीज के बीच दूसरा एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज गुवाहाटी में। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मौजूदा वर्ष को भारतीय नौसेना के लिए ऐतिहासिक वर्ष बताया है। इस वर्ष 18 युद्धपोतों को नौसेना के बेड़े में शामिल करने की योजना है। नई दिल्ली में कल भारतीय नौसेना के द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन 2026 के दूसरे संस्करण में श्री सिंह ने कहा कि ये घटनाक्रम भारतीय नौसेना के घरेलू जहाज निर्माण तंत्र की बढ़ती परिपक्वता को दर्शाते हैं। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में नौसेना के प्रयासों को दर्शाते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि भारतीय नौसेना का युद्धपोत विनिर्माण तंत्र अब वैश्विक मानकों को पूरा कर रहा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में कमीशन किए गए युद्धपोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री है। रक्षा मंत्री ने मौजूदा प्रणालियों के महत्व को पहचानते हुए भारत की समुद्री निगरानी प्रणाली के महत्वपूर्ण उन्नयन का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि समुद्री यातायात की बढ़ती मात्रा और जटिलता के लिए उन्नत विश्लेषणात्मक क्षमताओं की आवश्यकता है। एक रिपोर्ट।
2: रक्षा मंत्री ने कहा है कि ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा ने देश की ऊर्जा आपूर्ति लाइनों और राष्ट्रीय हितों की रक्षा में भारतीय नौसेना की पेशेवर क्षमता और परिचालन तत्परता को एक बार फिर साबित किया है। उन्होंने कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में फर्स्ट रिस्पॉन्डर और भरोसेमंद सहयोगी के रूप में अपनी भूमिका लगातार मजबूत कर रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि दक्षिण चीन सागर, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर में भारतीय युद्धपोतों की तैनाती देश की ब्लू वाटर नौसेना क्षमता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि नौसेना वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक आधार के रूप में कार्य कर रही है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: रक्षा उद्योग और लॉजिस्टिक्स सहयोग पर भारत कोरिया गणराज्य की 10वीं संयुक्त समिति JCM की बैठक कल नई दिल्ली में आयोजित की गई। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने रक्षा उद्योग और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में जारी द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज अमरीका में G20 विदेश मंत्रियों के साथ बैठक में शामिल होंगे। ये बैठक अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के निमंत्रण पर आयोजित की जा रही है। अमेरिका की यात्रा के दौरान श्री गोयल अपने अमेरिका के समकक्ष के साथ भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए भी चर्चा करेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि बातचीत इस वर्ष 7 फरवरी को जारी संयुक्त बयान के अनुरूप अंतरिम समझौते को अंतिम रूप देने पर केंद्रित होगी। श्री गोयल 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक अमेरिका की यात्रा पर हैं, जहां

0: वे G20 बैठक में भारत विश्व व्यापार संगठन को केंद्र में रखते हुए नियम आधारित खुले समावेशी और पारदर्शी बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था को मजबूत करने के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। यात्रा के दौरान श्री गोयल विनिर्माण, उपभोक्ता वस्तुओं, कृषि व्यवसाय, खुदरा और प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख अमरीका की कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। भारत ने परमाणु हथियारों से मुक्त और सार्वभौमिक गैर भेदभावपूर्ण और सत्यापन योग्य निशस्त्रीकरण के माध्यम से परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी देशों के मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने कल न्यूयॉर्क में परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय बैठक में भारत का ये बयान दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि श्री जॉर्ज ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में डर्बन घोषणा और कार्य योजना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित एक बैठक में नस्लीय भेदभाव, विदेशियों के प्रति नफरत और संबंधित असहिष्णुता से लड़ने के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की। गृहमंत्री अमित शाह आज पंजाब दौरे पर रहेंगे और जालंधर में नशा मुक्त पंजाब यात्राओं को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इन यात्राओं का उद्देश्य पंजाब में मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान को जन आंदोलन में बदलना है। इन यात्राओं का मुख्य केंद्र पंजाब के सामने मौजूद तीन प्रमुख चुनौतियां हैं। इनमें मादक पदार्थों के बढ़ते दुरुपयोग, बिगड़ती कानून व्यवस्था और शासन के सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। यह यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और अटूट प्रतिबद्धता से प्रेरित है, जो आज भी जारी है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टि से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज इस विशेष श्रृंखला में हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे इस दृष्टि को जल सुधारों के माध्यम से साकार किया गया है।
1: दशकों तक गुजरात बार बार पड़ने वाले सूखे और भीषण जल संकट की त्रासदी झेलता रहा। इस परिस्थिति को बदलते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जल प्रबंधन को एक स्थायी व्यवस्था के रूप में स्थापित किया। चेक डैम, खेत तालाब, रिचार्ज वेल और नहरों के एक विशाल नेटवर्क की योजना तैयार की गई। सुजलाम सुफलाम जैसी दूरगामी पहल के जरिए बाढ़ के अधिशेष जल को 332 किलोमीटर से अधिक की लंबी नहरों के माध्यम से उत्तरी गुजरात के सैकड़ों गांवों तक पहुंचाया गया। वहीं ऐतिहासिक योजना के तहत नर्मदा के पानी को सौराष्ट्र के जलाशयों तक पहुंचाकर 10 लाख एकड़ से अधिक भूमि को सिंचाई सुविधा से जोड़ा गया। राज्य भर में 1.85 लाख से अधिक चेक डैम बनाए गए। जल संकट से जल सुरक्षा की इस अभूतपूर्व सफर को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
2: मैंने दशकों से लटके पड़े सरदार सरोवर डैम का काम पूरा करवाया। गुजरात में सौनी योजना शुरू हुई, जहां पानी की अधिकता थी वहां से पानी जल संकट वाले इलाकों में पहुंचाया गया। आज गुजरात में हुए प्रयासों के परिणाम सारी दुनिया के सामने हैं।
1: जल सुरक्षा के इस विस्तृत तंत्र ने राज्य के लाखों किसानों के जीवन में स्थायित्व और आर्थिक समृद्धि का संचार किया है। सौनी योजना से अपने जीवन और खेती में आए सकारात्मक बदलाव को बयां करते हुए अमरेली जिले की महिला किसान लाभुबेन सरोला कहती है,
3: सौनी योजना के आने से हमारे गांव में नहर आई। पानी का इस्तेमाल करके मैंने मूंगफली और कपास जैसी फसलों का उत्पादन बढ़ाया है और कमजोर सालों में भी हमने अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं। इसीलिए हम गुजरात सरकार और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हैं।
1: आज गुजरात का यह दूरदर्शी जल प्रबंधन मॉडल पूरे देश के लिए जल संरक्षण, कृषि समृद्धि और सतत विकास की एक बेहतरीन मिसाल बना हुआ है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2018 में असम में बोगी पुल का उद्घाटन किया। ये पुल ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर स्थित धेमाजी जिले को दक्षिणी तट पर स्थित डिब्रूगढ़ से जोड़ता है।
4: बोगीबेल पुल ने ऊपरी असम के सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक, स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रों में व्यापक बदलाव लाए हैं। 4.94 किलोमीटर लंबा यह दो स्तरीय रेल सह सड़क पुल भारत में अपनी तरह का सबसे लंबा पुल माना जाता है। यद्यपि इसकी आधारशिला वर्ष 1997 में तत्कालीन प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा ने रखी थी, लेकिन कई वर्षों तक इसका निर्माण कार्य धीमी गति से चलता रहा। बाद में NDA सरकार के दौरान

0: निर्माण परियोजना को गति मिली और लंबे समय से प्रतीक्षित इस पुल का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा हुआ। आज उस क्षेत्र के उत्तरी तट के लोग चिकित्सा, आपात स्थितियों, शिक्षा तथा अन्य कार्यों के लिए कुछ ही मिनटों में डिब्रूगढ़ पहुंच सकते हैं। धेमाजी से हरेंद्रनाथ शर्मा के साथ राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: निर्वाचन आयोग युवा मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए दिल्ली के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में विशेष नामांकन शिविर चला रहा है। एक रिपोर्ट।
2: अगले महीने की 4 और 11 तारीख को सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने कहा कि इस वर्ष 1 अक्टूबर या उससे पहले 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले नए आवेदक मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के लिए फॉर्म 6 में आवेदन करें। निर्वाचन आयोग ने बताया कि अब तक दिल्ली में 400,000 से अधिक सुनवाइयां की जा चुकी हैं। आयोग ने यह भी कहा कि जिन मतदाताओं को तार्किक विसंगतियों से संबंधित नोटिस मिले हैं, उन्हें बूथ लेवल अधिकारी सहायता प्रदान करेंगे। बूथ लेवल अधिकारी ऐसे मतदाताओं के घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के कार्यक्रम में संशोधन किया है। दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि अगले महीने की 30 तारीख तक जारी रहेगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 4 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। एक्सपर्ट @AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले के पहाड़ी इलाकों में कल देर शाम सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर ए तैयबा का एक शीर्ष आतंकवादी मारा गया। भारतीय सेना की कश्मीर स्थित चिनार कोर ने मारे गए आतंकवादी की पहचान उजागर नहीं की, लेकिन अधिकारियों ने उसकी पहचान सुलेमान शाह उर्फ मूसा के रूप में की। मूसा पाकिस्तान स्थित लश्कर ए तैयबा का मोस्ट वांटेड आतंकवादी था। एशियाई खेल 2026 में भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने फाइनल मैच में चीन को 238-234 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। ज्योति सुरेखा वेन्नम, चिकिता तनिपार्थी और प्रथिका प्रदीप की भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया को 234-233 से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की थी। भारत ने हांगझोउ में आयोजित 2023 एशियाई खेलों में महिला कंपाउंड टीम स्पर्धा में भी स्वर्ण पदक जीता था। भारत प्रतियोगिता में अब 7 स्वर्ण, 21 रजत और 25 कांस्य पदकों सहित कुल 53 पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज तटीय आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी, ओडिशा, मध्य प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की भी संभावना है। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज आसमान साफ रहने का अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
4: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों ने आज अलग अलग खबरों को अपने मुख्य पृष्ठ पर जगह दी है। पाकिस्तान और अमेरिका के बीच हाल में मजबूत होते रिश्तों पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की तल्ख टिप्पणी अमर उजाला में है। पत्र लिखता है, अमेरिका ने आतंकवाद पर भारत की चिंता नहीं समझी तो रिश्तों पर असर। इसी खबर पर दैनिक जागरण के विदेश पन्ने की सुर्खी है, पाकिस्तान से गलबहियां पर अमेरिका से बोले जयशंकर, आतंकवाद पर कोई सहानुभूति नहीं, इससे रिश्ते प्रभावित होंगे। दैनिक जागरण ने कैंसर की दवाओं पर अस्पतालों द्वारा 10 गुना तक कीमत बढ़ाए जाने पर सर्वोच्च न्यायालय की सख्त टिप्पणी प्रकाशित की है। अस्पतालों में 10 गुना कीमतों पर दवा बेचना नरसंहार। राजधानी में यातायात को नई रफ्तार देने के लिए बनाए गए बारापोला फेज 3 एलिवेटेड कॉरिडोर और मुकरबा चौक अंडरपास के उद्घाटन की भी खबर कई समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित की है। हिंदुस्तान ने सौगात शीर्षक से लिखा है, मयूर विहार से एम्स तक बिना रुके सफर करे। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, मयूर विहार से एम्स की यात्रा 15 मिनट में। राजस्थान पत्रिका ने बदलाव शीर्षक से खबर छापी है, सामाजिक विज्ञान की नई पुस्तक जारी, जाट सिख प्रतिरोध भी 9वीं के कोर्स में शामिल, लिखा एनसीईआरटी की नई किताब में मेवाड़ के रणबांकुरों की कहानी। पत्र ने कोलकाता में होने वाले एक भव्य दुर्गा पूजा पंडाल का भी चित्र प्रकाशित किया है। पंडाल में 1000 किलोग्राम पुराने अखबारों से

0: Shagun. Thank you, Nina. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Indian Navy to induct record 18 warships in 2026, marking largest single-year force expansion in its history. Most wanted Lashkar-e-Tayyiba terrorists killed in an encounter with security forces in Budgam district of Jammu and Kashmir. IMD forecasts heavy rain in interior Karnataka, Tamil Nadu, Keralam and northeastern states today. India reaffirms its commitment to achieve nuclear weapons-free world and complete elimination of nuclear weapons. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal to participate in G20 Trade Ministers meeting in Wisconsin, US today. Indian women's compound archery team bags gold medal at Asian Games in Japan. And in men's cricket, second ODI between India and West Indies to be played in Guwahati this afternoon. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की खास खास खबरें। भारतीय बहरिया अपनी तारीख में किसी एक साल में की जाने वाली सबसे बड़ी तौसी के तहत साल 2026 में 18 जंगी बहरी जहाजों को बहरिया में शामिल करेगा। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में हिफाजती दस्तों के साथ मुठभेड़ में लश्कर ए तैयबा का सबसे मतलूब दहशतगर्द मारा गया। भारतीय महकमे मौसमियात ने अंदरूनी कर्नाटक, केरलम, शुमाल मशरकी रियासतों में आज शदीद बारिश की पेशगोई की है। भारत ने न्यूक्लियाई हथियारों से पाक दुनिया और न्यूक्लियाई हथियारों के मुकम्मल खात्मे के अज़्म के तहत अपनी अहदबस्तगी की तौसीख की है। कॉमर्स और सनतों के वजीर पीयूष गोयल आज अमेरिका के विस्कॉन्सिन में G20 वज़राए तिजारत की मीटिंग में शिरकत करेंगे। जापान में जारी एशियाई खेलों में तीरंदाजी में भारतीय खवातीन की कंपाउंड टीम ने सोने का तमगा जीता है। और मर्दों के क्रिकेट में आज दोपहर गुवाहाटी में भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान दूसरा एक रोजा बैन अल-अक़वामी मैच खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। भारतीय बहरिया अपनी तारीख में किसी एक साल में की जाने वाली सबसे बड़ी तौसी के तहत साल 2026 में 18 जंगी बहरी जहाजों को बहरिया में शामिल करेगा। इस दौरान वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने एक ही साल में 18 बहरी जहाजों को बहरिया में शामिल करने या उन्हें कमीशन करने के बहरिया के मंसूबों पर 2026 को तारीखी साल करार दिया है। कल नई दिल्ली में भारतीय बहरिया की साल में दो बार होने वाली कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का खिताब करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि ये पेशरफ्त घरेलू बहरी जहाज साजी निजाम में भारत की बढ़ती मोतबरियत की अक्कासी करती है। दिफाई शोबे में खुद इन्हिसारी से मुतालिक बहरिया की कोशिशों का जिक्र करते हुए वजीर दिफा ने जोर देकर कहा कि भारतीय बहरिया का बहरी जहाजों की तैयारी का इको निजाम अब आलमी पैमानों पर पूरा उतर रहा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में कमीशन किए गए बहरी जहाज 75% से ज्यादा देसी साख्त के हैं। वजीर दिफा ने मौजूदा निजाम की अहमियत का एतराफ करते हुए भारत के बहरी निगरानी निजाम में खातिर का अपडेट पर जोर दिया। जनाब सिंह ने मजीद कहा कि बहरी आमोदरफ्त का बढ़ता हजम और पेचीदगियां तजजियाती सलाहियतों की मांग करती हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में बहरिया की जदीदकारी के हुकूमत के अज़्म को नुमाया करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि विकसित भारत 2047 के नजरिए की तकमील में भारतीय बहरिया स्ट्रेटेजिक तौर पर अहम रोल अदा करेगा। चुनाव कमीशन ने नौजवान वोटर्स के ज्यादा से ज्यादा इंदिराज को यकीनी बनाने के मकसद से दिल्ली के कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में इंदिराज के लिए खसूसी कैंपों का एहतमाम किया है। कल बड़ी तादाद में तलबा खसूसी तफसीली नजरसानी SIR के बारे में मालूमात हासिल करने और इंतखाबी फॉर्म हासिल करने या दाखिल करने के लिए इन कैंपों में पहुंचे। कैंप आज भी जारी रहेंगे। चुनाव कमीशन ने कहा है कि इन कैंपों में मौजूद BLOs तलबा के फॉर्म भरे हुए फॉर्म हासिल करने और SIR से मुतालिक सवालात के हल के लिए उनकी रहनुमाई कर रहे हैं। कैंपों का एक और मरहला अगले महीने की 7 और 8 तारीख को मुनाकिद किया जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट।
2: तमाम जुमरों के वोटर्स के इंदराज के लिए अगले माह की 4 और 11 तारीख को तमाम पोलिंग स्टेशनों पर खसूसी कैंप भी मुनाकिद किए जाएंगे। कमीशन ने कहा कि रवां साल 1 अक्टूबर को या इससे पहले 18 साल की उम्र पूरी करने वाले नए दरख्वास्त दहिंदगान को वोटर फहरिस्त में अपने नाम शामिल कराने के लिए फॉर्म 6 में दरख्वास्त देनी चाहिए। इसी ने वाजे किया कि अब तक दिल्ली में 4 लाख से ज्यादा समातें की जा

0: चुकी हैं। चुनाव कमीशन ने यह भी कहा है कि जिन वोटर्स को अनमैप्ड या मंतकी एतबार से फर्क के लिए नोटिस मौसूल हुए हैं उनकी मदद बीएलओज करेंगे जो दस्तावेजात जमा करने के लिए उनके घरों का दौरा करेंगे। ईसी ने दिल्ली में वोटर फहरिस्तों की जारी खसूसी तफसीली नजरसानी के शेड्यूल में तरमीम की है। दावे और एतराजात दायर करने की मुद्दत अगले माह की 30 तारीख तक जारी रहेगी जबकि हतमी वोटर फहरिस्त रवां साल 4 दिसंबर को शाया की जाएगी। अक्षित की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
1: जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में कल शाम सलामती दस्तों के साथ मुठभेड़ में लश्कर ए तैयबा का एक चोटी का दहशतगर्द हलाक हो गया। दहशतगर्द की शनाख्त कमांडर फौजी मूसा के तौर पर हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में भारतीय फौज की चिनार कौर ने कहा कि यह कार्रवाई बडगाम में यूसमर्ग के नजदीक कोराग में फौज पुलिस और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF ने मुश्तरक तौर पर अंजाम दी। मूसा जम्मू और कश्मीर में कई हमलों में मुलविस होने की वजह से मतलूब था। 5 सितंबर को यूसमर्ग में हुई मुठभेड़ में वो बच निकला था लेकिन इसका करीबी माविन यासिर हलाक हो गया था। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर वी के सक्सेना ने कल मरकज के जेर इंतजाम इलाके में उगाए गए लिलियम के फूलों की पहली कमर्शियल कार्गो परवाज को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए जनाब सक्सेना ने बताया कि कमर्शियल कार्गो लद्दाख की जरई तारीख में नए बाब का आगाज है। जनाब सक्सेना ने कहा कि बागबानी फूलों के एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की गई थी और लद्दाख के मवाफिक आबो हवा और दर्जे हरारत के सबब आला मेयार के साथ हौसला अफजा कामयाबी मिली है। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह आज पंजाब का दौरा कर रहे हैं जहां वो जालंधर में नशा मुक्त पंजाब यात्राओं को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वजीर दाखला इस मौके पर तकरीब से खिताब भी करेंगे। ये यात्राएं जिनका आगाज बीजेपी के सदर नितिन नबीन ने इस महीने की 18 तारीख को पठानकोट से किया था 13 दिनों में सभी 117 असेंबली हलकों में 4000 किलोमीटर का फासला तय कर चुकी हैं। इन यात्राओं का मकसद पंजाब में मुनशियात के खिलाफ लड़ाई को अवामी तहरीक बनाना है। ये यात्राएं फिलहाल पंजाब को दरपेश 3 अहम मसाइल मुनशियात की बढ़ती लत अमन कानून की बिगड़ती सूरत हाल और हुक्मरानी की हर सतह पर बदउनवानी पर मरकूज हैं। भारतीय महकमे मौसमियात ने अंदरूनी कर्नाटक केरला माहे तमिलनाडु और शुमाल मशरकी रियासतों के कुछ हिस्सों में आज इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है। वहीं महकमे मौसमियात ने साहिली आंध्र प्रदेश पुडुचेरी ओडिशा मध्य प्रदेश आसाम मेघालय नागालैंड मणिपुर मिजोरम और त्रिपुरा में आज गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया है। दिल्ली में महकमे मौसमियात ने आज दिन में मतला साफ रहने की पेशगोई की है। दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 32 से 34 डिग्री सेल्सियस और कम अज कम दर्ज हरारत 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहने का इम्कान है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारत ने न्यूक्लियाई हथियारों से पाक दुनिया और न्यूक्लियाई हथियारों के मुकम्मल खात्मे के तहत अपनी अहदबस्तगी की तौसीक की है। वजारत खारजा में मगरबी उमूर के सेक्रेटरी सीबी जॉर्ज ने न्यूयॉर्क में अकवाम मुत्तहदा के सदर दफ्तर में न्यूक्लियर हथियारों के मुकम्मल खात्मे से मुतालिक बैनुल अक्वामी दिन के मौके पर एक आला सतही मुकम्मल इजलास के दौरान भारत का मौकिफ पेश किया। जनाब जॉर्ज ने कल नस्ल परस्ती नस्ली इम्तियाज गैर मुल्कियों से नफरत और अदम रवादारी से निमटने के मामले में भारत के गैर मुतजलजल अज़्म को दोहराया। जनाब जॉर्ज ने डर्बन एलामिए और प्रोग्राम ऑफ एक्शन DDPA को अपनाए जाने की 25वीं सालगिरह के मौके पर अक्वामे मुत्तहदा जनरल असेंबली की आला सतही मीटिंग के दौरान ये बात कही। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक अमरीका का दौरा करेंगे जहां वो G20 वज़राए तिजारत की मीटिंग में शिरकत करेंगे और अमरीकी सनती रहनुमाओं सरमायाकारों स्टार्टअप्स और भारतीय बिरादरी के अफराद से तबादले ख्याल करेंगे। जनाब गोयल अमरीकी तिजारती नुमाइंदों USTR की दावत पर 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को विस्कॉन्सिन के मिलवॉकी में G20 वज़राए तिजारत की मीटिंग में हिस्सा लेंगे। ये मीटिंग G20 रुकन ममालिक के वज़राए तिजारत को यकजा करेगी जहां आलमी तिजारत और कसीर जहती तिजारती निज़ाम से मुतालिक मामलात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। कॉमर्स और सनअतों की वजारत के मुताबिक भारत सभी G20 अराकीन के साथ तामीरी तौर पर मशगूल रहेगा और जवाबित पर मबनी खुले शमूलियाती शफाफ मसावी और तफरीक से पाक कसीर जहती तिजारती निज़ाम की तश्कील की जानिब काम करेगा। इस दौरान तरक्की पजीर ममालिक के लिए पॉलिसी साजी में गुंजाइश पैदा करने पर आलमी तिजारती तंजीम WTO के साथ बातचीत मरकूज रहेगी। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कल कतर के दोहा में AII

0: मोहतरमा सीतारमन ने भारत कतर ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक साझेदारी तक ले जाने वाली हालिया आला सतही मशगूलियात को याद किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अवामी खिदमात के 25 बरस मुकम्मल हो रहे हैं, जो जन सेवा से देश सेवा के मंत्र पर मबनी है और इस अंतक अजम का सिलसिला जारी है। सेवा और सुशासन के इस नजरिए के तहत हुकूमत 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने के खातिर अनथक काम कर रही है। सबकी शमूलियत वाली तरक्की और समाजी तौर पर बाइख्तियार बनाने के अमल के जरिए लोगों की जिंदगियों में बड़ी तब्दीली आ रही है। आज इस खसूसी सीरीज में हम आपके लिए एक ऐसी मिसाल लेकर आए हैं कि किस तरह इस विजन को पानी से मुतालिक इस्लाहात के जरिए अमली जामा पहनाया गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: दहाइयों से गुजरात मुसलसल खुश्कसाली और पानी की शदीद बुरान के साये में जी रहा था। बुरान के बंदोबस्त से मुनज्जम तख्लीक की तरफ रुख मोड़ते हुए नरेंद्र मोदी ने बतौर वजीर आला पानी एक जामे हिकमत अमली शुरू की। गुजरात को पानी से महफूज बनाने के लिए स्ट्रेटेजिक इंटरबेसन वाटर ट्रांसफॉर्म चीफ डेमो और नहरों के वसी नेटवर्क को इस्तेमाल में लाया गया। सुजलाम सुफलाम जैसे फ्लैगशिप प्रोजेक्टों ने शिमाली अजला में 300 किलोमीटर से ज्यादा लंबी नहरों के जरिए सैलाब के इजाफी पानी का रुख मोड़ दिया, जबकि सयून योजना ने सौराष्ट्र की खुश्क साली से मुतासर झीलों तक नर्मदा का पानी पहुंचाया, जिससे 10 लाख एकड़ से ज्यादा की आबपाशी की सलाहियत पैदा हुई। 1,85,000 से ज्यादा चेक डैम तामीर किए गए, जिससे ज़ेर तामीर पानी की सतह में ज़बरदस्त इजाफा हुआ और गुजरात की ज़रई और माशी तरक्की की एक मजबूत बुनियाद रखी गई। पानी की किल्लत से पानी के तहफ़्फ़ुज़ के इस तब्दीली के सफर को याद करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा,
2: मैंने दशकों से लटके पड़े सरदार सरोवर डैम का काम पूरा करवाया। गुजरात में सौनी योजना शुरू हुई, जहां पानी की अधिकता थी वहां से पानी जल संकट वाले इलाकों में पहुंचाया गया। आज गुजरात में हुए प्रयासों के परिणाम सारी दुनिया के सामने हैं।
1: पानी की इस मुनज्जम यकीनी फराहमी से लाखों किसानों को बराह रास्त बाइख्तियार बनाया गया, उनकी रोजी रोटी को महफूज बनाया है और खुश्कसाली के मुसलसल खतरे को खत्म किया है। जमीनी सतह की ज़राअत पर सयून योजना के असरात पर रोशनी डालते हुए अमरेली जिला के किसान लबूबेन सरोला ने अपना तजर्बा बयान किया।
3: मेरा नाम लबूबेन सरोला है, मैं गुजरात के अमरेली की वाकिया गांव की रहने वाली हूं। मैं एक किसान हूं। सौनी योजना के आने से हमारे गांव में नहर आई, पानी का इस्तेमाल करके मैंने मूंगफली और कपास जैसी फसलों का उत्पादन बढ़ाया है और कमजोर सालों में भी हमने अपनी रोजी रोटी को कमा सकते है। इसीलिए हम गुजरात सरकार और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते है।
0: जापान में जारी एशियाई खेलों में तीरंदाजी में भारतीय खवातीन की कंपाउंड टीम ने सोने का तमगा जीता है। भारतीय टीम ने ओकाजाकी चौसोगो पार्क में खेले गए फाइनल मैच में आज चीन को 234 के मुकाबले 238 से शिकस्त दी। मर्दों के क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान 3 एकरोजा मैचों की सीरीज का दूसरा मैच आज गुवाहाटी के बिरसा पाड़ा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे शुरू होगा। तिरुवनंतपुरम में खेले गए पहले एकरोजा मैच में 8 विकेट से शानदार जीत हासिल करने के बाद भारत सीरीज में नाकाबिले शिकस्त बर्तरी हासिल करने के इरादे से मैदान में उतरेगा। पहले एकरोजा मैच में विराट कोहली और शुभमन गिल ने सेंचुरियां स्कोर की थीं, जिससे मेजबान टीम के हौसले बुलंद हैं और वो दूसरे एकरोजा मैच में भी बेहतरीन बल्लेबाजी के सिलसिले को जारी रखना चाहेगी। ये 3 खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
4: शुक्रिया जमीर। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के उर्दू अखबारात की शह सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अखबार इंकलाब ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह के हवाले से सुर्खी लगाई है कि बहर हिंद में सबसे पहले मदद का हाथ बढ़ाने वाला भारत पसंदीदा सिक्योरिटी पार्टनर। अखबार ने शहरी हवाबाजी के वजीर के बयान को अहमियत देते हुए लिखा है, नायडू ने दुनिया को भारतीय हवाबाजी की मार्केट से जुड़ने की दावत दी। इसी अखबार की एक और सुर्खी है, वजीर खजाना सीतारमन ने दोहा में नेपाल सऊदी अरब के वज़राए खजाना के साथ 2 तरफा अहमियत की हामिल मीटिंगें की।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। भारतीय बहरिया अपनी तारीख में किसी एक साल में की जाने वाली सबसे बड़ी तौसी के तहत साल 2026 में 18 जंगी बहरी जहाजों को बहरिया में शामिल करेगा। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में हिफाजती दस्तों के साथ मुठभेड़ में लश्कर ए तैयबा का सबसे मतलूब दहशतगर्द मारा गया। भारतीय

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा, जिसमें आपने सुना सोनाली नाटा से ठुमरी राग, मिश्र रामदासी मल्हार और मिश्र सिंध भैरवी, दादरा राग मिश्र भैरवी। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर प्रस्तुत है। अगला कार्यक्रम साइंस मैगजीन।
1: नमस्कार एंड वेलकम टू येट अनदर एडिशन ऑफ आवर साइंस मैगजीन प्रोग्राम।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे पंजाबी प्रोग्राम मिट्टी दी महक। आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर आपकी पसंद के कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक 10 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे, पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में। और समाचारों के बाद बारी होगी आपकी पसंद के फिल्मी गीतों की, और उसमें आपके नाम, आपके ईमेल, आपकी पसंद के गीत शामिल किए जाएंगे। आपसे निवेदन करेंगे कि हमारे साथ लगातार बने रहें। फिलहाल समय हो रहा है समाचारों का, आइए सुनते हैं हिंदी और अंग्रेजी में समाचार बारी बारी से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती।

0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मौजूदा वर्ष को भारतीय नौसेना के लिए एक ऐतिहासिक वर्ष बताया है। इस वर्ष 18 युद्धपोतों को नौसेना में शामिल करने की योजना है। नई दिल्ली में कल भारतीय नौसेना के द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन 2026 के दूसरे संस्करण में श्री सिंह ने कहा कि ये घटनाक्रम भारत की नौसेना के घरेलू जहाज निर्माण तंत्र की बढ़ती परिपक्वता को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में कमीशन किए गए युद्धपोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री है। रक्षा मंत्री ने मौजूदा प्रणालियों के महत्व को पहचानते हुए भारत की समुद्री निगरानी प्रणाली के महत्वपूर्ण उन्नयन का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि समुद्री यातायात की बढ़ती मात्रा और जटिलता के लिए उन्नत विश्लेषणात्मक क्षमताओं की आवश्यकता है। रक्षा उद्योग और लॉजिस्टिक्स सहयोग पर भारत कोरिया गणराज्य की 10वीं संयुक्त समिति GCM की बैठक कल नई दिल्ली में आयोजित की गई। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने रक्षा उद्योग और लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में जारी द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज अमरीका में G20 देशों के मंत्रियों के साथ बैठक में शामिल होंगे। ये बैठक अमरीका के व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर के निमंत्रण पर आयोजित की जा रही है। अमरीका की यात्रा के दौरान श्री गोयल अपने अमरीका के समकक्ष के साथ भारत अमरीका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए भी चर्चा करेंगे। श्री गोयल 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक अमरीका की यात्रा पर हैं, जहां वे G20 बैठक में भारत विश्व व्यापार संगठन को केंद्र में रखते हुए नियम आधारित खुले समावेशी और पारदर्शी बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था को मजबूत करने के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। भारत ने परमाणु हथियारों से मुक्त और सार्वभौमिक गैर भेदभावपूर्ण और सत्यापन योग्य निरस्त्रीकरण के माध्यम से परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। विदेश मंत्रालय में पश्चिम क्षेत्रों के सचिव सीबी जॉर्ज ने कल न्यूयॉर्क में परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय बैठक में भारत का यह बयान दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि श्री जॉर्ज ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में डर्बन घोषणा और कार्य योजना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित एक बैठक में नस्लीय भेदभाव, विदेशियों के प्रति नफरत और संबंधित असहिष्णुता से लड़ने के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की। जम्मू कश्मीर के बड़गाम जिले के पहाड़ी इलाके में कल देर शाम सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्करे तैयबा का एक शीर्ष आतंकवादी मारा गया। भारतीय सेना की कश्मीर स्थित चिनार कोर ने मारे गए आतंकवादी की पहचान उजागर नहीं की, लेकिन अधिकारियों ने उसकी पहचान सुलेमान शाह उर्फ मूसा के रूप में की। मूसा पाकिस्तान स्थित लश्कर ए तैयबा का मोस्ट वांटेड आतंकवादी था। एशियाई खेलों में साहिल जाधव और चिकिता तिनिपार्थी की भारतीय मिश्रित कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय महिला स्क्वाश टीम ने भी आज सिंगापुर को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही भारत का एक और पदक पक्का हो गया। पहले मुकाबले में तन्वी खन्ना ने ओ योंग वाई लेन को हराया। इसके बाद अनाहत सिंह ने ओ योंग वेन हान को शिकस्त दी। भारत का सेमीफाइनल मुकाबला कल नागोया किंजो फुटो एरेना में होगा। भारत ने चीन, जापान और ईरान को हराकर पूल सी में शीर्ष स्थान हासिल किया है। कुश्ती में पुरुषों के ग्रीको रोमन 87 किलोग्राम भार वर्ग में सुनील कुमार ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। उन्होंने आज ताजिकिस्तान के मोहम्मद सुल्तान जोदा को पहले ही राउंड में 9-0 से तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर हराया। वहीं भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने फाइनल में चीन को 238 के मुकाबले 234 अंक से हराकर स्वर्ण पदक जीता। भारत अब 7 स्वर्ण, 21 रजत और 25 कांस्य पदक सहित कुल 53 पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। मौसम विभाग ने आज आंतरिक कर्नाटक, केरला, माहे, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आज तटीय आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी, ओडिशा, मध्य प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की भी संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नीना अरकेल।

0: के साथ लगातार जुड़े हुए हैं और सभी श्रोताओं को मैं बता दूं कि थोड़ी ही देर में आपकी अपनी पसंद के फिल्मी गीतों और आपकी अपनी जो फरमाइशें हैं, आपके अपने जो नाम हैं, उन्हें लेकर आपके साथ हाजिर होंगे। फिलहाल कुछ जरूरी संदेश समाचारों के बाद आइए सुनते हैं।
1: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
2: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
1: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
2: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
1: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
2: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
3: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
4: जी,
3: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
4: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
3: पर ये होगा कैसे?
4: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
3: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
4: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
3: बस
4: बस
3: समझ गया।
4: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
5: आरबीआई कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: जी हाँ, जानकार बनिए और सतर्क रहिए, और यही सब काम है आकाशवाणी का, देश के लोगों को अवेयर करना, देश के लोगों को जागरूक बनाना और उन्हें सक्षम बनाना कि वो अपने लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए खुद ही निर्णय ले सकें और खुद ही तत्पर हो सकें। तो बहुत ही आसान भाषा में ये दो संदेश आपने सुने, और उन दो संदेशों को अगर वो आपके साथ संबंध है उनका, यानी SIR के अंतर्गत, तो आप उस पर कदम उठा सकते हैं, या फिर बैंकिंग रिलेटेड सर्विसेज जो हैं KYC की, तो उस पर भी आप आसानी से अपनी जो समस्या है उसका निदान कर सकते हैं। कैसे, वो आपने मैसेज में सुना। और समय हुआ है आपकी पसंद के फिल्मी गीतों के कार्यक्रम आपकी पसंद का। इस कार्यक्रम के साथ आज मैं हूँ देवेंद्र त्रिपाठी। सभी श्रोताओं को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। श्रोताओं, आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप अपना ईमेल हमारे साथ साझा कर सकते हैं अपनी पसंद के गीत सुनने के लिए, और अपने नामों के लिए ही बहुत सारे श्रोता हमारे साथ जुड़ते हैं। तो श्रोताओं का स्वागत करते हुए मैं सबसे पहले गीत सुनवाऊंगा, उसके बाद फिर पहला गीत किन श्रोताओं की पसंद पर शामिल किया गया है ये बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक निवेदन भी आपसे करूंगा दोस्तों, कि आप जो ईमेल कई बार भेजते हैं और कार्यक्रम नहीं सुन रहे होते हैं फिर भी मेल भेजते रहते हैं, ऐसा ना करें कृपया। जो लोग कार्यक्रम सुन रहे हैं, जो लोग मेल भेजकर अपने नाम शामिल करवाना चाहते हैं, अपने पसंद के गीत सुनना चाहते हैं, एटलीस्ट उनके नाम शामिल हो पाएं, तो इसीलिए सिर्फ एक मेल करिए, और अगर आप कार्यक्रम सुन रहे हैं तभी मेल करिए। तो आइए सुनते हैं ये पहला खूबसूरत सा गाना, जो खूबसूरत कश्मीर की वादियों की झलक एक तरह से हमें दिखलाता है। बेमिसाल फिल्म का ये गाना है।

ये बहुत ही प्यारा सा गीत जिसके लिए धुन तैयार की थी राहुल देव बर्मन ने। ये गीत आपने सुना बेमिसाल फिल्म का, और सुनवाने के लिए आप सभी श्रोताओं के ईमेल मिले टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा। और रविंद्र छाबड़ा जी ने ये भी लिखा है कि कल हम भी कश्मीर के लिए निकल रहे हैं और इसलिए ये गीत हमें और भी खूबसूरत लग रहा है। तो आपकी पसंद का गीत आपने सुना। अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज आयुषी, रमेश चंद्र, शेख मूसा, राजकुमार बुड़ाना ने भी हमें ईमेल किया। सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, रितु, मुकेश जगताप का भी ईमेल मिला। और गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन, साइमा, हसन नवाज, अहद, मिफ्रा नवाज और चाह तथा सादिया का भी ईमेल मिला। बक्सर से जीवत गुप्ता, आशीष गुप्ता, सतीश गुप्ता, आयुष, आयुषी और सानवी गुप्ता की पसंद पर भी हमने ये गीत सुना। और श्रोताओं, अगला जो गाना है वो भी बहुत ही प्यारा सा गीत है जिसे हम सुनवाने जा रहे हैं आप सभी श्रोताओं की पसंद पर। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से गुणवंत श्रीवास, करुणा, आयुष, विवेक और आयुषी श्रीवास के, और साथ में छत्तीसगढ़ से ही दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा, खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य कोयल, नानक चंद्र मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल, डुग्गू और भाविका सिक्का, जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, तमन्ना भाटिया, और उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज कोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश कोरवाल और गीतिका कोरवाल।

श्रोताओं, राजेश खन्ना और मुमताज़ अभिनीत ये फिल्म बहुत बड़े संदेश लेकर आई थी। बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी जिसमें ज़रूरत पड़ने पर किसी को किस स्तर पर अपनी जो भावनाएं हैं उनको उनको दरकिनार करना पड़ता है, अपने एक कह सकते हैं स्वाभिमान को दरकिनार करना पड़ता है। एक गाना इसका है, यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान सुनो कि जिसने पाप ना किया हो पापी ना हो। बहुत ही खूबसूरत सा संदेश उस गीत में भी है और ये पूरी फिल्म ही एक तरह से उस दौर के उस दौर में अपने समय के समाज में समाज को बदलने के लिए एक प्रेरणा थी, एक अच्छी कहानी थी। और इसमें आनंद बख्शी के गीत और लक्ष्मीकांत की धुन, बहुत ही खूबसूरत सा गीत आपने सुना। और अगला जो गाना आपको सुनवाने जा रहे हैं वो है बहुत ही खूबसूरत, और वो भी खूबसूरत है। इससे पहले दो गाने आपने सुने, तो तीसरा गाना है आनंद

बख्शी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की ही जुगलबंदी में लता मंगेशकर के स्वर में अर्पण फिल्म का और इस गीत के लिए आप सभी श्रोताओं के ईमेल शामिल हुए हैं। श्रोताओं के नाम आपको बता दें, श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता कीर्ति और भूमिका अरोड़ा, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा आराध्या साहू, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, परदीन सुहान, अरजान और अबान अब्बासी, चौजीवास से चरणदास, प्रियांशु और राजू अग्रवाल, जगराओं पंजाब से डॉक्टर आशीष मल्होत्रा, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाविया मल्होत्रा और सुनील पाठक, चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा। आप सभी की पसंद पर सुनते हैं अर्पण फिल्म का ये बहुत ही प्यारा सा गाना जो आनंद बख्शी ने लिखा, और उस समय अपने दौर में ये गीत बहुत सुना जाता था। लता मंगेशकर की खूबसूरत आवाज़ और ये मधुर तान लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के और उनके निर्देशन में उनके संगीतकार साथियों के द्वारा बजाई जा रही।

और अगला गीत भी हमने चुना है बहुत ही प्यारा सा, जो आप सभी की पसंद पर है, और इसे लिया है मेरा गांव मेरा देश फिल्म से लता मंगेशकर के स्वर में। और इस गीत के लिए आप सभी श्रोताओं के ईमेल शामिल कर रहे हैं, नबी हसन अब्बासी, शहनाज वेद हसन, सुहेल हसन, यनम अशफ और रशीद वारसी, और किदवई नगर से जुबैर अली खान और सबिहा अंजुमन खान, बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन, गुमला झारखंड से एस एम जावेद, शगुप्ता अंजुम, बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली पूजा, राधिका प्रभा देवी, अलकबीर, और राजनंदगांव से योगेश सारवा और आशा सारवा। तो आप सभी की पसंद पर सुनते हैं मेरा गांव मेरा देश फिल्म का ये एक और प्यारा सा नगमा।

दोस्तों, राज खोसला के निर्देशन में बनी साल 1971 की ब्लॉकबस्टर फिल्म मेरा गांव मेरा देश एक ऐसी फिल्म है जिसे कल्ट फिल्म कहा गया उस समय, और ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर शोले की बुनियाद माना जाता है इस फिल्म को। 1975 में शोले जब आई तो उसे कुछ क्रिटिक, कुछ इतिहासकार, कुछ समीक्षक ये मानते हैं कि ये फिल्म मेरा गांव मेरा देश से प्रेरित रही। इसमें एक बहुत ही बड़ी बात जो मैं आपके साथ साझा करूंगा, और बहुत सारे पुराने जो फिल्म या सिने प्रेमी हैं उनको पता होगा, इस फिल्म के एक फाइट सीन के दौरान धर्मेंद्र को विनोद खन्ना को बेल्ट से मारना था। शॉट के दौरान धर्मेंद्र इतने ज़्यादा गंभीर हो गए कि उन्होंने अनजाने में विनोद खन्ना को असली में जोर से बेल्ट मार दी और विनोद खन्ना की पीठ पर नील पड़ गया। हालांकि इस घटना के बाद धर्मेंद्र ने उनसे माफ़ी मांगी और उसके बाद दोनों के बीच पक्की दोस्ती हुई। और एक और बड़ी बात कि ये वही फिल्म थी जिसने विनोद खन्ना को रातों रात स्टारडम दिलाया, और वो विलन के रूप में लोकप्रिय हुए लेकिन चमक गए, स्टार बन गए। और एक और बड़ी बात, करीब 90 लाख रुपए में 1971 में बनी थी ये फिल्म, और उस दौर में इस फिल्म ने 3 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कमाई की थी। और ये 1971 के बाद हाथी मेरे साथी के बाद की दूसरी 1971 में हाथी मेरे साथी के बाद दूसरी सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित

ये भी बड़ा सस्पेंस वाला गाना है जिसमें पूरा सीन सस्पेंस भरा है। और जैसा कि मैंने कहा कि ये शोले की बुनियाद मानी जाती है, तो कहानी का प्लॉट श्रोताओं कुछ इस तरह का था। इस फिल्म में एक रिटायर्ड फौजी जयंत अपने गांव को डाकुओं से बचाने के लिए चोर यानी धर्मेंद्र को बुलाते हैं। ठीक यही प्लॉट शोले में भी था, जहां ठाकुर बलदेव सिंह जय और वीरू को बुलाते हैं गब्बर से बदला लेने के लिए।

मेरा गांव मेरा देश फिल्म के इस गीत के बाद एक और ऐसी खूबसूरत और बड़ी ही रोचक फिल्म जिसकी कहानी बड़ी दिलचस्प थी और बड़ी उस समय इस तरह की कहानियां आमतौर पर फिल्मों में नहीं होती थी। जानी दुश्मन इस फिल्म का नाम मल्टी

भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार। तो आप सभी की पसंद पर बहुत ही प्यारा सा गाना मोहम्मद रफी और आशा भोसले के स्वर में।

0: खूबसूरत गीतों का सिलसिला आपकी पसंद पर जारी है और अगले गाने और आपके खत शामिल होंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा संदेश।
1: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
2: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
1: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
2: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
1: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
2: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी

श्रोताओं, ये सुमधुर संगीत और संगीत के हर वाद्य यंत्र की अलग तान अलग से आप महसूस कर सकते हैं, तो आप ये भी महसूस कर सकते हैं कि ये संगीत तैयार किसने किया है। और खूबसूरत आवाज भी आपने पहचान ली होगी, कविता कृष्णमूर्ति की आवाज है। एआर रहमान का संगीत निर्देशन इस गीत के लिए। जुबैदा फिल्म से गीत हमने लिया था और गीत के बोल भी बहुत ही खूबसूरत, जो दिल के करीब पहुंचने वाले, जिन्हें लिखा जावेद अख्तर ने। जुबैदा फिल्म का ये गीत सुनवाने के लिए आप सभी ने हमें ईमेल किया, पिंगावाला चौक गोराया जालंधर से ज्योति मक्कड़, मन्नत भारत मक्कड़ और कमल साहनी ने, फिरोजपुर पंजाब से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल, अविराज और शुभदीप सिंह, उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल और भारती बघेल ने लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से ईमेल किया, और बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन और अपार ढींगिया का ईमेल मिला, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से यशमी तेयशु, निरंजन सिंह, सौम्या सिंह और अविरल सिंह ने ईमेल किया, और पंजाब मोहाली से बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा का भी ईमेल मिला, और कई श्रोताओं के नाम शामिल होने के बाद भी एक साथ दर्जनों ईमेल मिल रहे हैं। ऐसा ना करें, ऐसे में कई बार कई श्रोताओं के नाम रह जाते हैं तो वो हमसे थोड़ा नाराज़ हो जाते हैं। तो ऐसे श्रोताओं से मैं क्षमा चाहूँगा कि आप की भी गलती नहीं और हमारी भी गलती नहीं। हम कोशिश करते हैं कि हर एक श्रोता का ईमेल या उनकी पसंद के गाने आपकी पसंद के इस कार्यक्रम में, जो आपकी पसंद का कार्यक्रम है, उसमें शामिल हो पाए। एक सवाल आपसे करते हुए कार्यक्रम का अगला और आखिरी गाना सुनवाने जा रहा हूँ, और वो सवाल ये है कि आप अगला जब मेल करेंगे किसी भी कार्यक्रम में, तो आप ये भी लिख कर बताइएगा कि आपको किस दौर के गाने सबसे ज़्यादा पसंद आते थे, और साथ में ये भी लिखिएगा कि किस दौर की कहानियाँ, जो प्लॉट होता था, स्टोरी प्लॉट पटकथा, वो आपको पसंद आती थी। जैसे आज हमने जो फिल्में या जिन गानों को सुना, उन गानों की कहानियाँ अपने आप में बड़ी दिलचस्प रहीं। तो आप ये लिखिएगा कि कौन से दौर की पटकथा आपको सबसे ज़्यादा अपने करीब लगती है और क्यों, ये भी लिखिएगा। और फिलहाल कार्यक्रम का अगला गीत जो है फिल्म दिल तो पागल है से, आइए सुनते हैं।

श्रोताओं, ये कार्यक्रम का आखिरी गीत है और इस गीत के लिए आप सभी के ईमेल शामिल हुए हैं। मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना, योगेश शर्मा, मैंडी, सौरभ और साइना तथा निवान शर्मा, नलेश्वर नरवल, नरवेल महाराष्ट्र से पी एस नवाकर, निर्मला विशाल, मलकापुर महाराष्ट्र से नारायण इंगली, सोपान तायडे और आशीष मुन्हेकर, जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी और कल्पित चौहान तथा गर्वी और हिमाक्ष, पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक और डीबी राणा नेहरू बिहार से दिल्ली से ईमेल करते हैं। तो आप सभी की पसंद पर हमने ये गीत सुना जो था दिल तो पागल है फिल्म से।

0: और इस खूबसूरत गीत के साथ ही आज का आपकी पसंद का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। दीजिए मुझे यानी देवेंद्र त्रिपाठी को अनुमति, लेकिन लगातार आप बने रहिए आकाशवाणी केंद्र प्रस्तुत चैनल के साथ। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक दिन के 11 बजने को हैं, कुछ ही क्षणों में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज अमेरिका में G20 देशों के मंत्रियों के साथ बैठक में शामिल होंगे। ये बैठक अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के निमंत्रण पर हो रही है। यात्रा के दौरान श्री गोयल अपने समकक्ष के साथ भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। श्री गोयल 29 सितम्बर से 5 अक्टूबर तक अमरीका की यात्रा पर है, जहाँ वह G20 बैठक में भारत विश्व व्यापार संगठन को केंद्र में रखते हुए नियम आधारित खुले समावेशी और पारदर्शी बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था को मजबूत करने के

के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। भारत ने परमाणु हथियारों से मुक्त और सार्वभौमिक, गैर भेदभावपूर्ण और सत्यापन योग्य निरस्त्रीकरण के माध्यम से परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। विदेश मंत्रालय में पश्चिम क्षेत्रों के सचिव सीबी जॉर्ज ने कल न्यूयॉर्क में परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय बैठक में ये बयान दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि श्री जॉर्ज ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में डर्बन घोषणा और कार्य योजना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित एक बैठक में नस्लीय भेदभाव, विदेशियों के प्रति नफरत और संबंधित असहिष्णुता से लड़ने के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मौजूदा वर्ष को भारतीय नौसेना के लिए एक ऐतिहासिक वर्ष बताया है। इस वर्ष 18 युद्धपोतों को नौसेना में शामिल करने की योजना है। नई दिल्ली में कल नौसेना के द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन के दूसरे संस्करण में श्री सिंह ने कहा कि ये घटनाक्रम भारत की नौसेना के घरेलू जहाज निर्माण तंत्र की बढ़ती परिपक्वता को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में कमीशन किए गए युद्धपोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने बडगाम जिले में एक आतंकवादी को मार गिराया है। सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने संयुक्त रूप से ये अभियान चलाया। आतंकवादी की पहचान पाकिस्तान स्थित लश्कर ए तैयबा के आतंकी मोहम्मद आसिफ उर्फ हाशिम मूसा के रूप में हुई है। श्रीनगर में सेना के एक प्रवक्ता ने बताया कि इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर रात में अभियान शुरू किया गया था। तलाशी के दौरान छुपे हुए आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी की। जवाबी कार्रवाई में एक आतंकवादी मारा गया। तलाशी अभियान जारी है। पंजाब पुलिस ने अमृतसर जिले में 2 अभियानों में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से AK-47 और AK-56 राइफलें, 13 पिस्तौल कारतूस और 13 किलोग्राम से अधिक हेरोइन बरामद की है। पुलिस के अनुसार आरोपी भारत पाकिस्तान सीमा के पास ड्रोन के जरिए भेजे गए हथियारों और नशीले पदार्थों को रखने और आगे पहुंचाने का काम करते थे। सभी आरोपियों के संपर्क विदेशी तस्करों के साथ हैं। गृहमंत्री अमित शाह आज जालंधर से नशा मुक्त पंजाब यात्राओं को रवाना करेंगे। इन यात्राओं का उद्देश्य पंजाब में मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान को जन आंदोलन में बदलना है। इन यात्राओं का मुख्य केंद्र पंजाब के सामने मौजूद 3 प्रमुख चुनौतियां हैं। इनमें मादक पदार्थों के बढ़ते दुरुपयोग, बिगड़ती कानून व्यवस्था और शासन के सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार शामिल है। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज तीरंदाजी में 2 स्वर्ण पदक जीते। साहिल जाधव और चिकिता तनिपार्थी की मिक्स्ड कंपाउंड टीम ने फाइनल में शूट ऑफ में कोरिया को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इस जीत के साथ भारत ने 2028 ओलंपिक के लिए कोटा भी हासिल कर दिया है। उधर ज्योति सुरेखा वेन्नम, चिकिता तनिपार्थी और प्रतिका प्रदीप की महिला कंपाउंड टीम ने भी आज स्वर्ण पदक हासिल किया। टीम ने फाइनल में चीन को हराया। महिला मुक्केबाजी के 60 किलोग्राम भार वर्ग में प्रिया घंगस ने कांस्य पदक जीता। पदक तालिका में भारत 8 स्वर्ण, 21 रजत और 27 कांस्य सहित कुल 56 पदकों के साथ 9वें स्थान पर पहुंच गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एशियाई खेल में महिला कंपाउंड तीरंदाजी टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने पर चिकिता तनिपार्थी, प्रतिका प्रदीप और ज्योति सुरेखा वेन्नम को बधाई दी है। गृहमंत्री अमित शाह ने स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला तीरंदाजी टीम को बधाई दी है। युवा कार्यक्रम खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने एशियाई खेल में कंपाउंड मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने पर साहिल राजेश जाधव और चिकिता तनिपार्थी को बधाई दी है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान लगाया है। आज तटीय आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी, ओडिशा, मध्य प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा में तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आने की संभावना है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Government has notified the new corporate average fuel economy CAFE norms for passenger vehicles. According to Ministry of Power, the new CAFE framework will drive progressive improvements in fuel economy through year-on-year tightening of targets across all 5 years. The fuel consumption benchmark is tightened from 3.9 litres per 100 kilometre in 2027-28 to 3.32 litres per 100 kilometre in 2031-32.
representing an improvement of around 60%.

अभिजीत सावंत के स्वर में एक और गीत जो कार्यक्रम में तीसरा और चौथा गाना होगा, यानी चौथी प्रस्तुति होगी। तो आइए सुनते हैं पहला, ललित मोहन शाह के स्वर में ये पहली प्रस्तुति सबरस के अंतर्गत।

श्रोताओं, अभिजीत सावन के इस गीत के साथ ही आज का सब्रस कार्यक्रम यही संपन्न होता है। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं मीडियम वेव 366.3 मीटर पर। सुबह के 11:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सुर मंजरी। आज के इस कार्यक्रम के अंतर्गत तार शहनाई पर राग अलहिया बिलावल आप सुनेंगे और कलाकार हैं बलजीत सिंह।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। दोपहर के 12 बजने वाले हैं। अब समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज तीरंदाजी में 2 और निशानेबाजी में 1 स्वर्ण सहित कुल 3 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। निशानेबाजी में नीरू ढांडा और काइनन चेनाई की भारतीय जोड़ी ने ट्रैप मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। तीरंदाजी में साहिल जाधव और चिकिता तनिपार्थी की मिक्सड कम्पाउंड टीम ने फाइनल में शूट ऑफ में कोरिया को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इस जीत के साथ भारत ने 2028 ओलंपिक के लिए कोटा भी हासिल कर लिया है। उधर ज्योति सुरेखा वेन्नम, चिकिता तनिपार्थी और प्रतिका प्रदीप की महिला कंपाउंड टीम ने भी आज स्वर्ण पदक हासिल किया। टीम ने फाइनल में चीन को हराया। भारत ने 2023 हांगचांग एशियाई खेलों में भी महिला मुक्केबाजी के 60 किलोग्राम भार वर्ग में प्रिया घंगास ने आज कांस्य पदक जीता। पदक तालिका में भारत 9 स्वर्ण, 21 रजत और 27 कांस्य सहित कुल 57 पदकों के साथ 8वें स्थान पर पहुंच गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, गृहमंत्री अमित शाह और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने स्वर्ण पदक जीतने पर खिलाड़ियों

0: को बधाई दी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका के आर्थिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। अमरीका में एक गोलमेज बैठक में श्री गोयल ने भारत के बढ़ते औद्योगिक आधार और कुशल कार्यबल का उल्लेख किया। उन्होंने अमरीका की कंपनियों से भारत में निवेश बढ़ाने, छोटे और मध्यम उद्योगों के साथ साझेदारी करने और आधुनिक विनिर्माण में मिलकर निवेश करने का आग्रह किया। श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग से मजबूत आपूर्ति श्रृंखला विकसित होगी और आर्थिक विकास के नए अवसर पैदा होंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज अमरीका में G20 देशों के मंत्रियों के साथ बैठक में शामिल होंगे। ये बैठक अमरीका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीव के निमंत्रण पर हो रही है। यात्रा के दौरान श्री गोयल अपने समकक्ष के साथ भारत अमरीका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कतर के व्यापारिक संघ से भारत में व्यापार और निवेश में साझेदारी की संभावनाओं को सक्रिय रूप से तलाशने की अपील की। उन्होंने द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने का भी आह्वान किया। बातचीत के दौरान वित्त मंत्री ने दोनों देशों में उभरते आर्थिक अवसरों पर चर्चा की। दोहा में कतर व्यापारिक संघ की बिजनेस राउंड टेबल बैठक में उन्होंने भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, बढ़ते निवेश और वित्त वर्ष 2025-26 में 94 अरब 50 करोड़ डॉलर से अधिक के रिकॉर्ड सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उल्लेख किया। सरकार ने यात्री वाहनों के लिए नया कॉरपोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी नियम अधिसूचित किया है। ये किसी वाहन कंपनी द्वारा बनाए गए सभी यात्री वाहनों की औसत ईंधन खपत और दक्षता से जुड़ा मानक है। ये नए नियम मौजूदा कॉरपोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी का स्थान लेंगे। नए नियम अगले वर्ष 1 अप्रैल से लागू होंगे और 31 मार्च 2032 तक प्रभावी रहेंगे। ये भारत में बिक्री के लिए बनाए या आयात किए जाने वाले नए यात्री वाहनों पर लागू होंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सही और अद्यतन मतदाता सूची लोकतंत्र की आत्मा है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने मतदाता सूची में अनियमितताओं को लेकर विपक्ष के आरोपों पर सवाल उठाया।
1: अगर वोटर लिस्ट में गलत नाम जुड़े तो लोकतंत्र ही मर जाएगा। आपको क्या आपत्ति अगर कोई इस दुनिया में है ही नहीं उसका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाए? कहीं डुप्लीकेशन है गांव में भी नाम, शहर में भी नाम? अगर नाम एक जगह कट जाए तो आपको दिक्कत क्या है? कोई देश का नागरिक ही नहीं है तो उसका नाम वोटर लिस्ट में क्यों जोड़ना चाहिए? पवित्र लोकतंत्र के लिए वोटर लिस्ट शुद्ध होना ही चाहिए।
0: जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने बडगाम जिले में एक आतंकवादी को मार गिराया है। सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने संयुक्त रूप से यह अभियान चलाया। आतंकवादी की पहचान पाकिस्तान स्थित लश्कर ए तैयबा के आतंकी मोहम्मद आसिफ उर्फ हाशिम मूसा के रूप में हुई है। श्रीनगर में सेना के एक प्रवक्ता ने बताया कि इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर रात में अभियान शुरू किया गया था। पंजाब पुलिस ने अमृतसर जिले में 2 अभियानों में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से AK-47 और AK-56 राइफलें, 13 पिस्तौल, कारतूस और 13 किलोग्राम से अधिक हेरोइन बरामद की है। गृहमंत्री अमित शाह आज जालंधर से नशा मुक्त पंजाब यात्राओं को रवाना करेंगे। इन यात्राओं का उद्देश्य पंजाब में मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान को जन आंदोलन में बदलना है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मिला जुला रुख दर्ज किया गया। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 212 अंक बढ़कर 72,741 जबकि निफ्टी 8 अंक की गिरावट के साथ 22,708 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

her an dedi. कार्यक्रम घर आंगन में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ रेनू, तो कीजिए स्वीकार मेरा नमस्कार। आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर यानी 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और साथ ही साथ आप हमें सुन सकते हैं आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ चैनल पर भी यानी 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर। तो शुरू करते हैं अपनी बातों मुलाकातों का सिलसिला। जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश, पथ में बिछ जाते बन पराग, गाता प्राणों का तार तार, अनुराग भरा उन्माद राग, जो तुम आ जाते एक बार।

अभी आपने सुना मशहूर शायर अमीर सिनाई का ये कलाम। आवाज़ें थी लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, और फिल्म थी दीदारे यार। और आज है 30 सितंबर, यानी अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस। बाइबिल के अनुवादक संत जेरोम की याद में मनाए जाने वाले इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई थी 2017 में, ताकि दुनिया को भाषा के आधार पर जोड़ा जा सके। और इस साल की इसकी थीम है भाषाई विविधता और भाषा का अधिकार, यानी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी एंड लैंग्वेज राइट्स। और इसका उपशीर्षक है समझे जाने की शक्ति, यानी द पावर ऑफ बींग अंडरस्टूड। अनुवाद सिर्फ शब्दों का बदलाव नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक पुनर्जन्म है, जो मूल लेखक की भावना संस्कृति को बिना बदले दूसरी भाषा के पाठकों तक उस कृति को पहुंचाता है। और हमारे देश में तो इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस वाले वाणी वाले देश में अनुवाद ही वो अदृश्य धागा है जो संस्कृत और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ही इसकी विविध संस्कृतियों को आपस में पिरोता है, जोड़ता है। और अनुवाद वो माध्यम भी है जिसने कितनी भारतीय पुस्तकों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाई। 1785 में जब चार्ल्स विल्किंस ने श्रीमद् भगवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया, तो इमर्सन और थोरो जैसे महान अमरीकी दार्शनिक इसके मुरीद हुए बिना नहीं रह सके। इसी तरह आचार्य विष्णु शर्मा द्वारा संस्कृत में रचित पंचतंत्र दुनिया की 50 से अधिक भाषाओं और 200 से अधिक लिपियों में अनुदित होने वाला बाइबिल के बाद दुनिया का दूसरा सबसे अधिक अनुदित ग्रंथ है। और प्रेमचंद का कालजयी उपन्यास गोदान अंग्रेजी अनुवाद के बाद ही नुस्खों के संग्रह में शामिल किया गया था, और उसके बाद ही उन्हें वैश्विक मंचों पर भारत का गोर्की या भारत का थॉमस हार्डी कहा जाने लगा। इसी तरह 1913 में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के अंग्रेजी अनुदित संस्करण पर ही नोबेल पुरस्कार मिला था, जबकि गीतांजलि की मूल भाषा थी बांग्ला। अनुवाद के माध्यम से ही आज हमारी क्षेत्रीय भाषाओं का समृद्ध साहित्य सात समंदर पार को ग्लोबल बुक शेल्फ की शोभा बढ़ा रहा है। यानी अनुवादक ऐसे मूक शिल्पकार हैं जो बिना किसी शोर के दो अलग-अलग देशों के लोगों को करीब लाते हैं। तो आज उन सभी अनुवादकों का आभार जो कि भाषाई सरहदें तोड़कर हमें एक सूत्र में पिरोते हैं।

जी हाँ, अगर भाषा नहीं आती है तो कोई भी हमसे कह सकता है यू आर बुद्धू और यू आर हैंडसम, जान लो। खैर, ये गीत आपने सुना फिल्म एक दूजे के लिए, और लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ में। और अब बात करते हैं इतिहास की। इतिहास हम सब ने स्कूल में तो पढ़ा ही होगा। तारीखें, राजा महाराजाओं के नाम रटने में कितनी मुश्किल होती थी। तब कभी कभी हम सोचते थे कि काश कोई टाइम मशीन होती जो पलक झपकते ही किसी भी साल में हम चले जाते और देखते कि उस वक्त हमारे भारत में क्या चल रहा था या किस जगह किसका राज्य था। ये मुमकिन हो चुका है। इसे इतिहास को हकीकत बना दिया है टाइम मशीन की तरह। मुंबई के रहने वाले पूर्व इंजीनियर और मार्केटिंग प्रोफेशनल कृष्णा शेषाद्री जी ने, जिन्होंने भारत राज्य .com नाम की एक वेबसाइट बनाई है जो भारतीय इतिहास को अनोखे और डिजिटल तरीके से दर्शाती है। इसका जिक्र प्रधानमंत्री जी ने मन की बात कार्यक्रम में भी किया था। ये वेबसाइट भारतीय उपमहाद्वीप के 800 वर्षों के राजनीतिक इतिहास को मैप करती है। इस पर जाकर आप किसी भी विशेष इस वर्ष का चयन करके ये देख सकते हैं कि उस समय भारत के किस भूभाग पर किस राजवंश का राजा राज करता था या उसका शासन था। चोल, पल्लव, कोटा राजवंश या

असम का अहोम साम्राज्य को हम सभी ने पढ़ा ही है, उन्हें उनके राज्य को इस वेबसाइट पर जाकर विजुअल और कहानी के माध्यम से बहुत ही रोचक ढंग से देखा जा सकता है। यानी इतिहास अब किताबों के पन्नों से निकलकर सीधे आपकी स्क्रीन पर जिंदा हो उठेगा। साथ ही यहाँ आप अपना कोई सुझाव भी दे सकते हैं। इसके लिए इसमें एक खास टैब दिया गया है ताकि इतिहास प्रेमी या विशेषज्ञों की राय से ऐतिहासिक तथ्यों में सुधार करके इसे सटीक बनाया जा सके। तो अगर आपको भी लगता है कि किसी हिस्से का इतिहास थोड़ा अलग था, तो आप इस वेबसाइट पर जाकर सीधे सुझाव दे सकते हैं। ये वेबसाइट अपनी समृद्ध विरासत को जानने समझने का बहुत अच्छा माध्यम है। तो अपने स्मार्टफोन को खोलिए और bharatrajya.com पर चले जाइए और भारत के गौरवशाली इतिहास की सैर करिए।

0: और अब एक ज़रूरी बात कर ली जाए। अक्सर हम जब डॉक्टर के पास जाने लगते हैं तो पुरानी पर्चियाँ, भारी भरकम फाइलें और एक्सरे रिपोर्ट्स का पुलिंदा संभालना सबसे बड़ा और मुश्किल काम हो जाता है। कभी रिपोर्ट घर पर छूट जाती है तो कभी डॉक्टर के केबिन में मिलती ही नहीं। लेकिन अब इस झंझट से हमेशा के लिए छुट्टी मिलने वाली है। भारत सरकार लेकर आई है आभा कार्ड, यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। ये 14 अंकों का आपका एक डिजिटल हेल्थ कार्ड है, यानी सीधे और सरल शब्दों में अगर मैं कहूँ तो ये स्वास्थ्य की एक तरह से तिजोरी है। जी हाँ, आपकी पुरानी बीमारी, डॉक्टर की लिखी दवाइयाँ, ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट, सब कुछ इस एक डिजिटल कार्ड में महफूज रहेगा। जब भी किसी नए डॉक्टर के पास जाएं, बस ये नंबर दीजिए और डॉक्टर आपकी पुरानी मेडिकल हिस्ट्री एक क्लिक पर देख सकेगा। ना फाइल खोलने का डर और ना ही पेपर संभालने की टेंशन। ये सुविधा बिल्कुल मुफ्त है। इसमें आपको डेटा पूरी तरह से, आपका जो है डेटा वो सुरक्षित रहता है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। सबसे पहले अपने फ़ोन पर कंप्यूटर में जाकर abdm.gov.in वेबसाइट खोलिए। वहाँ क्रिएट आभा नंबर पर क्लिक कीजिए, अपना आधार नंबर डालिए और आपके फ़ोन पर एक OTP आएगा, उसे दर्ज कर दीजिए। फिर अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कीजिए और एक यूज़र नेम बनाइए। बस आपका चमचमाता हुआ डिजिटल हेल्थ कार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा। तो फिर इसे वहीं से डाउनलोड कर लीजिए। देर किस बात की, अपना और अपने परिवार का आभा कार्ड बनाइए और सेहत के मामले में हो जाइए एकदम टेंशन फ्री।
1: हाँ।

फिल्म लव स्टोरी से ये गीत अभी आपने सुना आशा भोसले की आवाज़ में। और दोस्तों याद है बचपन का वो आंगन जहाँ सुबह की शुरुआत घड़ी के अलार्म से नहीं बल्कि नन्ही गौरैया की चहचहाट से होती थी। लेकिन आज हमारे आसमान से हमारे आंगन में वो छोटी सी चिड़िया, प्यारी सी चिड़िया कहीं गुम हो गई है। कारण कई हैं, बढ़ती आबादी, आधुनिकता, खेतों में कीटनाशकों का जहर और कटते पेड़ जिसने इन बेजवानों का आशियाना छीन लिया है। ऐसे में उम्मीद की एक किरण की तरह हमारे सामने आती हैं पंजाब के मोगा जिले के निधानवाला गांव से हरप्रीत कौर, जिन्होंने न केवल अपने घर को गौरैया और छोटे पक्षियों के लिए एक सुरक्षित आशियाना बनाया बल्कि पूरे गाँव में कई जगह पर पक्षियों के लिए लकड़ी और मिट्टी के रैन बसेरे भी बनवाए। उन्होंने गांव के अन्य लोगों को भी प्रकृति और जीवों से प्रेम करने के लिए प्रेरित किया। इसकी शुरुआत हुई उस समय जब हरप्रीत एक गंभीर बीमारी के बाद बिस्तर पर थीं। तब दीवार पर तिनका जोड़ती एक चिड़िया ने उन्हें जिंदगी जीने का नजरिया दिया और तब छोटे से गत्ते के डिब्बे से चिड़ियों के आशियाने की उन्होंने शुरुआत की। और आज हरप्रीत के घर में 175 से ज्यादा मिट्टी और लकड़ी के कृत्रिम घोंसले लगे हैं जहाँ रोज 250 से ज्यादा गौरैया चहकती हैं, जिनके लिए वो रोज सुबह सबसे पहले उठकर साफ और ठंडा पानी रखती हैं और गर्मियों में कंगनी या बासमती चावल और सर्दियों में गेहूं या बाजरा खाने को लिए देती हैं। हरप्रीत कौर इन चिड़ियों को अपनी बेटियों की तरह मानती हैं और प्यार से उन्हें राजकुमारियां कहती हैं क्योंकि उनका मानना है कि इन परिंदों ने उनके जीवन में बेटी न होने का खालीपन भर दिया है। हरप्रीत कौर का इन परिंदों से रिश्ता इतना गहरा हो चुका है कि ये चिड़ियां बिना किसी डर के उनकी हथेली पर आकर दाना चुगती हैं। इन नन्हे जीवों की सुरक्षा के लिए हरप्रीत कौर हर संभव प्रयास भी करती रहती हैं। गांव के लोगों को उन्होंने पराली के धुएं और कीटनाशकों की रोकथाम के लिए जागरूक किया है। तो हरप्रीत कौर की ये कहानी हमें सिखाती है कि पर्यावरण को बचाने के लिए किसी भी बड़े आंदोलन की जरूरत नहीं बल्कि एक संवेदनशील दिल की जरूरत होती है और शुरुआत हमारे अपने घर की खिड़की या बालकनी में एक सकोरे में पानी और मुट्ठी भर दाने से भी हो सकती है।

अभी आपने ये गीत सुना, फिल्म थी सरगम और आवाज़ें थी रफ़ी और लता मंगेशकर की। और कहते हैं कि कचरे से कंचन बनाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। बात आज उसी की जिसने छोटी सी उम्र में ये कर दिखाया है। जी हाँ, नोएडा की रहने वाली 17 साल की रहिनी बंसल एक नई क्रांति की नींव उन्होंने रख दी है, जिसका नाम है सूत्रधार। दर्जी की दुकान

थी रफ़ी और लता मंगेशकर की। और कहते हैं कि कचरे से कंचन बनाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। बात आज उसी की जिसने छोटी सी उम्र में ये कर दिखाया है। जी हाँ, नोएडा की रहने वाली 17 साल की रहिनी बंसल एक नई क्रांति की नींव उन्होंने रख दी है, जिसका नाम है सूत्रधार। दर्जी की दुकान या फैक्ट्री में बचे हुए कपड़े को बेकार टुकड़े समझकर जिन्हें हम फेंक देते हैं और उन्हें कतरन कहते हैं, राहिनी ने उस कतरन से ग्रामीण महिलाओं का भविष्य उसमें उन्होंने देखा और 2024 में सिर्फ 6 महिलाओं के साथ एक छोटा सा कदम बढ़ाया, ये सोचकर कि पर्यावरण के लिए क्या बेहतर किया जा सकता है, ताकि कपड़े के कचरे को भी कम किया जा सके और गाँव की महिलाओं को आत्मनिर्भर भी बनाया जा सके। फिर शुरू होता है हुनर का जादू, उन बेकार कतरनों को

फैक्ट्री में बचे हुए कपड़े को बेकार टुकड़े समझकर जिन्हें हम फेंक देते हैं और उन्हें कतरन कहते हैं। राहिनी ने उस कतरन से ग्रामीण महिलाओं का भविष्य उसमें उन्होंने देखा और 2024 में सिर्फ 6 महिलाओं के साथ एक छोटा सा कदम बढ़ाया, ये सोचकर कि पर्यावरण के लिए क्या बेहतर किया जा सकता है ताकि कपड़े के कचरे को भी कम किया जा सके और गाँव की महिलाओं को आत्मनिर्भर भी बनाया जा सके। फिर शुरू होता है हुनर का जादू, उन बेकार कतरनों को

वर्ष इसकी थीम है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत विकसित भारत। यानी स्वच्छता केवल सरकारी काम नहीं बल्कि नागरिकों को, हर नागरिक को अपनी जिम्मेदारी समझनी है। इस पूरे राष्ट्रव्यापी अभियान को डिजिटल रूप से व्यवस्थित करने और इसे एक पारदर्शी जन आंदोलन बनाने के लिए स्वच्छता ही सेवा पोर्टल जारी किया गया है। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें देश के किसी भी कोने में, किस शहर या गांव में कितनी सफाई हुई है, इसका डेटा और तस्वीर लाइव देखी जा सकती है। वास्तव में ये पोर्टल देश के सफाई अभियानों को एक क्लिक पर जोड़ने और हर भारतीय को इसका हिस्सा बनाने के उद्देश्य से जारी किया गया है। इस पोर्टल पर इसे जुड़े ऐप के माध्यम से कचरे वाले संवेदनशील स्थानों की रिपोर्ट की जा सकती है ताकि उन जगहों को पहचान कर उन्हें तुरंत साफ किया जा सके। एक बात और, इस पोर्टल पर योगदान देने वाले लोगों और संस्थाओं को पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। तो सफाई के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझें। सड़क, मैदान, पार्क, पहाड़, समंदर सब हमारे हैं और हमारे लिए हैं, और इन्हें स्वच्छ और सुरक्षित रखना भी हमारा ही कर्तव्य है।

अभी आप फिल्म रॉकी में सुन रहे थे लता मंगेशकर को। और अब बात कर ली जाए कुछ सेहत की, एक ऐसी सब्जी की जिसे आयुर्वेद में अचूक औषधि माना गया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जिमीकंद की, जिसे कई जगहों पर सूरन या ओल भी कहा जाता है। दिखने में भले ये थोड़ा अजीब लगे, लेकिन इसके फायदे बहुत हैं। जिमीकंद में विटामिन सी पाया जाता है, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है और त्वचा को स्वस्थ रखता है। साथ ही इसमें पाया जाता है विटामिन B6, जो मस्तिष्क के विकास, मूड को ठीक करने और बालों को मजबूत रखने में मदद करता है। इसी तरह से इसमें पाया जाता है फोलिक एसिड, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण और शरीर की खून की कमी को रोकने में जो सहायक होता है। आंखों की रोशनी और त्वचा और स्वास्थ्य के लिए भी ये बहुत अच्छा है, बहुत फायदेमंद।

अच्छा, तो हम भी चलते हैं, और क्योंकि हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त हो गया है, और आप ये गीत जो सुन रहे हैं ये है आन मिलो सजना से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में। तो मुझे यानी रेणु को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

आंगन। आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा। आपका घर आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहतनाज। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज तीरंदाजी में 3 और निशानेबाजी में 1 स्वर्ण सहित कुल 4 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। तीरंदाजी में साहिल जाधव, कुशल दलाल और गणेश मणिरत्नम की पुरुष कंपाउंड टीम ने फाइनल में चीन को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। साहिल जाधव और चिकिता तनिपार्थी की मिक्स्ड कंपाउंड टीम ने भी फाइनल में शूट ऑफ में कोरिया को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। इस जीत के साथ भारत ने 2028 ओलंपिक के लिए कोटा भी हासिल कर लिया है। उधर ज्योति सुरेखा वेन्नम, चिकिता पार्थी और प्रतिका प्रदीप की महिला कंपाउंड टीम ने स्वर्ण पदक जीता। निशानेबाजी में नीरू ढांडा और काइनन चेनाई की भारतीय जोड़ी ने ट्रैप मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। मुक्केबाजी में महिलाओं के 60 किलोग्राम भार वर्ग में प्रिया घांगस और कपिल पोखरिया ने पुरुषों के 90 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीते। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण, 21 रजत और 28 कांस्य सहित कुल 59 पदकों के साथ 7वें स्थान पर पहुंच गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, गृहमंत्री अमित शाह और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने स्वर्ण पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कतर के व्यापारिक संघ से भारत में व्यापार और निवेश में साझेदारी की संभावनाओं को सक्रिय रूप से तलाशने की अपील की है। उन्होंने द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने का आह्वान किया। दोहा में कतर व्यापारिक संघ की बिजनेस राउंड टेबल बैठक में उन्होंने भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, बढ़ते निवेश और वित्त वर्ष 2025-26 में 94 अरब 50 करोड़ डॉलर से अधिक के रिकॉर्ड सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उल्लेख किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के आर्थिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। अमेरिका में एक गोलमेज बैठक में श्री गोयल ने भारत के बढ़ते औद्योगिक आधार और कुशल कार्यबल का उल्लेख किया। उन्होंने अमेरिका की कंपनियों से भारत में निवेश बढ़ाने, छोटे और मध्यम उद्योगों के साथ साझेदारी करने और आधुनिक विनिर्माण में मिलकर निवेश करने का आग्रह किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज अमेरिका में G20 देशों के मंत्रियों के साथ बैठक में शामिल होंगे। ये बैठक अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन गीर के निमंत्रण पर हो रही है। यात्रा के दौरान श्री गोयल अपने समकक्ष के साथ भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। सरकार ने यात्री वाहनों के लिए नया कॉरपोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी नियम अधिसूचित किया है। ये किसी वाहन कंपनी द्वारा बनाए गए सभी यात्री वाहनों की औसत ईंधन खपत और दक्षता से जुड़ा मानक है। ये नए नियम मौजूदा कॉरपोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी का स्थान लेंगे। नए नियम अगले वर्ष 1 अप्रैल से लागू होंगे और 31 मार्च 2032 तक प्रभावी रहेंगे। ये भारत में बिक्री के लिए बनाए या आयात किए जाने वाले नए यात्री वाहनों पर लागू होंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सही और अद्यतन मतदाता सूची लोकतंत्र की आत्मा है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने मतदाता सूची में अनियमितताओं को लेकर विपक्ष के आरोपों पर सवाल उठाया।
1: अगर वोटर लिस्ट में गलत नाम जुड़े तो लोकतंत्र ही मर जाएगा। आपको क्या आपत्ति अगर कोई इस दुनिया में है ही नहीं उसका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाए? कहीं डुप्लीकेशन है गांव में भी नाम, शहर में भी नाम, अगर नाम

0: एक जगह कट जाए तो आपको दिक्कत क्या है? कोई देश का नागरिक ही नहीं है तो उसका नाम वोटर लिस्ट में क्यों जोड़ना चाहिए? पवित्र लोकतंत्र के लिए वोटर लिस्ट शुद्ध होना ही चाहिए।
1: भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन नई दिल्ली में हो रहा है। इसमें नौसेना के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ साथ थल सेना प्रमुख और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष भी मौजूद हैं। नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने समुद्री सुरक्षा वातावरण और भारतीय नौसेना की परिचालन स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने तेजी से बदलती परिस्थितियों के अनुरूप कार्रवाई और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता बनाए रखने पर जोर दिया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने बडगाम जिले में एक आतंकवादी को मार गिराया है। सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने संयुक्त रूप से यह अभियान चलाया। आतंकवादी की पहचान पाकिस्तान स्थित लश्करे तैयबा के आतंकी मोहम्मद आसिफ उर्फ हाशिम मूसा के रूप में हुई है। गृहमंत्री अमित शाह आज जालंधर से नशा मुक्त पंजाब यात्राओं को रवाना करेंगे। इन यात्राओं का उद्देश्य पंजाब में मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान को जन आंदोलन में बदलना है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के आज दोपहर के कारोबार में वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 407 अंक बढ़कर 72,936 जबकि निफ्टी 58 अंक की वृद्धि के साथ 22,774 पर था। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: the voter list. If there is duplication with a person's name and if someone is not a citizen of the country, why should their name be included in the voter list? For a pure and sacred democracy, the voter list must be kept clean and accurate.
1: Voter list should hona hi chahiye.
2: And that is the end of this news bulletin.
3: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। कार्यक्रम एक ही फिल्म से लेकर हम हाजिर होंगे इस संदेश के बाद।
4: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
5: जी,
4: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहे हैं?
5: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
4: पर ये होगा कैसे?
5: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
4: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
5: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
4: बस
5: बस
4: समझ गया।
5: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
6: आरबीआई कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

Hello, salam, namaste, and a very warm welcome to yours, one of the favorite program, Ek Hi Film Se. मैं हूँ आपकी मित्रा, आपकी साथी, yours very own दीप्ति, और आज मैं लेकर आई हूँ 1978 की वो फिल्म जिसका म्यूजिक न सिर्फ उस दौर में बल्कि आज भी बड़े चाव से गुनगुनाया जाता है. आज हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा के उस ही मैन की जिनकी स्क्रीन पर एंट्री भर से माहौल बदल जाता है. दमदार अंदाज इग्नोर ना कर सके ऐसी पर्सनालिटी और वो खास मुस्कान. अपने दौर के जबरदस्त एक्शन हीरो, लेकिन साथ ही कॉमेडी हो या थ्रिल, सभी भूमिकाओं में एकदम परफेक्टली फिट हो जाने वाले हर दिल अजीज अभिनेता. जी हाँ, बात हो रही है धर्मेंद्र की, हमारे आपके अपने धर्मपाजी की. लेकिन आज की कहानी में धर्मपाजी के हाथ में ना तो कोई आम हीरो वाला मिशन है और ना ही कोई सीधा सादा सा मुकाबला. इस कहानी में है एक बेशकीमती खजाना और उसे पाने के लिए इकट्ठे हुए हैं दुनिया भर से माहिर चोर. तो आखिर ये कहानी, या यूं कहें कि ये खेल है कैसा, और हमारे धर्मपाजी इसमें कर क्या रहे हैं, अजी बताएंगे आपको. लेकिन अगर अभी तक आपने आज की फिल्म गेस नहीं की है तो आई एम 100% श्योर कि ये गीत आपके सभी सवालों के जवाब जरूर दे देगा. तो चलिए सुनते हैं.

जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने। आज हम एक ही फिल्म से कार्यक्रम में बात कर रहे हैं, 1978 की फिल्म शालीमार की। तो कहानी कुछ इस तरह से है कि एस कुमार, यानी कि हमारे धर्मपाजी, एक छोटे मोटे से चोर हैं और हालातों के चलते वो सर जॉन लॉक्सलाई के आइलैंड स्टेट पर एक आयोजित एक सेलिब्रेशन में राजा बहादुर सिंह के बेटे बहादुर सिंह जूनियर बनकर पहुंच जाते हैं। अब वहां कुछ हो ऐसा रहा है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आए हुए कई सारे चोर मौजूद हैं, और मकसद मकसद सबका एक ही है, और वो है एक बेहद कीमती हीरा चुराना। कीमती हीरा यानी शालीमार को चुराना। अब जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, एक एक करके लोग, या यूं कहें जो कि बेसिकली चोर हैं, वो मुसीबत में फंसते चले जाते हैं। कहानी में आगे जाकर पता चलता है कि इस पूरे खेल के पीछे सर जॉन का अपना एक बहुत बड़ा मकसद है। खैर, अंत में सर जॉन के यहाँ नर्स के रूप में काम करने वाली शीला और कुमार शालीमार को चुराने में सफल हो जाते हैं। लेकिन एक के बाद एक खुलने वाले राज में ये भी पता चलता है कि एक्चुअली सर जॉन ने दुनिया भर के कुशल चोरों को मारने के लिए और शालीमार के संभावित प्रतियोगी को खत्म करने के लिए ये सारा खेल रचा था। और फिर एक और धमाकेदार राज खुलता है, और उसमें पता चलता है कि कुमार यानी अपने धर्मपाजी असल में एक चोर नहीं बल्कि सीबीआई ऑफिसर है, जो शालीमार को वापस लाने के लिए स्पेशल मिशन पर थे। खैर, इस कहानी की हैप्पी एंडिंग होती है, और इस हैप्पी एंडिंग में कुमार और शीला सदा के लिए एक बंधन में बंध जाते हैं।

शालीमार के लिए। वैसे शालीमार को खास बनाने वाली जो बात थी ना, वो थी इसकी इंटरनेशनल कास्टिंग। रेक्स हैरिसन, जॉन सैक्सन और सिल्विया माइल्स जैसे अमेरिकन एक्टर्स के साथ धर्मेंद्र, जीना दवान और वेरी हैंडसम शम्मी कपूर साहब। फिल्म को इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में बनाया गया था और इंग्लिश वर्जन का नाम था रीडर्स ऑफ द सेक्रेट स्टोन। साथ ही हम आपको बता दें कि 1977 में जब फिल्म का मुहूर्त हुआ था, तब उसमें गिना लोलो ब्रिगाडा भी मौजूद थी। हालांकि वे बाद में प्रोजेक्ट से अलग हो गई और उनकी जगह ली सिल्विया माइल्स ने। अच्छा, एक और मजेदार बात, रेक्स हैरिसन साहब की जो हिंदी आवाज थी हिंदी फिल्म में, वो आवाज एक्चुअली कादर खान साहब ने दी थी। जी हाँ, वो आवाज जो आप सुन रहे हैं रेक्स हैरिसन साहब के मुंह से पर्दे पर, उसके पीछे हैं कादर खान साहब। जबकि इंग्लिश वर्जन में धर्मेंद्र साहब की आवाज को भी डब की गई थी, यानी कि एक ही फिल्म में भाषा भी बदली और आवाजें भी।

और ये थे मोहम्मद रफ़ी साहब फिल्म शालीमार के लिए। कृष्णा शाह द्वारा डायरेक्टेड इस फिल्म का आधार जेम्स हैडले चेज के नॉवेल द वल्चर इज अ पेशेंट बर्ड से जुड़ा था और धर्मेंद्र ने मैक्स कैलनबर्ग यानी स्टोरी के मेन कैरेक्टर की भूमिका निभाई थी। लेकिन शालीमार की दोस्तों एक और ख़ास बात थी और वो थी उसका म्यूज़िक, आर डी बर्मन साहब का संगीत और आनंद बख्शी साहब के गीत। और आपको पता है इसे बनाना भी कोई आसान काम नहीं था। एक इंटरव्यू में जीनत अमान साहिबा ने बताया था कि फिल्म को इंग्लिश और हिंदी में शूट करते समय कई सीन्स को दोनों भाषाओं के लिए कई बार अलग अलग शूट भी करना पड़ता था।

0: बेहद खूबसूरत गीत और आवाज लता दीदी की। दोस्तों, जब बात हो रही है फिल्म शालीमार की, तो भला इस गीत को हम कैसे भूल सकते हैं।
1: तुम एक बेगैरत इंसान हो।
0: अच्छा, इस गीत के बिना दो वर्जन हमारे पास मौजूद हैं। एक में तो बस 2 मिनट का एक स्टैंजा वाला सॉन्ग है और एक है प्रॉपर पूरा गीत। अब क्योंकि हमारे कार्यक्रम का समय तो हो रहा है समाप्त, तो क्यों ना हम आपको सुनवाएं थोड़ा सा लंबा वाला गीत। और पूरा गीत एंजॉय करने के लिए आपको बने रहना होगा हमारे यानी आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल के संग।

श्रोताओं, ये थी आज के कार्यक्रम एक ही फिल्म से की फिल्म शालीमार, जो कि अपने समय की भारत की सबसे महंगी हिंदी फिल्मों में गिनी जाती थी। किशोर कुमार साहब की आवाज में इस सदाबहार गीत के साथ ही मुझे यानी दीप्ति पाठक को इजाजत दीजिए। बहुत जल्द आपसे फिर मिलूंगी। आप बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल।

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। सरकार ने मुसाफिर मोटर गाड़ियों के लिए ईंधन की बचत से मुतालिक नए कॉरपोरेट जाब्तों को नोटिफाई कर दिया है, जिसमें ईंधन की खपत के ताल्लुक से 5 साल में 16% से ज्यादा की बेहतरी की बात कही गई है। भारत और कतर ने भारत में 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी के कतर के वादे की पेशरफ्त का जायजा लिया है। कॉमर्स और सनतों के वजीर पीयूष गोयल आज विस्कॉन्सिन में G20 के तिजारत के वजीरों की मीटिंग में शिरकत करेंगे। नेपाल में लगातार बारिश होने की वजह से शिमाली बिहार में सैलाब की सूरत हाल मजीद खराब हो गई है। 200 से ज्यादा गांव मुतासर हुए हैं। और जापान में जारी एशियाई खेलों में भारत ने कंपाउंड तीरंदाजी में सोने के 3 तमगे जबकि ट्रैप मिक्स टीम मुकाबले में सोने का 1 तमगा जीता है। भारत ने अब तक सोने के 10 तमगों समेत 59 तमगे हासिल किए हैं। अब खबरें तफसील से। हुकूमत ने मुसाफिर मोटर गाड़ियों के लिए नए कॉरपोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी CAFE जाब्ते नोटिफाई किए हैं। ये मौजूदा CAFE जाब्तों की जगह लेंगे और इनका इतलाक 1 अप्रैल 2027 से होगा और ये 31 मार्च 2032 तक नाफिज रहेंगे। भारत में फरोख्त के लिए तैयार या दरामद नई मुसाफिर मोटर गाड़ियों पर ये लागू होंगे। नए तरीक़ेकार के तहत ऑटोमोबाइल सनत के लिए ज्यादा इंजिबाती शफाफियत और एक मुस्तहकम पॉलिसी फ्रेमवर्क फराहम होगा। तवानाई की वजारत के मुताबिक नए CAFE तरीक़ेकार से सभी 5 वर्षों में साल ब साल की बुनियाद पर फ्यूल इकोनॉमी में बेहतरी आएगी। ईंधन की खपत में तकरीबन 16% से ज्यादा की बेहतरी का हदफ रखा गया है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कतर के कारोबारी अफराद पर जोर दिया है कि वो भारत के साथ

0: रही है। मैनग्रोव के जंगलात से शहद और दीगर वसाइल हासिल होते हैं, जिनके जरिए इन खवातीन को रोजी रोटी मिल रही है।
1: पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में जारखाली की महिलाएं मैंग्रोव के जंगल तैयार कर रही हैं। इनमें से ज्यादातर वो महिलाएं हैं जिनके पति की टाइगर अटैक में जान चली गई थी। उनके द्वारा लगाए गए मैंग्रोव आज गांवों के लिए एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच बन रहे हैं और इन्हें लगाकर इन महिलाओं की कमाई भी हो रही है।
0: कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं अर्जुमंद अली खान।
2: वजीर आजम नरेंद्र मोदी की आवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल हो रहे हैं। जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और पुख्ता अजम के साथ ये सफर आगे बढ़ा है। अपनी खसूसी सीरीज के तहत आज हम मुंबई में अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहावा शेवा अटल सेतु का तस्करा कर रहे हैं।
3: अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहावा शेवा अटल सेतु समंदर के ऊपर तामीर किया गया सबसे तवील पुल है। वजीर आजम ने जनवरी 2024 में इस पुल का इफ्तिताह किया था। जनाब मोदी ने दिसंबर 2016 में इसका संगे बुनियाद रखा था। अटल सेतु 17,840 करोड़ से ज्यादा की लागत से तामीर किया गया था और ये तकरीबन 21.8 किलोमीटर तवील है और इसमें 6 लेन है। पुल का तकरीबन 16.5 किलोमीटर हिस्सा समंदर के ऊपर है जबकि लगभग 5.5 किलोमीटर जमीन पर है। मुंबई से प्रार्थना की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शोएबा।
2: गंडक तास के इलाके और बिहार में मुसलसल बारिश के सबब दरियाए गंडक में पानी की सतह में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है जिससे शिमाली बिहार में सैलाब की सूरत हाल अबतर हो गई है। मुख्तलिफ मकामात पर दरिया के किनारे टूट गए हैं और 200 से ज्यादा गांव मुतासिर हैं। जापान में जारी एशियाई खेलों में कुशल दलाल, साहिल जाधव और गणेश मणिरत्नम भारतीय टीम ने मर्दों के कंपाउंड टीम मुकाबले में चीन को हराकर सोने का तमगा जीता है। भारतीय टीम ने फाइनल में चीन को 237 के मुकाबले 238 पॉइंट से हराया। इस तरह भारत तमगे जीतने की फहरिस्त में 7वें मकाम पर आ गया है। भारत ने अब तक मजमुई तौर पर 59 तमगे जीते हैं। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। सरकार ने मुसाफिर मोटर गाड़ियों के लिए ईंधन की बचत से मुतालिक नए कॉरपोरेट जाब्तों को नोटिफाई कर दिया है जिसमें ईंधन की खपत के ताल्लुक से 5 साल में 16% से ज्यादा की बेहतरी की बात कही गई है। भारत और कतर ने भारत में 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी के कतर के वादे की पेशरफ्त का जायजा लिया है। कॉमर्स और सनअतों के वजीर पीयूष गोयल आज विस्कॉन्सन में G20 के तजारत के वजीरों की मीटिंग में शिरकत करेंगे। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
4: Good afternoon. This is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the Midday News. The headlines. Government notifies new corporate average fuel economy norms for passenger vehicles targeting over 16% improvement in fuel efficiency in 5 years. New Delhi, Qatar review progress of Qatar's $10 billion investment commitment to India. Also discuss accelerating free trade agreement negotiations. Flood situation worsens in North Bihar due to continuous rainfall in Nepal. Over 200 villages affected. In Asian Games 2026, India bagged 3 gold medals in compound archery and 1 in trap mixed team event today, taking total tally to 59, including 10 gold. And in cricket, India win toss and elect to field in the second ODI against the West Indies at Guwahati. Government has notified the new corporate average fuel economy CAFE norms for passenger vehicles. They will replace the existing CAFE norms with effect from 1st of April 2027 and remain applicable up to the 31st of March 2032. It will apply to new passenger vehicles manufactured or imported for sale in India. The new framework provides greater regulatory clarity and a stable policy framework for the automobile industry. It also facilitates technological innovation and support the continued evolution of India's passenger vehicle sector towards greater energy efficiency and lower fuel consumption.
5: According to the Power Ministry, the new CAFE framework will drive progressive improvements in fuel economy through year-on-year tightening of targets across all 5 years. The fuel consumption benchmark is tightened from 3.9 liters per 100 kilometer in 2027-2028 to 3.32 liters per 100 kilometer in 2031-32, representing an improvement of around over 16% over the period. The revised target line

0: India moved up to the 7th in the medals tally with 10 gold, 21 silver and 28 bronze. Overall medal tally reaches 59. In men's cricket, West Indies were 15 for no loss in 2.3 overs against host India on the second ODI of the three-match series at Barsapara Cricket Stadium in Guwahati when reports last came in. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Government notifies new corporate average fuel economy norms for passenger vehicles, targeting over 16% improvement in fuel efficiency in 5 years. New Delhi Qatar review progress of Qatar's $10 billion investment commitment to India. Also discuss accelerating free trade agreement negotiations. Flood situation worsens in North Bihar due to continuous rainfall in Nepal. Over 200 villages affected. In Asian Games 2026, India bagged 3 gold medals in compound archery and 1 in trap mixed team event today, taking total tally to 59, including 10 gold. And in cricket, India win toss and elect to field in the second ODI against West Indies at Guwahati. And with that, we end the Midday News.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। सरकार ने यात्री वाहनों के लिए नए कॉरपोरेट औसत ईंधन दक्षता नियम अधिसूचित किए। इनका लक्ष्य 5 वर्षों में ईंधन दक्षता में 16% से अधिक सुधार करना। भारत और कतर ने भारत में 10 अरब डॉलर की निवेश प्रतिबद्धता की प्रगति की समीक्षा की। मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता को गति देने पर भी चर्चा। नेपाल में लगातार बारिश के कारण उत्तरी बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 200 से अधिक गांव प्रभावित। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज कंपाउंड तीरंदाजी में 3 स्वर्ण और ट्रैप मिक्स टीम स्पर्धा में 1 स्वर्ण पदक जीता। 10 स्वर्ण सहित पदकों की संख्या 59 हुई। और गुवाहाटी में भारत ने वेस्टइंडीज के साथ दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने यात्री वाहनों के लिए नए कॉरपोरेट औसत ईंधन दक्षता नियम अधिसूचित कर दिए हैं। ये किसी वाहन कंपनी द्वारा बनाए गए सभी यात्री वाहनों की औसत ईंधन खपत और दक्षता से जुड़ा मानक है। ये नए नियम मौजूदा कॉरपोरेट औसत ईंधन दक्षता का स्थान लेंगे। नए नियम अगले वर्ष 1 अप्रैल से लागू होंगे और 31 मार्च 2032 तक प्रभावी रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार CAFE मानकों के तहत हर वर्ष ईंधन दक्षता के लक्ष्य को और कड़ा किया जाएगा। ईंधन खपत का मानक 2027-28 में 3.9 लीटर प्रति 100 किलोमीटर से घटाकर 2031-32 में 3.32 लीटर प्रति 100 किलोमीटर किया जाएगा। यानी इस अवधि में ईंधन दक्षता में लगभग 16% से अधिक सुधार होगा। ये नियम भारत में बिक्री के लिए बनाए या आयात किए जाने वाले नए यात्री वाहनों पर लागू होंगे। ये ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए अधिक विनियामक, स्पष्टता और स्थिर नीतिगत ढांचा प्रदान करेंगे। इससे तकनीकी नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन आज दूसरे दिन नई दिल्ली में जारी है। इसमें नौसेना के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ साथ थल सेना प्रमुख और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष भी मौजूद हैं। नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने समुद्री सुरक्षा वातावरण और भारतीय नौसेना की परिचालन स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने तेजी से बदलती परिस्थितियों के अनुरूप कार्रवाई और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता बनाए रखने पर जोर दिया। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल NS राजा सुब्रमणी ने नौसेना को देश के सामरिक क्षमता को बढ़ाने वाली महत्वपूर्ण शक्ति बताया। उन्होंने भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए तीनों सेनाओं के बीच बेहतर संयुक्तता और एकीकरण पर जोर दिया। वहीं सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने मौजूदा सुरक्षा वातावरण और उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार साझा किए। तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल, एक दूसरे के साथ मिलकर कार्रवाई करने की क्षमता और एकीकृत प्रतिक्रिया को मजबूत करने पर जोर रहा। गृहमंत्री अमित शाह आज पंजाब के जालंधर में हैं। वे अब से कुछ देर बाद मादक पदार्थ रोधी रैली को संबोधित करेंगे। जालंधर पहुंचने के बाद श्री शाह ने श्री देवी तालाब मंदिर परिसर में स्थित करीब 200 वर्ष पुराने त्रिपुर मालिनी मंदिर में पूजा अर्चना की। गृहमंत्री नशा मुक्त पंजाब यात्राओं के समापन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जालंधर में हैं। इन यात्राओं ने 13 दिन में 4 चरणों में पंजाब के सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों में 4000 किलोमीटर की दूरी तय की। भाजपा अध्यक्ष नवीन ने 18 सितंबर को पठानकोट से इन यात्राओं की शुरुआत की थी। इनका उद्देश्य पंजाब में नशे के खिलाफ लड़ाई को जन आंदोलन में बदलना है। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता में सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान में 27 सितंबर को हुई घटना की जांच के लिए 5 सदस्यीय विशेष जांच दल एसआईटी गठित किया है। कोलकाता पुलिस अपर आयुक्त कृणाल अग्रवाल की अध्यक्षता में ये दल घटना से संबंधित पंचसार थाने में दर्ज 3 प्राथमिकियों की जांच करेगा। एसआईटी से 1 अक्टूबर तक प्रथम जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। 27 सितंबर को सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान के परिसर में एक उपभोक्ता समूह अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत और संस्थान के विद्यार्थियों के साथ झड़प के बाद हिंसा हो गई थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत और कतर ने भारत में 10 अरब डॉलर की निवेश प्रतिबद्धता लागू करने, भारत में कतर निवेश प्राधिकरण का कार्यालय स्थापित करने और द्विपक्षीय निवेश संधि तथा मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर चर्चा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कतर के व्यापारिक संघ से भारत में व्यापार और निवेश में साझेदारी की संभावनाओं को सक्रिय रूप से तलाशने और द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने की अपील की। बातचीत के दौरान वित्त मंत्री ने दोनों देशों में उभरते आर्थिक अवसरों पर चर्चा की। एक रिपोर्ट।
4: दोहा में कतर व्यापारिक संघ की बिजनेस गोलमेज बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, बढ़ते निवेश और वित्त वर्ष 2025-26 में 94 अरब 50 करोड़ डॉलर से अधिक के रिकॉर्ड सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उल्लेख किया। उन्होंने जापान क्रेडिट रेटिंग द्वारा हाल ही में भारत की दीर्घकालिक रेटिंग बढ़ाए जाने का भी उल्लेख किया। इससे पहले वित्त मंत्री ने कतर के विदेश व्यापार राज्य मंत्री डॉ अहमद बिन मोहम्मद अल सईद से मुलाकात की। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि भारत कतर के साथ व्यापार और निवेश बढ़ाने को बहुत महत्व देता है। वित्त मंत्री ने भारत और कतर तथा अन्य खाड़ी देशों के बीच सामान्य व्यापार को फिर से शुरू करने के महत्व पर जोर दिया, जिसमें होर्मुज जल डमरू मध्य से बिना किसी रुकावट के समुद्री आवाजाही और व्यापार शामिल है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के आर्थिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। अमेरिका में गोलमेज बैठक में श्री गोयल ने भारत के बढ़ते औद्योगिक आधार और कुशल कार्यबल का उल्लेख किया। उन्होंने अमेरिका की कंपनियों से भारत में निवेश बढ़ाने, छोटे और मध्यम उद्योगों के साथ साझेदारी करने और आधुनिक विनिर्माण में मिलकर निवेश करने का आग्रह किया। श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग से मजबूत आपूर्ति श्रृंखला विकसित होगी और आर्थिक विकास के नए अवसर पैदा होंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज अमेरिका में G20 देशों के मंत्रियों के साथ बैठक में शामिल होंगे। ये बैठक अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के निमंत्रण पर हो रही है। यात्रा के दौरान श्री गोयल अपने समकक्ष के साथ भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पर्यटन क्षेत्र अब केवल यात्रा, मनोरंजन और घूमने फिरने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख आधार और रोजगार का महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है। नई दिल्ली में एसोचैम द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन में श्री शेखावत ने कहा कि वैश्विक और भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बावजूद पर्यटन क्षेत्र लगातार बढ़ रहा है।
5: आज जिस तरह से परिवर्तन पर्यटन के क्षेत्र में हो रहा है, पर्यटन क्षेत्र में प्रायोरिटीज जिस तरह से बदल रही है, दुनिया की तमाम चुनौतियों, तमाम दबावों के बावजूद भी पर्यटन निरंतर बढ़ने वाला क्षेत्र है। जहां आकलन किया जा रहा था कि जिस तरह की कठिनाइयों की परिस्थितियों से विश्व गुजर रहा है, लेकिन फिर भी पर्यटन के क्षेत्र ने पिछले एक वर्ष, यदि मैं आंकड़ों को उठाकर देखूं, तो ग्लोबल GDP की ग्रोथ रेट से लगभग दुगने से ज्यादा प्रगति की।
1: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सही और अद्यतन मतदाता सूची लोकतंत्र की आत्मा है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने मतदाता सूची में अनियमितताओं को लेकर विपक्ष के आरोपों पर सवाल उठाया।
6: और वोटर लिस्ट में गलत नाम जुड़े तो लोकतंत्र ही मर जाएगा। आपको क्या आपत्ति अगर कोई इस दुनिया में है ही नहीं, उसका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाए? कहीं डुप्लीकेशन है गांव में भी नाम, शहर में भी नाम, अगर नाम एक जगह कट जाए तो आपको दिक्कत क्या है? कोई देश का नागरिक ही नहीं है तो उसका नाम वोटर लिस्ट में क्यों जोड़ना चाहिए? पवित्र लोकतंत्र के लिए वोटर लिस्ट शुद्ध होना ही चाहिए।
1: इंडिया गठबंधन ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR कार्यक्रम और निर्वाचन आयोग से जुड़े मुद्दों पर रणनीति बनाने के लिए आज नई दिल्ली में बैठक की। ये बैठक नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता सोनिया गांधी

0: राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, समाजवादी पार्टी के नेता हरिंद्र मलिक, राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जॉन ब्रिटास, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद कुमार गुट की नेता सुप्रिया सुले और अन्य नेता मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के संकल्प के साथ उनकी यात्रा लगातार जारी है। सेवा और सुशासन किसी सोच के साथ सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी विशेष श्रृंखला में आज हम मुंबई के अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहवा सेवा अटल सेतु की जानकारी दे रहे हैं।
1: अटल बिहारी वाजपेयी शिवडी नवा सेवा अटल सेतु भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2024 में इस पुल का उद्घाटन किया था। उन्होंने दिसंबर 2016 में इसकी आधारशिला भी रखी थी। 17,840 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अटल सेतु की लंबाई लगभग 21.8 किलोमीटर है और इसमें 6 लेन है। पुल का लगभग 16.5 किलोमीटर का हिस्सा समुद्र पर और करीब 5.5 किलोमीटर का हिस्सा जमीन पर है। निर्माण क्षेत्र के विशेष पांडुरंग दंदाउते के अनुसार अटल सेतु अपनी अनूठी विशेषताओं और निर्माण के दौरान पर्यावरण संबंधी पहलुओं को ध्यान में रखे जाने के कारण इंजीनियरिंग का उत्कृष्ट उदाहरण है।
2: इसकी तीन चीजें हैं जो इसको अनोखा बनाती है। पहली चीज है इसकी लंबाई, विश्व के जितने ही सीलिंग्स है इसके सबसे लंबी है। दूसरा, डीप सी में इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन फर्स्ट टाइम इंडिया में हुआ है, बहुत सारी चीजें बाहर से लानी पड़ी। तीसरा, एक बहुत बड़ा चैलेंज इसमें आया था वो एनवायरमेंटल और सेफ्टी इश्यूज का, जो पर्यावरण और सुरक्षा के हेतु ये ब्रिज काफी अच्छा डिजाइन किया है।
1: अटल सेतु के बनने के बाद मुंबई और नवी मुंबई के बीच यात्रा का समय लगभग 2 घंटे से घटकर करीब 50

0: यह हवाई अड्डे की कनेक्टिविटी भी बेहतर हुई है। इससे मुंबई से पुणे, गोवा और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों तक आवागमन भी कम समय में किया जा सकता है। इस पुल से मुंबई बंदरगाह और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के बीच संपर्क भी और मजबूत हुआ है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: नेपाल में लगातार बारिश के कारण उत्तरी बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 200 से ज्यादा गांव प्रभावित हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पश्चिमी चंपारण का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने प्रशासन को सतर्क रहने और बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्यों के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। भारत ने आज जापान एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। इन खेलों की अन्य ताजा अपडेट के साथ हैं प्रियंका अरोड़ा।
2: जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज जहां तीरंदाजी की कंपाउंड स्पर्धाओं में स्वर्णिम हैट्रिक लगाई, वहीं निशानेबाजी में भी स्वर्णिम लक्ष्य पर सटीक निशाना साधा। भारतीय तीरंदाजों ने दबाव में शानदार संयम दिखाते हुए पुरुष, महिला और मिक्स टीम स्पर्धाओं में अपने अपने खिताब बरकरार रखते हुए स्वर्ण पदक जीते। पुरुष कंपाउंड टीम में साहिल जाधव, कुशल दलाल और गणेश मणिरत्नम ने फाइनल में चीन को हराया। उधर ज्योति सुरेखा वेन्नम, चिकिता तनिपार्थी और प्रतिका प्रदीप की महिला कंपाउंड टीम ने भी फाइनल में चीन को पराजित किया। साहिल जाधव और चिकिता तनिपार्थी की मिक्स्ड कंपाउंड टीम ने फाइनल में शूट ऑफ में कोरिया को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। इस जीत के साथ भारत ने स्पर्धा में 2028 ओलंपिक के लिए कोटा भी हासिल कर लिया है। निशानेबाजी की बात करें तो नीरू ढांडा और कायनन चेन्नई की भारतीय जोड़ी ने ट्रैप मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। मुक्केबाजी के रिंग में उतरे तो महिलाओं के 60 किलोग्राम भार वर्ग में प्रिया घांगस और कपिल पोखरिया ने पुरुषों के 90 किलोग्राम भार वर्ग में आज कांस्य पदक जीते। पदक तालिका में भारत अब 10 स्वर्ण, 21 रजत और 28 कांस्य सहित कुल 59 पदकों के साथ 7वें स्थान पर पहुंच गया है।
1: क्रिकेट में भारत के साथ दूसरे एक दिवसीय मैच में वेस्टइंडीज ने 5 ओवर में 1 विकेट पर 37 रन बना लिए हैं। गुवाहाटी में आज भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का निर्णय लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने मन की बात कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल

143 अंक बढ़कर 72,872, जबकि निफ्टी 37 अंक की वृद्धि के साथ 22,753 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने यात्री वाहनों के लिए नए कॉरपोरेट औसत ईंधन दक्षता नियम अधिसूचित किए। इनका लक्ष्य 5 वर्षों में ईंधन दक्षता में 16% से अधिक सुधार करना। भारत और कतर ने भारत में $10 अरब की निवेश प्रतिबद्धता की प्रगति की समीक्षा की। मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता को गति देने पर भी चर्चा। नेपाल में लगातार बारिश के कारण उत्तरी बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 200 से अधिक गांव प्रभावित। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज कंपाउंड तीरंदाजी में 3 स्वर्ण और ट्रैप मिक्स टीम स्पर्धा में 1 स्वर्ण पदक जीता। 10 स्वर्ण सहित पदकों की संख्या 59 हुई। और गुवाहाटी में भारत ने वेस्टइंडीज के साथ दूसरे

0: जानती हैं कि ये वक्त होता है आपके पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है एक ही कलाकार। प्रोग्राम शुरू करूं उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।
1: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
2: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
1: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
2: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
1: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
2: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी

एक फिल्म को यादगार बना देती हैं। हिंदी सिनेमा में अगर किसी फिल्म ने आम जिंदगी की इन्हीं छोटी छोटी खुशियों को, परेशानियों को, रिश्तों और इंसानी भावनाओं को इतनी खूबसूरती से पर्दे पर उतारा है, तो उनमें से एक बेहद खास नाम आता है ऋषिकेश मुखर्जी का, जिन्हें प्यार से हम ऋषिदा कहते हैं। आपके ढेर सारे संदेश बिल्कुल सही हम तक पहुंच चुके हैं। ऋषिदा का जो सिनेमा है वो हमें हंसाता भी है, रुलाता भी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अपनी ही जिंदगी का कोई ना कोई चेहरा उसमें दिखाई देता है। तो आज का ये प्रोग्राम समर्पित है इसी महान फिल्मकार के नाम।

आज ही के दिन यानी कि 30 सितंबर 1922 को कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था। उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से विज्ञान की पढ़ाई की और शुरुआती दौर में अध्यापन से जुड़ गए। इसके बाद ऑल इंडिया रेडियो में फ्रीलांसर कलाकार के रूप में काम करना शुरू किया। सिनेमा की दुनिया में उनका उनकी जो असली पहचान थी वो फिल्म एडिटर के रूप में बनी थी। 1945 में न्यू थिएटर स्टूडियो से जुड़े वो और आगे चलकर महान फिल्मकार बिमल रॉय के साथ उनका गहरा रचनात्मक रिश्ता बन गया। उन्होंने बिमल रॉय की फिल्मों में संपादन और निर्देशन संबंधी काम किया और 2 बीघा जमीन, देवदास और मधुमती जैसी फिल्मों से उनका नाम जुड़ा। यानी कि ऋषि दा ने कैमरे के सामने नहीं बल्कि फिल्म की एडिटिंग टेबल पर बैठकर सिनेमा की भाषा को समझना शुरू किया और शायद यही वजह थी कि आगे चलकर उनकी फिल्मों में कहानी कहने की जो गति और दृश्यों की जो बारीकी थी वो इतनी सहज दिखाई दी।

ऋषि दाने 1955 में फिल्म दो बीघा जमीन में बिमल रॉय के साथ सहायक के रूप में अपना करियर शुरू किया था। उनके साथ 6 साल तक काम करने के बाद उन्होंने 1957 में मुसाफिर फिल्म से अपने निर्देशन के करियर की शुरुआत की। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा प्रदर्शन तो नहीं किया, लेकिन राज कपूर साहब को इतना ज्यादा प्रभावित किया कि उन्होंने अपनी अगली फिल्म अनाड़ी, जो कि 1959 में रिलीज हुई थी, ये उनके साथ बनाई। ऋषिकेश की फिल्म निर्माण की जो प्रतिभा थी उसका लोहा समीक्षकों ने उनकी दूसरी फिल्म अनाड़ी से ही मान लिया था। ये फिल्म राज कपूर के सदे हुए अभिनय और मुखर्जी के कसे हुए निर्देशन के कारण अपने दौर में काफी लोकप्रिय हुई। इसके बाद ऋषिकेश दा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने अनुराधा, अनुपमा, आशीर्वाद, सत्यकाम जैसी ऑफ बीट फिल्मों का निर्देशन किया। ऋषि दा ने 4 दशकों के अपने फिल्मी जीवन में हमेशा कुछ नया करने का प्रयास किया। ऋषि दा की अंतिम फिल्म थी 1998 की झूठ बोले कुआ काटे। उन्होंने टेलीविजन के लिए तलाश, हम हिंदुस्तानी, धूप छांव, रिश्ते और उजाले जैसे धारावाहिक भी बनाए थे।

अभिनय ही नहीं गानों के फिल्मांकन के मामले में भी ऋषि दा का बेजोड़ जवाब था। अनाड़ी फिल्म का गीत सब कुछ सीखा हमने, न सीखी होशियारी, या फिर आनंद फिल्म का आप गीत ले लीजिए कहीं दूर जब दिन ढल जाए, अभिमान का गीत नदिया किनारे, नमक हराम का गीत नदिया से दरिया जो आपने सुना था कुछ देर पहले, ये और या फिर आप अनुराधा फिल्म का गीत ले लें हाय वो दिन क्या आए, ये सब गीत आज भी हमें बहुत आकर्षित करते हैं। ऋषि दा ने एक बार कहा था कि पर्दे पर किसी जटिल दृश्य के बजाय साधारण भाव को चित्रित करना बहुत मुश्किल काम होता है, इसीलिए मैं इस तरह के विषय में अधिक रुचि रखता हूँ। मैं अपनी फिल्मों में संदेश को मीठी चाशनी में पेश करता हूँ, लेकिन हमेशा इस बात का भी ध्यान रखता हूँ कि इसकी मिठास कहीं कड़वी ना हो जाए। उन्होंने एक से एक फिल्में बनाई, अनुराधा, आनंद, गोलमाल, बाबरची, नमक हराम, अभिमान जिसका गीत अभी आप सुन रहे हैं, बुड्ढा मिल गया, गुड्डी मिली, चुपके चुपके, अनाड़ी, बहुत लंबी लिस्ट है। और 1961 में ऋषि दा को फिल्म अनुराधा के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1961 में ऋषि दा को फिल्म, जैसा कि हमने बताया, अनुराधा के लिए किया था, और 1972 में फिल्म आनंद के लिए सर्वश्रेष्ठ जो कहानी थी उसके लिए फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें उनकी फिल्म को 3 बार फिल्म फेयर बेस्ट एडिटिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया, 1956 की फिल्म नौकरी, 1959 की मधुमति और 1972 की फिल्म आनंद, इन तीनों के लिए उनको बेस्ट एडिटिंग अवार्ड दिया गया था। 1990 में फिल्म जगत के शीर्ष सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया और साल 2001 में उन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया।

0: कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए।
1: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
2: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
1: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
2: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
1: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
2: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
3: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम एक ही कलाकार और आज आपके साथ मैं हूं आपकी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे। और आज हम जो सितारा चुनकर लाए हैं उसका नाम है ऋषिकेश मुखर्जी यानी कि ऋषिदा।

आपके ढेर सारे संदेश भी हम तक पहुंच गए हैं। बस कुछ ही देर में उन संदेशों को हम शामिल करने जा रहे हैं। फिलहाल आपको लता जी की आवाज में सुनवा रहे हैं फिल्म मिली से ये गीत।

भिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या, हेमलता और डिंपल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गांव लोहोगढ़ ठाकुरवाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत, राजदीप, गुरनूल जी हमारे साथ हैं। नीतीश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद, पराग जी पलारी छत्तीसगढ़ से हमें सुन रहे हैं। रायगढ़ से नरेंद्र कुमार तिवारी, गेंदलाल श्रीवास, कृष्ण कुमार जी हैं। तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया, शेख रहीम मुन्ना जी हमें सुन रहे हैं। मोहम्मद यासिन अंजान, साइमा नवाज, हसन बाबू, दादा बाबू रोड गिरिहट झारखंड से हमारे साथ हैं। श्रीनगर कश्मीर से साहिल डार और फीजान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ताज मोहम्मद जी आजाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी जी हमारे साथ हैं। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल, ईशान और पूजा जी हमारे साथ हैं। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन जी का एक और संदेश पहुंचा है। और तहसील बरून जिला अमरावती महाराष्ट्र से मुकेश कासलेकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुंडा टोला बालू छत्तीसगढ़ से दोमेंद्र नेताम, गंगेश्वरी, चंचल, कामेश और माहिर जी हमारे साथ हैं। बिहारी कॉलोनी शादरा दिल्ली से तुलसी मस्किन, बीना, डब्बू, चैतन्य, मेघा और परिवार के सभी सदस्य हैं। अगला संदेश हमारे पास फारूक अली खान जी का पहुंचा है और गुरमीत सिंह मीता जी साउथ एक्सटेंशन दिल्ली से हैं। शालीमार बाग से अशोक कुमार सहगल जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। ये संदेश संबलपुर काकेर से फागुन राम यादव, ज्योति और ओजस्वी यादव जी का आया है। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता जी हमारे साथ हैं। बचिंगखेड़ा पंजाब से मिंची टोमस, पिंकी लवली, आरती जी हमें सुन रहे हैं। और चैतन्य मस्किन, डब्बू, सम्राट पंचकुला चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा प्रिंस जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिग्दर्शन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं मेरठ कैंट से, इनके साथ कविता गौड़ जी हैं। और हरजिंदर सिंह भाटिया जी, एंजल भाटिया सोनू जी के साथ हमें स्टेशन रोड जमशेदपुर से सुन रहे हैं। अगला संदेश जो हम तक पहुंचा है वो अजीत भापसर जी का प्रमिला जी के साथ वीरन गांव गुजरात से भेजा है। और हमेशा की तरह आपने ढेर सारी जानकारी हम तक पहुंचाई है, शुक्रिया आपका। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय डिंगिया, नमन अपार डिंगिया जी हमारे साथ हैं। तुलसी मस्किन जी का एक और संदेश है। कस्बा बराड़ जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार, रंजीत, जयप्रकाश जी हमारे साथ हैं। उच्च भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी, मधु आशी जी हमारे साथ हैं। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत, परवीन, शहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और परिवार के सभी सदस्य हमारे साथ हैं। सुदर्शन मुखी, अनीता, सिमरन जी शांतिनगर सोनीपत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाबू शिवा जी का हमारे पास संदेश आया है, लेकिन इन्होंने कहाँ से संदेश भेजा है ये हमें लिख के नहीं भेजा। और आप सभी का हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। कुछ और संदेश भी हैं जिन्हें हम जल्दी से शामिल कर लेते हैं। संदीप मकर, ज्योति मकर जी जालंधर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इश्कान मोहम्मद जी चूड़ी लाइन मुगेरी छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नलवेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नोहनकर, निर्मला विशाल जी हमें सुन रहे हैं। और ये मारवाड़ा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी जी का संदेश है। तो श्रोताओं, ऋषिकेश मुखर्जी का सिनेमा हमें किसी असंभव दुनिया में नहीं ले जाता, बल्कि हमें वापस हमारी ही दुनिया में लाता है। उम्मीद करते हैं कि आज का ये प्रोग्राम आपको जरूर पसंद आया होगा। लेकिन कहीं जाना नहीं है, क्योंकि 3 बजे मैचिनी मेलोडीज भी तो आपको सुनना है। और हमेशा की तरह उसमें एक सवाल मैं आपसे पूछने वाली हूँ, उसका जवाब। तो तैयार रहिए कॉपी पेन लेकर, बस 3 बजने ही वाला है और मैचिनी मेलोडीज शो लेकर मैं एक बार फिर हाजिर होने वाली हूँ। इस प्रोग्राम से अभी आपसे अनुमति चाहती हूँ। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम एक ही कलाकार, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। दोपहर के 3 बज चुके हैं और ये वक्त है कार्यक्रम मैटिनी मेलोडीज का। प्रोग्राम मैटिनी मेलोडीज लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे। शुरुआत करते हैं जब प्यार किसी से होता है इस फिल्म से, लता जी और रफी जी की आवाज में इस खूबसूरत से गीत के साथ, और उसके बाद आपसे मैं पूछूंगी एक सवाल।

जी हाँ, हमारे हिंदी सिनेमा को 100 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन जो प्यार हमें पहले था वही प्यार हमें आज भी है। इतने सालों बाद भी वही खुशबू, वही महक, वही ताजगी हम महसूस करते हैं हमारी फिल्मों के साथ में। तो आज आपसे जो सवाल है वो हमारे गोल्डन एरा का जो दशक था उससे जुड़ा हुआ है। आपको इस सवाल का जवाब देना है, और इस सवाल के जवाब के साथ ही साथ हम ढेर सारी बातें भी करेंगे अपने इस खूबसूरत से जो समय था उसकी। आपको बताना है कि 60 के दशक की, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप नोट करना चाहें तो नोट भी कर लीजिएगा, 60 के दशक की हिंदी फिल्मों में सबसे ज्यादा गानों का एक खास रिकॉर्ड किस फिल्म ने बनाया था, उस फिल्म का नाम आपको बताना है। खैर माफ कीजिएगा, ये थोड़ा सा सवाल जो है वो उसको मैं सरल सा कर देती हूँ। ये जो गोल्डन इरा है, ये जो हमारा 1930 से 1960 के बीच का जो इरा है, इसमें एक फिल्म आई थी और ये शुरुआती फिल्म थी। जब फिल्मों की शुरुआत हुई थी उस वक्त ये फिल्म आई थी और इस फिल्म में सबसे ज्यादा गाने थे और ये एक रिकॉर्ड है। वो फिल्म कौन सी है? अब आप थोड़े से अपना दिमाग के घोड़े दौड़ाइएगा और याद कीजिएगा, थोड़ा सा पीछे जाइएगा। हिंट मैं आपको दे रही हूँ, आपको 60 तक नहीं रहना है, 50 तक भी नहीं रहना है, थोड़ा सा और पीछे जाइएगा, आपको जवाब जरूर मिलेगा। और जब जवाब मिल जाएगा तो आपको क्या करना है, मेल के जरिए अपने जवाब, अपने उत्तर हम तक पहुँचा देना है। मेल आईडी ipradiodelhi@gmail.com। एक बार फिर से सुन लीजिए कि हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे ज्यादा गाने वाली फिल्म कौन सी थी, वो कौन सी ऐसी फिल्म थी जिसमें सबसे ज्यादा गाने थे।

आपकी जवाब हम तक पहुंच रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने झटपट इस सवाल का जवाब ढूंढ लिया है। चलिए कुछ खास बातें करते हैं और उसके बाद एक बार सवाल फिर दोहराएंगे हम। 1950 से 1960 के दशक की जो हिंदी फिल्में थीं, उनको बनाना आज के मुकाबले काफी मेहनत और धैर्य का काम था। उस समय ना डिजिटल कैमरे थे, ना कंप्यूटर ग्राफिक्स और ना ही मॉनिटर पर तुरंत शॉट देखने की सुविधा थी। कहानी सबसे पहले लिखी जाती थी, पटकथा संवाद तैयार होते थे, निर्देशक लेखक और निर्माता मिलकर तय करते थे कि कौन सा दृश्य कहाँ और कैसे फिल्माया जाएगा। फिर बारी आती थी कि किस तरीके से कलाकार चयन करना है, किस तरीके से उनको रिहर्सल करानी है। हीरो हीरोइन और बाकी जो कलाकार होते थे, आर्टिस्ट होते थे, उनको उनके संवाद याद करने पड़ते थे। शूटिंग से पहले कई बार रिहर्सल होती थी, क्योंकि कैमरे में रिकॉर्ड हुआ दृश्य दोबारा बनाना आसान नहीं था और ये काफ़ी महंगा भी होता था, सस्ता काम नहीं था। और उस समय शूटिंग फिल्म रील पर होती थी। कैमरे में सेलुलॉइड फिल्म की रील लगाई जाती थी, एक बार रील खत्म होने पर उसे बदलना पड़ता था। और क्या क्या होता था वो भी आपको हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको सवाल बता देते हैं। आपको बताना है कि हमारे हिंदी सिनेमा के इतिहास में वो ऐसी कौन सी फिल्म है जिसमें सबसे ज्यादा गाने थे। जवाब मेल के जरिए आप भेज दीजिए, मेल आईडी IP रेडियो दिल्ली @gmail.com।

कभी तन्हाइयों में मुबारक बेगम की आवाज में आपने ये गीत सुना, हमारी याद आएगी फिल्म से। आपकी भी हमें याद आ गई है, ढेर सारे संदेश आपके पहुंच गए हैं। तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया और शेख रहीम मुन्ना जी जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारे सवाल का जवाब आपने नहीं भेजा है। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवनगन, कौशल और हेमलता डिम्पल जी ने भेजा है, और आपने जो नाम लिखा है ये नाम सही नहीं है, थोड़ी सी कोशिश और कीजिएगा। बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और बिल्कुल सही जवाब के साथ अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरनगांव गुजरात से अजीत भावसर जी हमारे साथ हैं, और इन्होंने भी सही जवाब हम तक पहुंचाया है, शुक्रिया। गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी प्रमोद कुमार डूनी जी ने सही जवाब हमें पहुंचाया है। सुदर्शन मुखी अनीता मुखी सिमरन जी शांतिनगर सोनीपत से सही जवाब के साथ जुड़े हुए हैं, क्या बात है, बहुत इंटेलिजेंट आप लोग हमारे दोस्त हैं। और मुंडा टोला बालोद छत्तीसगढ़ से डोमेंद्र नेताम गंगेश्वरी चंचल कामेश जी ने सही जवाब हम तक पहुँचाया है, और ये संदेश हमारे पास पहुंचा है फिर से एक बार अजीत भावसर जी का। तो हमारे जो दोस्त अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने नहीं सुन पाया कि हमने आपसे क्या सवाल किया था, उनके लिए हम एक बार फिर दोहरा देते हैं। आपको बताना है कि हमारे हिंदी सिनेमा के इतिहास में ऐसी कौन सी फिल्म है जिसमें सबसे ज़्यादा गाने थे। थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, ये मेरी तरफ से आपको हिंट है। और बात कर रहे थे हम कि किस तरीके से फिल्में बनाई जाती थी, बाकी बहुत मुश्किल काम होता था क्योंकि इतनी ज़्यादा ना टेक्निक थी ना इतनी, आज के ज़माने में तो हर चीज़ आपको रेडीमेड मिल जाती है, हर शॉट होता है, डायलॉग्स होते हैं, म्यूज़िक होता है, ये आपको कहीं ना कहीं मिक्स मैश करके आप बना ही लेते, लेकिन उस वक्त क्या होता था, हर चीज़ मैनुअल होता था, एक एक चीज़ पर बारीकी से काम किया जाता था। कैमरामैन लाइट को बड़ी सावधानी से लगाते थे, स्टूडियो में बड़े बड़े लाइट इस्तेमाल होते थे, कैमरे की जो स्थिति है उसका लेंस, कलाकारों की जगह, रोशनी, ये सब पहले से तय करनी पड़ती थी। और इसी तरीके से जो गाने होते थे, जो डांस होते थे, उनके लिए भी बहुत रिहर्सल होती थी, कलाकारों की चाल किस तरीके से वो चलेंगे, कैमरे की जो गति है, संगीत की टाइमिंग है, इसका तालमेल बनाया जाता था, और कई बार एक ही दृश्य के लिए कई टेक लेने पड़ते थे। तो इस तरीके से शूटिंग होती थी। और भी मज़ेदार बात बताऊंगी आपको, फिलहाल ये खूबसूरत सा गीत आप सबके लिए मुकेश जी की आवाज़ में।

फिल्म बम्बई का बाबू से मुकेश जी की आवाज में अभी आप ये गीत सुन रहे थे। हमने आपको बता रहे थे कि किस तरीके से शूटिंग हुआ करती थी। वाकई उस जमाने में बहुत कम संसाधन थे, बहुत कम सुविधाएं थी, लेकिन उसके बाद भी इतनी खूबसूरती के साथ फिल्में बनी हैं कि वो आज भी अमर हैं, हमारे दिल में बसी हुई हैं। आज की तरह कैमरे की स्क्रीन पर तुरंत दोबारा देखकर शूट करने की सुविधा नहीं होती थी। शूट की गई फिल्म को प्रोसेस करने के बाद ही पता चलता था कि शॉट ठीक आया है या नहीं आया। इसीलिए कैमरामैन और निर्देशक के अनुभव की बहुत बड़ी भूमिका होती थी। और ये बात आज के समय में सुनकर बहुत दिल एक तरीके से आश्चर्य लगता है। फिल्म की रील को एडिटिंग टेबल पर देखा जाता था और जरूरत के अनुसार फिल्म के टुकड़े को काट कर फिर जोड़ दिया जाता था। यानी कि आज की जो CTR+C और CTR+V उस समय की कैंची और जोड़ने वाली तकनीक से होता था। कई फिल्मों में गीतों की रिकॉर्डिंग पहले से की जाती थी। कलाकार उस रिकॉर्ड किए गए हुए गीत को सुनकर उसके अनुसार ही अभिनय और लिप सिंग करते थे। संगीतकार, गायक, गीतकार और ऑर्केस्ट्रा की भूमिका इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण होती थी। आपके संदेश हम तक पहुंच रहे हैं, उनको भी हम कुछ ही देर में शामिल करेंगे।

दिल दे के घर आए, घर आकर पछताए, सब्र की डोरी

0: सुदर्शन मुखी अनीता सिमरन जी शांतिनगर सोनीपत से सही जवाब के साथ जुड़े हुए हैं। राजकोट से जैमिन जैन जी सही जवाब हमें दे रहे हैं। ऊपरकोट मोहल्ला चौखंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी निगत परवीन शेनवास सरफराज परिवार के सभी सदस्य सही जवाब के साथ जुड़े हुए हैं। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवनगन कौशल्या हेमलता और डिम्पल जी ने भी हमें सही जवाब भेजा है। वीरनगांव गुजरात से अजीत भापसर जी लिखते हैं कि आज की मैटिनी मेलोडीज में सबसे ज़्यादा अच्छा गीत हमारी याद आएगी लगा कभी तन्हाई में, और इस फिल्म में तनुजा थी और बहुत ही शानदार गीत संगीता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बस कुछ ही देर में हमने जो सवाल पूछा था उसका जवाब हम आप तक पहुंचाएंगे।
1: नींद चली गई रूठ के कैसे कटती रातें, अपनों से शर्माए।

आपसे हमने पूछा था कि सबसे ज्यादा गानों वाली फिल्म कौन सी थी। हिंट भी दी थी कि थोड़ा सा आप 60 और 50 से पीछे जाइए, और आपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए, सही जवाब एक बार में ही पहुंचा दिया। अब ये देखिए अंतर होता है, जो कि हम आपको बता रहे थे कि जब फिल्में बनती थी उस जमाने में तो किस तरीके से मुश्किलें आती थी, सीमित संसाधनों में फिल्में बनती थी, क्योंकि इस तरीके की जो हाई टेक्निक आज के जमाने में वो नहीं थी। तो आज आपके पास इतनी हाई टेक्निक है कि जैसे ही मैंने आपसे सवाल पूछा, जवाब आपने ढूंढ के तुरंत मुझ तक पहुंचा दिया। आपको बता देती हूँ कि आप सभी के जवाब बिल्कुल सही थे, और ये फिल्म थी 1932 में रिलीज हुई ऐतिहासिक फिल्म जिसका नाम था इंद्र सभा। जानते हैं कितने गीत थे? 72। सोचिए आप कि स्टोरी कब होती होगी, क्योंकि 72 गाने तो मुझे लगता है पूरी फिल्म में मैंने देखी नहीं है इस फिल्म को, और अगर इस फिल्म का प्रिंट मिला तो मैं जरूर देखना पसंद करूंगी इस फिल्म को। 72 गानों वाली ये फिल्म थी, 1932 में रिलीज इंद्र सभा, और इस फिल्म का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। वाह, क्या बात है! और आप सभी का हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस सफर में मेरे हम सफर बने। एक संदेश उच्च भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी का भी हमारे पास पहुंचा है, और इन्होंने भी हमें बिल्कुल सही जवाब पहुंचाया है। मोहम्मद सईद अब्बासी जी भी बिल्कुल सही जवाब के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप सभी का हम शुक्रिया अदा करते हैं। और वक्त हो गया है कि आपसे अनुमति लेनी है, लेकिन 5 तारीख को भूलिएगा मत, 5 अक्टूबर यानी कि सोमवार वाले दिन एक बार फिर हमारी और आपकी मुलाकात होगी, ढेर सारे गीत संगीत के साथ, ढेर सारी बातों के साथ। फिलहाल अपनी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे को अनुमति दीजिए। यूं ही खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपने दिल में हमें बसाए रखिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम मैटिनी मेलोडीज, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। 3:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम उर्दू मजलिस।

0: दोनों एक दूसरे को मुतासिर कर सकते हैं। यहाँ एक बहुत बारीक फर्क समझना ज़रूरी है, अकेलापन और तन्हाई एक चीज़ नहीं। आप एक महफिल में 10 लोगों के दरमियान बैठे हों और फिर तन्हा महसूस कर सकते हैं, और कभी आप फिजिकली अकेले हों लेकिन दिल से मुतमईन और पुरसुकून हों। इसलिए आज के दौर में असल सवाल ये नहीं कि हमारे राब्तों की तादाद कितनी है, असल सवाल ये है कि उन राब्तों में कितनी गहराई है। हमारे मोबाइल में 500 लोगों के कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन क्या उनमें से कोई है जिसे हम रात को 2 बजे फ़ोन करके कह सकें, मैं परेशान हूँ, मुझसे बात करो। यही फ़र्क है राब्ते और ताल्लुक में। राब्ता सिर्फ नाम और नंबर का हो सकता है, लेकिन ताल्लुक में एहसास, भरोसा और अपनाइयत होती है। इसीलिए हमें सोशल मीडिया से नफरत करने के बजाय मीज़ान और तवाज़ुन सीखने की ज़रूरत है। मोबाइल को ज़िंदगी से निकाल देना ज़रूरी नहीं, बस मोबाइल को ज़िंदगी का मरकज़ बनने से रोकना ज़रूरी है। कभी खाने की मेज़ पर मोबाइल एक तरफ रख दीजिए, कभी घर वालों के साथ बैठकर बिना किसी पर्दे के गुफ्तगू कीजिए, कभी दोस्त से मिलकर उसकी तस्वीर लेने के बजाय उसकी बात सुनिए, कभी किसी कहानी देखने के बजाय उसे फ़ोन करके पूछिए तुम वाकई कैसे हो, और सबसे अहम कभी खुद से पूछिए मैं वाकई कैसा हूँ। क्योंकि हम दूसरों की ज़िंदगी की खबरें लेने में इतने मसरूफ़ हो गए हैं कि अपने दिल का हाल पूछना भूल गए हैं। इसीलिए इस दुनिया के हवाले से हर शख्स पर एक ही फैसला लागू नहीं किया जा सकता। मसला टेक्नोलॉजी का नहीं, हमारे टेक्नोलॉजी के साथ ताल्लुक का है। मगर एक बात हमेशा याद रखिए, इंसान को सिर्फ देखे जाने की नहीं समझे जाने की ज़रूरत होती है, उसे सिर्फ पसंद की नहीं अपनाइयत की ज़रूरत होती है। इसीलिए असल रिश्तों को वक्त देना हमारी जिम्मेदारी है और सच्ची मौजूदगी की। आखिर में मैं आपको एक छोटी सी तस्वीर देना चाहती हूँ। अगली बार जब आप किसी महफिल में बैठें और आपके आसपास लोग हों, मोबाइल की तरफ देखने के बजाय एक पल के लिए अपने सामने बैठे इंसान को देखिए। हो सकता है उसे आपसे कोई ज़रूरी बात करनी हो सकता है वो मुस्कुराता हुआ नज़र आ रहा हो लेकिन अंदर से परेशान हो सकता है वो भी इसी इंतज़ार में हो कि कोई उसे सिर्फ इतना पूछ ले सब ठीक है, क्योंकि कभी कभी एक सच्चा सवाल किसी शख्स की तन्हाई का दरवाज़ा खोल देता है। हमारी दुनिया में राब्तों की कमी नहीं, कमी है तो सच्चे राब्तों की। पैगामात की कमी नहीं, कमी है तो वक्त देने वालों की। इसलिए सोशल मीडिया को इस्तेमाल कीजिए इल्म के लिए, राब्ते के लिए, अपनी आवाज़ दूसरों तक पहुंचाने के लिए और बेहतरी के लिए। लेकिन अपनी असल ज़िंदगी को इस दुनिया के हवाले मत कीजिए, और शायद इसीलिए राब्तों के इस हुजूम में हमें हज़ारों लोगों की नहीं कुछ सच्चे हकीकी रिश्ते ताल्लुकात की ज़रूरत है। आज जब हम अपना मोबाइल देखें तो एक पल के लिए अपनी राब्ता फहरिस्त खोलिए, किसी ऐसे शख्स को फ़ोन कीजिए जिसे काफ़ी अरसे से बात नहीं हुई, किसी अपने से पूछिए तुम कैसे हो, और इस बार उसके जवाब का इंतज़ार भी कीजिए, क्योंकि मुमकिन है आपका एक फ़ोन किसी की सिर्फ एक और इत्तला ना हो बल्कि किसी की ज़रूरत बन जाए। मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और इस डिजिटल दुनिया में जुड़े रहने के साथ साथ अपनी असल ज़िंदगी के रिश्तों से भी जुड़िए।
1: राब्तों के हुजूम में तन्हा होता इंसान, सोशल मीडिया का अलमिया। इस मौजू पर अभी आप मोहतरमा सैयदा इल्मा काजमी से उनकी तकरीर सुन रही थी, और आइए अब जगजीत सिंह की आवाज में एक खूबसूरत गजल समाप्त करते हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उर्दू मजलिस, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। शाम के 4 बजने को है, कुछ ही देर में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने आज विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये निर्णय किसानों की उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
2: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए MSP तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही MSP में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सेफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है MSP।
1: कुसुम के लिए सबसे अधिक 675 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। सरसों और खसखस के लिए 413 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। श्री वैष्णव ने बताया कि मसूर के लिए MSP में 390 रुपए, जौ के लिए 136 रुपए, चने के लिए 83 रुपए और गेहूं में 25 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने दिल्ली पुलिस के 1,789 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित लागत वाले इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम परियोजना के कार्यान्वयन को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के तीसरे चरण को भी स्वीकृति दी। राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में 135 गीगावाट तक नवीकरणीय ऊर्जा का परीक्षण इससे संभव हो सकेगा। भारत और कतर ने द्विपक्षीय निवेश संधि तथा मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता प्रक्रिया में तेजी लाने पर विचार विमर्श किया है। दोनों देशों ने भारत में 10 अरब डॉलर का निवेश करने और भारत में कतर निवेश प्राधिकरण का कार्यालय स्थापित करने को लेकर हुई प्रगति की समीक्षा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने दोहा में कतर व्यापारिक संघ की गोलमेज बैठक में भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, बढ़ते निवेश और वित्त वर्ष 2025-26 में 94 अरब 50 करोड़ डॉलर से अधिक के रिकॉर्ड सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उल्लेख किया। सरकार ने यात्री वाहनों के लिए नए कॉरपोरेट औसत ईंधन दक्षता नियम अधिसूचित कर दिए हैं। ये किसी वाहन कंपनी के बनाए गए सभी यात्री वाहनों की औसत ईंधन खपत से दक्षता से जुड़ा हुआ मानक है। नए नियम अगले वर्ष 1 अप्रैल से लागू होंगे और 31 मार्च 2032 तक प्रभावी रहेंगे। ये भारत में बिक्री के लिए बनाए गए आयात किए जाने वाले नए यात्री वाहनों पर लागू होंगे। ये ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए अधिक विनियामक, स्पष्टता और स्थिर नीतिगत ढांचा प्रदान करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने वर्ष 2029 तक पंजाब को नशा मुक्त बनाने की घोषणा की है। पंजाब के जलंधर में मादक पदार्थ रोधी रैली को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि राज्य की आम आदमी पार्टी सरकार ने पंजाब को नशा मुक्त बनाने में कोई कदम नहीं उठाया। गृह मंत्री नशा मुक्त पंजाब यात्राओं के समापन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जलंधर में हैं। इन यात्राओं का उद्देश्य पंजाब में नशे के खिलाफ लड़ाई को जन आंदोलन में बदलना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये कार्यक्रम आयोग की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। श्री मोदी आयोग

0: Minister Nirmala Sitharaman has urged Qatari businesses to actively explore trade and investment partnerships with India and further strengthen bilateral economic ties. Addressing a business roundtable of the Qatari Businessmen Association in Doha, she highlighted India's strong economic growth, rising investment and record gross FDI inflow of over $94.5 billion in financial year 2025-26. Well, in men's cricket, West Indies were 221 for 2 in 28 overs against host India on the second ODI of the three-match series at Barsapara Cricket Stadium in Guwahati when reports last came in. And India enjoyed its most successful day at the Asian Games 2026 so far, winning 4 gold medals. India completed a hat-trick of gold medals in compound archery, with the women's team, mixed team and men's team all finishing on top. The men's team produced a sensational comeback against China to clinch the gold medal. India's medal tally has risen to 60, including 10 gold, 21 silver and 29 bronze medals. And that's the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब हम आपको जानकारी दे दें कुछ खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में। हमारी आज की पहली सूचना इस प्रकार है। थाना लिसाड़ी गेट मेरठ से प्राप्त सूचना के अनुसार यास्मीन पुत्री नाजमा निवासी थाना लिसाड़ी गेट मेरठ दिनांक 26 जून 2026 से कहीं लापता हैं। यास्मीन की उम्र 16 वर्ष, कद 5 फीट और रंग गोरा है। यदि आप इनके संबंध में कोई भी सूचना रखते हैं तो कृपया संपर्क करें थाना लिसाड़ी गेट मेरठ। थाना किठौर जनपद मेरठ से प्राप्त सूचना के अनुसार प्राची पुत्री किशनपाल निवासी ग्राम गेसुपुर शुमाली थाना किठौर मेरठ दिनांक 5 जुलाई 2026 से कहीं लापता हैं। प्राची की उम्र लगभग 18 वर्ष, कद 4 फीट 5 इंच और शारीरिक बनावट सामान्य है। यदि आप इनके संबंध में कोई भी जानकारी देना चाहते हैं तो कृपया संपर्क करें थाना किठौर जनपद मेरठ। थाना खरखौदा जनपद मेरठ से प्राप्त सूचना के अनुसार मनोज पुत्र स्वर्गीय राजेंद्र निवासी ग्राम गोकुलपुरी कस्बा व थाना खरखौदा दिनांक 13 जुलाई 2026 से कहीं लापता हैं। मनोज की उम्र 22 वर्ष, कद 5 फीट 3 इंच, रंग गेहुआ और शारीरिक बनावट सामान्य है। यदि आप इनसे संबंधित कोई भी जानकारी देना चाहते हैं तो कृपया संपर्क करें थाना खरखौदा जनपद मेरठ। एक अन्य सूचना के अनुसार निकिता पुत्री हरपाल निवासी मुख्तारपुर कहीं लापता हैं। इनकी उम्र 20 वर्ष, कद 5 फीट 2 इंच, शारीरिक बनावट सामान्य और रंग गेहुआ है। इनकी सूचना देने वाले व्यक्ति को ₹1,000 की धनराशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाएगी। थाना नॉर्थ एवेन्यू नई दिल्ली से प्राप्त सूचना के अनुसार काजल उम्र 16 वर्ष दिनांक 10 मई 2026 से कहीं लापता हैं। काजल की उम्र 16 वर्ष, कद 5 फीट और शारीरिक बनावट पतली है। यदि आप इनके संबंध में कोई भी जानकारी रखते हैं तो कृपया संपर्क करें थाना नॉर्थ एवेन्यू नई दिल्ली। फोन नंबर नोट कर लें 7835987717 7835987717। थाना नई कॉलोनी गुरुग्राम से प्राप्त सूचना के अनुसार कनक पुत्री दीपक निवासी प्रताप नगर गुरुग्राम दिनांक 9 जुलाई 2026 से कहीं लापता हैं। कनक की उम्र 17 वर्ष, कद 5 फीट 2 इंच, रंग गोरा, चेहरा गोल और शारीरिक बनावट हृष्ट पुष्ट है। इनसे संबंधित सूचना देने वाले व्यक्ति को ₹5,000 की धनराशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाएगी। यदि आपके पास इनसे संबंधित कोई भी जानकारी उपलब्ध है तो कृपया संपर्क करें थाना नई कॉलोनी गुरुग्राम। थाना कंकरखेड़ा मेरठ से प्राप्त सूचना के अनुसार नितिन कुमार उर्फ कुकु पुत्र राजेंद्र निवासी लक्ष्मी विहार कंकरखेड़ा मेरठ दिनांक 24 अप्रैल 2026 से कहीं लापता हैं।

उनकी उम्र 27 वर्ष, कद लगभग 6 फीट, रंग गेहुआ और शारीरिक बनावट पतली है। इनकी सूचना देने वाले व्यक्ति को उचित धनराशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाएगी। इनकी सूचना देने के लिए कृपया संपर्क करें थाना कंकरखेड़ा, मेरठ। और आज की अंतिम सूचना कुछ इस प्रकार है। थाना ब्रह्मपुरी, जनपद मेरठ से प्राप्त सूचना के अनुसार विनोद पुत्र ताराचंद्र, निवासी ब्रह्मपुरी मेरठ, कहीं लापता हैं। इनकी उम्र 40 वर्ष और कद 5 फीट 6 इंच है। इनसे संबंधित जानकारी देने के लिए थाना ब्रह्मपुरी मेरठ से संपर्क करें। श्रोताओं, ये थी कुछ खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, DRM 810 किलोहर्ट्ज पर। आइए सुने कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्कार युवा साथियों, मैं हूं सुमन
1: और मैं हूं रूपाली। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी द्वारा प्रस्तुत युववाणी कार्यक्रम।
0: सितंबर का महीना आज ऑफिशियली खत्म हो रहा है और माय गॉड, क्या महीना था ये।
1: वाकई इस महीने जहां एक तरफ भक्ति भावना में तृप्त होकर सभी ने भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया, तो अगले वर्ष जल्दी आने के वादे के साथ विदा किया सिद्धि विनायक को।
0: हमने ओणम मनाया और हमारे लाइफ के मजबूत पिलर्स हमारे टीचर्स को शिक्षक दिवस पर नमन किया।
1: इसी महीने भारत ने राजधानी दिल्ली में ब्रिक्स समिट की मेजबानी की और सदस्य देशों के साथ आने वाले पॉलिटिकल लीडर्स का स्वागत किया।
0: बात करें स्पोर्ट्स की तो जापान में चल रहे एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों ने क्या बेहतरीन परफॉर्म किया और आशा है आगे भी ये परफॉर्मेंस बरकरार रहेगी।
1: और मालूम है सुमन, इस बार मार्शल आर्ट्स में देश का पहला मेडल भी आया। तो सुमन, क्यों ना हमारे खिलाड़ियों की जीत को सेलिब्रेट करने के लिए और उनके हौसलों को और भी बुलंद करने के लिए डेडिकेट किया जाए उन्हें ये खास गाना।
0: नेकी और पूछ पूछ।

0: इस एनर्जेटिक गाने के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका युववाणी कार्यक्रम में। और बता दें कि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा विषय जो हर युवा के जीवन से जुड़ा हुआ है, करियर गाइडेंस, रोजगार के अवसर और युवाओं के लिए सरकारी योजनाएं। रूपाली, अपनी आंखें बंद करो।
1: अरे पर क्यों?
0: करो तो।
1: अच्छा ठीक है, लो कर ली।
0: अब एक बात बताओ, अगर तुम्हें सैलरी या सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस की चिंता ना हो तो तुम किस तरह का काम करना पसंद करोगे?
1: वही जो मैं करना चाहती हूँ, जर्नलिज्म,
0: दैट वॉज रियली फास्ट।
1: बिकॉज आई नो वॉट आई लाइक।
0: क्या बात कही है, आई नो वॉट आई लाइक। आई एम श्योर हमने और इस कार्यक्रम को सुन रहे हर युवा साथी ने अपनी लाइफ में एक ना एक बार इन सवालों का सामना जरूर किया होगा।
1: अब आगे क्या करना है?
0: 12वीं के बाद क्या करें?
1: ग्रेजुएशन के बाद नौकरी करें या आगे पढ़ाई?
0: सरकारी नौकरी की तैयारी करें या प्राइवेट सेक्टर में जाएं?
1: स्किल सीखें या सिर्फ डिग्री पर ध्यान दें?
0: और अगर नौकरी नहीं मिल रही है तो क्या कोई ऐसा रास्ता है जहां हम अपना काम खुद शुरू कर सकें?
1: कई बार समस्या ये नहीं होती कि हमारे पास विकल्प नहीं है।
0: बल्कि समस्या ये होती है कि हमारे सामने बहुत सारे विकल्प होते हैं लेकिन सही जानकारी नहीं।
1: किसी दोस्त ने कहा यूपीएससी कर लो,
0: किसी रिश्तेदार ने कहा बैंक की तैयारी कर लो,
1: किसी ने कहा कोडिंग सीख लो,
0: और कोई कहता है कि सरकारी नौकरी के अलावा कुछ नहीं।
1: लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, हर सक्सेसफुल करियर की शुरुआत सही दिशा से होती है, भीड़ के पीछे भागने से नहीं।
0: बिल्कुल। और आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे सही करियर कैसे चुने, पढ़ाई और नौकरी के बीच संतुलन कैसे बनाएं, सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, स्किल बेस्ड

0: करियर्स क्या हैं, रोजगार की ऑथेंटिक जानकारी कहाँ से लें और युवाओं के लिए महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएं कौन सी हैं।
1: तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हो सकता है आज की कोई एक जानकारी आपके करियर का नया रास्ता खोल दे। आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं ये गाना।

0: दोस्तों, करियर चुनने से पहले हम अक्सर खुद से एक सवाल पूछते हैं, मुझे क्या करना चाहिए?
1: लेकिन करियर चुनने से पहले शायद एक और सवाल ज्यादा जरूरी है, मैं कौन हूँ और मेरी ताकत क्या है।
0: बिल्कुल, करियर सिलेक्शन में चार चीजें बहुत जरूरी हैं, इंटरेस्ट, अबिलिटी, अपॉर्चुनिटी और प्रैक्टिकल सिचुएशन।
1: सबसे पहले बात करते हैं इंटरेस्ट की, यानी आप किस काम को करने में जनरली रुचि रखते हैं। क्या आपको लोगों से बात करना पसंद है? क्या आपको लिखना पसंद है? क्या आपको नंबर्स और कैलकुलेशंस अच्छे लगते हैं?
0: क्या आपको टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है? क्या आपको पढ़ाना और समझाना पसंद है?
1: या फिर आपको कैमरा, मीडिया और कम्युनिकेशन की दुनिया आकर्षित करती है?
0: क्योंकि कई बार हम ऐसा करियर चुन लेते हैं जो दूसरों को तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमें नहीं।
1: और फिर वही करियर लंबे समय तक बोझ जैसा महसूस होने लगता है।
0: लेकिन रूपाली, सिर्फ किसी काम को पसंद करना ही काफी नहीं है।
1: बिल्कुल, हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है।
0: एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी को ड्राइंग और

0: क्रिएटिव वर्क पसंद है तो वो ग्राफिक डिज़ाइन, एनिमेशन या आर्किटेक्चर जैसे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकता है।
1: अगर किसी को बोलना, लोगों से जुड़ना और समझना पसंद है तो टीचिंग, जर्नलिज्म, पब्लिक रिलेशंस, रेडियो या ट्रेनिंग जैसे क्षेत्रों में अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है।
0: और अगर किसी को प्रॉब्लम सॉल्विंग पसंद है तो टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, रिसर्च या एनालिटिकल रोल्स उसके लिए अच्छे ऑप्शंस हो सकते हैं। पर सवाल है कि इन फील्ड से जुड़ी अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ मिलेंगी?
1: इसका जवाब हम देंगे हमारे अगले वीकली सेगमेंट में। उससे पहले सुनते हैं ये गाना।

0: वाह, क्या गाना था ये। इस गाने की लिरिक्स ना मुझे बहुत पसंद है। जब भी सुनती हूँ एनर्जी का लेवल एकदम हाई हो जाता है।
1: हाँ बिल्कुल, इसी पॉजिटिव वाइब्स के साथ शुरू करते हैं और अब बात करते हैं एक ऐसे विषय की जो हर जॉब सीकर के लिए बहुत ज़रूरी है। रोजगार की सही जानकारी कहाँ से ले?
0: आज इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं है।
1: असली चैलेंज है सही इन्फॉर्मेशन और फेक इन्फॉर्मेशन में फ़र्क करना।
0: सोशल मीडिया पर रोज कोई ना कोई कहता है 100% जॉब गारंटी।
1: बस रजिस्ट्रेशन फीस दो,
0: घर बैठे लाखों कमाओ।
1: सरकारी नौकरी की डायरेक्ट वैकेंसी।
0: ऐसे मैसेजेस से सावधान रहना बहुत जरूरी है।
1: रोजगार की ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए युवाओं को ऑफिशियल सोर्सेज चेक करने चाहिए।
0: उदाहरण के लिए नेशनल करियर सर्विस यानी NCS, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो जॉब सीकर्स को देश भर के एम्प्लॉयर से कनेक्ट करता है। कोई भी युवा यहाँ इस पोर्टल पर लॉगिन करके साइकोमेट्रिक और एप्टीट्यूड टेस्ट एक्सेस कर सकता है, जिससे करियर चुनने में मदद मिलती है।
1: ये पोर्टल वन स्टॉप प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है, यानी यहाँ आप करियर काउंसलिंग, ट्रेनिंग रिसोर्सेज के साथ साथ पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर जॉब से जुड़ी अपडेट्स सब कुछ एक जगह पे पा सकते हैं।
0: NCS की सेवाएं निशुल्क हैं और इसकी टोल फ्री हेल्पलाइन 1514 है।
1: सुमन, मुझे लगता है जॉब सीकर्स के लिए सिर्फ ये जानना काफ़ी नहीं होगा कि कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, बल्कि इंडियन जॉब मार्केट की डेवलपमेंट्स मालूम होनी चाहिए। भारतीय जॉब मार्केट में पारंपरिक डिग्री की तुलना में प्रैक्टिकल स्किल का महत्व तेजी से बढ़ रहा है। लगभग 79% भारतीय कंपनियां एंट्री लेवल पदों के लिए स्किल बेस्ड हायरिंग को प्राथमिकता दे रही हैं।
0: और तो और, इस क्षेत्र में डेटा वैज्ञानिक और विश्लेषक के पदों पर अच्छा वार्षिक पैकेज मिल सकता है। कोडिंग और सॉफ्टवेयर विकास की स्किल सीखने वाले युवाओं के लिए सालाना कमाने के अच्छे अवसर उपलब्ध हैं। क्लाउड और डेवलपमेंट इंजीनियरों की मांग बढ़ने से इस फील्ड में अच्छा वेतन मिलता है।
1: और हाँ, 12वीं के बाद डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग या एनिमेशन जैसे शॉर्ट टर्म कोर्स करके युवा नौकरी के साथ साथ फ्रीलांसिंग से भी अच्छी कमाई कर रहे हैं।
0: वेल, दिस वॉज आर वीकली सेगमेंट। नाउ इट्स टाइम फॉर अ म्यूजिकल ब्रेक।

बारी है मन से माइक्रोफोन तक की, जिसमें हम सुनेंगे डॉक्टर विजय पांडे जी को, जिनसे बातचीत की है हमारी साथी शैलजा ने, और जानेंगे कि ह्यूमैनिटीज में कौन कौन से करियर ऑप्शंस एक्सप्लोर किए जा सकते हैं।

0: नीति आयोग का नाम लेना चाहूंगा। नीति आयोग ने अभी यंग कंसल्टेंट प्रोग्राम शुरू किया हुआ है, इसमें नए नए बच्चों को मौका मिलता है, वो अपनी कंसल्टेंसी, अपनी एक्सपीरियंस, अपनी एक्सपर्टीज को यूथ के सामने दे सकते हैं। आप योनो में भी डिफरेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम कर सकते हो। ICSR UGC बहुत सारे ऐसे युवाओं को मौका देता है जिसमें आप रिसर्च में अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। अभी ICSR ने रिसेंटली युवाओं के लिए एक शोध का एक नया परियोजना के लिए उनको आमंत्रित किया हुआ है, तो उसमें आप प्रपोजल देके आप रिसर्च में भी अपना एक्सपर्टीज आप शो कर सकते हैं।
1: सर, आपने PhD की है स्मार्ट सिटी सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। आज के टाइम पे चूंकि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट करने के इंक्लाइंड है, इसको आप किस तरह से देखते हैं कि क्या प्रोग्रेस और सही दिशा क्या होनी चाहिए?
0: अगर मैं डिफरेंट रिपोर्ट्स की बात करूं तो वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट या जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स की रिपोर्ट्स है, वो ऑलवेज फोकस करती हैं कि दिस इज एन एरा ऑफ अर्बनाइजेशन, राइट? यू कैन डिनाय द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द अर्बन सेक्टर। अभी इंडिया में मैं आपको डेटा दूं, 2011 का जो डेटा है उसमें 32% लोग अर्बन सेक्टर में रह रहे हैं। ये बड़ी उम्मीद है कि 2030 तक लगभग 50% जो पॉपुलेशन है वो अर्बन सेक्टर में रहेगी। जब 50% पॉपुलेशन अर्बन सेक्टर में है, सो वी आर फेसिंग एन इमेंस प्रॉब्लम लाइक बेसिक सिविक एमिनिटीज हैं, ट्रैफिक है, क्राइम अगेंस्ट वीमेन है, लैंड यूज की प्रॉब्लम है, हाउसिंग की प्रॉब्लम्स है, वाटर की प्रॉब्लम है, पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है। इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये मैकेनिज्म होना चाहिए। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2015 में स्कीम शुरू किया था टू प्रमोट द कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्ट सिटी मिशन, जिसमें आप 100 सिटीज को डेवलप करना चाहते हो। डेट विल बी स्मार्ट इन सेंस ऑफ स्मार्ट गवर्नेंस, स्मार्ट पीपल, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड विथ स्मार्ट नॉलेज बेसिस, राइट? सो हमें एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है जहां पे हम आइडियल तरीके से लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। और ये चैलेंज इसलिए ज्यादा है क्योंकि जैसे आपने बोला, माइग्रेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एवरीबडी इज लुकिंग देयर अपॉर्चुनिटीज, देयर जॉब्स, देयर लाइफ स्टाइल, फॉर द हेल्थ, फॉर एजुकेशन, एंड दे आर मूविंग टुवर्ड्स द सिटीज। सो वी हैव टू कोप अप विद द चैलेंजेस एंड वी हैव टू गो विद अ सर्टेन सॉल्यूशन। और वो सॉल्यूशन तभी होगा जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें, जो आज की बातें नहीं कर रहा है, जो आने वाले 15-20 सालों की भी बातें कर रहा है।
1: जी सर, अगर करियर की बात कर रहे हैं, इंटर्नशिप की बात होती है, उसमें नीति आयोग का और UN जैसे ऑर्गेनाइजेशंस का आप क्या रोल इसमें देखते हैं?
0: जी, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है, वो है नीति आयोग के द्वारा यंग कंसल्टेंट की भूमिका क्या हो सकती है। नए बच्चों को अपॉर्चुनिटी देते हैं, उनसे एप्लीकेशन कॉल करते हैं और बोलते हैं कि आपका जिस फील्ड में एक्सपर्टीज है, फॉर एग्जाम्पल समबडी इज एक्सपर्ट इन द रूरल डेवलपमेंट, समबडी इज एक्सपर्ट इन अर्बनाइजेशन, somebody is expert in the remote sensing, somebody is expert in the natural resource management. So आप उसमें कैसे consultant बन के नए youth को, नए लोगों को, students को, industries को, corporate sectors को, organization को, government को, कैसे आप एक अच्छा recommendation दे सकते हैं, अपनी research को कैसे ground reality पे apply कर सकते हो? तो नीति आयोग ने लोगों को avenue दिया है एंड दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग ए वेरी हैंडसम इंटर्नशिप अमाउंट टू द यूथ, राइट? सिमिलरली UN में बहुत सारे इसके स्कोप होते हैं, UNDP में है, UNO में है, ये लोगों को अपॉर्चुनिटीज देती हैं। यू कैन अप्लाई देयर एज ए यंग कंसल्टेंट एंड यू कैन कंट्रीब्यूट योर एक्सपर्टीज इन द फील्ड ऑफ योर वर्सेटाइल नॉलेज। इफ योर वर्क इज वेरी अप्रोप्रिएट, वेरी लिंक विद द मार्केट, UN आपको बुलाती है और आपके मॉडल को वो अप्लाई भी करती है और वो बाकी कंट्रीज को वो उस मॉडल को प्रोपोगेट भी करती है।
1: That's really inspiring and very informative for listeners also. Next question is कि आपको जैसे traveling का बहुत ज्यादा शौक है, आपने काफी सारी countries में अलग अलग तरीके से जगहों को देखा है और experiences किए हैं, साथ में आप academic से भी जुड़े हुए हैं, तो आप क्या एक difference देखते हैं इंडिया के education system यहाँ के academics में और other countries के, और इसमें क्या reforms होने की अभी बहुत ज्यादा गुंजाइशें हैं?
0: मैं आपको बताना चाहूंगा कि I am very fond of traveling and reading. मुझे बहुत पसंद है और मैंने काफी ट्रैवल किया है, मैंने ऑलमोस्ट इंडिया और काफी कंट्रीज को ट्रैवल किया है। मेरा जो पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, सिंस आई एम प्रोफेसर ऑफ ज्योग्राफी, सो मैं कहना चाहूंगा कि ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ फील्ड्स, ये तो फील्ड स्टडी है, फील्ड बेस्ड स्टडी, राइट? सो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप जितना चीजों को ट्रैवल करते हो और उसको जो परसीव करते हो, जो आप एक्सपीरियंस करते हो, जो आप चैलेंजेस फेस करते हो, वी कैन अप्लाई इन योर डे टू डे नॉलेज, राइट? सो जब भी मैंने जो भी ट्रैवल में सीखा है, वो मैंने सीखा है कि वो बुक के नॉलेज से कहीं बढ़ के है। जब आप फील्ड में जाते हो, लोगों से इंटरेक्ट करते हो, लोगों की समस्याएं सुनना चाहते हो, उस परसेप्शन से, उस ऑब्जर्वेशन से जब आप रियलाइजेशन करते हो, सो आप जब रिसर्च में उसको अडॉप्ट करते हो, वो काफी फ्रूटफुल होता है और वो एक बच्चों के लिए एक अच्छी लर्निंग होती है। मैंने भी देखा है यूरोपियन कंट्रीज में हम लर्निंग बाय डूइंग, हम प्रैग्मेटिक रिसर्च पर ज्यादा फोकस करते हैं। हमारे कंट्रीज का करिकुलम

0: बहुत ही अच्छा है, बट कहीं ना कहीं हमें रिसर्च, फील्ड बेस्ड स्टडी, लोगों को प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ ज्यादा इंक्लाइन करना है। हमें दिखाना है फील्ड में रियलिटी क्या है और ग्राउंड रियलिटी क्या है। वी हैव टू डाइवर्ट आवर नॉलेज फ्रॉम लाइब्रेरी टू द फील्ड एंड टू द परसीव नॉलेज। यू कैन से द लर्निंग बाय डूइंग प्रैग्मेटिक नॉलेज एंड यू कैन से अ काइंड ऑफ अ सिंडिकेट काइंड ऑफ अ नॉलेज वेर यू क्रिएट अ ग्रुप। वी कैन क्रिएट अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, यू कैन गो टू द फील्ड, वी कैन टेक द ऑब्जर्वेशन एंड अप्लाई इन आवर रिसर्च। सो ये मेरा मेथड्स है जो यूरोपियन कंट्रीज में काफी होता है, जिसपे हमें और काम करने की जरूरत है।
1: बिल्कुल सर, क्योंकि लर्निंग बाय डूइंग इज द बेस्ट वे टू अप्लाई अवर स्किल्स आई
0: यस सर,
1: गेस। थैंक यू सो मच सर आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आपने सुना डॉक्टर विजय पांडे जी को। अब आगे बढ़ते हैं इस गाने के साथ।

0: जानती हो रूपाली, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स सबसे ज्यादा भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया डॉक्यूमेंट है। ये 500 से ज्यादा भाषाओं में अवेलेबल है।
1: रूपाली, डू यू नो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इज द मोस्ट ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट। इट इज अवेलेबल इन मोर देन 500 लैंग्वेजेस।
0: तुम ऐसे क्यों बोल रही हो?
1: व्हाई आर यू स्पीकिंग लाइक दिस?
0: हे भगवान,
1: ओ गॉड, ओहो, सॉरी सॉरी। दोस्तों, इससे पहले कि आप सोचो कि मैं सुमन की कही बातों को ट्रांसलेट क्यों कर रही हूँ, तो मैं बता दूँ कि आज वर्ल्ड ट्रांसलेशन डे है, विश्व अनुवाद दिवस, और आज का दिन अपॉर्चुनिटी है विश्व भर के लैंग्वेज प्रोफेशनल्स के काम को सराहने का,

0: सम्मानित करने का।
1: ट्रांसलेशन न केवल कम्युनिकेशन को हम सभी के लिए आसान बनाता है, बल्कि ट्रांसलेशन एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, जिससे न जाने कितने लोगों की जिंदगी आसान हो रही है। तो ध्यान रहे, अगर आप कोई किताब, कोई डॉक्यूमेंट या कोई इन्फॉर्मेशन अपनी भाषा में एक्सेस कर पा रहे हैं, तो उसके पीछे है हमारे ट्रांसलेशन प्रोफेशनल्स की मेहनत।
0: बिल्कुल, जानती हो सुमन, द चूजन 125 भाषाओं में ट्रांसलेटेड की गई टीवी सीरीज है।
1: ओ अच्छा।
0: और राइटर पोल कोहेलो ने 2003 में फ्रैंकफर्ट बुक फेयर में द एल्केमिस्ट के 53 अलग अलग लैंग्वेज एडिशन साइन किए थे, जो अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है।
1: थैंक्स रूपाली, मेरी जी के एनहांस करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्विक बस के साथ। शिमला में रिसेंटली 12th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ शिमला ऑर्गेनाइज किया गया था। फेस्टिवल में इंडिपेंडेंट फिल्म्स और वर्ल्ड सिनेमा के साथ साथ इस बार एआई जेनरेटेड फिल्म्स और स्टूडेंट एनिमेशन प्रोजेक्ट को भी शोकेस किया गया। यानी सिनेमा में क्रिएटिविटी के साथ टेक्नोलॉजी का भी इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन देखने को मिला।
0: सुमन, हमारा नेशनल एनिमल क्या है?
1: टाइगर।
0: क्या तुमने ब्लू आई टाइगर के बारे में सुना है?
1: नहीं, बताओ तो।
0: इंडिया में इन दिनों एक रेयर ब्लू आई टाइगर काफी चर्चा में है। तेजस को रिसेंटली ग्वालियर से 5500 किलोमीटर दूर देहरादून जू में अगले नए घर में शिफ्ट किया गया। रेयर ब्लू आई और वाइट कोट की जगह से तेजस वाइल्ड लाइफ लवर्स के लिए अट्रैक्शन कब का बना हुआ है?
1: बेंगलुरु में रिसेंटली इंडिया का पहला वर्ल्ड हैप्पीनेस समिट हुआ। ये एक लाइट हार्टेड वेलनेस आइकॉन्स जैसे शिल्पा शेट्टी ने 3 कीज टू एटर्नल हैप्पीनेस शेयर किए। समिट में ये भी डिस्कस हुआ कि हम रोजाना स्ट्रेस को कम कैसे कर सकते हैं और खुशियों को चूज कर सकते हैं।

0: आप सुन रहे थे ये बेहतरीन गीत। ये गाना हर उस युवा कॉन्फिडेंट को भी एक्सप्रेस करता है जो अपने लिए एक बेहतर फ्यूचर बनाना चाहता है और जो जानते हैं कि समय के साथ कैसे खुद को ढाला जाता है।
1: बिल्कुल, लेकिन सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, बेहतर फ्यूचर के लिए सही दिशा और सही तैयारी जरूरी है।
0: दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया हो। आपकी प्रतिक्रिया और सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
1: आप अपने सुझाव हमें भेज सकते हैं yuvvanifeedback@gmail.com पर, yuvvanifeedback@gmail.com पर। अब हमें दीजिए अनुमति। मैं हूं रूपाली।
0: मैं हूं सुमन।
1: नमस्कार, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब से कुछ ही पलों में समाचार प्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने आज विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह निर्णय किसानों की उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
2: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए MSP तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही MSP में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सेफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम 50% ज्यादा रखी गई है MSP।
1: कुसुम के लिए सबसे अधिक 675 रुपए प्रति क्विंटल वृद्धि की गई है। सरसों और खसखस के लिए MSP 413 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। श्री वैष्णव ने बताया कि मसूर के लिए MSP में 390 रुपए, जौ के लिए 136 रुपए, चने के लिए 83 रुपए और गेहूं में 25 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने दिल्ली पुलिस के 1,789 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित लागत वाले इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के कार्यान्वयन को भी मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने PM धारा योजना को भी मंजूरी दी है। इससे अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली मजबूत होगी और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में 135 गीगावाट तक नवीकरणीय ऊर्जा का पारेषण संभव हो सकेगा। भारत और कतर ने द्विपक्षीय निवेश संधि तथा मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता प्रक्रिया में तेजी लाने पर विचार विमर्श किया है। दोनों देशों ने भारत में 10 अरब डॉलर का निवेश करने और भारत में कतर निवेश प्राधिकरण का कार्यालय स्थापित करने को लेकर हुई प्रगति की समीक्षा की। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्शन फेडरेशन और ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन ने शुक्रवार को नो UPI डे मनाने का फैसला वापस ले लिया है। ये फैसला नई दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और करीब 20 वरिष्ठ व्यापारिक नेताओं के प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई बैठक के बाद लिया गया। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भाजपा सांसद और कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग UPSC के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर लोगों को संबोधित भी करेंगे। श्री मोदी UPSC के शताब्दी समारोह का स्मारक सिक्का, स्मारक डाक टिकट और 100 लैंडमार्क जजमेंट्स शेपिंग द पॉलिसीज ऑफ UPSC एंड पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया नाम की एक पुस्तक भी जारी करेंगे। वरिष्ठ भाजपा नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पंजाब को वर्ष 2029 के अंत तक नशा मुक्त बनाया जाएगा। आज जालंधर में नशा मुक्त पंजाब रैली में श्री शाह ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा पंजाब को नशा मुक्त बनाने के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। भारी उद्योग मंत्री HD कुमार स्वामी ने आज नई दिल्ली में भारी उद्योग मंत्रालय के इंडस्ट्री एक्सेलरेटर प्रोजेक्ट की प्रभाव रिपोर्ट जारी की और इसे डिजिटल माध्यम से लॉन्च किया। इस अवसर पर श्री कुमार स्वामी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए देश को केवल उन्नत तकनीकों के बड़े बाजार तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इन तकनीकों को देश में विकसित करने, बनाने और निर्यात करने की क्षमता बढ़ानी होगी। वस्त्र क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों पर चर्चा के लिए कल नई दिल्ली में वस्त्र सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय महासचिव ओम प्रकाश गुप्ता ने आज संवाददाताओं को बताया कि सम्मेलन में देश भर के वस्त्र क्षेत्र से जुड़े करीब 400 सूक्ष्म और लघु उद्योग भाग लेंगे।

0: लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम लोकरंजनी सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को
1: नमस्कार।
0: नमस्कार। मैं हूं आपके साथ प्रीति कमल
1: और
0: और
1: मैं हूं लोकेन वर्मा।
0: जी तो लेकर कार्यक्रम हाजिर हैं हम और आज सुनवाने जा रहे हैं सबसे पहले हम सविता शर्मा को।
1: बिल्कुल, प्रीति बहन सविता शर्मा की आवाज में सुनवाते हैं ये प्यारा सा लोकगीत, तो आइए सुनते हैं।

0: प्रीति,
1: जी
0: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे सविता शर्मा की आवाज में ये प्यारा सा लोकगीत।
1: जी और अब हम सुनवाने वाले हैं कोमल चौधरी की आवाज में ये लोकगीत।

0: रीति अभी हमारे भाई बहन सुन रहे थे कोमल चौधरी की आवाज में ये लोकगीत।
1: और आइए अब आपको सुनवाते हैं करमपाल शर्मा और मंजू शर्मा की आवाज में ये अगला लोकगीत।

0: नीति,
1: जी
0: अभी हमारे भाई बहन सुन रहे थे ये लोकगीत, और कलाकार थे करमपाल शर्मा और मंजू शर्मा।
1: और आइए अब आपको अगला लोकगीत सुनवाते हैं रचना शर्मा की आवाज में।

0: प्रीति,
1: जी
0: अभी हमारे भाई बहन सुन रहे थे इस लोकगीत को, कलाकार थी रचना शर्मा। और इसी के साथ आज का हमारा लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम लोक रंजनी यही संपन्न होता है। सुनने वाले सभी भाई बहनों को नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है तुषार पाराशर और संयोजक शिवनंदन लाल।

0: अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम लोक रंजनी, आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 5:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेल खिलाड़ी।
1: खेलों का आईना।
2: नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में। मैं हूं अनु गुप्ता और मेरे साथ हैं
3: अभिनव कुमार झा। नमस्कार साथियों,
2: इस कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेल जगत से जुड़ी सभी खबरें, और आज जो खबरें हम आपके लिए लाए हैं, आइए जानें उनकी एक झलक। शुरुआत करेंगे महाद्वीप के सबसे बड़े खेल मंच से, जहां एशियन गेम्स 2026 में तीरंदाजी और निशानेबाजी में आए सोने के बाद हम जानेंगे कि क्या भारतीय दल पदक तालिका में अपनी अब तक की सर्वश्रेष्ठ स्थिति हासिल कर पाएगा या नहीं। उसके बाद बात करेंगे सरहद पार के उस मुकाबले की जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार है, जहां भारत बनाम श्रीलंका के बीच कल होने वाले इस महामुकाबले पर हम नजर डालेंगे। फिर हम रुक करेंगे मैदान पर चल रहे उस लाइव रोमांच का, जहां हर गेंद पर सांसें थमी हुई है, यानी भारत बनाम वेस्ट इंडीज के मुकाबले की। उसके बाद हम बात करेंगे सीनियर स्तर पर भविष्य की तैयारियों और लाल गेंद के उस कड़े इम्तिहान की, जहां इंडिया ए बनाम ऑस्ट्रेलिया ए की जंग चल रही है। उसके बाद हम नजर डालेंगे अपने देश के उस युवा पौध पर जो जूनियर स्तर पर लगातार तिरंगे का मान बढ़ा रही है, और अंत में बात करेंगे रफ्तार और सटीक टाइमिंग के उस इंडोर खेल की जिसके बड़े मंच पर भारतीय पेडलर्स उतरने वाले हैं। जी हाँ, यानी चाइना स्मैश में आगे कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। इन्हीं सब खबरों के को लेकर चलते हैं हम कार्यक्रम में आगे और जानते हैं खेल सफर की शुरुआत महाद्वीप के सबसे बड़े खेल मंच यानी एशियन गेम 2026 से।
3: जी बिल्कुल अनु, सुबह आज तड़के भारत ने महिलाओं की कंपाउंड टीम स्पर्धा में ज्योति सुरेख वेन्नम, चिकिता तनी पार्थी और पृथिका प्रदीप की तिकड़ी ने शानदार प्रदर्शन से स्वर्ण पदक जीता। फाइनल में भारत ने चीन को 234 के मुकाबले 238 अंकों से हराया, और भारतीय टीम का 238 का स्कोर विश्व रिकॉर्ड की बराबरी करने वाला रहा। ज्योति ने अपना चौथा एशियन गेम्स स्वर्ण जीता, जबकि चिकिता और पृथिका ने अपने पदार्पण में ही स्वर्ण पदक हासिल किया। सेमीफाइनल में भारत ने दक्षिण कोरिया को 233 के मुकाबले 234 से हराया था। इसके बाद कुशल दलाल और पृथिका प्रदीप की भारतीय मिश्रित टीम ने भी स्वर्ण पदक जीतकर भारत का दूसरा गोल्ड पक्का किया। श्रोताओं, भारत और दक्षिण कोरिया का मुकाबला 157 और 157 की बराबरी पर समाप्त हुआ, जिसके बाद शूट ऑफ में भारतीय जोड़ी ने 158 अंक अर्जित किए 157 के मुकाबले और जीत दर्ज की। इस जीत का विशेष महत्व इसलिए रहा क्योंकि इससे भारत ने 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक के मिश्रित कंपाउंड टीम इवेंट के लिए कोटा स्थान भी हासिल किया। भारत ने इसके बाद पुरुषों की कंपाउंड टीम स्पर्धा में भी स्वर्ण जीतकर तीरंदाजी में ऐतिहासिक 3 गोल्ड हैट्रिक पूरी की। कुशल दलाल, साहिल जाधव और गणेश मणि रत्नम थिरुमुरु की भारतीय टीम ने फाइनल में चीन की टीम को 237 पॉइंट के मुकाबले 238 से मात दी। इस तरह भारत ने महिलाओं, मिश्रित और पुरुषों तीनों कंपाउंड स्पर्धाओं में स्वर्ण जीतकर इतिहास रच दिया। तीरंदाजी के स्वर्णिम प्रदर्शन के बाद नीरू ढांडा और कैनान चेनाई ने मिश्रित ट्रैप टीम स्पर्धा में भारत को स्वर्ण दिलाया। भारतीय जोड़ी ने फाइनल में 34 अंक हासिल किए, जबकि कतर 32 अंक के साथ दूसरे और चीन 33 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। नीरू के लिए यह लगातार दूसरा स्वर्ण रहा। एक दिन पहले उन्होंने व्यक्तिगत टीम स्पर्धा में स्वर्ण भी जीता था और अब मिश्रित टीम के साथ भी शीर्ष स्थान हासिल किया है। वहीं एशियन गेम्स में जाने से पहले कैनान चेनाई ने आकाशवाणी से खास बातचीत में क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं।
4: तैयारी तो बहुत अच्छा था इस बार। पहले हमारा हाई परफॉर्मेंस कैंप था 10 दिन, कोचेस के साथ, फिजियोथेरेपिस्ट के साथ और न्यूट्रिशनिस्ट के साथ, तो हम थोड़ा प्रेपरेशन में और ध्यान दिए इस बार और थोड़ा सा और इम्पोर्टेंस दिए प्रेपरेशन में। इस बार हमारा कोच भी बहुत स्ट्रिक्ट है प्रेपरेशन में, तो हमारा स्पोर्ट्स साइंस टीम भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान दिए इस बार, क्योंकि जापान जा रहे हैं इस बार, चाइना नहीं जा रहे हैं, और कंडीशंस डिफरेंट रहेगा, वेदर डिफरेंट रहेगा, फूड डिफरेंट रहेगा,

0: अकोमोडेशन भी डिफरेंट रहेगा. ये मेरा तीसरा गेम्स है. वॉट आईव सीन एट लीस्ट इन द कैंप्स एंड इन द प्रेपरेशन टू द गेम्स दैट एवरीबडी इज पुटिंग द बेस्ट फुट फॉरवर्ड. बहुत ज़्यादा एफर्ट दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो कुछ तो पॉजिटिव आएगा.
1: और इसी पॉजिटिवनेस का हमें परिणाम मिला कि उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है. वहीं आगे बात करें तो महिलाओं के 60 किलोग्राम वर्ग में भारत की प्रिया घंगस ने कांस्य पदक हासिल किया. सेमीफाइनल में उनका सामना चीन की यांग चेंग यू से हुआ, जहां प्रिया को 1-4 के विभाजित निर्णय से हार मिली. इससे उनका स्वर्ण पदक का अभियान समाप्त हुआ, लेकिन सेमीफाइनल तक पहुंचने के कारण भारत के खाते में कांस्य पदक आया. प्रिया ने क्वार्टर फाइनल में ताजिकिस्तान की मिसगोना समादोवा को 5-0 से हराया था और उससे पहले दक्षिण कोरिया की 2 बार की विश्व पदक विजेता ओह ये ओनजी को भी हराया था. मुक्केबाजी की ही बात को आगे बढ़ाएं तो 75 किलोग्राम भार वर्ग में लोवलीना बोरगोहेन ने कजाकिस्तान की नतालिया बोगडानोवा को सेमीफाइनल में 3-2 से शिकस्त दी और फाइनल में जगह पक्की की, जहां अब उनका फाइनल मुकाबला 2 तारीख को चाइना की जी बाओ से होगा. लेकिन पुरुष 90 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल में कपिल पोखरिया को उज्बेकिस्तान के तुराबेक से 1-4 अंकों से हार झेलनी पड़ी, जिसका नतीजा ये निकला कि उन्होंने भी कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा. और अब हम सुन लेते हैं आज पूरे दिन में भारत ने ट्रैक साइकिलिंग में क्या कुछ किया, तो सुनते हैं ये रिपोर्ट. एशियन गेम्स में भारत की ट्रैक साइकिलिंग स्पर्धाओं के मुकाबलों में आज भारतीय साइकिलिस्ट डेविड बेकहम एलकाटो चोंगो और रोनाल्डो सिंह लेतोनजाम ने पुरुष स्प्रिंट के क्वालिफिकेशन में हिस्सा लिया, जबकि सरिता कुमारी और कीर्ति रंगास्वामी महिला क्रीम के पहले दौर में उतरी. सरिता अपनी हीट में 12.423 सेकंड के समय के साथ 5वें और कीर्ति 11.740 सेकंड के समय के साथ 4थे स्थान पर रहीं. दोनों इसके बाद रेपचेज में पहुंची, जहां कीर्ति ने 11.720 सेकंड के साथ 3रे और सरिता ने 11.978 सेकंड के साथ 4था स्थान हासिल किया. पुरुष स्प्रिंट में रोनाल्डो सिंह और डेविड बेकहम ने भी प्रतिस्पर्धा की. रोनाल्डो ने एलिमिनेशन राउंड में 10.620 सेकंड का समय दर्ज किया, जबकि डेविड बेकहम ने 10.992 सेकंड का समय बनाया. दोनों अपने अपने एलिमिनेशन राउंड से आगे नहीं बढ़ सके और रेपेचेज में भी जीत हासिल नहीं कर पाए. और अब श्रोताओं बात करते हैं कल शाम के हुए मुकाबलों की, तो उसमें भारत ने एशियन गेम्स में पहली बार आयोजित 4x100 मीटर रिले में कांस्य पदक जीता. भारतीय टीम ने 41.06 सेकंड का समय निकालकर 3रा स्थान हासिल किया. इस स्पर्धा में पुरुष और महिला धावकों ने मिलकर टीम बनाई थी और भारत ने सीजन बेस्ट प्रदर्शन करते हुए पोडियम हासिल किया था. इसके बाद भारतीय महिला 4x400 मीटर रिले टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया, जिसमें विद्या रामराज, किरण पहल, पुवमा मचेतिरा और प्राची की भारतीय चौकड़ी ने 3:29.69 सेकंड का समय दर्ज किया. भारत ने बहरीन को पीछे छोड़कर पहला स्थान हासिल किया, जबकि चीन ने कांस्य पदक जीता. ये एशियन गेम्स 2026 में एथलेटिक्स में भारत का पहला स्वर्ण पदक था. शाम के एथलेटिक्स सत्र का 3रा भारतीय पदक पुरुष 4x400 मीटर रिले में आया, जहां भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता. इससे पहले गुलवीर सिंह ने पुरुष 5000 मीटर दौड़ में 13:32.75 सेकंड के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया था और पूजा ने भी वुमेन्स हाई जंप में 1.84 मीटर की ऊंचाई के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता था. वहीं बात करें तो भारत ने 2026 एशियाई खेलों में एथलेटिक्स में अपने अभियान का अंत 24 पदक के साथ किया, जिसमें 1 स्वर्ण, 9 रजत और 14 कांस्य पदक शामिल थे. कल के एथलेटिक्स मुकाबलों के बाद भारत का एशियाई खेलों में एथलेटिक्स का गेम समाप्त हो गया, तो वहीं पे हांगझाओ में 2023 खेलों में भारत ने एथलेटिक्स में 6 स्वर्ण, 14 रजत और 9 कांस्य समेत 29 पदक जीते थे.
2: हाँ अभिनव, एशियन गेम्स में पदकों की बौछार तो जारी है, लेकिन कल क्रिकेट के मैदान पर एक बड़ा महामुकाबला होने वाला है, तो बात करते हैं भारत बनाम श्रीलंका सेमीफाइनल की. आइए सुनते हैं एक रिपोर्ट. आइए बात करते हैं एशियन गेम्स में क्रिकेट की, जहां कल यानी 1 अक्टूबर को भारत और श्रीलंका के बीच पुरुष क्रिकेट का दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा. मुकाबला जापान के निशन स्थित कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में होगा और भारतीय समय के अनुसार सुबह 10 बजे शुरू होगा. दांव पर है फाइनल का टिकट और एशियन गेम्स में भारत के लिए एक और पदक पक्का करने का मौका. दिलचस्प बात यह है कि भारत और श्रीलंका दोनों ही टीमें क्वार्टर फाइनल में बिना एक भी गेंद खेले अंतिम 4 में पहुंची हैं. लगातार बारिश के कारण भारत और अफगानिस्तान का क्वार्टर फाइनल रद्द हो गया था. भारत को ऊंची वरीयता के आधार पर सेमीफाइनल में जगह मिली. इसके बाद श्रीलंका और नेपाल का क्वार्टर फाइनल भी बारिश की भेंट चढ़ गया और श्रीलंका ने भी ऊंची वरीयता के आधार पर अंतिम 4 में प्रवेश किया. यानी दोनों टीमों के लिए ये इस प्रतियोगिता

0: गिदा के नॉकआउट चरण में मैदान पर अपनी ताकत दिखाने का पहला मौका होगा। भारत इस मुकाबले में डिफेंडिंग चैंपियन के रूप में उतरेगा। हांगझाउ 2023 में खेले गए पिछले एशियन गेम्स में भारतीय पुरुष टीम ने स्वर्ण पदक जीता था और इस बार श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम अपने खिताब का बचाव करना चाहेगी। भारतीय टीम के बल्लेबाजी में कप्तान श्रेयस अय्यर के साथ अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, तिलक वर्मा, शिवम दुबे और युवा वैभव सूर्यवंशी जैसे विकल्प मौजूद हैं। अभिषेक शर्मा पावर प्ले में तेजी से रन बनाने की क्षमता रखते हैं, जबकि संजू सैमसन और ईशान किशन विकेट कीपिंग के साथ बल्लेबाजी में भी मैच का रुख बदल सकते हैं। मध्यम क्रम की बात की जाए तो कप्तान श्रेयस अय्यर और उप कप्तान तिलक वर्मा की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। वहीं शिवम दुबे अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के साथ गेंदबाजी का विकल्प भी उपलब्ध कराते हैं। युवा वैभव सूर्यवंशी को मौका मिलता है तो उनके लिए एशियन गेम्स के नॉकआउट मुकाबले में अपनी प्रतिभा दिखाने का ये बड़ा मंच रहेगा। ऑलराउंड विभाग में अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर भारत को संतुलन देते हैं। दोनों बल्लेबाजी में उपयोगी योगदान देने के साथ स्पिन गेंदबाजी से मध्य ओवरों में श्रीलंका पर दबाव बना सकते हैं। स्पिन विभाग में लेग स्पिनर रवि बिश्नोई के साथ विप्रज निगम भी भारतीय टीम का हिस्सा है। तेज गेंदबाजी भारत की बड़ी ताकत नजर आती है। टीम के पास जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और यश ठाकुर मौजूद हैं। बुमराह का अनुभव नई गेंद और डेथ ओवर्स दोनों में भारत के लिए बेहद अहम हो सकता है, जबकि बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह शुरुआती विकेट निकालने के साथ अंतिम ओवरों में भी प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं। श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले में पावर प्ले बेहद अहम रहने वाला है। अगर अभिषेक शर्मा और भारतीय शीर्ष क्रम शुरुआती 6 ओवरों में तेजी से रन जुटाते हैं तो श्रीलंकाई गेंदबाजों पर शुरुआत से दबाव बनाया जा सकता है। गेंदबाजी में भारत चाहेगा कि बुमराह और अर्शदीप नई गेंद से शुरुआती विकेट निकालें और इसके बाद अक्षर, सुंदर और बिश्नोई मध्य ओवरों में रन गति पर अंकुश लगाएं। हालांकि इस मुकाबले में एक बार फिर मौसम पर भी नजर रहेगी। बारिश ने क्वार्टर फाइनल चरण को बुरी तरह प्रभावित किया और चारों मुकाबले बिना परिणाम के समाप्त हुए, इसलिए भारत और श्रीलंका दोनों चाहेंगे कि सेमीफाइनल में मौसम साथ दे और फाइनल का फैसला मैदान पर हो। भारत के सामने लक्ष्य साफ है, श्रीलंका को हराकर फाइनल में प्रवेश करना और लगातार दूसरी बार एशियन गेम्स क्रिकेट का स्वर्ण पदक जीतने की अपनी उम्मीदों को बरकरार रखना। भारतीय टीम के महत्वपूर्ण नॉकआउट मुकाबले से पहले विकेट कीपर संजू सैमसन ने खराब मौसम की चुनौतियों से निपटने, नई परिस्थितियों में ढलने और टीम की तैयारियों पर की खास बातचीत। आइए सुनते हैं संजू सैमसन को।
1: अच्छा बारिश हो रहा था, आई थिंक इट वाज रियली गुड टू विटनेस सम गुड रेन हियर इन नगोया। सो वी हैड सम गुड टाइम, वी हैव बीन डूइंग सम टीम एक्टिविटीज। टीम का हर रोज कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करने का ट्राई कर रहे थे, मगर हम जिम में ट्रेनिंग कर रहे थे, कंडीशनिंग कर रहे थे। सो वी वेर स्पेंडिंग टाइम टुगेदर एंड वी आर टॉकिंग क्रिकेट एंड वी आर टॉकिंग कॉम्बिनेशंस एंड वी आर हैविंग कॉन्स्टेंट मीटिंग्स टू स्विच ऑन द प्लेयर्स व्हेन इज रिक्वायर्ड। सो दीज आर द टाइम्स वेयर वी नीड टू बी अ बिट मोर अवेयर कि वी नीड टू स्विच ऑन एंड सडनली प्ले अ बिग सेमी फाइनल। सो वी ऑल आर अवेयर ऑफ दैट एंड लकीली वी हैव गॉट अ गुड सनी डे टुडे टू प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस वॉट एवर वी हैव टू डू टुमारो। हाँ जी, हम क्रिकेट में भी मैक्सिमम ट्राई करेंगे, जितना हमसे होगा उतना मैक्सिमम ट्राई करेंगे इंडिया के लिए। पिच आज देखेंगे, जैसे आपने बोला आज सनी डे है, आज थोड़ा कवर हटाया होगा ग्राउंड में तो विकेट आज देखने का मौका मिलेगा और वील डिसाइड। बहुत खुशी की बात है कि हमने बहुत अच्छा किया कल एथलेटिक्स में, कल बहुत अच्छी दिन था इंडिया के लिए एंड वेरी हैप्पी एंड आई एम श्योर दैट वील कंटिन्यू द गुड फॉर्म।
0: कल के मैच का इंतजार तो पूरे देश को है अभिनव, लेकिन इस वक्त मैदान पर जो लाइव एक्शन चल रहा है, आइए सीधे रुख करते हैं भारत बनाम वेस्टइंडीज दूसरे वनडे की तरफ।
2: बिल्कुल सही कहा अनु, भारत बनाम वेस्टइंडीज का दूसरा ओडीआई गुवाहाटी में खेला जा रहा है, जहां भारत ने टॉस जीतकर वेस्टइंडीज को आमंत्रित किया कि आप बल्लेबाजी करें, और ऐसा लग रहा है अनु वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी देखकर कि शायद वो ये साबित करने पर उतर गए हैं कि भारत का निर्णय गलत था, क्योंकि वेस्टइंडीज की तरफ से 3 शतक लगाए जा चुके हैं। पहला शतक जॉन कैम्पबेल ने लगाया, 101 रन की पारी खेली उन्होंने मात्र 68 गेंदों में। दूसरा शतक शाई होप के बल्ले से आया, जो कैप्टन और विकेट कीपर हैं, उन्होंने 94 गेंद में 104 रन की पारी खेली। और तीसरा शतक अमीर जंगू ने लगाया, जिन्होंने 77 बॉल में 114 रन की पारी खेली। अभी मात्र श्रोताओं 46 ओवर का खेल हुआ है, जिसमें वेस्टइंडीज 6 विकेट के नुकसान पर 371 रन पर बना हुआ है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 46 ओवर में अगर 371 रन बने हैं तो भारतीय कोई भी गेंदबाज ऐसा हो ही नहीं सकता जिसने रन ना दिए हों, किंतु इसमें भी सबसे किफ़ायती गेंदबाज हम देखें तो रमन धीर रहे हैं, जिन्होंने 6 ओवर में मात्र 38 रन दिए हैं। विकेट हालांकि उनको सफलता हाथ नहीं लगी है, किंतु रविंद्र जडेजा को एक सफलता हाथ लगी है, 9 ओवर में 63 रन दिए हैं उन्होंने अभी तक। नूर बरार ने 9 ओवर में 89 रन दिए हैं और दो विकेट अपने नाम किया, वहीं कुलदीप यादव ने भी।

0: जा रहे दूसरे अनौपचारिक टेस्ट मैच की। पहला मुकाबला 162 रन से जीतकर भारत ए दो मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे है। आज दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ए ने 7 विकेट पर 282 रन से अपनी पारी आगे बढ़ाई। सैम हार्पर ने शानदार 128 रन बनाए जबकि जॉय रिचर्डसन ने 31 रन का योगदान दिया। ऑस्ट्रेलिया ए की पहली पारी 358 रन पर समाप्त हुई। भारत ए की ओर से अंशुल कम्बोज, नचिकेत भूटे और शम्स मुलानी ने 3-3 विकेट लिए जबकि तनुष कोटिया को 1 विकेट मिला। जवाब में भारत ए की शुरुआत अच्छी नहीं रही। आयुष पांडे 4, साई सुदर्शन 8 और कप्तान देवदत्त पडिक्कल 31 रन बनाकर आउट हुए। यश राठौर ने 15 रन बनाए। दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ए ने 5 विकेट पर 118 रन बना लिए थे। शेख रशीद 35 और कुमार कुशाग्र 9 रन बनाकर नाबाद रहे। भारत ए अभी ऑस्ट्रेलिया ए से 240 रन पीछे है। अब तीसरे दिन भारत ए की कोशिश रहेगी इस अंतर को कम से कम कर मुकाबले में वापसी करने की। और अब बात करते हैं महिला क्रिकेट की। भारत ए महिला और ऑस्ट्रेलिया ए महिला के बीच एकमात्र 4 दिवसीय अनौपचारिक टेस्ट मोहाली के आईएस बिंद्रा स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारत ए ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। आज दूसरे दिन भारत ए ने 9 विकेट पर 351 रन से अपनी पारी आगे बढ़ाई। पहले दिन 78 रन पर नाबाद रही निकी प्रसाद ने 91 रन की शानदार पारी खेली और भारत ए की पहली पारी 364 रन पर समाप्त हुई। इससे पहले तनिषा सिंह ने 92 और शुभा सतीश ने 59 रन बनाए थे। जवाब में भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया ए की पहली पारी को 176 रन पर समेट दिया। इस तरह भारत ए को पहली पारी के आधार पर 188 रन की बढ़त मिली। इसके बाद दूसरी पारी में भी भारत ए ने अपनी स्थिति मजबूत रखी। दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ए ने 2 विकेट पर 134 रन बना लिए और उनकी कुल बढ़त 322 रन हो गई है। इस तरह दूसरे दिन भारत ए महिला ने गेंद और बल्ले दोनों से शानदार प्रदर्शन करते हुए मुकाबले पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है।
1: और अब बात करते हैं श्रोताओं डब्ल्यूबीटी चैनल स्मैश की, जो इस साल 1 से 11 अक्टूबर तक बीजिंग के शोमान पार्क में खेला जाएगा। एडब्ल्यूटीटी के सबसे बड़े ग्रैंड स्मैश टूर्नामेंटों में से एक है और इसमें पुरुष और महिला एकल के अलावा पुरुष युगल, महिला युगल और मिश्रित युगल स्पर्धाएं होंगी। टूर्नामेंट में कल 2000 डब्ल्यूटीटी रैंकिंग अंक दांव पर होंगे। 1 से 3 अक्टूबर तक एकल के क्वालिफिकेशंस मुकाबले होंगे जबकि मुख्य ड्रॉ की शुरुआत 4 अक्टूबर से होगी। भारतीय खिलाड़ियों की बात करें तो चीन स्मैश में भारत की निगाहें खासतौर पर मानव ठक्कर, मानुष शाह, यशस्विनी घोरपड़े और दिया चिताले जैसी खिलाड़ियों पर रहेंगी जो पुरुष डबल्स, महिला डबल्स और मिक्स डबल्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। श्रोताओं आपको बताते चलें कि मेन सिंगल्स और वुमेन सिंगल्स में भारत का एक भी खिलाड़ी नहीं है जो डब्ल्यूटीटी चाइना स्मैश में प्रतिस्पर्धा कर रहा है, तो पूरी नजरें डबल्स के मुकाबले पर होंगी।

0: सीनियर स्तर के इस रोमांच के बाद अब वक्त है जूनियर स्तर पर हमारी युवा पौध ने जो कमाल कर दिखाया उसकी बात करने का। बात करते हैं इंडिया अंडर 19 और ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 मुकाबले की। आइए सुनते हैं एक रिपोर्ट। अब बात युवा क्रिकेट की। भारत अंडर 19 ने ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 को पहले यूथ टेस्ट में महज 3 दिन में पारी और 48 रन से हराकर 2 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। राजकोट में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की और उसकी पहली पारी 217 रन पर सिमट गई। ब्लैक केटल ने 102, जेड हॉलिक ने 59 रन बनाए। भारत की ओर से ईशान ओम ने 5, मोहित उलवा ने 3 और कप्तान यशवर्धन चौहान ने 2 विकेट लिए। जवाब में भारत ने 494 रन का विशाल स्कोर बनाया। सलामी बल्लेबाज लक्ष्य रायचंदानी ने 281 गेंदों पर शानदार 240 रन बनाए, जिसमें 24 चौके और 4 छक्के शामिल रहे। कप्तान यशवर्धन ने 54 और मोहित उलवा ने 92 रन बनाए। लक्ष्य और मोहित ने 9वें विकेट के लिए 180 रन की साझेदारी की और भारत को पहली पारी में 277 रन की बढ़त दिलाई। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी 229 रन पर सिमट गई। ब्लैक केटल ने एक बार फिर शानदार बल्लेबाजी करते हुए 123 रन बनाए, लेकिन कप्तान यशवर्धन चौहान ने 6 और ईशान ओम ने 4 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया की पारी समेट दी। इस तरह भारत ने मुकाबला पारी और 48 रन से जीत लिया। इससे पहले भारतीय टीम 3 मैचों की यूथ वनडे सीरीज भी 3-0 से अपने नाम कर चुकी है। अब दूसरा और अंतिम यूथ टेस्ट 5 अक्टूबर से खेला जाएगा।
1: और श्रोताओं, एक बहुत ही खुशखबरी वाली न्यूज़, एशियन गेम्स

0: आ रही है हमारे पास कि भारतीय महिला हॉकी टीम ने कोरियन रिपब्लिक ऑफ कोरिया को सेमीफाइनल में हरा के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। तो भारतीय महिला टीम हॉकी के फाइनल्स में पहुंच चुकी है। वहां पे भारत ने 2-0 से जीत हासिल की, जिसमें इशिका ने 44 मिनट में पेनल्टी कॉर्नर के द्वारा एक गोल किया। वहीं सलीमा टेटे ने, जो भारतीय कप्तान हैं, उन्होंने 48वें मिनट में दूसरा गोल दागा। तो 2-0 से भारत ने ये जीत हासिल की है और अब फाइनल मुकाबला 2 अक्टूबर को चाइना से होगा, क्योंकि इससे पहले चाइना भी जापान को हरा कर फाइनल में प्रवेश कर चुकी है और वो मुकाबला काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग गया था नू, क्योंकि चाइना और जापान दोनों 0-0 के स्कोर पे थे जब तक मैच का टाइम खत्म हुआ, और उसके बाद शूट आउट हुआ और शूट आउट में चाइना ने जापान को हरा दिया और फाइनल में पहुंच गई।
1: जी हाँ अभिनव, आपने सही कहा कि बहुत ही रोमांचक खेल देखने को मिल रहा है हॉकी के मैदान में भी। और आइए अब आपको लेकर चलते हैं एक और ओलंपियन के पास, यानी नीरज चोपड़ा की एक खबर के साथ आपके साथ जुड़ते हैं। भारतीय तीरंदाज धीरज बॉम्बिदेवरा, नीरज चौहान और कुमकुम मोहद अनिल ने एशियाई खेलों में पुरुषों की रिकर्व स्पर्धा के व्यक्तिगत क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। मंगलवार को प्री क्वार्टर में नीरज ने उलटफेर कर 3 बार के ओलंपिक स्वर्ण विजेता दक्षिण कोरिया के किम जे डियोक को 6-4 से हरा दिया। धीरज उज्बेकिस्तान के आमिर खोन सादिकोव से, जबकि नीरज चौहान अब भूटान के लाल दोरजी से भिड़ेंगे। महिला रिकर्व प्री क्वार्टर में कुमकुम ने बांग्लादेश की साइमा को हराया।
0: बिल्कुल, और अब आपको लिए चलते हैं श्रोताओं एशियन गेम्स के ही टेनिस के मुकाबलों में, जहां मिक्स डबल्स का सेकेंड राउंड का मुकाबला अभी चल रहा है, जिसमें भारत की तरफ से ऋतुजा भोसले और यूकी भामरी प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और सामने है चाइनीज ताइपे की टीम, जहां पे चाइनीज ताइपे 1-0 से अभी आगे चल रही है। वहीं इससे पहले मुकाबला हुआ था मेंस डबल्स के क्वार्टर फाइनल्स का, जिसमें यूकी भामरी और धनकेश्वर सुरेश ने अपनी प्रतिस्पर्धा रखी थी, जिनके सामने भी चाइनीज ताइपे की टीम ही थी और उनको 7-6, 6-3 से हार का सामना करना पड़ा। वहीं सुरेश धनकेश्वर ने मेन सिंगल्स थर्ड राउंड में भी अपनी दावेदारी पेश की, जहां उन्हें चाइनीज ताइपे के द्वारा 3-6, 4-6 से हार का सामना करना पड़ा। वहीं सुमित नागल ने भी मेन सिंगल्स के तीसरे राउंड में अपनी दावेदारी पेश की, जहां से हमें एक खुशखबरी मिल रही है कि वो 6-3, 6-2 से उज्बेकिस्तान के सर्गी फोमिन को हराकर अगले राउंड में पहुंचे हैं। अब बात करें मेंस डबल्स के क्वार्टर फाइनल मुकाबले की, तो वहां पे भी एक बहुत ही टक्कर के मुकाबले में बालाजी और अनिरुद्ध चंद्रशेखर की जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा चाइना की जोड़ी से, जहां 7-6, 6-7 और 8-10 के अंकों से चाइना ने जीत हासिल की। और अब बात करते हैं वापस से वेस्ट इंडीज और भारत की, तो यहां पे 47.4 ओवर का मैच हो चुका है, जहां वेस्ट इंडीज 393 रन पर पहुंच चुकी है 7 विकेट के नुकसान पर। तो ऐसा लग रहा है अनु की 2 ओवर शेष हैं और 393 पे वेस्ट इंडीज पहुंच चुकी है, तो 400 का आंकड़ा तो क्रॉस होगा ही और भारतीय टीम को आज बहुत विशाल लक्ष्य का सामना करना पड़ेगा।
1: जी हाँ अभिनव, ऐसा लगता है कि भारतीय श्रोताओं और दर्शकों को कुछ बहुत ही मजेदार और रोमांचक क्रिकेट देखने को मिलेगा। और फिर मैं आपको लेकर चलना चाहूंगी एक बार फिर से एशियन गेम्स की तरफ और एक ऐसी खास बेटी से मिलवाना चाहूंगी, नीरू से, जिनकी कहानी सुनकर हमारे सभी श्रोताओं के मन में जोश भर जाएगा। आइए जानते हैं उनकी कहानी, जो 10 दिन पहले तक अस्पताल में थी। और 26 वर्षीय नायब सूबेदार नीरू डांडा 10 दिन पहले बहुत बीमार पड़ गई थी, तेज फ्लू और H1N1 की आशंका के चलते उन्हें भोपाल के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, पर वो पूरे प्रशिक्षण शिविर से बाहर रही और लगातार 5 दिनों तक उन्होंने अन्न का एक भी दाना नहीं खाया। बिना कितनी ही ये परेशान कर देने वाली बात है कि एक खिलाड़ी जो एक गेम के लिए ताउम्र कोशिश करता है और आखिरी मौके पर जब वो बीमार हो जाता है तो ये कितनी डीमोटिवेटिंग बात हो जाती है। लेकिन नीरू ने फिर भी हार नहीं मानी। आइए जानते हैं कि क्या रहा आगे। उन्होंने हार नहीं मानी और महिला व्यक्तिगत शॉटगन स्पर्धा में सोना जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज भी बनकर दिखाया। जीत के बाद नीरू ने कहा, मनशेर सर ने मुझसे बस इतना कहा था कि जो हो चुका है उसे भूल जाओ और निशाने पर ध्यान लगाओ। जी हाँ, किसी भी स्पोर्ट में, किसी भी खेल में आपके कोच की

अहम भूमिका रहती है। ये कोच जो हैं वो मेकर और ब्रेकर का भी काम कर सकते हैं आपके कॉन्फिडेंस के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है खिलाड़ी के साथ साथ कोच को भी उतना ही हमें मोटिवेशन देना चाहिए, कंट्रीब्यूशन देना चाहिए, क्योंकि बिना कोच के मोटिवेशन के खिलाड़ी फिनिश लाइन तक पहुंच तो पाता है, लेकिन क्या वो जीत पाता है कि नहीं, वो हम नहीं बता पाते। नीरू के पिता किसान हैं और माँ गृहिणी हैं। 2018 तक नीरू को निशानेबाजी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। कहानी में मोड़ तब आया जब उनके रिश्ते के भाई लक्ष्य शोराण ने 2018 जकार्ता एशियाई खेलों में रजत पदक जीता। उस पदक ने नीरू के भीतर नया सपना बो दिया। नीरू ने कहा, उससे पहले मुझे निशानेबाजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और इस बात से मुझे ऐसा लगता है बिना कि किसी भी चीज को सीखने के लिए कभी कोई उम्र देर नहीं होती। जब आपके मन में जज्बा जाग जाए, जब आप कुछ नया करने का सोच लें और मन में एक ठान लें कि हाँ मुझे कुछ नया करना है, तो डर के आगे जीत है, हम सभी कहते हैं। तो यही नीरू ने भी कर कर दिखाया। नीरू ने कहा कि उससे पहले उन्हें निशानेबाजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। भाई लक्ष्य की जीत से वो इतनी प्रेरित हुई कि उन्होंने भी निशानेबाजी को ही चुना। 2019 में जब नीरू भोपाल पहुंची तो उनके पास निशानेबाजी का महज 6 महीने का अनुभव था। अभ्यास के लिए बंदूक नहीं थी तो लक्ष्य के पिता से उधार लेकर बंदूक थामी। जी हाँ, हमारी नेशनल गोल्ड मेडल विनर ने उधार की बंदूक से अपनी प्रैक्टिस शुरू की। भोपाल के एक तालाब के किनारे टिन के डिब्बे को रखकर नीरू ने खुद ही प्रयास किए और अपनी गलतियों से निशाना साधना सीखा। इस शुरुआती दौर में लक्ष्य के माता पिता उन्हें मध्य प्रदेश राज्य निशानेबाजी अकादमी ले गए। यहीं से नीरू के जीवन को नया मोड़ मिला। यहां उन्हें अभ्यास के लिए बंदूक और कारतूस मुफ्त में मिलते थे। नीरू ने हाल ही में इटली के लोनातो में ओलंपिक पदक विजेता व विश्व चैंपियन की मौजूदगी वाली प्रतियोगिता में ट्रैप में विश्व कप का स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनने का गौरव हासिल किया। तो श्रोताओं, ये कहानी थी नीरू की, जिन पर हमें नाज है, पूरे देश को नाज है, हमारे देश की बेटी हैं, जिन्होंने किसी भी परेशानी को आड़े नहीं आने दिया और देश के लिए वो स्वर्ण पदक लेकर आई।

0: और अब श्रोताओं, घड़ी की सुई हमें इजाजत नहीं दे रही है और खेल खबरों पे बात करने का, लेकिन जाते जाते हम आपको वापस से लाइव अपडेट देते जाते हैं कि वेस्ट इंडीज 396 पे पहुंच गई है और 396 तक के स्कोर पर पहुंचने में सबसे बड़ा हाथ अनु अगर देखा जाए तो एक्स्ट्राज का भी है, जहां भारत ने 23 रन एक्स्ट्राज में दिए हैं जिसमें 20 वाइड शामिल हैं। तो भारत को अगर आगे स्कोर कंट्रोल करना होगा तो एक्स्ट्राज को रोकने की कोशिश करनी पड़ेगी।
1: जी हाँ अभिनव, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और अब हम प्रोग्राम के अंत में आ गए हैं, तो मैं अपने श्रोताओं को एक समरी बताना चाहूंगी अपने आज के पूरे कार्यक्रम की। आज हमने खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में शुरुआती हिस्से में जो सुना उसकी समीक्षा कर लेते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत हुई अभिनव झा ने जो रेडियो शो में बताया कि खेल जगत की सबसे बड़ी खबरें एशियन गेम्स के बारे में। उसके बाद हमने जाना कि गुवाहाटी में चल रहे भारत बनाम वेस्ट इंडीज यानी दूसरे वनडे की लाइव अपडेट के बारे में, जो अभी भी चल रहा है, जिसके बारे में लगातार अभिनव हमें अपडेट दे रहे हैं, और आगामी चर्चाएं भी की जिसमें हम आगे आने वाले जो मैचेस हैं, जैसे कि कल होने वाला इंडिया बनाम श्रीलंका और इंडिया ए और वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ए, महिला और पुरुष दोनों ही वर्ग के जो मैचेस चल रहे हैं उसके बारे में हमने जाना, और इंडिया अंडर 19 के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैचों की स्थिति के बारे में भी जाना। साथ ही हमने बात की चाइना स्मैश टेबल टेनिस के प्रीव्यू के बारे में और अन्य खेल समाचारों के बारे में। और हाँ, मैं कैसे भूल सकती हूँ हमारी देश की बेटी नीरू की बहुत ही प्रोत्साहन से भरी कहानी के बारे में।
0: जी बिल्कुल, और घड़ी की सुई अब हमें इजाजत नहीं दे रही है, और मैं बार बार क्रिकेट पे इसलिए आ रहा हूँ अनु कि इतना इंटरेस्टिंग मैच चल रहा है जहाँ वेस्ट इंडीज 399 पे पहुंच गई है और आखिरी ओवर है। तो आज भारतीय क्रिकेट प्रेमी बिल्कुल दिलो जान के साथ और मन बांध कर टीवी के सामने बैठे होंगे कि उनको वापस से विराट कोहली और रोहित शर्मा की पारी का इंतजार होगा। और अब घड़ी की सुई और इजाजत नहीं दे रही है, तो मुझे अभिनव कुमार झा को और मेरे सहयोगी
1: अनु गुप्ता को
0: प्रोड्यूसर शहनवाज खान के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।
2: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने आज विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि निर्णय किसानों की उपज का लाभदायक मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
1: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए MSP तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही MSP में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सेफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है MSP।
0: कुसुम के लिए सबसे अधिक 675 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। सरसों और खसखस का मूल्य 413 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। श्री वैष्णव ने बताया कि मसूर के लिए 390 रुपए, जौ के लिए 136 रुपए, चने के लिए 83 रुपए और गेहूं में 25 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने दिल्ली पुलिस के 1,789 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित लागत वाली अत्याधुनिक यातायात प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन को भी स्वीकृति दी। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने PM धारा योजना को भी मंजूरी दी। इससे अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली मजबूत होगी और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में 135 गीगावाट तक नवीकरणीय ऊर्जा का पारेषण संभव हो सकेगा। भारत और कतर ने द्विपक्षीय निवेश संधि तथा मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता प्रक्रिया में तेजी लाने पर विचार विमर्श किया है। दोनों देशों ने भारत में 10 अरब डॉलर का निवेश करने और भारत में कतर निवेश प्राधिकरण का कार्यालय स्थापित करने को लेकर हुई प्रगति की समीक्षा की। गृह मंत्रालय ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के बडगाम में सुरक्षा बलों ने लश्कर ए तैयबा के कमांडर मूसा उर्फ आसिफ फौजी को मार गिराया है। ये कार्रवाई आतंकी नेटवर्क के लिए बहुत बड़ा झटका है। मंत्रालय ने कहा कि मूसा के मारे जाने के साथ ही 2022 से जम्मू कश्मीर में सक्रिय लश्कर ए तैयबा के सभी 4 कमांडरों को मार गिराया जा चुका है। आतंकी समूह के अन्य 3 सदस्यों जुनैद भट्ट को 2024 में, सुलेमान को 2025 में और यासिर को इस साल सितंबर में सुरक्षा बलों ने अलग अलग मुठभेड़ों में मार गिराया था। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि गुजरात आतंकरोधी दस्ते, भारतीय तटरक्षक बल और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के संयुक्त अभियान में एक ईरानी नौका से 5 पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। अभियान के दौरान भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में मौजूद नौका से 526 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किए गए। श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पंजाब को वर्ष 2029 के अंत तक नशा मुक्त बनाने का अभियान चलाया जाएगा। जालंधर में नशा मुक्त पंजाब रैली में श्री शाह ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा पंजाब को नशा मुक्त बनाने के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। श्री शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और पूर्वोत्तर में उग्रवाद की समस्या से निपटने के बाद अब पंजाब को नशा मुक्त बनाने पर ध्यान दिया जाएगा। भारी उद्योग मंत्री HD कुमार स्वामी ने आज नई दिल्ली में भारी उद्योग मंत्रालय के इंडस्ट्री एक्सेलरेटर प्रोजेक्ट की प्रभाव रिपोर्ट जारी की। श्री कुमार स्वामी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए देश को केवल उन्नत तकनीकों के बड़े बाजार तक सीमित नहीं रहना है, बल्कि इन तकनीकों को देश में विकसित करने और निर्यात करने की क्षमता बढ़ानी होगी। वस्त्र क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों पर चर्चा के लिए कल नई दिल्ली में वस्त्र सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय महासचिव ओम प्रकाश गुप्ता ने आज बताया कि सम्मेलन में देश भर के वस्त्र क्षेत्र से जुड़े करीब 400 सूक्ष्म और लघु उद्योग भाग लेंगे। गुवाहाटी में दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 406 रन का लक्ष्य दिया है। वेस्टइंडीज के कप्तान साई होप ने 104 रन बनाए, वहीं कुलदीप यादव ने 2 विकेट लिए। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज तीरंदाजी में 3 और निशानेबाजी में 1 स्वर्ण सहित कुल 4 स्वर्ण पदक जीते। तीरंदाजी में पुरुष कंपाउंड टीम ने चीन को, मिक्स टीम कंपाउंड ने कोरिया को और महिला कंपाउंड टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। भारत पदक तालिका में 10 स्वर्ण, 21 रजत और 29 कांस्य सहित कुल 60 पदक के साथ 8वें स्थान पर है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: हिंदी वार्ता कार्यक्रम के इस अंक में आपका स्वागत है। आज का विषय है तिरंगा, राष्ट्रीय चेतना और एकता का प्रतीक। वार्ताकार हैं श्री जी एन भट्ट, वरिष्ठ मीडियाकर्मी।
1: आज 22 जुलाई राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा केवल 3 रंगों का कपड़ा नहीं, बल्कि भारत की अस्मिता, स्वतंत्रता, त्याग, बलिदान, लोकतांत्रिक मूल्यों और राष्ट्रीय एकता का सजीव प्रतीक है। जब तिरंगा आकाश में लहराता है तो करोड़ों भारतीयों का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है। यह हमें हमारे गौरवशाली इतिहास, स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और राष्ट्र निर्माण के संकल्प की याद दिलाता है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज अपने वर्तमान स्वरूप में 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। इसके मूल स्वरूप का निर्माण महान स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया ने किया था। 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ, तब पहली बार यही तिरंगा स्वतंत्र भारत की पहचान बनकर लहराया। तब से आज तक यह देश की संप्रभुता, स्वतंत्रता और लोकतंत्र का सर्वोच्च प्रतीक है। तिरंगे में 3 समान आकार की क्षैतिज पट्टियां हैं। सबसे ऊपर केसरिया रंग है, बीच में सफेद रंग और सबसे नीचे हरा रंग है। मध्य की सफेद पट्टी में गहरे नीले रंग की 24 तीलियों वाला अशोक चक्र अंकित है। इन चारों तत्वों का सम्मिश्रण अपना विशिष्ट संदेश और महत्व देता है। केसरिया रंग त्याग, साहस, पराक्रम और निस्वार्थ सेवा का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है। देश के सैनिक, स्वतंत्रता सेनानी और अनेक महान व्यक्तित्व इसी भावना से प्रेरित होकर राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करते रहे। सफेद रंग सत्य, शांति, ईमानदारी और पारदर्शिता का प्रतीक है। यह हमें जीवन में सत्य के मार्ग पर चलने, सभी धर्मों और समुदायों के प्रति सम्मान रखने तथा समाज में सद्भाव बनाए रखने की प्रेरणा देता है। हरा रंग समृद्धि, विकास, कृषि, प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और हरित रंग हमें प्रकृति के संरक्षण तथा सतत विकास का संदेश देता है। तिरंगे के मध्य स्थित अशोक चक्र सम्राट अशोक के सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ के धर्म चक्र से लिया गया है। इसकी 24 तीलियां जीवन में निरंतर गतिशील रहने, कर्तव्य पालन, न्याय, नैतिकता और प्रगति का संदेश देती हैं। यह बताता है कि जीवन और राष्ट्र दोनों तभी आगे बढ़ते हैं जब उनमें निरंतर गति बनी रहती है। ठहराव विकास का शत्रु है, जबकि कर्म ही सफलता का मार्ग है। तिरंगा भारत की अनेकता में एकता की भावना का सबसे बड़ा प्रतीक है। भारत में अनेक भाषाएं, धर्म, संस्कृतियां और परंपराएं हैं, लेकिन तिरंगा इन सभी को एक सूत्र में बांधता है। जब राष्ट्रीय पर्वों पर या किसी अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में तिरंगा लहराता है, तब सभी भारतीय अपने मतभेद भुलाकर केवल भारतीय होने का गर्व अनुभव करते हैं। स्वतंत्रता संग्राम में तिरंगा प्रेरणा और संघर्ष का प्रतीक था। अनेक क्रांतिकारियों ने इसे हाथों में लेकर अंग्रेजी शासन का विरोध किया। असंख्य वीरों ने तिरंगे की शान के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। इसी कारण तिरंगा हमारे लिए केवल एक ध्वज नहीं है, बल्कि उन अमर बलिदानों की स्मृति भी है जिनकी बदौलत हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। आज भी जब सीमा पर कोई सैनिक शहीद होता है, तो उसका पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटा हुआ घर पहुंचता है। यह दृश्य पूरे राष्ट्र को भावुक कर देता है और हमें याद दिलाता है कि हमारी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सैनिक दिन रात अपने प्राणों की बाजी लगाते हैं। तिरंगा उनके सर्वोच्च सम्मान का प्रतीक है। राष्ट्रीय ध्वज केवल युद्ध या राष्ट्रीय पर्वों तक सीमित नहीं है। खेल, शिक्षा, संस्कृति, अंतरिक्ष, विज्ञान जैसे क्षेत्रों में जब भारत नई उपलब्धियां हासिल करता है, तब भी तिरंगा विश्व मंच पर हमारी सफलता का प्रतीक बनकर लहराता है। चाहे अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भारतीय खिलाड़ी स्वर्ण पदक जीतें या भारतीय वैज्ञानिक अंतरिक्ष में नई उपलब्धियां प्राप्त करें, हर सफलता के साथ तिरंगा पूरी दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। हाल के वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने राष्ट्रीय ध्वज के प्रति लोगों के सम्मान और जुड़ाव को और अधिक मजबूत किया है। इस अभियान ने प्रत्येक नागरिक को यह अनुभव कराया है कि तिरंगा केवल सरकारी भवनों का नहीं, बल्कि हर भारतीय के घर और हृदय का गौरव है। इससे राष्ट्रभक्ति, जनभागीदारी और राष्ट्रीय चेतना को नई ऊर्जा मिली है। राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक और नैतिक कर्तव्य है। हमें ध्वज संहिता का पालन करते हुए तिरंगे का सदैव सम्मान करना चाहिए। उसे कभी भूमि पर नहीं गिराना चाहिए,

0: फाड़ना, गंदा करना या उसका अपमान करना राष्ट्रीय सम्मान के विरुद्ध है। आज के युवाओं के लिए तिरंगा केवल एक प्रतीक नहीं बल्कि एक प्रेरणा है। यह उन्हें ईमानदारी, अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठा, राष्ट्र सेवा के मार्ग पर चलने का संदेश देता है। यदि देश का प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करे, सामाजिक समरसता बनाए रखे, पर्यावरण की रक्षा करे और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखे, तो यही तिरंगे के प्रति सच्ची श्रद्धा होगी। हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा हमें यह सिखाता है कि भारत की वास्तविक शक्ति उसकी विविधता में निहित है। जब सभी नागरिक बिना किसी भेदभाव के मिलकर राष्ट्र निर्माण में योगदान देते हैं, तभी भारत विश्व में एक सशक्त, समृद्ध और सम्मानित राष्ट्र बन सकता है। तिरंगा भारत की आत्मा है। यह स्वतंत्रता, स्वाभिमान, लोकतंत्र, एकता और अखंडता का अमर प्रतीक है। इसकी हर लहर में हमें अपने राष्ट्र के प्रति कर्तव्य, समर्पण और सेवा की प्रेरणा मिलती है। तिरंगे के बीच का गोल चक्र अशोक चक्र कहलाता है। अशोक चक्र का मूल स्रोत उत्तर प्रदेश के सारनाथ में स्थित सम्राट अशोक के सिंह स्तंभ पर बना धर्म चक्र है। इस चक्र को 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज में स्थान दिया। इसके पहले ध्वज के मध्य में चरखा होता था, जिसे बाद में अशोक चक्र से बदल दिया गया। अशोक चक्र का रंग गहरा नीला नेवी ब्लू है और इसमें 24 तिलियां होती हैं। यह धर्म, न्याय, सत्य, कर्तव्य और निरंतर गतिशीलता का प्रतीक है। इसका संदेश है कि राष्ट्र को कभी ठहरना नहीं चाहिए बल्कि निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। प्रचलित व्याख्या के अनुसार 24 तिलियां मालवीय मनों का प्रतीक मानी जाती है। इनमें जैसे प्रेम है, साहस है, धैर्य है, शांति है, महानता है, दया है, सद्भाव है, नैतिकता है, संयम है, आत्मसंयम है, निस्वार्थता है, सत्य है, न्याय है, करुणा है, विनम्रता है, सहानुभूति है, आध्यात्मिक ज्ञान है, नैतिक शक्ति है, धर्मपालन है, आशा है, विश्वास है, कर्तव्य है, सतत प्रकृति है और जन कल्याण की भावना निहित है। स्वतंत्रता के बाद देश के अनेक खादी केंद्रों से राष्ट्रीय ध्वज तैयार कर दिल्ली भेजे गए थे। मान्यता है कि राजस्थान के दौसा जिले के आलूदा गांव के बुनकर चौथमल को उस तिरंगे का निर्माता माना जाता है, जिसे स्वतंत्रता के बाद पहली बार लाल किले पर फहराया गया था। चौथमल ने खादी से तैयार तिरंगा, जिसे बनाने में लगभग 2 महीने लगे, यह तिरंगा स्वतंत्रता सेनानियों के माध्यम से दिल्ली पहुंचाया गया। हालांकि इतिहासकार यह भी बताते हैं कि उस समय विभिन्न स्थानों से कई तिरंगे दिल्ली भेजे गए थे, इसलिए यह दावा कि लाल किले पर सबसे पहले फहराया गया तिरंगा निश्चित रूप से चौथमल द्वारा बनाया गया वही तिरंगा था, यह एक व्यापक रूप से प्रचलित परंपरा और स्थानीय ऐतिहासिक मान्यता है। राजस्थान के दौसा जिले के बारे में यह दावा अक्सर किया जाता है कि 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर फहराए गए शुरुआती तिरंगे में से एक तिरंगा दौसा में निर्मित था। यह बात राजस्थान के कई लेखों, स्थानीय इतिहासकार और जनश्रुतियों में मिलती है। विशेष रूप से यह उल्लेख किया जाता है कि दौसा के खादी कार्यकर्ताओं और बुनकरों द्वारा तैयार तिरंगे दिल्ली भेजे गए थे। हालांकि इस दावे की पुष्टि करने वाला कोई आधिकारिक अभिलेख या व्यापक रूप से स्वीकार किया गया ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। आज क्षितिज में फहराता तिरंगा हमारे देश की आन बान और शान को दर्शाने वाला है, इसलिए आइए हम आज जब तिरंगा को आधिकारिक रूप से अंगीकार किया गया था भारत के संविधान ने, हम हमारे राष्ट्र की स्वाभिमान के प्रतीक को वो श्रद्धा के साथ उसका नमन करें और यह भावना देश के युवाओं के मन में भरें कि यह तिरंगा हमारे देश के स्वाभिमान का, हमारे देश की आन बान शान का प्रतीक है।
1: अभी आप सुन रहे थे तिरंगा राष्ट्रीय चेतना और एकता का प्रतीक। वार्ताकार थे श्री जी एन भट्ट, वरिष्ठ मीडिया कर्मी। प्रस्तुतकर्ता संतोष द्विवेदी, मनुज।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर पर। आइए अब सुनते हैं संस्कृत समाचार।

0: आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधिः झा। आदौ मुख्याः वार्ताः। केन्द्रीयमन्त्रिमण्डलेन आगामि वित्तीयवर्षाय राबीसस्यानां न्यूनतम समर्थनमूल्येषु वृद्धिः अनुमोदिता। नवदिल्ली आरक्षिबलस्य 80+ 700 कोटि परिमिता प्राज्ञ यातायात प्रबन्धन प्रणाली अपि समनुमोदिता। हरित ऊर्जायाः अविरतम् अभ्युदयाय प्रशासनेन 1.86 लक्ष कोटि परिमितव्ययसाध्यः पीएम धारा इति नामधेयः बृहद्योजना प्रकल्पः अभ्युपगतः। आगामिषु पञ्चवर्षेषु यात्रीवाहनानाम् इन्धनकार्यक्षमतायां 16% संवर्धम् अभिलक्ष्य केन्द्रशासनेन नूतनाः CAFE नियमाः प्रवर्तिताः। 2019-2020 समाप्तिं यावत् पञ्जाबधरा व्यसनमुक्ता विधास्यते इति केन्द्रीयगृहमन्त्री अमितशाहः ब्रूते। अपि च एशियन गेम्स क्रीडामहाकुम्भे भारतीय धनुर्धरैः स्वर्णपदकानां हेट्रिक इति त्रयो विजयः समासादितः। मुष्टिद्वन्द्वे च मिश्रित ट्रैम्प दलेन स्वर्णकमलं विकसितम्। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। अद्य आर्थिक कार्यमन्त्रिमण्डलीय समित्या प्रवर्तमान वित्तीयवर्षस्य कृते सर्वेषामपि राबी सस्यानां न्यूनतम समर्थन मूल्येषु श्लाघ्या वृद्धिः समनुमोदिता। नवदिल्ल्यां वार्ताहर सम्मेलने सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः व्यजिज्ञापत् यत् कृषक हित रक्षणार्थम् असौ निर्णयः समाश्रितः। अनेन कुसुम सस्यस्य समर्थन मूल्ये सर्वाधिकं 75+ 600 रूप्यकाणां, सर्षपस्य 13+ 400, चणकस्य 83, गोधूमस्य च 25 रूप्यकाणां प्रति क्विंटल मानतः परिवर्धनं विहितम्।
1: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए MSP तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही MSP में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सेफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है MSP।
0: मन्त्रिणा प्रोदीरितं यत् समित्या नवदिल्ली आरक्षिबलैः 80+ 700 कोटि रूप्यकाणां व्ययेन प्रवर्तमाना प्राज्ञ यातायात प्रबन्धन प्रणाली योजना अपि स्वीकृता।
1: ITMS में ऑब्जेक्टिव है कि जो 1529 ट्रैफिक सिग्नल्स है ये सारे अभी फिक्स टाइमिंग्स में ट्रैफिक पे अगर इस तरह की कैपेबिलिटी हो लाइट में कि जिस तरफ से ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, ज्यादा बिल्डअप हो रहा है, वहाँ पे रेड लाइट कम ड्यूरेशन के लिए रहे और जिस तरफ खाली है उस तरफ रेड लाइट ज्यादा ड्यूरेशन, ये पॉसिबल है ITMS से। इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्पेशली फॉर अ मेगा सिटी लाइक दिल्ली।
0: एतदतिरिच्य मन्त्रिमण्डलेन हरित ऊर्जा वीथी इत्यस्य तृतीय चरणम् अथ ऐतिहासिकी PM धारा योजना च समनुमोदिता, येन राज्येषु केन्द्रशासित प्रदेशेषु च 35+ 100 गीगावाट परिमितस्य नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनस्य सुगम सञ्चारणं भविष्यति। भारतीय प्रशासनस्य ऊर्जा मन्त्रालयेन देशे समुपलब्ध यात्रीवाहनानां इंधन संरक्षण दक्षताम अभिलक्ष्य नूतना CAFE इति संस्थागत मध्यमान इंधन दक्षता मानदंड नियमाः सम्यक् अधिसूचिताः। एते नूतनाः मानदंडाः 2017-2020 अप्रैल मासस्य प्रथम दिनांकात् समारभ्य 2023-2020 मार्च मासस्य 31 दिनांकं यावत् प्रवर्तयिष्यन्ते। ये च पूर्व प्रवर्तितानां मानदण्डानां स्थानम् अलङ्करिष्यन्ति। एतद्विधानं भारते विक्रयार्थम् उत्पादितानाम् अथवा आयातितानां वा सर्वेषामपि नूतनयात्रिवाहनानाम् उपरि समानभावेन नियंस्यते। इयं हि नियमरचना

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। आइए श्रोताओं, चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। कार्यक्रम का नाम ग्राम संसार।

0: कार्यक्रम ग्राम संसार सुनने वाले हमारे सभी भाइयों बहनों को
1: राम
0: राम
1: राम।
0: राम। मैं हूँ प्रीति,
1: और मैं हूँ लोकेंद्र।
0: कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं और कार्यक्रम में हम कई तरह की जानकारियां देते हैं अपने साथियों को और साथ में उनका मनोरंजन करवाते हैं, तो आज का सिलसिला भी कुछ ऐसा ही रहेगा।
1: बिल्कुल प्रीति बहन, देखिए हम बातचीत तो करेंगे और साथ साथ हम भाइयों की भाइयों को जानकारी भी देंगे। और आज सबसे पहले हम अपने भाइयों को बताते हैं, आज है अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस। देखिए अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस हर वर्ष 30 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिन भाषाओं के बीच संवाद स्थापित करने और विभिन्न सांस्कृतिक साहित्य एवं विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने में अनुवाद की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है।
0: जी बिल्कुल, और कई बार हमें ऐसा भी मिलता है, कई बार ऐसी भी बातें होती हैं कि कोई उपन्यास या कोई कविता या कुछ ऐसा कंटेंट जो इंग्लिश भाषा या अदर भाषा में अगर वो बहुत विख्यात है तो फिर क्या करते हैं हमारे राइटर उसको अनुवादित कर देते हैं, कभी हिंदी भाषा में, कभी संस्कृत भाषा में, या कहीं कोई क्षेत्रीय भाषा है तो वो हमें पढ़ने को मिल जाती है और उसका जो अर्थ होता है वो हमें पता चलता है। तो ये अनुवाद बहुत ही जरूरी होता है, ये एक ऐसी विधा है जो आपको कई बारे में जानकारी देने में आपके लिए एक सुविधाजनक रास्ता दिखाता है।
1: बिल्कुल सही बोला प्रीति बहन आपने, क्योंकि अनुवाद जो है, जैसे बहुत सी लैंग्वेज होती है, अलग अलग भाषाएं होती हैं, उसमें हमें जैसे कि आपने भी कहा समझ में नहीं आता, तो अनुवाद के ही जरिए हम उस चीज को समझ सकते हैं और बासानी हम उसको महसूस भी कर सकते हैं। अनुवाद केवल एक भाषा के शब्दों को दूसरी भाषा में बदलता ही नहीं है, बल्कि भाव, विचार, ज्ञान और संस्कृति को सही अर्थ के साथ लोगों तक पहुंचाने का माध्यम भी है। इसके माध्यम से साहित्य, विज्ञान, शिक्षा, तकनीक, प्रशासन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को भी बढ़ावा मिलता है।
0: जी बिल्कुल, क्योंकि कई बार हम जब कल्चर की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं, तो जब हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो जब हम विदेशों में देखते हैं कि हमारी जो भगवद गीता है या हमारी जो पाठ्य पुस्तकें हैं या फिर हमारी जो कुछ ऐसी किताबें, हमारे जो राइटर हैं जो बहुत अच्छा अपनी भाषा में लिखते हैं, अगर हम बात करें मुंशी प्रेमचंद की, तो उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से कई बार ग्रामीण परिवेश को सामने ला कर रखा है। और अगर इनको पढ़ना चाहे कोई विदेशी तो क्या करता है, वो अनुवादित पुस्तकों का संकलन जो है वो उठाता है और उससे वो जानता है कि भारत क्या है। तो ऐसा ही जब हम बाहर की कंट्रीज की बात करें, जब हम शेक्सपियर की बात करते हैं तो हम उनके नाटक पढ़ते हैं हमारी हिंदी भाषा में, तो हमें पता चलता है कि वहां के जो लेखक हैं वो जो देख रहे हैं अपनी नजर से वो कैसे हम तक पहुंचा रहे हैं। तो वो एक अनुवादित माध्यम जो हमारे पास आया उसी से हमें पता चलता है कि ये ऐसा परिवेश है। तो ये है अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस की बात, और हम आगे भी ऐसी बहुत सारी जानकारी देंगे अपने कार्यक्रम में। फिलहाल हम सुनवाते हैं रागिनी,
1: कलाकार है
0: लेखराज।

0: प्रीति,
1: जी
0: अभी हमारे भाई बहन सुन रहे थे, ये रागनी कलाकार थे लेखराज।
1: जी और जैसा कि हमने बताया था कार्यक्रम की शुरुआत में कि हम मनोरंजन के साथ साथ जानकारी भी देंगे, तो ऐसी ही एक जानकारी है हमारे पास। संरक्षित मृदा नमी में सरसों एवं चने की सफल बुवाई कैसे करें, इस पर जानकारी दे रही हैं डॉक्टर कविता, माफ कीजिएगा, डॉक्टर कपिला शेखावत, जो कि प्रधान वैज्ञानिक सदस्य हैं सस्य विज्ञान संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में, और इनसे बातचीत कर रहे हैं शिवनंदन लाल। तो आइए सुनते हैं ये बातचीत।
2: किसान भाइयों नमस्कार। जिस तरीके से हमारी अन्य फसलों का योगदान है, उस तरीके से हमारी जो दलहनी है और तिलहनी फसलों का है, उतना ही योगदान है। और तिलहनी फसलें हैं,
1: जी
2: विशेष तौर पे सरसों, उसकी बिजाई का समय धीरे धीरे आ रहा है। किस तरीके से बिजाई करें, किस तरीके से खेत की तैयारी करें और बीज का चुनाव करते समय आपको क्या सावधानियां रखनी है, इस संबंध में आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर कपिला शेखावत जी को, जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं सस्य विज्ञान संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: बहुत धन्यवाद
2: तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले जानना चाहूँगा कि जो हमारी तिलहनी फसलें हैं,
3: जी।
2: विशेष तौर पर सरसों, इसका हमारे किसान भाइयों के लिए और देश के लिए आर्थिक और जो पौष्टिक महत्व क्या है?
3: सिर्फ किसान मित्रों के लिए ही नहीं, बल्कि जब से हम पैदा होते हैं बचपन में जो मालिश की जाती है, पहली मालिश जो है वो कहते हैं सरसों के तेल से बच्चों को करनी चाहिए, क्योंकि सबसे अच्छा तेल ये माना गया है। हमारे भारतीय रसोइयों में जो सभी व्यंजन बनते हैं उन सब में भी सरसों के तेल सबसे ज्यादा पसंदीदा तेल है। अगर आर्थिक दृष्टि से इसकी बात करें तो हमारे देश में रबी फसलों में सबसे महत्वपूर्ण तिलहनी फसलों में सरसों ही है। यूं तो सोयाबीन का सबसे अधिक रोल है पूरे जो एडिबल ऑयल्स या खाद्य तेलों में, लेकिन उसके बाद में सरसों का जो तेल है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ना केवल मात्रा की दृष्टि से, अगर गुणवत्ता की दृष्टि से भी हम बात करें, इसके अंदर जो ऑयल का कॉम्पोजिशन है यानी कि जो फैटी एसिड्स का कॉम्पोजिशन है वो इतना श्रेष्ठ है कि सबसे पसंदीदा तेल ये सभी भारतीयों के लिए हमेशा रखा गया है। अगर भारत में खाद्य तेलों की अर्थव्यवस्था की बात करें तो पूरे
2: जी
3: विश्व में हम चौथे नंबर पे हैं, और इसलिए सरसों पे और रबी ऋतु में इसका महत्व और भी बढ़ जाता है।
2: हमारी केंद्र सरकार तिलहन मिशन को बढ़ावा देने के लिए काफी कार्य कर रही है, तो इसमें जो हमारे कृषि वैज्ञानिक हैं उनका क्या योगदान हो सकता है?
3: देखिए, किसानों के प्रति जो समर्पित शोध संस्थान है जिसमें पूसा संस्थान भी आता है, पूरी एपेक्स बॉडी है हमारी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के रूप में, और सभी तिलहनी फसलों के लिए एक समर्पित संस्थान भी है। अगर अपन सरसों की भी बात करें, जो इंस्टीट्यूट ऑफ रेप सीड एंड मस्टर्ड जो भरतपुर में स्थित है,
2: जी
3: उसका काम ही यही है कि तेलों के संदर्भ में खासतौर पर सरसों के उसमें उन्नत किस्मों का विकास करें। उसके साथ साथ में उन उन्नत किस्मों के लिए क्या पोषक तत्व प्रबंधन होना चाहिए, बीच में खरपतवार नियंत्रण कैसे करें, अगर कोई मान लीजिए बीज कीड़ा इस तरह की कोई बात आती है तो उनका प्रमोशन कैसे करें, या दूसरा क्वालिटी ऑयल, जैसे सरसों की और राई सरसों एक समूह है
2: जी
3: जिसमें 7 फसलें उगाई जाती हैं, जिसमें सबसे प्रचलित मस्टर्ड है जिसको हम सरसों बोलते हैं, उसके अंदर तेल की मात्रा विभिन्न किस्मों में 38 से लेके 44-45% तक भी होती है। तो इसमें तेल की मात्रा को बढ़ाया जाए, उसके अलावा जो उसके अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं उनको कम किया जाए, और आपने सुना होगा आजकल क्वालिटी मस्टर्ड या कैनोला
2: जी
3: की कुछ लोग बात करते हैं जिसमें 00 और 00 वेराइटीज आती हैं। तो एक इरूसिक एसिड, एक जो एंटी न्यूट्रिशनल मतलब एक तत्व है जो हमें नहीं चाहिए तेल में, उसकी मात्रा को 2% से कम कैसे करें, इस पर शोध हो रहा है। उसकी जो खली बचती है जो पशुओं के चराने में काम में आती है, उसमें एक ग्लूकोसिनोलेट करके एक एंटी न्यूट्रिशनल क्वालिटी फैक्टर है, उसकी मात्रा को कम कैसे किया जाए, उस पर भी शोध हो रहा है। और जिन किस्मों में इन दोनों चीजों को हम कंट्रोल कर पाए उनको हम 00 वेराइटीज कहते हैं। तो न केवल तेल की मात्रा, कुल उत्पादन, बल्कि गुणवत्ता के ऊपर भी जो वैज्ञानिक है लगातार इस दिशा में शोध कर रहे हैं।
2: डॉक्टर साहब, जैसे

0: कम इसलिए देखी जाती है, एक तो इसका उत्पादन कम है और दूसरा पकने के बाद इसमें शैटरिंग यानी कि इसकी जो पॉड्स हैं वो दाना बिखरने की एक समस्या किसान मित्रों की ओर से आई है। तो हालांकि इस पर शोध हो रहा है, लेकिन ये दो मुख्य कारण है जिसके कारण किसानों के बीच में ये कम प्रचलित है।
1: डॉक्टर साहब, जब सरसों इतनी महत्वपूर्ण फसल है तो इसका बिजाई का समय क्या उपयोग?
0: देखिए, जैसे कि नेहरू जी ने कहा था कि एवरीथिंग एल्स कैन वेट बट नॉट एग्रीकल्चर, और जो सबसे महत्वपूर्ण है किसी भी फसल के उत्तम उत्पादन के लिए वो है बुआई का सही समय। अब सरसों ज्यादातर बारानी क्षेत्रों में होती है, तो बारानी क्षेत्रों का मतलब ये है कि अगर खरीफ में कोई फसल है और वो आपकी कट के समय पर खेत आपका तैयार है, या जैसे अभी जो आप देख रहे हैं उसमें अगर ये हल्की बारिश भी अगर मिल जाती है तो वो पलेवा के रूप में काम करती है और बुआई के लिए सबसे उत्तम समय है। अगर आप देखेंगे तो 10 अक्टूबर के आसपास अगर करते हैं उसको अगेती कहते हैं, 10 से मान लीजिए 25 अक्टूबर तक जो इसकी बुआई है वो समय पर बुआई है, और कुछ किस्में जो पछेती बुआई के लिए भी प्रचलित हैं। तो अपने संसाधन के अनुसार, अगर सिंचित क्षेत्र है असिंचित क्षेत्र है उसके अनुसार किसान बुआई का सही समय और जो किस्म उनके पास उपलब्ध है उसके आधार पर बुआई का सही समय इस विंडो में चयन कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, जैसे आपने बिजाई के समय में काफी अंतर बताया,
0: जी
1: तो क्या किस्में भी ऐसी हैं जो अर्ली
0: निश्चित
1: बिजाई की जाती
0: निश्चित
1: हैं
0: रूप
1: और
0: से
1: जो?
0: आपको अपनी परिस्थिति के हिसाब से किस्मों का चुनाव करना है। अगर अपन अगेती किस्मों की बात करें तो पूसा संस्थान से ही निकली हुई किस्में हैं, जैसे पूसा मस्टर्ड 25, 27, 28, पूसा अग्रणी एक बहुत अच्छी किस्म है, उर्वशी है, पूसा तारक है, पूसा महक एक बहुत अच्छी किस्म है, इसके अलावा नरेंद्र अगेती राई 4 करके एक किस्म है। इनमें से अगर आप किसी किस्म का चुनाव करते हैं तो ये अगेती के लिए उत्तम है। और जो शुरुआती अधिक तापमान जैसे कई बार देखना पड़ता है, आप देखिए इस समय क्या होता है कि नाइट टेम्परेचर और डे टेम्परेचर तो कम है, लेकिन दिन में मान लीजिए 12 से 2 बजे के बीच आसपास तापमान बढ़ जाता है, तो ये किस्में उच्च तापमान के प्रति प्रतिरोधक हैं और इनके जर्मिनेशन, सीड सेटिंग और इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। तो जो लोग अगेती करना चाहते हैं वो इन किस्मों का चुनाव करें। उसके अलावा सिंचित क्षेत्रों में अच्छी किस्में हैं, रोहिणी है, लक्ष्मी है, NRCHB 506 एक अच्छी किस्म है, NRCDR 2 एक अच्छी किस्म है, इनका आप चुनाव कर सकते हैं, गिरिराज है, और पूसा मस्टर्ड 30-32 ये भी जो क्वालिटी किस्में हैं उनको आप ले सकते हैं। समय पर बुआई करें यानी कि आप मान लीजिए प्रथम सप्ताह अक्टूबर से लेके 20-25 तारीख तक। उसके बाद मान लीजिए अगर आप पछेती बुआई करना चाहते हैं तो कुछ किस्में हैं, पुरानी किस्में हैं लेकिन अभी भी चलती हैं, जैसे कि आशीर्वाद है, वरदान, नव गोल्ड, स्वर्ण ज्योति, इनमें से जो किस्म आपको उपलब्ध हो, एक RGN 145 और पूसा तारक भी ऐसी किस्म है जो अगर आप लेट सोइंग करते हैं पछेती यानी कि 20-22 अक्टूबर के बाद भी, तो भी ये एक अच्छा उत्पादन किसान मित्रों को दे देती है।
1: डॉक्टर साहब, सरसों का बीज बहुत छोटा होता है,
0: हाँ
1: तो
0: जी,
1: बीज की मात्रा कितनी लगती है?
0: ये हम किसान भाइयों को हमेशा बताते हैं और अक्सर किसान भाई बीज की जो दर है वो अधिक रखते हैं और इसके कारण आप समझ लीजिए जो स्पेसिंग है वो रख नहीं पाते, मेंटेन नहीं कर पाते। श्रेष्ठ ये है कि शुरुआत से ही आप बीज दर का ध्यान रखें। प्रति हेक्टेयर की बात करें हम तो 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सरसों की बीज की अच्छी मात्रा है। आपका अच्छे किस्म का बीज है, अच्छे स्रोत से लिया हुआ है तो, और 98-99% जर्मिनेशन का जो, या 85+ में अगर भी हम मान लें तो ये पर्याप्त है। एकड़ प्रति एकड़ की बात करें तो 1.5 किलो 1.25 किलो भी पर्याप्त है। अब किसान भाई अक्सर ये शिकायत करते हैं कि मैडम सीड ड्रिल में ज्यादा बीज गिर जाता है, इसके लिए हम कहते हैं कि आप 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज लीजिए। 1 से 1.5 किलोग्राम बाजरा का दाना है, इसको आप सेक लीजिए कड़ाई में ताकि उसकी जर्मिनेशन कैपेसिटी खत्म हो जाए। उसको आप सीड के साथ मिक्स करके यानी कि उस बाजरे के बीज को सरसों के साथ मिक्स करके बुआई करें। हम कई बार कहते हैं किसान मित्र खाद के साथ बीज को मिक्स कर देते हैं, वो एक बहुत ही गलत प्रथा है क्योंकि वो कोई ना कोई प्रकार का केमिकल है, बीज को भी नमी मिल रही है और वहीं पर आपका रसायन भी पिघल रहा है, तो आपकी जर्मिनेशन परसेंट हमने देखा है हमारे शोधों में 25 से 30% तक कम हो जाती है। और आप देखें अच्छी किस्मों का बीज जो है काफी महंगा भी मिलता है, तो अगर आप 1 किलोग्राम बीज भी अगर आप फालतू दे रहे हैं तो आप ये किसानों को एक एडिशनल कॉस्ट है जिसका कोई उन्हें बेनिफिट नहीं मिल रहा। तो बीज दर का ध्यान रखें, हर सरसों की किस्म में 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर 1.5 किलोग्राम प्रति एक।
1: डॉक्टर साहब, बीज ले लिया लेकिन उसके बाद उसको उपचार भी करना है?
0: बहुत जरूरी है, जैसे सीड ट्रीटमेंट को हमेशा मैं किसान मित्रों को बताती हूँ कि जैसे हम अपने बच्चों को टीका लगाते हैं ताकि भविष्य में कोई बीमारी ना हो, वैसे ही फसल है वो भी किसान उसको अपने बच्चों की तरह पालता है, तो उसको भी उसी प्रकार से बीज उपचारित करना बहुत जरूरी है। 3 उद्देश्यों से हम बीज उपचार करते हैं। पहली बात तो रोगों से उसको बचाव मिले, आपकी फसल को कीटों से बचाव मिले और एक उत्पादन अधिक हो। तो रोगों से अगर आपको बचाव करना है, स्पेशली जो आपकी फफूंद जनित बीमारियां हैं, सफेद रतुआ एक बहुत कॉमन डिजीज है मस्टर्ड में, उसके लिए बीज उपचार करिए। आप एपरॉन 35 SD के नाम से जो दवा आती है उसका 6 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें, या फिर आप बाद में स्प्रे करने से बेटर है कि आप सीड ट्रीटमेंट इस समय

0: और अगर आप किसी रसायन पर नहीं जाना चाहते तो ट्राइकोडर्मा विरिडी नाम की एक फफूंद है,
1: जी
0: उसका 10-12 ग्राम प्रति किलोग्राम के बीज से उपचारित करें। उससे भी आपको फफूंदजनित बीमारियों से राहत मिलती है। तना गलन के लिए कार्बेंडाजिम से आप सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कीटों के लिए इमिडाक्लोप्रिड, उसकी करीब 6-7 ग्राम पर किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचारित करें तो आपको बीमारियों से और कीटों से मुक्ति मिलती है। और अगर आप उत्पादन अधिक करना चाहते हैं तो आप किसी न किसी जैव उर्वरक से भी आप उपचारित करें।
1: डॉक्टर साहब, वैसे तो कहते हैं कि सरसों और चना के लिए ज्यादातर खेत की तैयारी की जरूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी खेत की तैयारी और बिजाई का तरीका।
0: देखिए, खेत की तैयारी तो हर फसल के लिए महत्वपूर्ण है। अब कई बार परिस्थितियां ऐसी रहती हैं कि मान लीजिए बहुत ही छोटे और सीमांत किसानों में, बरानी क्षेत्रों में, वहां हर किसान के लिए मशीन को उपलब्ध करा पाना मुश्किल होता है। श्रेष्ठ ये रहता है कि आप एक गहरी जुताई करें, उसके बाद एक हल्की जुताई मान लीजिए हैरो से और एक पाटा लगा लें तो खेत आपका समतल हो जाता है। और उसके बाद आप पंक्ति से पंक्ति, इसमें 30 सेंटीमीटर की दूरी, बहुत अच्छी किस्म ले रहे हैं हाई यील्डिंग तो आप 45 सेंटीमीटर भी दूरी ले सकते हैं, और इस तरह से आप बुआई करें। और बुआई के जब 2 या 3 पत्तियां आने लगे उस समय आपको विरलीकरण करना है, और तब आप इंश्योर करिए कि पौधे से पौधे कम से कम 10 सेंटीमीटर की दूरी हो। उससे वातन बढ़िया होता है और सनलाइट अच्छा मिलता है। हर प्रकार से ये सरसों के लिए बहुत लाभदायक है।
1: डॉक्टर साहब, जिस समय आपने बताया है कि उसमें एक दो पत्तियां होती हैं, उसमें एक कीट का भी
0: जी
1: प्रकोप
0: जी
1: होता है,
0: बिल्कुल
1: तो उसे
0: बिल्कुल।
1: कैसे बचें?
0: कीटों की 2 श्रेणी है, एक तो सकिंग पेस्ट जो चूसते हैं और
1: जी
0: एक काटते हैं। तो इनके लिए जब आपकी फसल बहुत छोटी हो और ये ज्यादातर एक खेत से दूसरे खेत में ये कीड़ा ट्रेवल करता है तो आपको बॉर्डर मैनेजमेंट बहुत आवश्यक है। तो क्लोरोपाइरीफॉस नाम का एक कीटनाशक है, उसकी डस्ट को आप थोड़ा पौधों के ऊपर ऊपर थोड़ी थोड़ी पत्तियों पर आप डाल दें तो बेहतर रहता है। और अगर आपको लग रहा है कि ज्यादा प्रकोप है, हर साल आपके यहाँ ये समस्या आती है, और आपके नहीं तो पास वाले खेत में अगर ज्यादा समस्या है तो आपको रसायनों का चयन करना पड़ेगा, जिसमें डाईमेथोएट नाम का एक रसायन है या ऑक्सीडेमेटोन मिथाइल। इनकी करीब 1 लीटर मात्रा 500-600 लीटर पानी में घोलकर अगर आप प्रति हेक्टेयर की दर से नए निकले हुए पौधों में छिड़क देते हैं तो शुरुआती कीड़ा आपको खराब नहीं करेगा। वो फिर बाद में फिर एफिड या उसकी समस्या हो सकती है, लेकिन चितकबरा कीट या पेंटेड बग जो हम बोलते हैं उसकी समस्या सरसों में नहीं होगी।
1: डॉक्टर साहब, बहुत से किसान भाई जो सरसों की बिजाई करते हैं वो
0: जी
1: छिटकमा करते हैं, और जबकि आप लोग सुझाव देते हैं कि उसे
0: बिल्कुल
1: लाइनों में
0: बिल्कुल।
1: करें।
0: देखिए, ये रासायनिक विधि तो नहीं है बुआई की, और इसमें देखिए एक तो बीज बहुत ज्यादा लगता है और आपका जर्मिनेशन 50% से ज्यादा नहीं होगा तो आपकी सीड रेट बहुत ज्यादा होगी, पहली बात। अब इसमें कई बार किसान कहते हैं कि मशीनें नहीं है, तो हम कस्टम हायरिंग सेंटर के बेसिस पे या मान लीजिए FPOs आजकल बहुत प्रचलित हैं, वो मशीनें रखें और वो रेंट करें किसानों को तो ये मशीन की समस्या नहीं होती। जो मुख्य बात यह है कि आपको कोई भी इंटरकल्चरल ऑपरेशन करना है, मान लीजिए आपको निराई गुड़ाई करनी
1: जी
0: है, आपको स्प्रे करना है, तो आप छिटकमा विधि से बोए गए सरसों में आप कैसे खेत में चलेंगे? या तो आप पौधों को नुकसान करेंगे, तो ये समस्या है। तो और दूसरा, वातन भी सही से नहीं होता। अब आप इतना प्रिसाइजली तो आप मैनेज कर नहीं पाते, तो कहीं गुच्छा गिर गया तो वहां बहुत सारे बीज एक साथ आ गए, कहीं कम पौधे आए हैं, और खेत में इस तरह का जब है तो हम और आगे ऑपरेशन उसके अंदर कर पाना संभव नहीं है। तो वैज्ञानिक विधि से करें इसको, सीड ड्रिल से करें।
1: डॉक्टर साहब, जो हमारी तिलहनी फसलें इतनी महत्वपूर्ण हैं और उनकी आवश्यकता भी देश में है, तो
0: बिल्कुल,
1: इसके लिए सरकार क्या कर रही है?
0: बहुत रुझान है सरकार का। और हम क्योंकि खाद्यान्न के मामले में अगर बात करें तो अनाजी फसलों के संदर्भ में हम आत्मनिर्भर हैं। धान और गेहूं से हमारे भंडार भी भरे हैं, बफर स्टॉक्स भी भरे हैं, लेकिन तिलहन और दलहन में अभी भी कहीं ना कहीं हमको आत्मनिर्भरता नहीं है। और इसीलिए हमारे आत्मनिर्भरता इन ऑयल सीड्स एंड पल्सेस मिशन आपको चल ही रहे हैं आप। तो उसमें गवर्नमेंट की स्कीम ये है कि सबसे महत्वपूर्ण जो पूर्णतः तिलहनी फसलों को ही समर्पित है वो है हमारा नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स एंड ऑयल पाम। इसके अंतर्गत हम शोध के लिए, FPOs को, मशीन्स के लिए जो है अनुदान देते हैं किसान मित्रों को। इसके अलावा RKVY के अंदर भी ऑयल सीड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है। उसके अलावा आत्मनिर्भरता का जो मिशन है उसके अंतर्गत हम सीड के मिनी किट प्रोग्राम भी चला रहे हैं, जिसमें उन्नत किस्मों का बीज उनको दिया जाएगा। और नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन ऑन ऑयल सीड भी एक बड़ा प्रोग्राम है, एम्बिशियस प्रोग्राम है सरकार का, जिसके अंतर्गत न केवल शोध इनके उत्पादन के लिए, इनका पोषक तत्व प्रबंधन कैसा हो, इनका प्रोक्योरमेंट हम कैसे करें, और किस तरह से जो इनके एक्सट्रैक्शन की या ऑयल मिल्स को एस्टेब्लिश किया जाए उनके ऊपर भी अनुदान और प्रमोशन है। और सबसे महत्वपूर्ण है इसमें जो आपका नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है जहाँ पे राइस फेलोज है, यानी कि धान के बाद कोई और फसल ली ही नहीं जाती, और क्योंकि मस्टर्ड को कम पानी चाहिए, सरसों को कम पानी चाहिए, और उस समय वहां बरसात कम होती है। वो जो हमारे करीब 12 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल है जो कि असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में है, उन सब में हम राइस फेलोज के जगह हम राइस मस्टर्ड को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि एडिशनल एरिया मिले और

0: इंटरनेशनल हमको ऑयल सीड प्रोडक्शन भी मिले।
1: जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। निश्चित तौर पर किसान भाई आप द्वारा दी गई जानकारी से फायदा उठाएंगे और अपनी सरसों से उत्तम उत्पादन ले सकेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: प्रीति बहन
0: जी,
2: अभी हमारे भाई बहन सुन रहे थे जानकारी। जानकारी का विषय था संरक्षित मृदा नमी में सरसों एवं चने की सफल बुवाई। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर कपिला शेखावत, प्रधान वैज्ञानिक सस्य विज्ञान संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली, और इनसे बातचीत कर रहे थे शिवनंदन लाल।
0: और आइए अब आपको सुनवाते हैं प्रेम राज सिंह की आवाज में ये रागिनी।
3: हाँ, धर्म राज।

0: साथियों, अभी आपने प्रेमराज सिंह की आवाज़ में सुनी ये रागिनी, और इसी के साथ हमारा कार्यक्रम ग्राम संसार यहीं संपन्न होता है। सुनने वाले हमारे सभी साथियों को
1: राम
0: राम
1: राम।
0: राम। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पाराशर और संयोजक शिवनंदन लाल।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, DRM 810 किलोहर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये निर्णय किसानों की उपज का लाभदायक मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
2: सबसे पहला फैसला लिया गया।

0: सभी क्रॉप्स के लिए MSP तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही MSP में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सेफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है MSP।
1: कुसुम के लिए सबसे अधिक 675 रुपए प्रति क्विंटल वृद्धि की गई है। सरसों और खसखस का मूल्य 413 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। श्री वैष्णव ने बताया कि मसूर के लिए 390 रुपए, जौ के लिए 136 रुपए, चने के लिए 83 रुपए और गेहूं में 25 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने दिल्ली पुलिस के 1779 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित लागत वाली अत्यधिक यातायात प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन को भी मंजूरी दे दी है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के बड़गाम में सुरक्षा बलों ने लश्करे तैयबा के कमांडर मूसा उर्फ आसिफ फौजी को मार गिराया है। ये कार्रवाई आतंकी नेटवर्क के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। मंत्रालय ने कहा कि मूसा के मारे जाने के साथ ही 2022 से जम्मू कश्मीर में सक्रिय लश्करे तैयबा के सभी 4 कमांडरों को मार गिराया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि गुजरात आतंकरोधी दस्ते, भारतीय तटरक्षक बल और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के संयुक्त अभियान में एक ईरानी नौका से 5 पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। अभियान के दौरान भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में मौजूद नौका से 526 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किए गए। श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि पंजाब को वर्ष 2029 के अंत तक नशा मुक्त बना दिया जाएगा। आज जालंधर में नशा मुक्त पंजाब रैली में श्री शाह ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पंजाब को नशा मुक्त बनाने के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी।
2: पंजाब का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक पंजाब का युवा नशे के मुक्त नहीं हो। ये नशा हमारी आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद करता है। पंजाब के युवाओं को नशा न मिले ऐसे सख्त तंत्र की रचना केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, कोई और नहीं कर सकता।
1: वस्त्र क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों पर चर्चा के लिए कल नई दिल्ली में वस्त्र सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय महासचिव ओम प्रकाश गुप्ता ने आज बताया कि सम्मेलन में देश भर के वस्त्र क्षेत्र से जुड़े करीब 400 सूक्ष्म और लघु उद्योग भाग लेंगे। अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्पाद संघ और अखिल भारतीय मोबाइल खुदरा विक्रेता संघ ने शुक्रवार को नो UPI डे मनाने का फैसला वापस ले लिया। ये निर्णय नई दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई बैठक के बाद लिया गया। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भाजपा सांसद और कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने लिया। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज तीरंदाजी में 3 और निशानेबाजी में 1 स्वर्ण सहित कुल 4 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। तीरंदाजी में पुरुष कंपाउंड टीम ने चीन को, मिक्स कंपाउंड टीम ने कोरिया को और महिला कंपाउंड टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण, 21 रजत और 29 कांस्य सहित कुल 60 पदकों के साथ 8वें स्थान पर पहुंच गया है। गुवाहाटी में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 406 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 7वें ओवर में बगैर किसी नुकसान के 50 रन बना लिए हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, DRM 810 किलोहर्ट्ज पर। आइए श्रोताओं, अब चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। कार्यक्रम का नाम कृषि जगत।

0: कार्यक्रम कृषि जगत सुनने वाले हमारे सभी किसान बहन भाइयों को
1: राम
0: राम राम।
1: राम
0: मैं हूँ लोकेंद्र,
1: और मैं हूँ प्रीति।
0: कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं। और इस कार्यक्रम में प्रीति बहन भाइयों के लिए जानकारी रहेगी और उनका मनोरंजन रहेगा, जिसमें वो जिसका वो बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि शाम का समय होता है और सभी अपने अपने रेडियो सेट लेके चौपाल पर बैठे जाते हैं और इस कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार करते हैं।
1: जी, और इस कार्यक्रम में हम, क्योंकि उनको भजन, क्योंकि संध्या समय है तो भजन भी सुनवाते हैं और उपदेश भी सुनवाते हैं। तो एक कार्यक्रम की जो खासियत है वो ये है कि समय के अनुसार हम अपना संगीत भी बदल देते हैं।
0: बिल्कुल। और देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, जिसमें से एक योजना है कृषि यंत्रीकरण उप मिशन योजना।
1: जी
0: इसमें कृषि क्षेत्र में आधुनिक कृषि मशीनरी और उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा देने वाली केंद्र सरकार की पहल है। इसका उद्देश्य है प्रतिवर्ष किसानों की उत्पादन लागत और मेहनत कम करने, कृषि कार्यों की दक्षता बढ़ाने और समय पर खेती के काम पूरे करने की मदद करना।
1: जी बिल्कुल। और क्योंकि कृषि यंत्र हैं तो उनका काम ही यही है कि हम किसानों के समय को बचा सकें, और जिससे वो जो समय बचेगा उसमें वो अपनी कृषि को और उन्नत रास्ते पर लेकर जाएंगे, जिससे कि जाहिर सी बात है कि उसका उत्पादन ही बढ़ेगा। तो हमारे कृषक भाई जो हैं वो इन यंत्रों का इस्तेमाल करके अपनी खेतीबाड़ी में समय की बचत करते हैं, और समय की बचत करके जो उसका यूज करते हैं वो बहुत अच्छा हो जाता है फिर।
0: बिल्कुल प्रीति बहन। और इसके साथ साथ इस योजना के तहत पात्र किसानों को कृषि मशीनरी और उपकरणों को की खरीद पर निर्धारित नियमों के अनुसार वित्तीय सहायता और सब्सिडी भी दी जाती है। छोटे ऐसे सीमांत किसानों, महिला किसानों और अन्य लक्षित वर्गों को प्राथमिकता देने के प्रावधान भी होते हैं प्रीति बहन। इस योजना के अंतर्गत ट्रैक्टर, पावर ट्रिलर, कृषि यंत्र, फसल कटाई एवं अवशेष प्रबंधन से जुड़े उपकरण को भी आगे बढ़ाया जाता है। इसके अलावा हम अपने भाइयों को बताएं इसका उद्देश्य क्या है, ये भी बता देते हैं। खेती में मशीनों का उपयोग बढ़ाना है, कृषि की मेहनत और समय की बचत करना है, कृषि कार्यों की अधिक कुशल बनाना है, छोटे किसानों तक आधुनिक कृषि तकनीकी पहुंचाना है, फसल अवशेष प्रबंधन और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना है।
1: जी बिल्कुल। और क्योंकि हमारी जो सरकार है, कृषि संबंधित जितने भी कल्याणकारी योजनाएं होती हैं या जो भी उपकरण हैं, उनको उनका मकसद होता है कि कैसे वो छोटे किसानों तक भी पहुंचे, जिससे कि वो छोटे जो लघु किसान हैं वो इस तकनीक का इस्तेमाल करके अपने जो कृषि जीवन है उसको बेहतर बना सकें। और
0: बिल्कुल
1: तभी तभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि किसानों की आय दोगुनी हो सके, तो उसके लिए ये सब चीजें बहुत जरूरी हो जाती हैं।
0: बिल्कुल। तो हम
1: तो
0: बातचीत और भी करेंगे प्रीति बहन। तो सबसे पहले भाइयों को कराते हैं मनोरंजन, सुनवाते हैं उपदेश। कलाकार हैं
1: राकेश त्यागी।

0: साथियों, अभी आपने राकेश त्यागी से सुना ये उपदेश, और आइए अब आपको जानकारी देते हैं रबी दलहनी फसलों की उन्नत
1: उन्नतशील
0: किस्में और उनकी जो बुवाई है वो कैसे करें, इस पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर समर्थ लाल मीणा, जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं सस्य विज्ञान संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में, और इनसे बातचीत कर रहे हैं अमित तेवतिया।
1: साथियों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि हम कार्यक्रम में प्रत्येक दिन कोई ना कोई ऐसी जानकारी

0: जानकारी आपके साथ अवश्य साझा करते हैं जो हमारे कृषि जीवन को उन्नत करती है, उत्पादन बढ़ाती है और लागत मूल्य को कम करती है। आज हम बात करेंगे रबी की दलहनी फसलों की उन्नतशील किस्में और उनकी बुवाई के विषय में। इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर समरथ लाल मीना। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं सस्य विज्ञान संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है।
1: धन्यवाद।
0: अब जैसा कि डॉक्टर साहब, विषय हुआ हमारा रबी की दलहनी फसलों की उन्नतशील किस्में और बुवाई। हमारे जो किसान भाई बहन हैं, रबी में कौन कौन सी दलहनी फसलें हमारे भाई बहन लगा सकते हैं?
1: देखो, ये मौसम रबी का है। हमारी खरीफ की जो ज्यादातर फसलें कट गई हैं और रबी की तैयारी अब शुरू कर दी किसान भाइयों ने, तो आपने पूछा कि कौन कौन सी जो दलहनी फसलें हैं उनको बो सकते हैं किसान भाई। उनमें देखो, सबसे महत्वपूर्ण होता है चना, उसके बाद मसूर है, फिर आपका मटर है, फ्रेंच बीन भी लगाते हैं, राजमा लगाते हैं काफी किसान भाई। और अब किसान भाई इसलिए सोच रहे होंगे कि भाई हमें कैसे तैयारी करें खेत की, कैसे बीज लाना है, कहाँ से लाना है, ये सब क्वेश्चन उनके मन में आते हैं।
0: इसी विषय को हम से आज जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने कहा कि चना है, मसूर है, राजमा है, तो जब ये फसलें लगाने का विचार आ रहा है तो उन्नतशील किस्मों की बात आती है और किस्में भी वो कि जो जलवायु परिवर्तन के समय में और कोशिश रहती है कि कम से कम नुकसान हमारी इन फसलों को हो, तो कौन कौन सी ऐसी किस्में चुने और बीज कहाँ से लें, जरूर बताएं।
1: देखिए, फसल पैदा करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है बीज, और बीज अगर आपने अच्छा लिया, उन्नत किस्म का लिया, तो आपकी पैदावार भी बढ़ती है। क्योंकि जो किस्में होती हैं ये हम लोग पैदा करते हैं, ये रीजन के हिसाब से भी होती हैं, क्लाइमेट सुटेबिलिटी का अकॉर्डिंग होती हैं, रीजन वाइज होती हैं। तो मैं बात करूंगा उत्तरी भारत की, तो उत्तरी भारत में कौन कौन सी चने की फसलें आप ले सकते हैं, जिसमें पूसा मानव चना बहुत ही महत्वपूर्ण है, अच्छी इसकी पैदावार होती है। फिर है पूसा 362 आरओई है, आरएसजी 888 भी है, और एचसी 5 है जो कि हरियाणा के लिए रिकमेंड की हुई है, और करनाल चना है एक, वो साल्ट टॉलरेंट उन्नत किस्में है, जहाँ पे जो साल्ट थोड़ा ज्यादा होता है खेती में उसमें किस्म को लगाया जा सकता है। फिर है डीसीपी 92-3, फिर है पूसा 11-3, फिर बीजीडी 72 है जो कि धारवाड़ से पैदा की हुई है, और एक है फूले G5 जो कि हम सेंट्रल पार्ट में बो सकते हैं। उसी प्रकार से जो काबुली चना है उसमें भी बहुत ही महत्वपूर्ण उन्नत किस्में हमारे पास हैं, जैसे पूसा चमत्कार हो गया, पूसा 1108 हो गया, जीएनजी 1292 हो गया जो कि राजस्थान के क्षेत्रों में को ऑलरेडी हमने रिकमेंड की हुई है, काक 2 है जो कि सेंट्रल जोन के लिए हमने रिकमेंड की हुई है, बीजीडी 128 है जिसे हम पूसा सुब्रवी बोलते हैं जो कि सेंट्रल जोन के लिए रिकमेंड की हुई है। इसी प्रकार से आपका जो मशहूर है, मशहूर में भी बहुत सारी वैरायटी होती हैं, उनको भी किसान भाई लगा सकते हैं, जैसे पूसा सेवालिक करके एक वैरायटी, उसको हम L4076 बोलते हैं, पंत L406, पूसा वैभव, प्रिया, शेरी, अंगूरी, पंत लेंटिल 14, इस तरह की बहुत सारी किस्में हैं जो कि किसान भाई ले सकते हैं। काफी किसान भाई तो लोकल एरिया में उनके जो ऑलरेडी रिकमेंड की हुई है, केव की वगैरह है, उन्होंने रिकमेंड किया, तो उनका भी उपयोग वो कर सकते हैं। इसी प्रकार मटर की बात करता हूं मैं, तो मटर हमारे देश में दो प्रकार के लिए बोया जाता है, जैसे फील्ड पी है उसको हम लोग दाने के लिए उगाते हैं, एक होता है वेजिटेबल पी जिसको हम लोग सब्जी के लिए उगाते हैं। जो किसान भाई दाने के लिए मटर उगाना चाहते हैं उनकी वैरायटी अलग होती है, तो उसमें महत्वपूर्ण वैरायटीज हमारे पास अलंकार है, अपर्णा है, रचना है, स्वाति है, सपना है, पंत पर मटर 5 है, मालवीय 15 है जो कि नॉर्थ ईस्ट प्लेन जोन के लिए है। इसी प्रकार के जो आपकी सब्जी वाली मटर है उनमें बॉनविल हो गया, पूसा प्रगति हो गया, आजाद मटर 2 हो गया है, नरेंद्र मटर 2 हो गया है। ये मटर की जो उन्नतशील वैरायटीज हैं किसान भाई लगा सकते हैं, ज्यादा पैदा इसमें आपको मिलेगा। अगर बात करते हैं राजमा की, राजमा का एरिया बहुत कम है, लेकिन किसान भाई चाहे तो वो भी राजमा की खेती कर सकते हैं। इसलिए उन्नत किस्में जैसे अंबर है, उत्कर्ष है, अरुणा है, इस तरह की जो उन्नत किस्में हैं किसान भाई इनका उपयोग कर सकते हैं।
0: तो डॉक्टर साहब, ये तो बात रही किस्मों की, और सबसे अच्छी बात कि आपने कौन सी किस्म के क्षेत्र के लिए वैज्ञानिकों के द्वारा इसकी संस्तुति में लिए ये भी बताया। अब बात आती है कि जो हमारे किसान भाई बहन इन किस्मों को लेते हैं, तो कई बार होते हैं कि किसान भाई बहन अपने द्वारा ही जो पिछले साल का बीज होता है उसी का प्रयोग करते हैं, या कहीं ऐसी जगह से भी बीज ले सकते हैं कि मानो उपचारित नहीं है, तो कैसे पता लगे कि जो बीज है वो उपचारित है, और उपचारित नहीं है तो किस प्रकार हमारे किसान भाई बहन कर सकते हैं?
1: बीज का उपचार करना बहुत जरूरी है, या तो आप जो बीज ले रहे हैं नया बीज ले रहे हैं, या तो वो उपचारित होगा। उपचारित होने का यही होता है कि उसमें हम जब पैकेट पैकेट खोलते हैं तो उसमें ऑलरेडी फंगिसाइड लगी होगी, या तो कोई भी इंसेक्टिसाइड लगी होगी, या लगी नहीं होगी तो उसमें एक पाउच आएगा, जो पाउच में हो सकता है फंगिसाइड हो या फिर कोई कीटनाशक हो सकता है। तो अगर वो ऑलरेडी पैकेट में है तो इसका मतलब ये है कि वो बीज को उपचार करने के लिए सफिशियंट है। लेकिन जैसा आपने कहा कि भाई कोई किसान भाई खुद का बीज इस्तेमाल करना चाहे तो उसको उपचार करना चाहिए, नहीं करना चाहिए?
0: जी
1: बिल्कुल करना चाहिए, और हम लोग बीज उपचार इसलिए करते हैं कि उसमें कोई हानिकारक कीट ना लगे, कोई रोग ना लगे, और अच्छी पैदावार के लिए हम उसमें राइजोबियम का टीका लगाते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो हमारी दलहन फसलें जो होती है ना वो सभी लेग्यूम होती हैं, और लेग्यूम का करेक्ट होता है कि उनकी जो जड़ें हैं उन जड़ों में गांठें होती हैं, गांठें में राइजोबियम होता है, तो राइजोबियम के थ्रू हमारे जो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उसको स्त्री करके रूट में राइजोबियम लिया। तो जो किसान भाई अगर खुल का बीज इस्तेमाल कर रहे हैं तो बिल्कुल वो उसका उपचार करें उसको।

0: उपचार करने के तरीका ये होता है, पहले तो फफूंदनाशक से वो सीड को मिलाएं, उसके बाद उसमें लगाए हानिकारक कीटों को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी जो रेट होती है, जैसे मैं बोलूँ आपको, फफूंदनाशक जो है वो 2 ग्राम मात्रा को 1 किलोग्राम सीड में मिला करके मिक्स करके लगा सकते हैं। दूसरा कीटनाशी है, उसका 4 से 5 ml ले सकते हैं, वो कोई भी हो सकती है, जैसे इमिडाक्लोप्रिड हो सकती है, या अगर कहीं टर्माइट का ज़्यादा प्रकोप होता है तो वहाँ क्लोरोपाइरीफॉस ले सकते हैं। उसके बाद टीका लगाते हैं हम लोग उसमें, और जो टीका उसमें क्या है कि बायोफर्टिलाइजर होते हैं राइजोबियम, तो उसका 1 पैकेट आप ले सकते हैं 1 हेक्टर के लिए। तो 200 ग्राम जो मात्रा है वो सफिशियंट होती है हमारे 1 हेक्टर के लिए। तो इस तरह से आप उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं।
1: तो डॉक्टर साहब, बात आई कि चलो उपचारित हमने बीज किया, लेकिन एक विशेषता जैसे आपने कहा कि जो बीज हम नया लेंगे वो उपचारित भी हमें मिलेगा, तो अब किसान भाई के मन में ये भी प्रश्न बनता है कि बीज कहाँ से लें
0: जी
1: और उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए।
0: देखिए, बीज के स्रोत तो काफी हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि किसान भाई अच्छी उन्नत किस्मों का बीज एक ऑथेंटिकेटेड जगह से लें। जैसे हमारे ICAR के इंस्टीट्यूट भी हैं, वहाँ भी आप ले सकते हैं, और हमारे जो राज्य के कृषि विश्वविद्यालय हैं उनके KVK भी होते हैं, वहाँ से भी वो ले सकते हैं, और हमारा NSC का जो काउंटर होते हैं, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, वहाँ से भी किसान भाई ले सकते हैं। स्टेट सीड कॉर्पोरेशन भी होते हैं, वहाँ से भी ले सकते हैं, और कुछ प्राइवेट एजेंसी भी जो परमिटेड है ऑलरेडी, वहाँ से भी किसान भाई सीड ले सकते हैं। अब बात आती है क्वांटिटी की। जैसे अब बात करूँ मैं चने की, चने में जैसे एक तो हम बोना चाहते हैं देसी चना, तो देसी चने की 80 किलोग्राम मात्रा 1 हेक्टर में चाहिए, और जो काबुली चना है उसकी करीब करीब 100 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से आपकी क्वांटिटी चाहिए सीड की। ऐसे ही बात करूँ मैं लेंटिल की, तो लेंटिल में भी कई तरह की होती है, लेकिन ऑन एन एवरेज 30 से 35 किलोग्राम लेंटिल आपको 1 हेक्टर में सफिशियंट होगी। बात आती है मटर की, मटर भी अब 2 तरह के होते हैं, एक तो हम दाने के लिए उगाते हैं, एक हम उगाते हैं वेजिटेबल के लिए। तो जो वेजिटेबल पी होता है उसमें क्वांटिटी ज़्यादा होती है, जैसे कोई किसान भाई दाने के लिए अगर मटर बो रहा है तो उसकी जो मात्रा होती है वो करीब करीब 90 से 100 किलोग्राम होती है। अगर हम बात करें वेजिटेबल की, तो वेजिटेबल थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ा देते हैं हम, 115 किलो के हिसाब से उसको हम लगाते हैं। तो इस तरह क्वांटिटी आप फिक्स कर सकते हैं, और इसको आप बिल्कुल ले आए, क्योंकि अभी मौसम हो रहा है, अभी बुआई का समय आने वाला भी है।
1: डॉक्टर साहब, जो बुआई के समय की बात है
0: जी,
1: कई बार ऐसे कि हमारे जो किसान भाई बहन है जिन्होंने अगेती धान की फसल लगाई होगी तो उनके खेत खाली होंगे
0: जी,
1: कुछ हैं कि जो भी खाली करने में लगे हैं, धीरे धीरे समेट रहे हैं, फसल प्रबंधन उनका चल रहा है
0: जी,
1: तो ऐसे में क्या उचित समय है तैयारी करना शुरू कर दें
0: जी,
1: तो किस प्रकार से हम कर सकते हैं इस समय बुआई खेत में?
0: बिल्कुल, देखिए रबी का जो मौसम शुरू होता है हमारा, वो हमारे होता है अक्टूबर के लास्ट वीक में या नवंबर के फर्स्ट वीक से शुरू होता है। तो देखो, ये जो समय है बुआई का, ये तय होता है कि हमारा जो एटमोस्फेयर का तापक्रम कितना है। तो जब तापक्रम डाउन होता है थोड़ा, जैसे करीब मैं बताऊँ आपको, जैसे 22 डिग्री या 25 डिग्री तक टेम्परेचर गिर जाता है, तो उस समय हम इन फसलों की बुआई कर सकते हैं।
1: तो बिल्कुल डॉक्टर साहब, कह सकते हैं कि अक्टूबर का जो प्रथम पखवाड़ा है उसको छोड़ दें और उसके बाद में हम दलहनी फसलों की बुआई कर सकते हैं। तो खेत की तैयारी कैसे करें?
0: क्योंकि जैसा आपने बोला कि कहीं धान उगा रखा है, तो कहीं बाजरा है, तो कहीं और अन्य प्रकार की फसलें उगाई खरीफ में, तो कुछ फसलें तो क्या है कि शॉर्ट ड्यूरेशन की होती हैं, जैसे किसी ने मूंग बोया होगा तो मूंग तो उन्होंने हार्वेस्ट कर लिया होगा, बाजरा भी हार्वेस्ट चल रहा है अभी। जैसे हमारा खेत खाली होता है, तो खाली होने के बाद क्या होता है ना कि हमारे खेत में काफी क्रॉप रेजिड्यू बच जाते हैं, तो उसके लिए हमें करना होता है कि पहली बात तो है कि उसमें मॉइस्चर कितना है। अगर सफिशियंट मॉइस्चर है जमीन में तो आप बिल्कुल उसमें रोटावेटर चला सकते हैं, और मॉइस्चर कम है थोड़ा सा तो उसमें पहले कल्टीवेटर चलाएंगे, कल्टीवेटर के बाद हम रोटावेटर चलाएंगे। रोटावेटर हम इसलिए चलाते हैं क्योंकि जो खरीफ की जो फसल है उसके जो क्रॉप रेजिड्यू है, अवशेष है, वो पड़े रहते हैं, तो उनको मिट्टी में अगर मिक्स कर देंगे तो वो बिल्कुल अच्छे से डिकम्पोज हो जाएंगे और उनकी खाद बन जाएगी।
1: डॉक्टर साहब, खेत की तैयारी के बाद बुवाई करते समय ही हमें कुछ ऐसी बातें निश्चित रूप से ध्यान में रखनी होंगी कि हमारा उत्पादन अच्छा हो। कई बार देखा है कि हमने दलहनी फसल की बुवाई की और हमारे जो बीज का जो जमाव है वो बहुत दूर दूर खेत में हुआ, या कई बार हमने इतना बीज लगाया कि वो बहुत ज्यादा घिन की सघन हो गई।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: तो इसमें बड़ी समस्याएं आएंगी, उत्पादन में भी, निराई गुड़ाई में भी, खरपतवार नियंत्रण में भी। तो शुरू से विशेष ध्यान जो हमें देना है वो बुवाई के समय देना है, तो कौन कौन सी बातों का हम ध्यान रखें?
0: देखो, अगर बुवाई आप कर रहे हैं तो इसमें कई चीजें आपको ध्यान रखनी होती है। अब हम बुवाई कैसे करें, कई बार क्या है किसान भाई ब्रॉडकास्ट से कर देते हैं, और अब तो किसान भाई एडवांस हो गए हैं तो अभी वो लोग कतार में बुआई करते हैं, यानी कि सीड्रिल का इस्तेमाल भी करते हैं
1: जी।
0: तो मैं यही कहूंगा कि पहली बात तो ये है कि सीड्रिल का इस्तेमाल करो, दूसरी बात ये होती है कि बुआई का जो डेप्थ होती है वो कितनी होनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
1: बिल्कुल,
0: अगर बीज ज्यादा गहरा चला गया तो नहीं उगेगा, और बीज अगर ऊपर रह गया तो भी नहीं
1: उगेगा,
0: तो इसलिए दोनों कंडीशन में बीज नहीं उगेगा। इसलिए इसकी ऑप्टिमम डेप्थ होती है, चने के लिए मैं बताऊं, चने की जो डेप्थ होती है वो होती है 8 सेंटीमीटर, थोड़ा गहरा बोएंगे तो चना बहुत बढ़िया उगेगा आपका। और जैसे आप बात करो मैं लेंटिल, लेंटिल का सीड थोड़ा सा छोटा होता है, इसलिए इसका 5 से लेकर 6 सेंटीमीटर पे आप बो सकते हैं, और डिपेंड करता है कि नमी कैसी है, कितनी है। जनरली हम लोग चने की जब बात करते हैं तो चने में जो कतार से कतार की दूरी जो होती है वो होती है करीब करीब 30 से 35 सेंटीमीटर, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इससे कम भी नहीं होनी चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, ये तो बात रही कि किस प्रकार से हमें बुआई करनी है, बहुत सावधानी से ध्यान रखना है ताकि उत्पादन अच्छा हो, लेकिन

0: ये जो पोषक प्रबंधन की बात आती है कि कई बार हम बुवाई के समय ही हमें कुछ ना कुछ पोषक तत्व तो खेत में डालने होते हैं और कुछ बाद में भी हम फिर डालते रहते हैं, तो पोषक प्रबंधन के विषय में आप क्या?
1: देखिए, ज्यादातर क्या होता है कि जो हमारे 17 न्यूट्रिएंट होते हैं वो फसल के लिए आवश्यक होते हैं, तो उसमें जैसे नाइट्रोजन छोड़ दें ताकि सभी जितने भी आपका जो न्यूट्रिएंट है, जितने भी पोषक तत्व हैं, उनको हम लोग बुवाई के समय ही डाल देते हैं, चाहे वो आपका मेजर न्यूट्रिएंट हो चाहे माइक्रो न्यूट्रिएंट हो। जैसे मेजर में जैसे बात करूँ, मैं आपको फास्फोरस है, पोटास हो गया, दूसरे सेकेंडरी वाले जो होते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर हो गया, फिर बाद में माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है जिंक है, आयरन है, जो भी है, मैग्नीज, बोरोन। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि आपकी जो सॉइल है उसका आपने टेस्ट करवाया या नहीं करवाया, क्योंकि सोइल टेस्ट से पता लगता है कि आपकी जमीन में कौन सा न्यूट्रिएंट ज्यादा है कौन सा कम है। उसी तरह से आप इनकी क्वांटिटी फिक्स करेंगे, अगर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है, कम है, तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। ये सब बुवाई के समय करना पड़ेगा। दूसरी बात ये होती है कि जो जितनी भी दलहनी फसलें होती हैं, तो ये अपनी नाइट्रोजन की जो आपूर्ति है वो खुद ही कर लेती है, तो इसलिए हमको बाहर से कोई नाइट्रोजन देने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर भी हम किसान भाई से बोलते हैं कि आप 15 से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन दे सकते हो, लेकिन वो शुरुआत में दे सकते हैं, बाद में जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि शुरुआत में क्या होता है ना, जब हमारी क्रॉप 25 दिन की होती है या 30 दिन की होती है, तब तक उसमें गांठें नहीं बनती है जड़ों में, तो तब तक उसकी नाइट्रोजन की पूर्ति कोई भी खाद देने से कर सकते हैं, देसी खाद दे सकते हैं।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में यही उम्मीद होती है कि अच्छे से अच्छा उत्पादन हमारे किसान भाई बहन लें। आप कार्यक्रम में उपस्थित हुए, इतनी अच्छी जानकारी आपने दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।
2: प्रीति बहन
3: जी,
2: अभी हमारे किसान भाई बहन सुन रहे थे ये बातचीत। बातचीत का विषय था रबी दलहनी फसलों की उन्नतशील किस्में एवं बुवाई। जानकारी दे रहे थे डॉक्टर समर्थ लाल मीना, जो कि प्रधान वैज्ञानिक सस्य विज्ञान संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली, और इनसे बातचीत कर रहे थे अमित तेवतिया।
3: और आइए अब हम आपको सुनवाते हैं ओमवीर आर्या की आवाज में ये उपदेश।

0: भाइयों, अभी आपने ओमवीर आर्या की आवाज़ में सुना ये उपदेश, और इसी के साथ कार्यक्रम कृषि जगत यही संपन्न होता है। सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को राम
1: राम
0: राम।
1: राम।
0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पाराशर और संयोजक शिवनंदन लाल।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं गजलें। सबसे पहली गजल भूपेंद्र सिंह जी की आवाज़ में।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गजलें जगजीत सिंह जी की आवाज में। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। दिल्ली पुलिस की 1,789 करोड़ रुपए की अत्याधुनिक यातायात प्रबंधन प्रणाली परियोजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर ई वॉल्व कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। दिल्ली विधानसभा

0: विस्तार से मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने आज विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये निर्णय किसानों की उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
1: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए MSP तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही MSP में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सेफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है MSP।
0: कुसुम के लिए सबसे अधिक 675 रुपए प्रति क्विंटल वृद्धि की गई है। सरसों और खसखस के लिए MSP 413 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाई गई है। श्री वैष्णव ने बताया कि मसूर के लिए MSP में 390 रुपए, जौ के लिए 136 रुपए, चने के लिए 83 रुपए और गेहूं के लिए 25 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने दिल्ली पुलिस की 1,789 करोड़ रुपए की अत्याधुनिक यातायात प्रबंधन प्रणाली ITMS को अपनी मंजूरी दे दी है। ITMS का उद्देश्य यातायात प्रबंधन को वास्तविक यातायात स्थितियों के मुताबिक सक्षम बनाकर मौजूदा उपलब्ध सड़कों का बेहतर उपयोग करना है। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज नीति अनुसंधान और शासन केंद्र द्वारा आयोजित इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर ईवॉल्व कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। उपराज्यपाल ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ना सिर्फ परिवहन में बदलाव नहीं है, बल्कि इससे ऊर्जा, विनिर्माण और शहरी नियोजन में भी एक बड़ा बदलाव आएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और पीएम ई ड्राइव के सहयोग से भारत एक मजबूत और स्वदेशी इलेक्ट्रिक वाहन तंत्र को तैयार कर रहा है। श्री संधू ने कहा कि स्वच्छ सार्वजनिक परिवहन, भरोसेमंद चार्जिंग सुविधाओं और आसान लास्ट माइल कनेक्टिविटी से लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और बेहतर होगी और प्रदूषण भी कम हो जाएगा। सरकार ने यात्री वाहनों के लिए कॉर्पोरेट औसत ईंधन दक्षता नियम अधिसूचित कर दिए हैं। ये किसी वाहन कंपनी द्वारा बनाए गए सभी यात्री वाहनों की औसत ईंधन खपत और दक्षता से जुड़ा मानक है। ये नए नियम मौजूदा कॉर्पोरेट औसत ईंधन दक्षता का स्थान लेंगे। नए नियम अगले वर्ष 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगे और 31 मार्च 2032 तक प्रभावी रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार CAFE मानकों के तहत हर वर्ष ईंधन दक्षता के लक्ष्य को और कड़ा किया जाएगा। ईंधन खपत का मानक 2027-28 में 3.9 लीटर प्रति 100 किलोमीटर से घटाकर 2031-32 में 3.32 लीटर प्रति 100 किलोमीटर किया जाएगा, यानी इस अवधि में ईंधन दक्षता में लगभग 16% से अधिक सुधार होगा। ये नियम भारत में बिक्री के लिए बनाए या आयात किए जाने वाले नए यात्री वाहनों पर लागू होंगे। ये ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए अधिक विनियामक स्पष्टता और स्थिर नीतिगत ढांचा प्रदान करेंगे। इससे तकनीकी नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने पेरू की अपनी अध्ययन यात्रा के दौरान पेरू की संसद का दौरा किया। दौरे में श्री गुप्ता ने पेरू के सीनेटर विक्टर सेफरिनो फ्लोरेस रुइज के साथ चर्चा की। विधानसभा अध्यक्ष ने सीनेटर फ्लोरेस रुइज को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा और नेतृत्व पर आधारित पुस्तक द पार विद इन भी भेंट की। इस संवाद ने भारत और पेरू के बीच आपसी समझ और सहभागिता को मजबूत करने में संसदीय और संस्थागत आदान प्रदान के बढ़ते महत्व को रेखांकित किया। इस दौरे का केंद्र संसदीय प्रक्रियाओं, विधायी कार्य प्रणाली और लोकतांत्रिक संस्थाओं के संचालन से संबंधित विषय रहे। ये संवाद दोनों विधायिकाओं के बीच व्यापक स्तर पर संस्थागत अनुभवों के आदान प्रदान का हिस्सा रहा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम भाजपा को जानो के अंतर्गत आज श्रीलंका की सत्ताधारी पार्टी जनता विमुक्ति पेरेमुना JVP के प्रतिनिधिमंडल ने आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा से बातचीत की।

0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि उन्होंने प्रतिनिधिमंडल के साथ शासन और जनसेवा से जुड़े अपने विचार साझा किए। इस दौरान दिल्ली सरकार की प्रमुख उपलब्धियों, कार्य पद्धतियों और 10 प्रमुख कार्यक्रमों पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि प्रतिनिधिमंडल ने श्रीलंका में इसी तरह की पहल और शासन से जुड़े अपने अनुभव भी साझा किए। वहीं दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत श्रीलंका संबंधों को एक नई ऊंचाई मिली है। उन्होंने कहा है कि दोनों देशों के संबंध सिर्फ कूटनीतिक नहीं हैं, बल्कि सभ्यता, संस्कृति और आस्था से भी जुड़े हैं। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ पंकज कुमार सिंह ने आज सिविल लाइन स्थित विकास भवन 2 में AI प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। इस सेंटर को दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों को AI और उभरती हुई नई तकनीक की प्रैक्टिकल प्रशिक्षण देने के लिए बनाया गया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सरकारी अधिकारियों को अपने रोजमर्रा के काम में AI को अच्छी तरह समझने और उसका इस्तेमाल करने में सक्षम बनाना है। साथ ही गोपनीयता और साइबर सुरक्षा के जरूरी मानकों को बनाए रखना भी उन्हें सुनिश्चित करना है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आयोजित सफाई मित्र सुरक्षा एवं सम्मान शिविर में शामिल हुई। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि शिविर में सफाई मित्रों, स्वच्छाग्रहियों और उनके परिजनों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर केंद्र का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी सफाई कर्मियों का सम्मान, सुरक्षा और कल्याण दिल्ली सरकार का संकल्प है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सफाई मित्र अपने परिश्रम और सेवा भाव से हर दिन दिल्ली को और स्वच्छ और सुंदर बनाते हैं। उनकी कर्म निष्ठा ही स्वच्छ दिल्ली की शक्ति है।
1: स्वच्छता जितनी आपकी जिम्मेवारी है, उतनी ही दिल्ली के हर एक नागरिक की जिम्मेवारी है, हर एक अधिकारी की जिम्मेवारी है, हम सब की जिम्मेदारी है और मिल करके दिल्ली को सबसे साफ, सबसे सुंदर शहर बनाना यही हमारा ध्येय है।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आज मालवीय नगर में गीतांजलि फायर स्टेशन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने दिल्ली फायर सर्विस के बेड़े में 20 फायर रिस्पांस मोटरबाइक और 26 क्विक रिस्पांस व्हीकल्स को झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार का ये संकल्प है कि राजधानी के हर नागरिक को आपात स्थिति में तेज, प्रभावी और पेशेवर अग्निशमन और बचाव सेवा उपलब्ध हो।
2: कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि बदलते समय और दिल्ली की बढ़ती आबादी के साथ फायर सुरक्षा व्यवस्था को भी आधुनिक तकनीक, बेहतर संसाधनों और तेज प्रतिक्रिया क्षमता से लैस करना आवश्यक है। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि इसी दिशा में दिल्ली फायर सर्विस की क्षमताओं को चरणबद्ध तरीके से मजबूत किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सेवा संकल्प अभियान का मूल उद्देश्य दिल्लीवासियों के जीवन को अधिक सुरक्षित, सुविधाजनक और भरोसेमंद बनाना है। उन्होंने बताया कि फायर सुरक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयास इसी व्यापक संकल्प का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि बेहतर बुनियादी ढांचे के साथ तेज प्रतिक्रिया क्षमता, रणनीतिक तैनाती और आधुनिक उपकरणों के माध्यम से दिल्ली की आपातकालीन सेवाओं को लगातार मजबूत किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त गीतांजलि फायर स्टेशन के संचालन के साथ दिल्ली फायर सर्विस के कार्यरत फायर स्टेशनों की संख्या बढ़कर 71 हो गई है। यहां 16 अग्निशमन कर्मियों के साथ एक छोटा फायर टेंडर, एक क्विक रिस्पांस व्हीकल और आवश्यक अग्निशमन और बचाव उपकरण उपलब्ध हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए नीतिका गुप्ता।
0: भारतीय रेल द्वारा जल अवसंरचना को सुदृढ़ करने और जल सुरक्षा प्रबंधन के बारे में जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल ने दिल्ली क्षेत्र के प्रमुख रेलवे स्टेशनों नई दिल्ली, दिल्ली जंक्शन और आनंद विहार टर्मिनल पर जलापूर्ति प्रणालियों के व्यापक उन्नयन के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है। इस पहल का उद्देश्य सिर्फ जल की गुणवत्ता के अंतिम स्तर पर जांच तक सीमित न रहकर यात्रियों को स्वच्छ, सुरक्षित और स्वास्थ्यकर पेयजल की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करना है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रमुख महिला महाविद्यालयों के प्राचार्य, कुलपति, दिल्ली पुलिस और सिविक एजेंसियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक का उद्देश्य महाविद्यालयों के कैंपस और उसके आसपास छात्रों की सुरक्षा को और बेहतर बनाना है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज उपराष्ट्रपति भवन में भारतीय रक्षा संपदा सेवा IDES के 2025 बैच के प्रोबेशन अधिकारियों से बातचीत की।

0: सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने प्रोबेशनरी अधिकारियों से कहा कि वे रक्षा संपत्तियों की सुरक्षा और नागरिक केंद्रित शासन को बढ़ावा देते हुए ईमानदारी, दृढ़ता और जिम्मेदारी की मजबूत भावना के साथ काम करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशभर के किसानों की आय बढ़ाने के साथ साथ उनके हितों की रक्षा के लिए भी हर संभव प्रयास कर रही है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने 2027-28 मार्केटिंग सीजन के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को अपनी स्वीकृति दे दी है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से ये सुनिश्चित होगा कि देशभर के लाखों किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट्स फेडरेशन और ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन ने शुक्रवार को नो यूपीआई डे मनाने के अपने प्रस्तावित फैसले को वापस लेने का निर्णय लिया है। ये फैसला नई दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और लगभग 20 वरिष्ठ व्यापारिक नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई बैठक के बाद दिया गया है। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भाजपा सांसद और कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल कर रहे थे। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग ने अंग्रेजी में आकस्मिक समाचार संपादक और वाचक के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसके लिए इच्छुक उम्मीदवार 12 अक्टूबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं newsonair.gov.in से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये कार्यक्रम यूपीएससी की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने वायु प्रदूषण नियंत्रण उपायों के सख्त, समन्वित और समयबद्ध कार्यान्वयन का आह्वान किया है। कल नई दिल्ली में एक बैठक में आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण को लक्षित रूप से कम करने के लिए संबंधित एनसीआर राज्य सरकारों और कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा की जा रही तैयारियों, कार्यान्वयन और अनुपालन उपायों की स्थिति की समीक्षा की। राजधानी दिल्ली में आज मौसम सामान्य बना रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 34.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 22.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली पुलिस की 1,789 करोड़ रुपए की अत्याधुनिक यातायात प्रबंधन प्रणाली परियोजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर ई वॉल कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने पेरू संसद दौरे में भारत पेरू संबंधों को मजबूत करने में संसदीय सहयोग के महत्व को रेखांकित किया। और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने वायु प्रदूषण नियंत्रण उपायों के सख्त, समन्वित और समयबद्ध कार्यान्वयन का आह्वान किया। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आइए श्रोताओं, चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। कार्यक्रम का नाम गीत मालिका। जी हाँ श्रोताओं, मैं रचना अग्निहोत्री आप सभी का स्वागत करती हूँ कार्यक्रम गीत मालिका में। श्रोताओं, कहते हैं ना, कुछ गीत सिर्फ सुने नहीं जाते, वो दिल में उतर कर याद बन जाते हैं। तो आइए कार्यक्रम का पहला गीत ऐसा ही याद बनाने वाला।

श्रोतो, ये गीत हमने लिया था फिल्म तमाशा से। आवाजें थी अलका याग्निक और अरिजीत सिंह जी की। और इसी के साथ चलते हैं अगले गीत की तरफ। जी हाँ श्रोताओ, वक्त गुजर जाता है, मौसम बदल जाते हैं, मगर कुछ गीत ऐसे होते हैं जो सुनते ही पुराने दिन लौट आते हैं यादों की तरह।

0: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
1: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
0: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
1: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
0: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
1: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओ, ये गीत हमने लिया था फिल्म मैं हूं ना से, और आवाजें थी के और वसुंधरा दास की। जी हाँ श्रोताओ, यादों का भी अपना एक अंदाज होता है। कभी आंखों में नमी तो कभी होठों पर मुस्कान होती है। कुछ मुलाकातें छोटी होकर भी बहुत खास हो जाती हैं, और कुछ यादें उम्र भर हमारे साथ रहती हैं।

0: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
1: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
0: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
1: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
0: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
1: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओं, ये गीत हमने लिया था फिल्म चलते चलते से और आवाज थी अभिजीत जी की। जी हाँ श्रोताओं, एक धुन बजती है और कोई अपना याद आ जाता है, जैसे बीता हुआ कोई खूबसूरत सा पल। फिर से वही गाने, वही धुन, वही प्यारा सा गीत फिर से सुनने को मिल जाए तो वही यादें दोबारा से हमारे मस्तिष्क में आ जाती हैं, है ना।

श्रोताओ, ये गीत हमने लिया था फिल्म मरजावा से। आवाज़ थी अरिजीत सिंह जी की। श्रोताओ, कुछ रिश्ते शब्दों में नहीं यादों से जुड़े होते हैं और कुछ गीत उन्हीं रिश्तों को आवाज़ दे देते हैं, उनकी आवाज़ बन जाते हैं। वही पुराने लम्हे फिर से ताज़ा हो जाते हैं हमारी यादों में।

श्रोताओं, ये गीत हमने सुना ज्योति नोरा और अरिजीत सिंह जी की आवाज में फिल्म संयोनी से। जी हाँ श्रोताओं, यादें भी कितनी अजीब होती हैं, दूर रहकर भी पास होती हैं। आंखें बंद करो तो सामने, और आंखें खोलो तो दिल में बस जाती हैं।

श्रोताओं, ये गीत हमने लिया था फिल्म सिम्बा से। आवाज थी अरिजीत सिंह और असीस कौर की। श्रोताओं, कुछ गीतों की खासियत होती है कि वो हमें हमारे ही पुराने पल तक ले चले जाते हैं। एक धुन बजती है और अचानक कोई चेहरा याद आ जाता है, कोई मुलाकात याद आ जाती है, या फिर जिंदगी का कोई खूबसूरत मोड़। इसीलिए तो संगीत को यादों का सबसे खूबसूरत साथी कहा जाता है।

श्रोताओं, ये गीत हमने लिया था फिल्म हीरोपंती से और आवाज थी अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल जी की। दोस्तों, हमने जो महसूस किया और जो कहा नहीं गया हमसे, जो शायद हम कभी कह भी नहीं पाते,

यही सब किसी गीत की पंक्तियों में सुनाई दे जाए तो? दिल की बातें अक्सर जुबां कह ही नहीं पाती, लेकिन एक गीत उन्हें कितनी आसानी से कह जाता है ना?

श्रोताओं, ये गीत हमने लिया है फिल्म लव आजकल से और आवाज है मोहित चौहान जी की। और इसी गीत के साथ मुझे यानी रचना अग्निहोत्री को यहीं पर इजाजत दीजिए कार्यक्रम समेटने की।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत मालिका। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। आइए अब चलते हैं समाचार संध्या की ओर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्र ने वर्ष 2027-28 के दौरान सभी रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को स्वीकृति दी। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में वर्तमान खरीफ मौसम में दलहन और तिलहन की खरीद के लिए 5,548 करोड़ रुपए की मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की अंतरराज्यीय विद्युत पारेषण नेटवर्क मजबूत करने के लिए हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण की स्वीकृति। दिल्ली के लिए अत्याधुनिक यातायात प्रबंध प्रणाली की भी मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टेलीफोन पर बातचीत में व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में आपसी सहयोग की समीक्षा की। गुजरात आतंकरोधी दस्ता, भारतीय तटरक्षक बल और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के संयुक्त अभियान में 5 पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार। ईरानी नाव से 526 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त। और

0: चुनाव आयोग सभी तरह की शिकायतें सुनता है और उस पर अमल भी करता है और उसको ठीक भी करता है। तो यहाँ मैं फिर से एक बात कहना चाहूंगा कि बार बार इस तरह का एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करना कि जो विपक्ष है वो मतदाता सूचियों में उसको गड़बड़ दिखती है, ईवीएम जैसे मुद्दों को लगकर उनको लगता है कि चुनाव आयोग जो है बिल्कुल फेल हो गया है और हमको फिर से वापस मत पेटियों में जाना चाहिए, तो ये संभव नहीं है। पूरी दुनिया हमारी ओर देखती है कि हम इतना बड़ा लोकतंत्र है और हम एक सफल लोकतंत्र चुनाव करवा लेता है बिना किसी तरह की हिंसा के, और इतने बड़े देश में जिसमें इतनी पार्टियां हैं, इतनी विविधता है, राज्यों में अलग पार्टियां हैं, इतने सिंबल ढूंढने मुश्किल हो जाते हैं जितनी पार्टियां हैं, लेकिन जब लोग देश की जनता, आपने शुरू में कहा देश की जनता का लोकतंत्र में विश्वास है, तभी तो हम देखते हैं कि कैसे सरकारें पलटती हैं। तमिलनाडु में जो हुआ क्या वो लोकतंत्र की जीत नहीं है? केरला में सरकार बदली। तो अगर सरकार जनता बदलती है तो फिर हमें उस हार को स्वीकार करना चाहिए और जनता का विश्वास प्राप्त करने के लिए राजनीतिक दलों को प्रयास और करना चाहिए, ना कि चुनाव आयोग में गलतियां निकालें और अपनी जो हार है उसका जो ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़े। मुझे लगता है ये बंद होना चाहिए। और हम देखिए अभी बात कर रहे थे कि जो अपराधी छवि के उम्मीदवार हैं उनको रोकने की बात चुनाव आयोग करता है, लेकिन क्या राजनीतिक दलों की जिम्मेवारी नहीं बनती कि वो अपराधी छवि वाले उम्मीदवारों को टिकट ही नहीं दें? लेकिन फिर भी पिछले दरवाजे से टिकट देने की कोशिश की जाती है। तो राजनीतिक दलों की जो अपनी जिम्मेवारी है कि भारत के लोकतंत्र में संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जो चुनाव आयोग है, जो चुनाव प्रक्रिया है, उसको हम और मजबूत करें, उसमें हैं खामियां तो उसको ठीक करें, लेकिन अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते हम
1: जी।
0: अगर हम अपराधी छवि के उम्मीदवारों को टिकट देंगे, महिलाओं को टिकट नहीं देते, तो उसके लिए हमको बिल लाना पड़ता है, महिलाओं का भागीदारी करने के लिए रिजर्वेशन करें, तो ये जो जिम्मेवारी सभी पार्टियों की है, राजनीतिक दलों की, उससे राजनीतिक दल भाग नहीं सकते या कोई भी राजनीतिक दल। तो इसमें शुचिता बनाए रखना, उसमें हमको पारदर्शिता बनाए रखना, उसको और मजबूत बनाना प्रक्रिया को, ये सब दलों की भागीदारी से ही हो सकता है। और इसलिए चुनाव आयोग को अगर सहयोग करेंगे, इसलिए चुनाव आयोग हर चुनाव में तो नई नई एक तरह से बातें लाता है, उनका समर्थन करना पड़ेगा, न कि हम हार के बाद अपना ठीकरा जो है वो चुनाव आयोग पर फोड़ें और उसमें अगर हम अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश करें या अपनी विफलता को जो है छुपाने की कोशिश करें और उसमें फिर आज जैसे मैंने पहले भी कहा कि विपक्षी एकता ढूंढने की कोशिश हो रही है, क्योंकि विपक्षी एकता के लिए कोई मुद्दा नहीं मिल रहा था तो ये एक मुद्दा है, लेकिन आज हमने देखा कि कई राजनीतिक दल उसमें नहीं गए, तमिलनाडु की पार्टी उसमें नहीं गई, क्यों? उनको लगा था कि हमको तो जनता ने मैंडेट दिया और हम एक अच्छे चुनावी प्रक्रिया में से जीत कर आए हैं, वो नहीं गए, यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी भी नहीं गई, एक जो बनाया गठबंधन इंडिया अलायंस हम उसके अंदर है नहीं, वो भी नहीं गए, तो कई और राजनीतिक दल क्षेत्रीय दलों ने भी इसका बहिष्कार किया। तो राजनीति रोटने सेकने के लिए क्या केवल चुनाव आयोग ही एक मुद्दा बचा है? देश में और बहुत सारे मुद्दे हैं, बड़े ज्वलंत मुद्दे हैं, उनको उठाकर एक तरह से विपक्षी एकता का प्रयास करना चाहिए। किसी एक नेता पर विपक्ष इकट्ठा नहीं होता है तो उसके लिए ढूंढो, अभी तक कोई मुद्दा नहीं था तो अचानक एक मुद्दा SIR का आ गया, अब उसको लेकर बवंडर किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि नहीं ये तो मुख्य चुनाव आयुक्त का जब तक त्याग पत्र नहीं होगा हम तब तक आंदोलन करेंगे, तो अब आंदोलन की भी कोशिश होगी। तो मुझे लगता है ये कोई बहुत स्वस्थ परंपरा का हम नहीं कर रहे हैं और इससे बचना चाहिए देश को।
1: SIR को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने जो फार्म 6 है जो नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, उसमें जो अतिरिक्त जानकारी मांगने का कॉलम था उसको हटाने का निर्देश दिया है। SIR को लेकर के एक सवाल अक्षय जी ये भी उठ रहा है कि इसके जो प्रस्तावित उपाय हैं, जितने भी प्रपोज जो कदम उठाए गए हैं, उससे मताधिकार छीना जा रहा है, तो क्या ये राजनीतिक दलों का सिर्फ प्रोपेगंडा है या इसमें सच्चाई क्या है?
2: देखिए, जो इलेक्टोरल रोल जो होता है वो है फाउंडेशन ऑफ इलेक्शन और उसका आधार है इलेक्शन की और एक हिसाब से लोकतंत्र का आधार बनता है। तो इलेक्टोरल रोल में दो चीज होना चाहिए, उसमें होना चाहिए वैध नाम जिसका सारे एलिजिबिलिटी है, 18 साल के ऊपर हो, भारत की सिटीजन हो, कोई उसका नाम में केस वेस नहीं होना हो और वो कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, यही तो है आर्टिकल 326 में
1: जी।
2: उन सबका नाम इसमें होना चाहिए और जो इनमें क्वालिफाई नहीं करते उनका नाम नहीं होना चाहिए। मर गया है तो उसका नाम नहीं होना चाहिए, वहां रहता नहीं है, परमानेंटली शिफ्ट हो गया है तो नाम नहीं रहना चाहिए, और किसका नाम दो जगह में भी नहीं।

0: रहना चाहिए, ठीक है। तो इसको अगर कोई भी तरह से करने का कोशिश किया जाए, चाहे उसका नाम जो भी बोला जाए, जैसा यार नहीं बोल के और कुछ बोल दिया जाए, पहले तो हर साल एनुअल समरी रिवीजन होता था, उसमें भी करना के आवश्यक है, लेकिन थोड़ा ऐसा यार जो है उसमें इंटेंसिटी ज्यादा है। मानो एक दवाई है, ये हायर ऑर्डर एंटीबायोटिक है, क्योंकि उसमें पुनर्ग्रहण तो इसलिए बोला जाता है क्यों, एक बेस फिर से शुरू होता है। अगर मन में है कि नहीं बहुत कुछ लोगों को रहना नहीं है इसके अंदर और आ गए हैं नाम, उन नाम को निकालना है, चाहे उसको आप पॉलिटिकली कुछ नाम दें या एडमिनिस्ट्रेटिवली कुछ नाम दें, नॉन सिटीजन जो भी नाम दें, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन उनका नाम नहीं रहना चाहिए। तो उनको निकालना तो कोई खराब नहीं है, और एसआईआर में अगर उसको निकाला जा रहा है तो है, लेकिन कितने लोग ऐसा है वो देखना पड़ेगा। दूसरी बात है कि जो इंक्लूजन का मुझे लग रहा है, अभी इसलिए इलेक्शन कमीशन इसको भी थोड़ा हाथ में लिया है, पहले बहुत होता था। ये एसआईआर का दूसरा डायमेंशन जो है, थोड़ी सी अगर और उसको प्रखर करके लिया जाए, जो कैंपेन बेसिस पर लिया जाए, कि 18 साल के ऊपर में जो भी आ गए हैं उनको अच्छी तरह जोड़ दिया जाए तो मोर इंक्लूसिव होगा। इसीलिए शायद उन्होंने वो भी बुलाया कि नहीं, एक तो है कि फॉर्म वो जो उसके साथ दूसरा अटैचमेंट है जरूरत नहीं है, खास करके इलेक्शन कमीशन खुद ही बोल दिया था नहीं हम और एसआईआर के बाहर इस अटैचमेंट को हम नहीं मांगेंगे, आपने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र भी किया।
1: मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि चुनाव आयोग ने अभी घोषणा की थी, शायद पिछले ही हफ्ते की थी, कि वो कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में जाएगा और कैंपेन करेगा और लोगों को जोड़ेगा जो 18 साल के हो चुके हैं,
0: वो एक मरहम जैसा होगा। मेरा काफी दिनों से यही सुझाव रहा है कि जैसे पहले होता था स्वीप के अंदर एक सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन प्रोग्राम बना था, यानी इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन स्वीप, जिसके तहत बहुत यंगस्टर्स को जो भी एलिजिबल यंगस्टर जुड़ा गया था। मुझे लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन को ऐसे करके जो वोटर छूट गए हैं कोई कारण से, लेकिन लेजिटिमेट वोटर्स हैं, उनको सबको जोड़ना चाहिए, और शायद आपने जैसे कहा उन्होंने इसको भी कैंपेन मोड पर लेंगे। अगर इसमें ये करते करते अगर इसमें एसआईआर में जो इंटेंसिव सर्च ऑपरेशन किया जाता है कि भाई देखो कागज पत्र दिखाओ सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं, तो उसमें तो लोगों को तकलीफ होगा और लोगों को कागज भरने पड़ेंगे और चॉइस दिया जाएगा, करेक्शंस होगा। लेकिन आप एसआईआर को तो सुप्रीम कोर्ट ने कई बार लेजिटिमेट मान लिया है, और एसआईआर के अगेंस्ट में कोई कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन इनको इलेक्ट्रल रोल को आप आर्टिकल 324 पर जाए क्या बोलता है, वो नहीं बोलता है कि कंडक्ट ऑफ इलेक्शन का नाम पहले नहीं लेता है। आर्टिकल 324 बोलता है कि सुपरिंटेंडेंट्स एंड डायरेक्शन ऑफ रोल, पहले तो इलेक्ट्रल रोल ठीक से बने और उसे इलेक्शन कमीशन के अनुसार एसआईआर करना जरूरी है, क्योंकि सही इलेक्ट्रल रोल अपडेटेड करेक्टेड क्लीन्ड इलेक्ट्रल रोल बनाना जरूरी है, उसी हिसाब से कर क्या जाए उसमें तो क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। उसमें दो चीज होता है, किसका डिसएनफ्रेंचाइजमेंट होता है क्या, कोई लोगों को जैसे अगर एलिगेशन होता है या कंप्लेंट होता है उसका भी एक प्रोसीजर है, पिटीशन देने का लेवल्स ऑलरेडी लीगली है कि इसके बाद ये नहीं, तो आप डीओ के पास जा सकते हैं, सीओ के पास जा सकते हैं, ड्राफ्ट रोल के बाद फाइनल रोल आने के पहले आप फिर कंप्लेंट कर सकते हैं, कंप्लेंट के लिए पूरा एक महीना रहता है, तो एक प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस। तो मुझे लग रहा है कि डिसएनफ्रेंचाइजमेंट नहीं होना चाहिए, अगर होता है तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि जैसे बताया जाता है ना, एक दो तीन गलत आदमी लिस्ट में आ जाए तो इतना बड़ी समस्या नहीं है, अगर एक जो वैध आदमी जैसे मेरा नाम या किसका नाम जो कि चारों क्वालिफाई करता है सिटीजन बन के और हर तरह से क्वालिफाई करता है, उसका नाम नहीं रहे, मुझे लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन इसके लिए जागरूक है और उनका मशीनरी भी जागरूक, अगर जो करना है उनको इसी में करेंगे, और डिसएनफ्रेंचाइजमेंट करने का किसी को ना कॉन्स्टिट्यूशन का रोल है, कॉन्स्टिट्यूशन इसका आदेश दिया है, ना इलेक्शन मशीनरी का इसे आदेश है, ना इसका किसी मनीषा होना चाहिए। अगर कोई फील्ड में कोई जगह में इसे स्थिति होता है तो कंप्लेन करके रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स को और उनके बॉसेस जो हैं डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, उनके सामने लाना चाहिए। वो बात जरूर है कि फ्रेंचाइज क्यों जो है, आप देखिए देश का जो भी आज बना है वो जो अनमोल फ्रेंचाइज लोगों के हाथ में दिया गया है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज 1950-51 से, तब से तो ये देश बना है। इस देश का जो साख है आजकल, देखिए सॉफ्ट पावर की बात होता है, सॉफ्ट पावर इंडिया की सबसे बड़ा सॉफ्ट पावर है इसका इलेक्टोरल डेमोक्रेसी।
2: मैं अक्षय जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि हटाना ठीक नहीं है, लेकिन अगर घुसपैठिए हैं, जैसे पश्चिमी बंगाल में वोटर लिस्ट में जो बांग्लादेशी घुसपैठिए थे और अवैध नागरिकों के भी जो वोट बनाए गए थे, उनको अगर इलेक्शन कमीशन ने एक प्रक्रिया के द्वारा हटाया और जो एक तरह से एक ऐतिहासिक पहल थी, अब उसका पश्चिम बंगाल की जनता ने तो स्वागत किया, लेकिन ममता बनर्जी का मानना है कि नहीं, उसमें जो जेन्युइन वोटर थे उनके नाम भी काट दिए। तो अगर घुसपैठिए या अवैध नागरिकों को अगर किसी तरह से उन्होंने अपने वोट बना लिए, अब उनको हटाने की प्रक्रिया को भी क्या गलत कहा जाएगा अक्षय जी?
0: बिल्कुल नहीं, क्योंकि सिटीजन जो है वही वोट दे सकता है। हम लोगों के बीच में रहता है लेकिन वो सिटीजन नहीं है, उसको वोट देने का कोई अधिकार नहीं है। और उसमें मैं कोई राजनीतिक नेता को क्या टिप्पणी दिए क्या बोले मैं उसके ऊपर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन आपका ठोस प्रश्न की मेरा ठोस जवाब है, अगर हम लोगों के बीच में कोई भी आग रहता है चाहे 10 साल से

0: साल से 50 साल से, लेकिन सिटीजन नहीं है, कोई कारण से वो रह रहा है, आ गया है अंदर, या कुछ भी कर रहा है, जैसे भी होकर रहा है, तो डेफिनेटली इलेक्टर बनने का अधिकार उसका है नहीं, उसका इलेक्टर रोल में स्थान नहीं होना चाहिए।
1: तो क्या मान लिया जाए अशोक जी की जो पूरी SIR की प्रक्रिया पर सवाल उठाया जा रहा है वो वाजिब मतदाताओं के अधिकारों का एक तरह से विरोध है?
2: नहीं, मैं समझता हूं कि दो प्रश्न है इसमें। एक कि जो अवैध मतदाता है, जो घुसपैठिए हैं, विशेष तौर से जो बांग्लादेशी पूरे देश में फैले हुए हैं, जो नागरिक नहीं है, अगर उनके भी वोट बन गए हैं तो क्या उनको हटाना गलत है? मैं समझता हूं उनको हटाना बिल्कुल ठीक था। अब दूसरी SIR प्रक्रिया में जो अक्षय जी ने बड़ी विस्तार से बताया कि किन्हीं कारणों से अगर, तो वो दोबारा से भी जेन्युइन लोग वोटर बन रहे हैं, बनाए जा रहे हैं और बन सकते हैं, तो किसी को जबरदस्ती वोटर से नहीं हटाया जा रहा। खासतौर से किसी भारतीय नागरिक को तो वंचित रखा जाना ही नहीं चाहिए। और अगर किसी वजह से उसका नाम, जैसे आपने भी कहा कि आपके परिवार को भी नोटिस आया है, तो आप अगर प्रमाण पत्र दे देंगे तो आपका वोट फिर से बन जाएगा। लेकिन जो अवैध नागरिक हैं, जिनके पास गलत आधार कार्ड बने हुए हैं, उनको कैसे रोकना है? ये भी तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी थी, जिसको करने की पूरी कोशिश की गई पश्चिमी बंगाल में।
1: बिल्कुल, अभी समय साथ नहीं दे रहा है, वक्त की मर्यादा है। अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम चर्चा का विषय है, जिसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार अशोक टंडन और चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारी रहे अक्षय राउत जी। आप दोनों ने इस चर्चा को बेहद समृद्ध बनाया। आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।
0: बहुत बहुत धन्यवाद,
2: नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे SIR और मतदाता सूची प्रक्रिया, उद्देश्य और नागरिकों की भूमिका पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे निर्वाचन आयोग के पूर्व महानिदेशक अक्षय राउत और राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे पत्रकार उमेश चतुर्वेदी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप NewsOnAIR और YouTube चैनल NewsOnAIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
4: चर्चा का विषय है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह निर्णय किसानों की उपज का लाभदायक मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
6: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए MSP तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही MSP में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सेफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है MSP।
5: कुसुम के लिए सबसे अधिक 675 रुपए प्रति क्विंटल वृद्धि की गई है। सरसों और खसखस का मूल्य 413 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। श्री वैष्णव ने बताया कि मसूर के लिए 390 रुपए, जौ के लिए 136 रुपए, चने के लिए 83 रुपए और गेहूं में 25 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। सरकार ने उत्तर प्रदेश, कर्नाटका और तेलंगाना में वर्तमान खरीफ सत्र के लिए प्रमुख दालों और तिलहनों की MSP पर खरीद के लिए 5548 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश भर के किसानों की आय बढ़ाने के साथ उनके हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने वर्ष 2027-28 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को स्वीकृति दे दी है। प्रधानमंत्री ने हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण पर मंत्रिमंडल के फैसले का स्वागत किया है। श्री मोदी ने कहा कि ये पहल वर्ष 2035 तक 900 गीगावाट गैर जीवाश्म में ईंधन आधारित क्षमता हासिल करने की दिशा में प्रोत्साहन देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग UPSC के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर लोगों को संबोधित भी करेंगे। श्री मोदी UPSC के शताब्दी समारोह का स्मारक सिक्का, स्मारक डाक टिकट

0: और 100 लैंडमार्क जजमेंट्स शेपिंग द पॉलिसीज ऑफ यूपीएससी एंड पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया नाम की एक पुस्तक भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज टेलीफोन पर बातचीत में व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों सहित अन्य क्षेत्रों में आपसी सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों नेताओं ने वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए जारी प्रयासों सहित क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि गुजरात आतंकरोधी दस्ते, भारतीय तटरक्षक बल और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के संयुक्त अभियान में एक ईरानी नौका से 5 पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। अभियान के दौरान भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में मौजूद नौका से 526 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किए गए। श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने पेट्रोलियम संशोधन विधेयक 2026 के मसौदे पर सभी हितधारकों से सुझाव मांगे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार सभी हितधारक और आम जनता इस विधेयक के मसौदे पर अपनी टिप्पणियां और सुझाव मंत्रालय की वेबसाइट, डाक या ईमेल के माध्यम से 30 अक्टूबर से पहले भेज सकते हैं। डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन DIBD ने भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG कार्यालय के सहयोग से आज नई दिल्ली में CAG भाषणी अनुवाद का शुभारंभ किया। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया कि ये प्लेटफॉर्म AI सक्षम अनुवाद समाधान है, जिसे भाषणी द्वारा CAG के आधिकारिक दस्तावेजों और लेखा परीक्षा संबंधी रिपोर्ट के अनुवाद में सहायता के लिए विकसित किया गया है। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज तीरंदाजी में 3 और निशानेबाजी में 1 स्वर्ण सहित कुल 4 स्वर्ण पदक लिए हैं। तीरंदाजी में पुरुष कंपाउंड टीम ने चीन को, मिक्स्ड कंपाउंड टीम ने कोरिया को और महिला कंपाउंड टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। निशानेबाजी में नीरू ढांडा और किनान चेनाई की भारतीय जोड़ी ने ट्रैप मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं भारतीय महिला हॉकी टीम ने दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण, 21 रजत और 29 कांस्य सहित कुल 60 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, today approved an increase in the minimum support prices, MSPs, for all mandated rabi crops for the marketing season 2027-28. Briefing media in New Delhi after the Union Cabinet meeting, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the decision has been taken to ensure remunerative prices for farmers for their produce. He said the highest absolute increase in MSP has been announced for safflower at 675 rupees per quintal, followed by rapeseed and mustard at 413 rupees per quintal. The minister said the MSP for lentil or masoor has been increased by 390 rupees per quintal, barley by 136 rupees, gram by 83 rupees and wheat by 25 rupees per quintal.
2: Rabi season ki MSP badhane se
3: the increase in MSP for the Rabi season will bring an additional 84,263 crore rupees to our farmers in recognition of their hard work and efforts. MSP is determined through a well-established mechanism based on the recommendations of the Commission for Agricultural Costs and Prices. The new MSP rates for the 6 major Rabi crops, wheat, barley, gram, lentil, rapeseed and mustard and sunflower have been approved today. This decision is in line with the government's commitment to ensuring that MSP remains at least 50% above the cost of production.
2: उस commitment को ध्यान में रखते हुए ये नए MSP आज approve हुए हैं।
1: The minister said the CCEA has also approved the implementation of the Intelligent Traffic Management System project by the Delhi Police at an estimated cost of over 1,789 crore rupees, inclusive of taxes. Mr. Vaishnav said the Union Cabinet today also approved the Green Energy Corridor GEC Phase 3 scheme. Prime Minister Narendra Modi has said the government is leaving no stone unturned to protect the interests of farmers across the country while working to increase their incomes. In a social media post, Mr. Modi said the government has approved an increase in the MSP for Rabi crops for 2027-28 marketing season. He added, that the decision will ensure that millions of

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कुछ गढ़वाली गीत कलाकार लक्ष्मी नंदूचाल। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स पर, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। श्रोताओं, आइए अब इस क्रम में सुनते हैं हमारी अगली प्रस्तुति, राग रंजन यानी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में। आज हम लेकर आए हैं नीता सूरमा का गायन, ठुमरी दादरा में राग मिश्र तिलक का मोद। आइए सुनते हैं ये रचना।

राग रंजन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में अभी आपने सुना नीता सूरमा का ख्याल में गाया ठुमरी दादरा राग मिश्र तिलक का मोल। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है।

0: यह आकाशवाणी का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब से कुछ ही पलों में सुने समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये निर्णय किसानों की उपज का लाभदायक मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
2: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए MSP तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही MSP में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सेफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है MSP।
1: कुसुम के लिए सबसे अधिक 675 रुपए प्रति क्विंटल वृद्धि की गई है। सरसों और खसखस का मूल्य 413 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। श्री वैष्णव ने बताया कि मसूर के लिए 390 रुपए, जौ के लिए 136 रुपए, चने के लिए 83 रुपए और गेहूं की कीमत में 25 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। सरकार ने उत्तर प्रदेश, कर्नाटका और तेलंगाना में वर्तमान खरीफ सत्र के लिए प्रमुख दालों और तिलहनों की MSP पर खरीद के लिए 5,548 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश भर के किसानों की आय बढ़ाने के साथ उनके हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने कहा है कि सरकार ने वर्ष 2027-28 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में बढ़ोतरी को स्वीकृति दे दी है। प्रधानमंत्री ने हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण पर मंत्रिमंडल के फैसले का स्वागत किया है। श्री मोदी ने कहा कि यह पहल वर्ष 2035 तक 900 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता हासिल करने की दिशा में प्रोत्साहन देगी। प्रधानमंत्री मोदी कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग UPSC के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर लोगों को संबोधित भी करेंगे। श्री मोदी UPSC के शताब्दी समारोह का स्मारक सिक्का, स्मारक डाक टिकट और 100 लैंडमार्क जजमेंट शेपिंग द पॉलिसीज ऑफ UPSC एंड पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया नाम की एक पुस्तक भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज टेलीफोन पर बातचीत में व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों सहित अन्य क्षेत्रों में आपसी सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों नेताओं ने वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए जारी प्रयासों सहित क्षेत्रीय और

0: अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। दोनों नेता व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए सहयोग जारी रखने पर सहमत हुए। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि गुजरात आतंक रोधी दस्ते, भारतीय तटरक्षक बल और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के संयुक्त अभियान में एक ईरानी नौका से 5 पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। अभियान के दौरान भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में मौजूद नौका से 526 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किए गए। श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में सफाई मित्र सुरक्षा एवं सम्मान शिविर का आयोजन किया। यह कार्यक्रम स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के तहत आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि नमस्ते योजना का उद्देश्य केवल सहायता देना नहीं बल्कि सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा, सम्मान और सामाजिक आर्थिक समावेशन सुनिश्चित करना है। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज तीरंदाजी में 3 और निशानेबाजी में 1 स्वर्ण सहित कुल 4 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। तीरंदाजी में पुरुष कंपाउंड टीम ने चीन को, मिक्स्ड कंपाउंड टीम ने कोरिया को और महिला कंपाउंड टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। निशानेबाजी में नीरू ढांडा और किनान चेन्नई की भारतीय जोड़ी ने ट्रैप मिक्स्ड टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, today approved an increase in the minimum support price, MSPs, for all mandated rabi crops for the marketing season 2027-28. Briefing the media in New Delhi after the Union Cabinet meeting, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the decision has been taken to ensure remunerative prices for farmers for their produce. He said the highest absolute increase in MSP has been announced for safflower at 675 rupees per quintal, followed by rapeseed and mustard at 413 rupees per quintal. The minister said the MSP for lentil or masoor has been increased by 390 rupees per quintal, barley by 136 rupees per quintal, gram by 83 rupees per quintal and wheat by 25 rupees per quintal.
2: Rabi season ki MSP badhane se
3: the increase in MSP for the Rabi season will bring an additional 84,263 crore rupees to our farmers in recognition of their hard work and efforts. MSP is determined through a well-established mechanism based on the recommendations of the Commission for Agricultural Costs and Prices. The new MSP rates for the 6 major Rabi crops, wheat, barley, gram, lentil, rapeseed and mustard and sunflower have been approved today. This decision is in line with the government's commitment to ensuring that MSP remains at least 50% above the cost of production.
2: Us commitment ko dhyan mein rakhte hue ye naye MSP aaj approve hue.
1: The minister said the CCEA has also approved the implementation of the Intelligent Traffic Management System project by the Delhi Police at an estimated cost of over 1,789 crore rupees, inclusive of taxes. Mr. Vaishnaw said the Union Cabinet today also approved the Green Energy Corridor Phase 3 scheme. It will strengthen India's intra-state transmission system to enable the evacuation of up to 135 gigawatts of renewable energy across states and union territories. Prime Minister Narendra Modi has said that the government is leaving no stone unturned to protect the interests of farmers across the country while working to increase their incomes. In a social media post, Mr. Modi said the government has approved an increase in the minimum support price or MSP for rabi crops for the 2027-28 marketing season. He added that the decision will ensure that millions of farmers across the country receive a remunerative price for their produce. The Prime Minister also welcomed the Cabinet's decision on the Green Energy Corridor Phase 3. He added that the initiative will create more jobs in manufacturing, construction and energy storage while providing a major boost towards achieving 900 gigawatts of

0: on fossil fuel-based capacity by 2035. Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump today reviewed bilateral cooperation in trade, defense, energy, and critical technologies, among other areas. Prime Minister Modi held a telephonic conversation with US President Trump this evening. In a social media post, the Prime Minister said the two leaders also exchanged views on regional and international issues, including the ongoing efforts to advance global peace and security. Both leaders agreed to maintain close engagement to further strengthen their comprehensive global strategic partnership. Home Minister Amit Shah today said five Pakistani nationals have been arrested from an Iranian boat during a joint operation conducted by Gujarat Anti-Terrorism Squad, Indian Coast Guard and Central Intelligence Agencies. During the operation, 526 kilograms of methamphetamine and heroin was seized from the boat, which was within India's exclusive economic zone. In men's cricket, India crushed the West Indies by 8 wickets in the second match of the three-match ODI series in Guwahati, taking an unassailable 2-0 lead. Put into bat first, the West Indies posted the highest ever ODI score of 405 for 7. In reply, India comfortably overhauled the target in 43.3 overs. India enjoyed its most successful day at the ongoing Asian Games in Japan so far, winning 4 gold medals today. India's medal tally has risen to 60, including 10 gold, 21 silver and 29 bronze medals. And that is the end of this news bulletin.
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स पर, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर।
2: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
3: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
2: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
3: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
2: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
3: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है 11:10 और ये लीजिए पूरे हुए 50 सेकंड। और कार्यक्रम शुरुआत करते हैं, कार्यक्रम है फिल्म संगीत। आप ही का अपना कार्यक्रम और आप के आज के इस कार्यक्रम की बागडोर संभाले मैं हूं, आप सभी के साथ होस्ट एंड दोस्त वंदना। आइए कार्यक्रम का आगाज करते हैं बस एक छोटे से अंतराल के बाद।
2: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
3: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
2: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
3: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
2: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
3: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।

भाई, जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले। और जीवन के दिनों की बात करें और जिंदगी के सफर की बात करें, तो भाई ये सफर रोज रोज जो है आसान नहीं होता। कभी कभी ये सफर अंग्रेजी वाला सफर भी बन जाता है। और अगर जिंदगी की बात करें तो तमाम उतार चढ़ाव लिए हुए ये खूबसूरत सी जिंदगी होती है। कभी सपने पूरे होने की खुशी, तो कभी किसी के दूर चले जाने का दर्द, कभी रिश्तों की उलझन, और कभी बिना वजह किसी के लिए मन में एक अजीबोगरीब सी बेचैनी। क्यों होता है ना ऐसा? तो मैं, मेरे सभी लिसनर्स इत्तेफाक रखते होंगे, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं जीवन की कश्मकश की। ये जो कहते हैं ना, नैया उतरती चढ़ती डोलती आपको कहाँ कहाँ लेकर जाती है और किस किस एहसासों से आपको दो चार करवाती है। फिलहाल हम तो दो चार हो रहे हैं हमारे ढेर सारे संदेशों के साथ। सतीश अनेजा साहब हमारे साथ इसी बीच जुड़ गए हैं, जो हमारा अभिनंदन करते हुए कहते हैं, जिंदगी को दिल से जियो, और दिल से जीने के लिए अपनों का, दिलों का खास कर ख्याल जो है वो भी दिल से ही रखो। सतीश अनेजा और साथ में है बिमला अनेजा जी, और साथ में हमारे राजेंद्र साहब भी इस समय हमें सुन रहे हैं, सुनील पाठक हैं, और गोविंद वैष्णव, भूषण खेरा हैं, स्वर्ण सिंह है, डॉक्टर आशीष है, हिमशिखर साहू, नीरज अग्रवाल, अनिल कोले, आर कुमार, नारायण करचे, एसएम जावेद, और साथ हैं हमारे मोहम्मद करमर साहब, बिट्टू गंगेजा, अकरम हुसैन और चंदू कुलकर्णी, किशन सपकाल भीजी भी हम इसी बीच हमारे साथ हैं, और कितने सारे और बेशुमार संदेश मुझ तक पहुंच रहे हैं, तो आपको क्या बताऊं। फिलहाल बस इतना ही कहूंगी कि जीवन के बारे में क्या फलसफा है आपका, क्योंकि सभी की जो ये यात्रा है बहुत आसान तो नहीं होती। कभी जो है ऊपर ले जाती है, तो कभी धड़ाम से लाकर नीचे भी गिर देती है।

है। ऐसे में आप कैसे अपनी इस जिंदगी के सफर के साथ चलते हैं? क्या उसे अंग्रेजी का सफर मानकर रोते रहते हैं, या फिर उस जिंदगी को ये कहकर कि अरे कुछ नहीं होता, सब चलेगा, उसे गले से लगा लेते हैं?

भाई जिंदगी मिलती ही बड़ी मुश्किल से है। नाराज हो या कभी कभी हंस दे मुस्कुरा दे, गले से जरूर लगाना चाहिए क्योंकि बेशकीमती ये चीज है। इसी बीच आरिस अली हमें कह रहे हैं कि आपके ख्याल सुन रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, और मसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से हमें सुन रहे हैं, साथ में मेराज अंसारी साहब भी हैं। तो भाई हम तो इतना ही कहेंगे कि हमारे ख्याल मत सुनिए, अपने ख्याल भी हमारे साथ साझा कीजिए, क्योंकि देखिए जिंदगी है तो जिंदगी में हर दिन एक जैसा नहीं रहता है ना। कभी कभी जो है उलझने भी आती हैं, कभी कभी दिल उलझ भी जाता है, कभी कभी लगता है कि जिंदगी के कैसे उलझे हुए तार हैं कि समझ में नहीं आ रहे, और कभी कभी ऐसा लगता है कि इतनी भी टफ नहीं है जितनी हमने बना दी है। फिलहाल हमारे साथ जो सतीश अनेजा साहब है ना, वो लिखकर भेज रहे हैं अपने कुछ विचार। वो कहते हैं कि मंजिल नहीं रास्ता ही असली जीवन है। बहुत खूब और बहुत पते की बात कर दी आपने सतीश साहब, क्योंकि अक्सर हम किसी लक्ष्य को पाने की होड़ में ही इतने खो जाते हैं कि रोजमर्रा के खूबसूरत पलों को जीना भूल जाते हैं। असल खुशी मंजिल तक पहुंचने में नहीं है, बल्कि वहां तक पहुंचने के रास्ते का आनंद लेने में है। गिराने वाले मोड़ और सीख देने वाले अनुभव, जीवन के सफर में असफलताएं या कठिनाइयां अंत नहीं है, बल्कि वो हमें और भी मजबूत बनाती हैं। जो सीधी राह होती है वो कभी भी गहरी सीख नहीं देती। भाई बहुत पते की बात और बहुत डीप थिंकिंग का उदाहरण सतीश अनेजा साहब आपने दिया है, क्योंकि जो अगर हम इस जीवन की बात करें ना, तो इस जीवन का अंतिम पड़ाव क्या है वो हमें और आपको कहने की जरूरत नहीं। तो बस इन खूबसूरत से रास्तों का, जो अंतिम पड़ाव तक का सफर लिखा है, उस जीवन के रास्तों का आनंद लीजिए, हंसते मुस्कुराते चलिए, अपने अपनों का साथ अगर आपको मिला हुआ है तो जीवन का आनंद काटिए। सुदर्शन मुखी साहब भी इसी बीच हमारे साथ जुड़े हैं, और जुड़े हैं हमारे साथ अहमद भगवान, जो कहते हैं कि आपके आने से प्रोग्राम में रौनक आ गई, और कोई भी गीत सुनवाने का जो कश्म वो बागडोर है वो भी उन्होंने हमें दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये हमें सुन रहे हैं छोटे बलिया से नूर आयशा, अहमद भगवान, इकबाल, अखलाक अहमद, आमना, आसबा, राबिया, परी, आशु, जूही, सदफ और आरजू बागवान, यानी कि पूरा का पूरा परिवार इस समय हमें सुन रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और इसी बीच अगर मैं कहूँ तो मधु किरण भी हमारे साथ जुड़े हैं, जो लिखते हैं जिंदगी क्या है, गम का दरिया है, ना जीना है यहाँ बस में, ना मरना है यहाँ बस में, अजब दुनिया है। मधु किरण दिल्ली। तो भाई मधु किरण, मैं तो यही कहूंगी कि बस में ना ही कोई चीज हो तो ही बहुत अच्छा है। अगर हम बस में करते ना, तो पता नहीं हम उसकी बनाई हुई खूबसूरत सी कुदरत को तराश कर तो नहीं उसे तोड़ मरोड़ कर कैसे क्या बना देते। अच्छा है इसके अधिकार ऊपर वाले ने कम से कम हमें नहीं दिए। इसी बीच नंद किशोर घाटे भी हमारे साथ जुड़े हैं, और फिर बात वही चल रही है कि जीवन को लेकर उतार चढ़ाव, और कहते हैं ना खूबसूरत से पड़ाव आते रहते हैं, लेकिन जो हंसते मुस्कुराते ये सोचकर कि पल ये भी गुजर जाएगा, वो असल में जीत जाता है।

भाई जिंदगी चलने का नाम है और परेशानी का तो बिल्कुल भी नहीं। और हम नहीं चाहेंगे कि हमारा कोई भी श्रोता, हमारा कोई भी लिसनर परेशान हो। फिलहाल नरेन नेताम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसी बीच नीरज अग्रवाल हैं और नासिर शेख हैं, हाजी मंजर साहब भी हमें सुन रहे हैं, और सुन रहे हैं हमारे वो साथी जिनका बेसब्री के साथ मुझे भी इंतजार रहता है। और आखिर बहुत दिनों के बाद बबलेश पवार साहब आप आ ही गए। बताइए कैसी खैर खबर की जो संदेश हैं वो ही हमें कभी कभी भेज दिया कीजिए। और लिखते हैं आपकी फरमाइश प्रस्तुत करता और वंदना जी बिश्री जैसी मीठी आवाज। भाई ये जो टाइटल आपने मुझे उस समय दिया था ना, और इसके इनिशियल भी बनाकर दिए थे बबलेश साहब, इसे तो मैं कभी जो कहते हैं ना भुलाकर भी नहीं भुला पाऊंगी। और आप लिखते हैं कि रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात समझने में है, अगर अपने जैसा ही इंसान ढूंढने निकलोगे ना तो शायद अकेले ही रह जाओगे। बहुत सही बात आपने कही। पारसमणि रेडियो श्रोता क्लब से हमारे साथ है बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार, खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा, रामदेवरा से दिनेश चौहान, और गीत की दारोमदार या कहूँ कि जो प्रयास है बबली साहब, वो चाहूंगी कि अपनी दोस्त वंदना पर छोड़ दीजिए और निराश बिल्कुल नहीं करूंगी। जिंदगी की अगर हम बात करें ना, तो कभी कभी हम हर चीज का हिसाब जिंदगी से लेने जाते हैं। क्यों हुआ ऐसा, कब हुआ, और मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? तो हम तो बस इतना ही कहेंगे कि जनाब जिंदगी शायद हर सवाल का जवाब देने के लिए नहीं बनी। बस इसके साथ हो जाइए और आपका और इसका अपना दोनों का साथ निभाते जाइए।

भाई जितनी खूबसूरत सी आज के गानों की पेशकश है, या फिर कहूँ जितना लोग उसे चाह रहे हैं, सराह रहे हैं, उससे भी ज्यादा मुझे अच्छा लग रहा है कि आज आपके संदेशों में मुझे बहुत ज्यादा संतुष्टि का भाव हो रहा है। क्योंकि खाली आज नाम और फरमाइश नहीं है, जिंदगी की बहुत गहरी सीख या जिंदगी की बहुत गहरी बात भी है। जैसे कि हमारे जो और भी कई साथी हैं, सतीश अनेजा साहब ने लिखा था, और इसी बीच राम बालक दास हमारे साथ जुड़े हैं, अश्विनी चुग भी हमारे साथ हैं, प्रकाश गोगिया है, और एक बहुत ही खूबसूरत सी बात दिलावर खान साहब लिखकर भेजते हैं कि जिंदगी भी मिट्टी के घड़े जैसी है, जितनी ठोकरें सहती है उतनी ही मजबूत बन जाती है, बस टूटने से पहले खुद को संभालना सीख लीजिए। बहुत पते की बात। और ये लिखते हैं हमें रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और लड्डू। भाई जिंदगी जो है वो कहते हैं ना बहुत ऊपर नीचे करती है, लेकिन जिंदगी है जनाब, इतनी जल्दी जो है आपको छोड़ कैसे देगी। और आप भी यहाँ जो कहते हैं ना, वजह हो या बेवजह हो, परीक्षा देने तो आए। इसी बीच अहमद साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कहते हैं आरजे बहन नमस्कार, हमें नजरअंदाज मत करना। बिल्कुल भाई, इतनी हिमाकत हम कर सकते हैं। और लिखते हैं जीवन के चक्र में दो पहलू हैं, दुख और सुख, इन दोनों पलों का मजा लीजिए, यही जीवन का सच्चा मजा है। और ये हमें लिखते हैं अहमद भाई फूल वाले, इमरान अहमद फूल वाले, आमना आसमा नसरीन, इकबाल समेत पूरे का पूरा हंसता मुस्कुराता, जो फूल होते हैं ना महकते हुए, ऐसे ही पूरा का

भाई इसी बीच हमें ग्राम फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी साहब, प्रमोद कुमार डूडी और पुष्पेंद्र ने भी ज्वाइन कर लिया है, और हाजी मंजर साहब तो हमारे साथ हैं ही, आर्यन राज

हमारे साथ है, नासिर शेख है हमारे साथ, तरुण कुमार पांडे भी इस समय हमें सुन रहे हैं। और नासिर शेख जिंदगी के फलसफे को बयां करते हैं। वो कहते हैं, वंदना दीदी आदाब नमस्कार, जिंदगी का मकसद नहीं होता, सिर्फ खुश होकर जीना ही, उनका कहने का मतलब है जिंदगी है, और तभी जिंदगी का मजा भी आता है। और इसी बीच आर्यन राज के साथ हमारे साथ एक संदेश और आया है, हिसार से अमित राज गर्ग का, जो कहते हैं कि आज उनका जन्मदिन है, और साथ ही साथ कह रहे हैं कि भाई मेरे मैसेज का जो नंबर आने की तो इंतहा ही हो गई। तो चलिए कोई बात नहीं, इंतहा हुई, लेकिन इसकी बहुत ही खूबसूरत सी इब्तिदा हम कर देते हैं इस खूबसूरत से गीत को आप तक पहुंचाकर।

और चलिए, कार्यक्रम में आज जो सबसे अच्छी बात रही कि इतने मुझे लोगों के, अपने सभी साथियों के विचार जानने को मिले कि मेरा दिल बहुत खुश है। अरसेले साहब, आरिस साहब जो है, हमें लिखते हैं कि जिंदगी वो है जिसमें उलझने और परेशानियां भी हैं, मुसीबतों का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन इन सभी मुसीबतों का हिम्मत और हौसले से जो कहते हैं ना सामना करता है, उन्हीं को कामयाबी मिलती है और बुलंदी पर भी पहुंच जाता है। इसलिए सभी मुश्किलों का जो हिम्मत और हौसले से सामना करते चलो। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। बहुत ही खूबसूरत, और कह रहे हैं लिसनर्स के ख्याल सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। भाई आप को लग रहा होगा, मुझे उससे भी बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। मसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी साहब ने हमें लिखकर भेजा, और भेजा तो बहुत ही प्यारा हमें लिखकर एक और साथी ने है, जो लिखती हैं जय विहार फारूक, शाहरुख, शहनाज, शबनम और चीकू हैं, नजफगढ़ से हमारे श्रोता हैं। वो लिखते हैं, जिंदगी मंजिल से ज्यादा सफर का नाम है। रास्ते में जो लोग मिलते हैं वही कुछ सिखा जाते हैं, इसलिए जो भी जिंदगी का सफर हो उसको भी मुस्कुराकर जी लेना चाहिए। इसी बीच योगी राज मस्के भी हमारे साथ जुड़े हैं, नंदन कुमार भी हैं, और कितना खूब

कमर गुन्नौर से। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका संदेशा भेजने के लिए। बुधराज खोरवाल साहब भी, हमने ये भी नाम लिया था जनाब। और वो कहते हैं बारी का इंतजार आते आते जो है प्रोग्राम ही खत्म हो जाता है, ऐसा कैसे आपने सोच लिया। उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, गीतिका खोरवाल, बुधराज खोरवाल और भानु प्रकाश हमें जो है इस समय सुन रहे हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। योगीराज मस्के साहब भी इस समय हमें सुन रहे हैं, और हालांकि उन्होंने अब समय बहुत ज्यादा नहीं है, पर बहुत ही खूबसूरत जीवन का सबसे बड़ा फलसफा पूरी शिद्दत और लगन से किए जा रहे संघर्ष का, निरंतर संघर्ष का नाम ही जिंदगी है। वंदना जी, बहुत ही खूबसूरत उन्होंने लिखा है। साथ ही साथ योगीराज मस्के, श्री हरि मस्के, इंदु मती मल्हार, कविता मोहन, विशाल कुशल, गोपाल श्याम, गोविंद मस्के और साथी हमें सुन रहे हैं। और भाई देखिए, करते करते हम कार्यक्रम के अंतिम जो पेशकश तक आ गए, तो बस यही कहेंगे कि जीवन की ऊर्जा क्या मिला क्या नहीं मिला इस पर मत लगाइए। जीवन की ऊर्जा इसी पर लगाइए कि जीवन बेशकीमती है, एक बार मिला है, ये ऊपर वाले का दिया वो नायाब तोहफा जिसे भरपूर जिया जाए। और खटास और मिठास अगर जिंदगी में ना हो तो जिंदगी मुकम्मल कहाँ होती है जनाब, उसका भी आनंद लीजिए। और आनंद लीजिए चलते चलते इस खूबसूरत सी हमारी प्यारी सी पेशकश का भी।

भाई कार्यक्रम के हम अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं और हमने मोहम्मद कमर साहब का संदेश तो लिया, लेकिन लगता है वो हमें छोड़कर बीच में से कहीं चले गए थे, जो कह रहे हैं नाम नहीं लिया। तो आज तो शामिल कर लें, आप ऐसे क्यों कहेंगे भाई, हम तो हमेशा आपके संदेश शामिल करते हैं और ये हैं आज

भाई चलते चलते उन तमाम साथियों का तहे दिल से धन्यवाद जिन्होंने आज थोड़ी सी जहमत अपनी उंगलियों को दी और संदेशों को मुझ तक लिख कर भेजा। मोहम्मद

0: कुंवर साहब भी हमें शुक्रिया कहते हैं। भाई शुक्रिया तो आप सभी का बनता है, क्योंकि जो सवाल मैं लेकर आई, जो मेरे जहन में था, और जो कहते हैं ना थोड़ी सी जिज्ञासा जिंदगी को लेकर थी, उन जिज्ञासाओं को आपके प्यारे प्यारे संदेशों और आपके जो फलसफे हैं उन्होंने कहीं ना कहीं एक मुकम्मल सा रूप दे दिया। और जिंदगी के बारे में बस चलते चलते यही कहेंगे दोस्त कि कहानी खत्म नहीं होती, ये बस एक खूबसूरत नए अध्याय के साथ फिर से एक बार नई शुरुआत कर देती है। तो इसी उम्मीद और इन एहसासों के साथ कि आप भी अपने अपनों के साथ हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, और जीवन का कोई भी आयाम पड़ाव हो उसे एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर पार कर लें। तो अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स पर, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। श्रोताओं 12 बजने को हैं, इन मीटरों पर अब हमारी प्रसारण सभा यही संपन्न होती है। प्रातः 4:50 पर पुनः आप सभी की सेवा में उपस्थित होंगे, परंतु AIR लाइव न्यूज 24x7 पर हमारा प्रसारण यूं ही लगातार जारी रहेगा। आपसे कुछ ही पलों में आप सुन सकेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह निर्णय किसानों की उपज का लाभदायक मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
2: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए MSP तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही MSP में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सेफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है MSP।
1: कुसुम के लिए सबसे अधिक 675 रूपये प्रति क्विंटल वृद्धि की गई है। सरसों और खसखस का मूल्य 413 रूपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। श्री वैष्णव ने बताया कि मसूर के लिए 390 रूपये, जौ के लिए 136 रूपये, चने के लिए 83 रूपये और गेहूं में 25 रूपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। सरकार ने उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में वर्तमान खरीफ सत्र के लिए प्रमुख दालों और तिलहनों की MSP पर खरीद के लिए 5,548 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश भर के किसानों की आय बढ़ाने के साथ उनके हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने वर्ष 2027-28 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को स्वीकृति दे दी है। प्रधानमंत्री ने हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण पर मंत्रिमंडल के फैसले का स्वागत किया है। श्री मोदी ने कहा कि यह पहल वर्ष 2035 तक 900 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता हासिल करने की दिशा में प्रोत्साहन देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग UPSC के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर लोगों को संबोधित भी करेंगे। श्री मोदी UPSC के शताब्दी समारोह का स्मारक सिक्का, स्मारक डाक टिकट और 100 लैंडमार्क जजमेंट्स शेपिंग द पॉलिसीज ऑफ UPSC एंड पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया नाम की पुस्तक भी जारी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग के 279वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री रक्षा लेखा विभाग की विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी पहलों का शुभारंभ करेंगे। इनमें भारतीय सेना के वित्तीय सूचना प्रणाली विभाग के सक्षम प्लेटफॉर्म के साथ एकीकरण, रक्षा मंत्रालय के लिए संशोधित राष्ट्रीय संकलन प्रणाली और रक्षा मंत्रालय में ट्रेजरी सिंगल अकाउंट भुगतानों की शुरुआत के लिए पेमेंट राउटिंग एंड इंटीग्रेटेड सिस्टम मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म शामिल हैं। खनन मंत्रालय आज अपतटीय खनिज भंडारों की नीलामी शुरू करेगा। मंत्रालय ने कहा कि भारत की अपतटीय खनिज क्षमता को उजागर करने और देश की दीर्घकालिक खनिज संसाधन सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण

0: on regional and international issues, including ongoing efforts to advance global peace and security. Both leaders agreed to maintain close engagement to further strengthen their comprehensive global strategic partnership. In men's cricket, India crushed the West Indies by 8 wickets in the second match of the 3-match ODI series in Guwahati, taking an unassailable 2-0 lead. Put into bat first, the West Indies posted their highest ever ODI score of 405 for 7. In reply, India comfortably overhauled the target in 43.3 overs, losing only 2 wickets. India enjoyed its most successful day at the ongoing Asian Games in Japan so far, winning 4 golds yesterday. India's medal tally has risen to 60, including 10 gold, 21 silver and 29 bronze medals. The country completed a hat-trick of gold medals in compound archery, with the women's team, mixed team and men's team all finishing on top. India also struck gold in shooting, with a mixed trap team securing the top spot. And that is the end of this news bulletin.
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल। श्रोताओं, समय हो चला है 12:10 का, यानी कि रात्रिकालीन सभा को आरंभ करने का। और आज की सभा में आपके साथ मैं हूं आपका दोस्त अतुल। समय, ये कार्यक्रम, जी हाँ, समय जो होता है, ये कार्यक्रम सुरों का सफरनामा का होता है, वो कार्यक्रम जिसमें लेकर आते हैं हम फिल्म संगीत। और लगभग 50 मिनट मिलते हैं इस कार्यक्रम में। तो जो फिल्म संगीत होता है, उसके साथ में होता है एक कलाकार। एक कलाकार, उसकी बातें, उसका करियर, उतार चढ़ाव और भी बहुत कुछ, और साथ में गीतों का साथ। तो आज के इस खास कार्यक्रम में भी हम बात करेंगे हिंदी फिल्म संगीत के एक ऐसे ही कलाकार की, जिसकी पहचान केवल संगीतकार के रूप में नहीं, बल्कि एक बेहतरीन वायलिन वादक और म्यूजिक कंपोजर के रूप में रही है। जी हाँ, नाम है उत्तम सिंह। उत्तम सिंह का संगीत सफर बहुत कम उम्र से शुरू हुआ। वायलिन उनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बना, और एक समय उनका सपना था कि वे विश्व स्तरीय वायलिन वादक बने, लेकिन जीवन ने उन्हें एक अलग रास्ते पर आगे बढ़ाया। अच्छे शिक्षक की तलाश पूरी तरह सफल नहीं हुई, मगर संगीत के प्रति उनका लगाव कम नहीं हुआ। वो फिल्म संगीत की दुनिया में आए और धीरे धीरे वायलिन वादक के रूप में अपनी जगह बनाई। यहीं से शुरू हुई एक ऐसी यात्रा जिसने उन्हें भारतीय फिल्म संगीत के कई दिग्गजों तक पहुंचाया। आज हम उनके बचपन, संघर्ष, सफलता, उपलब्धियों और उनके संगीत के उतार चढ़ाव की बात करेंगे, और शुरुआत करेंगे उस फिल्म से जिसने उत्तम सिंह को देश भर में एक संगीतकार के रूप में पहचान दिलाई। जो गीत हम सुनवाने जा रहे हैं, यकीन मानिए, वो आप में से बहुत सारे श्रोताओं का पसंदीदा गीत होगा, और मेरा तो पसंदीदा है ही। आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ आपका दोस्त अतुल।

1997 की फिल्म यशराज बैनर के निर्देशन तले इस फिल्म ने ना जाने कितने मुकाम हासिल किए, कितने अवार्ड्स मिले, सुपरहिट फिल्म हुई, साथ ही सुपरहिट गीतों के साथ उत्तम सिंह को एक अलग नई पहचान मिली। जी हाँ, शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित, करिश्मा कपूर और अक्षय कुमार ने इस फिल्म में जो अदाकारी की, उस अदाकारी को गीत संगीत का साथ मिला उत्तम सिंह का। दिल तो पागल है कि इस धुन तक पहुंचने से पहले उत्तम सिंह ने वर्षों तक पर्दे के पीछे काम किया। उन्होंने वायलिन वादक के रूप में कई महान संगीतकारों के साथ भी काम किया। नौशाद, मदन मोहन, आर डी बर्मन जैसे दिग्गजों को उसके संगीत को

करीब से देखने और सीखने का अवसर उन्हें मिला। विशेष रूप से अगर बात करें तो आर डी बर्मन के साथ लंबे समय तक काम करने का अनुभव उनके लिए बहुत खास रहा। उत्तम सिंह ने लगभग 35 वर्षों तक अरेंजर के रूप में काम किया, यानी जिस सफलता का श्रोता अचानक देखते हैं उसके पीछे कई दशकों की मेहनत थी। वादक से अरेंजर और अरेंजर से संगीतकार बनने की यात्रा आसान नहीं थी। इसी दौरान उन्होंने जगदीश खन्ना के साथ उत्तम जगदीश के रूप में भी काम किया, लेकिन असली पहचान अभी बाकी थी। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरों का सफरनामा, आकाशवाणी का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल। और श्रोताओं, कार्यक्रम में आज आपके साथ मैं हूं आपका दोस्त अतुल। संगीतकार उत्तम सिंह की बात कर रहे हैं और कार्यक्रम में आप हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं तो अपने ईमेल के माध्यम से हम तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं।

जगजीत सिंह का गाया हुआ गीत भी बहुत पसंद किया गया। जी हाँ, अपने जाने वालों के दुख में गम में इस गीत ने एक ऐसी पहचान बनाई जो आज तक बदस्तूर उसी तरीके से जारी है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्मों का सुरों का सफरनामा, आकाशवाणी का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल, और हम बात कर रहे हैं आज उत्तम सिंह की। 1997 में वो मोड़ आया जिसने उत्तम सिंह के करियर को नई दिशा दी। फिल्म थी दिल तो पागल है। यश चोपड़ा की इस फिल्म में उत्तम सिंह संगीत निर्देशक के रूप में सामने आए। शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित और करिश्मा कपूर की इस फिल्म के संगीत ने पूरे देश में लोकप्रियता हासिल की। लेकिन उत्तम सिंह के लिए ये केवल एक सफल फिल्म नहीं थी, ये वर्षों तक पर्दे के पीछे काम करने के बाद सामने आने का वो क्षण था। उनके संगीत को फिल्म फेयर और जी सिने जैसे पुरस्कारों से भी पहचान मिली। अब वे केवल किसी और की धुन को वायलिन से सजाने वाले कलाकार नहीं थे, बल्कि उनका अपना नाम था, अपनी धुन थी और अपनी संगीत पहचान थी।

अगर उत्तम सिंह की सफलता की बात करें तो दिल तो पागल है और दुश्मन जैसी फिल्में जिनका संगीत काफी पसंद किया गया, और एक बड़ी सफलता के बाद किसी संगीतकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है अपनी पहचान को दोहराने के बजाय उसे आगे बढ़ाना। उत्तम सिंह ने अलग अलग कहानियों के लिए अलग अलग संगीत तैयार किया। 1998 की फिल्म दुश्मन इसका एक उदाहरण है। यहाँ रोमांस के साथ दर्द और संवेदना भी थी।

ना कोई संदेश जैसे गीत ने फिल्म के भावनात्मक संसार को गहराई दी, और दूसरी तरफ हमने बात की फिल्म दिल तो पागल है की भी, जिसमें गीतों का संगीत कुछ ऐसा था कि आपको झूमने पर मजबूर कर दे। उत्तम सिंह के संगीत की खूबी यह रही कि उन्होंने केवल लोकप्रिय धुन बनाने की कोशिश नहीं की, बल्कि कहानी के मूड के अनुसार संगीत तैयार किया। उनकी यात्रा अब और बड़े पड़ाव की ओर बढ़ रही थी, और 2000 में आई गदर, एक प्रेम कथा।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल। श्रोताओं, 12:39 और 20 सेकंड का समय। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरों का सफरनामा, आपके साथ आपका दोस्त अतुल। और आज के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं संगीतकार उत्तम सिंह की। बात करें अगर गदर फिल्म की, तो गदर ने उत्तम सिंह के संगीत को एक अलग रूप सामने रखा। फिल्म की कहानी विभाजन की पृष्ठभूमि पर थी, इसलिए संगीत में भी मिट्टी की खुशबू और लोक रंग महसूस होता है। जो गीत अभी आपने सुना या फिर और भी गीत इस फिल्म के, उन्होंने कहानी के वातावरण को मजबूत किया। उत्तम सिंह का मानना था कि संगीत में भारतीय लोक और शास्त्रीय परंपराओं की जड़ें महत्वपूर्ण हैं। उनकी यही सोच आगे भी उनके काम में दिखाई देती रही, लेकिन उनकी संगीत यात्रा केवल लोकप्रिय फिल्मों तक सीमित नहीं थी। 2003 में उनकी एक बिल्कुल अलग तरह की फिल्म आई, पिंजर। गंभीर कहानी, विभाजन की पृष्ठभूमि और मानवीय रिश्तों की संवेदनशीलता, यहाँ उत्तम सिंह के संगीत का एक और गंभीर रूप देखने को मिला। तो आइए सुनते हैं पिंजर फिल्म का ये गीत।

0: दोस्तों, हर कलाकार के जीवन में सफलता के साथ बदलाव भी आते हैं। उत्तम सिंह का करियर भी इससे अलग नहीं था। 2000 के दशक में फिल्म संगीत तेजी से बदल रहा था, नई तकनीक आ रही थी, नए संगीतकार आ रहे थे और दर्शकों की पसंद भी बदल रही थी। उत्तम सिंह ने इस बदलाव को लेकर अपनी राय खुलकर व्यक्त की थी। उनका मानना था कि उस दौर में गीतों को सुनने की बजाय देखने पर अधिक जोर बढ़ रहा था। ये उनकी अपनी संगीत दृष्टि थी और उन्होंने हर तरह के काम को स्वीकार करने के बजाय चुनिंदा प्रोजेक्ट्स पर ध्यान देना पसंद किया। इसी समय 2003 में द हीरो लव स्टोरी ऑफ अ स्पाई जैसी फिल्म में भी उनका संगीत सुनाई दिया, लेकिन मेन स्ट्रीम फिल्मों की संख्या कम होने के बावजूद संगीत से उनका रिश्ता समाप्त नहीं हुआ। बाद के वर्षों में भी उन्होंने फिल्मों और टेलीविजन के लिए संगीत दिया। इस तरह उत्तम सिंह का फिल्मी करियर उतार चढ़ाव भरा रहा और बहुत कुछ जो सफलता देखनी थी वो 1997-98-2000 तक उनको हासिल हुई।
1: मैं निकला ओ गड्डी ले।

जी हाँ, वो मोड़ उत्तम सिंह के करियर में भी आया। और उत्तम सिंह की कहानी को अगर संक्षेप में देखें, शॉर्ट में देखें, तो एक ऐसे कलाकार की कहानी है जिसने सफलता का इंतजार किया लेकिन अपनी कला से समझौता नहीं किया। बचपन में वायलिन का सपना, फिल्म स्टूडियो में शुरुआती संघर्ष, महान संगीतकारों के साथ सीखने का अवसर, लगभग 35 वर्षों का अरेंजर के रूप में अनुभव, और फिर दिल तो पागल है के साथ स्वतंत्र संगीतकार के रूप में बड़ी पहचान। इसके बाद दुश्मन, गदर एक प्रेम कथा, पिंजर और द हीरो जैसी फिल्मों में अलग-अलग रंगों का संगीत। उनके करियर में सफलता भी आई और एक ऐसा दौर भी आया जब फिल्म संगीत का वातावरण तेजी से बदल रहा था, लेकिन उनका संगीत से रिश्ता बना रहा। शायद यही उनकी सबसे बड़ी विरासत है। वॉलिन से शुरू हुआ से सफर उन धुनों तक पहुंचा जिन्हें आज भी श्रोता याद करते हैं। और अब इस कार्यक्रम का समापन करते हैं फिल्म पिंजर के इस खूबसूरत गीत के साथ।

तो श्रोताओं, ये थी संगीतकार उत्तम सिंह के जीवन और संगीत सफर की कहानी, एक वायलिन वादक से संगीत निर्देशक तक, पर्दे के पीछे से पहचान तक और संघर्ष से सफलता तक। इसी के साथ आज का ये विशेष कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। मैं आपका दोस्त अतुल आपसे लेता हूँ विदा। फिर मिलेंगे संगीत की किसी और कहानी के साथ। तब तक आप सुनते रहिए आकाशवाणी का AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल। श्रोताओं, कुछ ही पलों में 1 बजने को हैं। अब आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये निर्णय किसानों की उपज का लाभदायक मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
1: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए MSP तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही MSP में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। व्हीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सेफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम 50% ज्यादा रखी गई है MSP।
0: कुसुम के लिए सबसे अधिक 675 रुपये प्रति क्विंटल वृद्धि की गई है। सरसों और खसखस का मूल्य 413 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। श्री वैष्णव ने बताया है कि मसूर के लिए 390 रुपये, जौ के लिए 136 रुपये, चने के लिए 83 रुपये और गेहूं में 25 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। सरकार ने उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में वर्तमान खरीफ सत्र के लिए प्रमुख दालों और तिलहनों की MSP पर खरीद के लिए 5,548 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग UPSC के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर लोगों को संबोधित भी करेंगे। श्री मोदी UPSC के शताब्दी समारोह का स्मारक सिक्का, स्मारक डाक टिकट और 100 लैंडमार्क जजमेंट्स शेपिंग द पॉलिसीज ऑफ UPSC एंड पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया नाम की एक पुस्तक भी जारी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग के 279वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री रक्षा लेखा विभाग की विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी पहलों का शुभारंभ करेंगे। इनमें भारतीय सेना की वित्तीय सूचना प्रणाली विभाग के सक्षम प्लेटफॉर्म के साथ एकीकरण, रक्षा मंत्रालय के लिए संशोधित राष्ट्रीय संकलन प्रणाली और रक्षा मंत्रालय में ट्रेजरी सिंगल अकाउंट भुगतानों की शुरुआत के लिए पेमेंट राउटिंग एंड इंटीग्रेटेड सिस्टम मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म शामिल हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने कहा है कि भारत में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के साथ साथ बीमारियों की रोकथाम पर भी ध्यान दिया जा रहा है। नई दिल्ली में वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ गैस्ट्रो एंटरोलॉजी 2026 को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 60 करोड़ से अधिक लोग जुड़े हैं। उन्होंने बताया कि योजना के तहत अब तक 13 करोड़ से अधिक लोगों का इलाज हुआ है, जिन पर 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं। खनन मंत्रालय आज अपतटीय खनिज भंडारों की नीलामी शुरू करेगा। मंत्रालय ने कहा कि भारत की अपतटीय खनिज क्षमता को उजागर करने और देश की दीर्घकालिक खनिज संसाधन सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। मंत्रालय ने कहा कि नीलामी से व्यवस्थित अन्वेषण को प्रोत्साहन मिलने, निवेश आकर्षित होने और अपतटीय खनिज अन्वेषण तथा विकास के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों को अपनाने को बढ़ावा मिलेगा। हरियाणा में आगामी रबी सीजन को लेकर सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा की अध्यक्षता में हुई उच्च अधिकार प्राप्त क्रय समिति की बैठक में किसानों को समय पर गेहूं के प्रमाणित बीज उपलब्ध कराने के लिए परिवहन भाड़ा दरों को मंजूरी दी गई है। इसके अंतर्गत प्रमुख प्रसंस्करण

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी के अनुसार समय हो चला है 1:10 और 8 सेकंड का, यानी कि समय हो चला है कार्यक्रम गीत सुनारे का। आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ आपका दोस्त अतुल। कार्यक्रम में लेकर आते हैं हम 70, 80, 90 के दशक के वो गीत जिन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को एक अलग नई पहचान दी। तो कार्यक्रम में इन गीतों के साथ आगे बढ़ते चलेंगे और शुरुआत कर रहे हैं इस खूबसूरत गीत के साथ।

साई बहादुर फिल्म का एक गीत आपने सुना किशोर कुमार साहब की आवाज़ में, और गीत बहुत पसंद किया गया था और कार्यक्रम का आगाज़ भी हमने एक खूबसूरत गीत के साथ किया था जो कि लिया था चुपके चुपके फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीत के बोल थे चुपके चुपके चले रे पुरवैया। तो कार्यक्रम का आगाज़ खूबसूरत गीतों के साथ उस दौर में ले जा चुका है जिसे हम कहते हैं सुनहरा दौर, गोल्डन एरा ऑफ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। कार्यक्रम में आज आपके साथ आपका दोस्त अतुल, और अगला गीत भी यकीनन आपकी कुछ तो यादें ताज़ा कर ही देगा।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुनहरे, आकाशवाणी का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल कार्यक्रम, जिसमें लेकर आते हैं हम 60, 70, 80, 90 के दशक के वो गीत जिन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को एक अलग नई पहचान दी, और इसलिए उस दौर को कहा जाता है सुनहरा दौर।

देखिए ना, इन खूबसूरत गीतों के साथ कैसे हम आगे बढ़ते चले गए और 1:48 और 23 सेकंड का समय हो चला, यानी कि कार्यक्रम में समय बचा है बहुत कम। और इतने खूबसूरत गीतों के साथ मन तो कर रहा है कि अभी भी ये सिलसिला बदस्तूर जारी रहे, लेकिन जितना भी समय मिले उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए मनोरंजक बना पाएं। तो इस गीत के साथ आइए आनंद उठाइए एक और खूबसूरत गीत का उस सुनहरे दौर से।

0: ये फादर का बच्चा कौन है?
1: फादर का बच्चा नहीं सन, फादर को बाप बोलते हैं, और तुम्हारा बाप तुम्हारे सामने खड़ा है।

भाई घोड़ा। सुना क्या लड़की बोला, बात में बहुत दम है, छाती ठोक ठोक के बोला।

इसी के साथ आज का गीत सुनारे कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल। श्रोताओं कुछ ही पलों में

0: दो बजने को हैं। अब आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर लोगों को संबोधित भी करेंगे। श्री मोदी यूपीएससी के शताब्दी समारोह का स्मारक सिक्का, स्मारक डाक टिकट और 100 लैंडमार्क जजमेंट्स शेपिंग द पॉलिसीज ऑफ यूपीएससी एंड पब्लिक सर्विस कमीशंस इन इंडिया नाम की एक पुस्तक भी जारी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग के 279वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री रक्षा लेखा विभाग के विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी पहलों का शुभारंभ करेंगे। खनन मंत्रालय आज अपतटीय खनिज भंडारों की नीलामी शुरू करेगा। मंत्रालय ने कहा है कि भारत की अपतटीय खनिज क्षमता को उजागर करने और देश की दीर्घकालिक खनिज संसाधन सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह निर्णय किसानों की उपज का लाभदायक मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
2: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए एमएसपी तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही एमएसपी में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सेफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है एमएसपी।
1: कुसुम के लिए सबसे अधिक 675 रुपए प्रति क्विंटल वृद्धि की गई है। सरसों और खसखस का मूल्य 413 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। श्री वैष्णव ने बताया कि मसूर के लिए 390 रुपए, जौ के लिए 136 रुपए और चने के लिए 83 रुपए और गेहूं में 25 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। सरकार ने उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में वर्तमान खरीफ सत्र के लिए प्रमुख दालों और तिलहनों की एमएसपी पर खरीद के लिए 5548 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। दिल्ली में इस वर्ष सितंबर महीने का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI पिछले 5 वर्षों की इसी अवधि की तुलना में सबसे कम दर्ज कर लिया गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया है कि इस वर्ष सितंबर में दिल्ली का मासिक औसत AQI 102 रहा, जबकि 2025 में ये 105 था। मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष जनवरी से सितंबर तक की अवधि में दैनिक औसत AQI 200 से कम रहने वाले दिनों की संख्या पिछले 5 वर्षों में सबसे अधिक रही। कुवैत में भारतीय दूतावास ने कल इंडिया कुवैत मीडिया कनेक्ट की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य कुवैत में मीडिया के साथ भारत के संबंध और बातचीत को बढ़ाना है। इस पहल का विषय है साझेदारी, विचार और संभावनाएं। इसके जरिए कुवैत के मीडिया को भारत, भारतीय दूतावास की गतिविधियों और भारत कुवैत संबंधों से जुड़ी जानकारी दी जाएगी। साथ ही भारत की तकनीक, डिजिटल क्षेत्र, आर्थिक विकास और नई उपलब्धियों के बारे में भी सूचित किया जाएगा। पुरुष क्रिकेट में भारत ने गुवाहाटी में खेले गए दूसरे एक दिवसीय मुकाबले में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज ने 7 विकेट पर 405 रन बनाए। कप्तान शुभमन गिल ने नाबाद 233 रन बनाए, जबकि रोहित शर्मा ने 101 रन की पारी खेली। दोनों ने शानदार शुरुआत दिलाते हुए 255 रन की साझेदारी की। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, केरलम माहे, कर्नाटक के अंदरूनी क्षेत्रों, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश के साथ साथ आंधी, तूफान और बिजली गिरने की आशंका व्यक्त की है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। रायलसीमा, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में तेज हवाओं और बिजली कड़कने के साथ आंधी तूफान की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: nil. And that is the end of this news bulletin.
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल। श्रोताओं, समय हो चला है 2:10 का, यानी कि नॉनस्टॉप फिल्म संगीत के कार्यक्रम गीत बहार का। आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ आपका दोस्त अतुल, और अगले लगभग 50 मिनट आप आनंद लेंगे नॉनस्टॉप फिल्म संगीत का, और हम आज आपको ले चलेंगे 90 के दशक में।
2: मैं एनी, मम्मा पापा का वो नामुमकिन सपना जो सच हुआ है, मैं उनकी दिल की धड़कन हूँ जिसे वो सुन नहीं सकते, मैं उनकी पहचान हूँ, उनकी आवाज हूँ। हमारी छोटी सी दुनिया है सिर्फ तीनों की, लेकिन मैं आसमान को छूना चाहती हूँ, गाना चाहती हूँ। आवाज और खामोशी टकराते गए, फिर भी सपने जिंदा हैं, है ना ये नामुमकिन सपना। लेकिन वो जिंदगी ही क्या जिसमें कोई नामुमकिन सपना ना हो।

जिस दिन से वो डॉन बन गया डरने लगे लोग, ऐसा तूफान बन गया। और क्या कहूं मैं, सारा जहां था उसके कदमों में।

इस खूबसूरत गीत के साथ ही आज का गीत बहार फिल्म कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल। और श्रोताओं, कुछ ही पलों में 3 बजने को हैं। अब आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे और उसके बाद कार्यक्रम होगा गजल गीत का। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग UPSC के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर लोगों को संबोधित करेंगे। श्री मोदी UPSC के शताब्दी समारोह का स्मारक

0: सिक्का, स्मारक डाक टिकट और 100 लैंडमार्क जजमेंट्स शेपिंग द पॉलिसीज ऑफ यूपीएससी एंड पब्लिक सर्विस कमीशंस इन इंडिया नाम की एक पुस्तक भी जारी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग के 279वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री रक्षा लेखा विभाग की विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी पहलों का शुभारंभ करेंगे। वस्त्र क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों पर चर्चा करने के लिए आज नई दिल्ली में एक वस्त्र सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय महासचिव ओम प्रकाश गुप्ता ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि इस सम्मेलन में देश भर के वस्त्र क्षेत्र से जुड़े 400 सूक्ष्म और लघु उद्योग एक साथ आएंगे। उन्होंने बताया कि वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। खनन मंत्रालय आज अपतटीय खनिज भंडारों की नीलामी शुरू करेगा। मंत्रालय ने कहा है कि भारत की अपतटीय खनिज क्षमता को उजागर करने और देश की दीर्घकालिक खनिज संसाधन सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये निर्णय किसानों की उपज का लाभदायक मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
1: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए MSP तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही MSP में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सेफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है MSP।
0: कुसुम के लिए सबसे अधिक 675 रूपये प्रति क्विंटल वृद्धि की गई है। सरसों और खसखस का मूल्य 413 रूपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। श्री वैष्णव ने बताया कि मसूर के लिए 390 रूपये, जौ के लिए 136 रूपये, चने के लिए 83 रूपये और गेहूं में 25 रूपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। सरकार ने उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में वर्तमान खरीफ सत्र के लिए प्रमुख दालों और तिलहनों की MSP पर खरीद के लिए 5,548 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 2027-28 मंडी सीजन के लिए सभी तय रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधु ने कल दिल्ली विश्वविद्यालय के महिला कॉलेजों के प्राचार्यों के साथ बैठक की। बैठक में कॉलेजों और आसपास के इलाकों में छात्राओं की सुरक्षा पर चर्चा हुई। उपराज्यपाल ने कॉलेजों के आसपास स्ट्रीट लाइट, CCTV और पुलिस गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए। सभी कॉलेजों में एक नोडल पुलिस अधिकारी नियुक्त करने को भी कहा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI निर्माणाधीन 17 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का विशेष गुणवत्ता निरीक्षण कर रहा है। निरीक्षण का उद्देश्य गुणवत्ता संबंधी मुद्दों की पहचान करना है, जिससे समय रहते सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके। निरीक्षण के लिए चयनित परियोजनाओं में कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और उत्तर प्रदेश में ग्रीनफील्ड और एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर, बाईपास और 4 और 6 लेन वाली सड़कों के निर्माण कार्य शामिल हैं। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, केरलम, माही, कर्नाटक के अंदरूनी क्षेत्रों, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश के साथ साथ आंधी, तूफान और बिजली गिरने की आशंका व्यक्त की है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। रायलसीमा, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में तेज हवाओं और बिजली कड़कने के साथ आंधी तूफान आने की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, yesterday approved an increase in the minimum support prices, MSPs, for all mandated rabi crops for the marketing season 2027-28. Briefing the media in New Delhi after the Union Cabinet meeting, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the decision has been taken to ensure remunerative prices for farmers for their produce. He said the highest absolute increase in MSP has been announced for safflower at 675 rupees per quintal, followed by rapeseed and mustard at 413 rupees per quintal. The minister said the MSP for lentil or masoor has been increased by 390 rupees per quintal, barley by 136 rupees per quintal, gram by 83 rupees per quintal and wheat by 25 rupees per quintal.
3: Rabi season ki MSP badhane se
4: the increase in MSP for the Rabi season will bring an additional 84,263 crore rupees to our farmers in recognition of their hard work and efforts. MSP is determined through a well-established mechanism based on the recommendations of the Commission for Agricultural Costs and Prices. The new MSP rates for the six major Rabi crops, wheat, barley, gram, lentil, rapeseed and mustard and sunflower have been approved today. This decision is in line with the government's commitment to ensuring that MSP remains at least 50% above the cost of production.
3: Us commitment ko dhyan mein rakhte hue ye naye MSP aaj approve hue.
2: The minister said the CCEA has also approved the implementation of the intelligent traffic management system project by the Delhi police at an estimated cost of over 1789 crore rupees inclusive of taxes. Mr. Vaishnaw said the Union Cabinet yesterday also approved the Green Energy Corridor Phase 3 scheme. It will strengthen India's intrastate transmission system to enable the evacuation of up to 135 gigawatts of renewable energy across states and union territories. Prime Minister Narendra Modi has said that the government is leaving no stone unturned to protect the interests of farmers across the country while working to increase their incomes. In a social media post, Mr. Modi said the government has approved an increase in the minimum support price or MSP for Rabi crops for the 2027-28 marketing season. He added that the decision will ensure that millions of farmers across the country receive a remunerative price for their produce. The Prime Minister also welcomed the Cabinet's decision on the Green Energy Corridor Phase 3. He added that the initiative will create more jobs in manufacturing, construction and energy storage while providing a major boost towards achieving 900 gigawatts of non-fossil fuel-based capacity by 2035. Prime Minister Narendra Modi will participate in the centenary celebrations of the Union Public Service Commission, UPSC, today at Bharat Mandapam in New Delhi. He will also address the gathering on the occasion. The program will mark the culmination of year-long celebrations that commenced on 1st October last year, commemorating 100 years since the establishment of the UPSC in 1926. Mr. Modi will also release a UPSC centenary commemorative coin, a commemorative stamp and a book titled 100 Landmark Judgments, Shaping the Policies of UPSC and Public Service Commissions in India. In men's cricket, India crushed the West Indies by 8 wickets in the second match of the 3-match ODI series in Guwahati, taking an unassailable 2-0 lead. Put into bat first, the West Indies posted their highest ever ODI score of 405 for 7. In reply, India comfortably overhauled the target in 43.3 overs, losing only 2 wickets. India enjoyed its most successful day at the ongoing Asian Games in Japan so far, winning 4 gold medals yesterday. India's medal tally has risen to 60, including 10 gold, 21 silver and 29 bronze medals. The country completed a hat-trick of gold medals in compound archery, with the women's team, mixed team and men's team all finishing on top. India also struck gold in shooting, with the mixed trap team securing the top spot. Indian boxers added 2 more bronze medals to the tally, with Priya Ghangas and Kapil Pokhriya finishing on the podium yesterday. And that is the end of this news bulletin.

ये आकाशवाणी दिल्ली का हेयर लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में रात के 3:10:15 हुए हैं। लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम गीत गजल। आज के कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, आपकी अपनी सरिता। कार्यक्रम का आगाज करते हैं हरिहरन की आवाज के साथ।

बिछड़ा कुछ इस अदास की रुत ही बदल गई, बिछड़ा कुछ इस अदास की रुत ही बदल गई। एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया।

गीतों और गजलों का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। अपनी दोस्त सरिता को दीजिए जाने की इजाजत। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का एयर लाइव न्यूज़ 24/7 चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में प्रातः 4 बज चुके हैं। लीजिए सुनते हैं अगला कार्यक्रम।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

0: कोयला के स्वर में अभी आप गुरुवायूरप्पन की प्रशंसा में हरि नामक कीर्तनम सुन रहे थे। इसके साथ ही आज का अर्चना कार्यक्रम संपन्न होता है।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का एआई लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। लीजिए सुनते हैं कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नादब्रह्म। आज के कार्यक्रम में आप सुनेंगे मिनी एन का रागम कल्याणी में गायन। स्वाति तिरुरान की रचना है और मृदंगम पर हैं एम वी चंद्रशेखर।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आज बृहस्पतिवार है। शक संवत 1948 के अश्विन मास की 9वीं तिथि। तदनुसार 1 अक्टूबर 2026। सुबह के 4:54 हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

0: आइए अब आपको आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से अवगत करा देते हैं। अब से थोड़ी देर में ठीक 5:10 पर सुनेंगे आप कार्यक्रम आओ योग करें। देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम आप सुनेंगे 5:20 पर। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर रंजनी, इसका वक्त रहेगा प्रातः 5:30 पर। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुन सकते हैं सुबह 6:10 पर। 6:40 का वक्त है कार्यक्रम चिंतन का। आज के चिंतन कार्यक्रम में आप सुनेंगे लाल बहादुर शास्त्री के जीवन से प्रसंग। प्रातः 6:45 का वक्त है श्री रामचरितमानस से पाठ का। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे अयोध्या कांड का भाग 65। संगीतिका कार्यक्रम का आनंद ले सकते हैं आप आज सुबह 7:10 पर। गीतों भरी गुड मॉर्निंग, इस कार्यक्रम का वक्त रहेगा सुबह 7:30 पर। भारतीय शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा, इसका वक्त रहेगा प्रातः 8:45। उद्योग पत्रिका आप सुन सकते हैं 9:15 पर। 9:30 का वक्त है कार्यक्रम मिट्टी दी महक का। दस बजकर दस मिनट पर आप आनंद ले सकते हैं कार्यक्रम आपकी पसंद का। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। प्रातः 5 बजने वाले हैं, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर लोगों को संबोधित भी करेंगे। श्री मोदी यूपीएससी के शताब्दी समारोह का स्मारक सिक्का, स्मारक डाक टिकट और एक पुस्तक 100 लैंडमार्क जजमेंट्स शेपिंग द पॉलिसीज ऑफ यूपीएससी एंड पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया का विमोचन करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग के 279वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री रक्षा लेखा विभाग की विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी पहलों का शुभारंभ करेंगे। इनमें भारतीय सेना की वित्तीय सूचना प्रणाली विभाग के सक्षम प्लेटफॉर्म के साथ एकीकरण, रक्षा मंत्रालय के लिए संशोधित राष्ट्रीय संकलन प्रणाली और रक्षा मंत्रालय में ट्रेजरी सिंगल अकाउंट भुगतानों की शुरुआत के लिए पेमेंट राउटिंग एंड इंटीग्रेटेड सिस्टम मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म शामिल है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के विस्कॉन्सिन में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक से अलग पोलैंड के वित्त और अर्थव्यवस्था मंत्री आंद्रेज डोमेंस्की से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों के बीच भारत और पोलैंड के व्यापार और निवेश संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से कारोबार के लिए नए अवसर पैदा कर

0: ने और दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर भी चर्चा की। वस्त्र क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों के पर चर्चा के लिए आज नई दिल्ली में एक वस्त्र सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय महासचिव ओम प्रकाश गुप्ता ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सम्मेलन में देश भर के वस्त्र क्षेत्र से जुड़े 400 सूक्ष्म और लघु उद्योग एक साथ आएंगे। उन्होंने बताया कि वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। खनन मंत्रालय आज अपतटीय खनिज भंडारों की नीलामी शुरू करेगा। मंत्रालय ने कहा कि भारत की अपतटीय खनिज क्षमता को उजागर करने और देश की दीर्घकालिक खनिज संसाधन सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये निर्णय किसानों की उपज का लाभदायक मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
1: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए एमएसपी तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही एमएसपी में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। व्हीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सेफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है एमएसपी।
0: कुसुम के लिए सबसे अधिक 675 रुपए प्रति क्विंटल वृद्धि की गई है। सरसों और खसखस का मूल्य 413 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। जापान एशिया खेलों में भारत ने तीरंदाजी में 3 और निशानेबाजी में 1 स्वर्ण सहित कुल 4 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। तीरंदाजी में पुरुष कंपाउंड टीम ने चीन को, मिक्स्ड कंपाउंड टीम ने कोरिया को और महिला कंपाउंड टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीता। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण, 21 रजत और 29 कांस्य सहित कुल 60 पदकों के साथ 8वें स्थान पर पहुंच गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेल 2026 में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। क्रिकेट में भारत ने गुवाहाटी में खेले गए दूसरे एक दिवसीय मुकाबले में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2 शून्य की अजेय बढ़त बना ली है। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटका, केरलम, माहे, कर्नाटका के अंदरूनी क्षेत्रों, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज बारिश के साथ साथ आंधी तूफान और बिजली गिरने का अनुमान व्यक्त किया है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। रायलसीमा, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में तेज हवाओं और बिजली कड़कने के साथ आंधी तूफान आने की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. Prime Minister Narendra Modi will participate in the centenary celebrations of the Union Public Service Commission, UPSC, at Bharat Mandapam in New Delhi today. He will also address the gathering on the occasion. The program will mark the culmination of year-long celebrations that commenced on 1st October last year, commemorating 100 years since the establishment of the UPSC in 1926. Mr. Modi will also release a UPSC centenary commemorative coin, a commemorative stamp, and a book titled 100 Landmark Judgments, Shaping the Policies of UPSC and Public Service Commissions in India. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, yesterday approved an increase in the minimum support prices, MSPs, for all mandated rabi crops for the marketing season 2027-28. Briefing the media in New Delhi after the Union Cabinet meeting, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said, the decision has been taken to ensure remunerative prices for farmers for their produce. He said the highest absolute increase in MSP has been announced for safflower at 675 rupees per quintal, followed by rapeseed and mustard at 413 rupees per quintal. The minister said the MSP for lentil or masoor has been increased by 390 rupees per quintal, barley by 136 rupees per quintal, gram by 83 rupees per quintal, and wheat by 25.

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हिमानी चौखन, आपके योग विशेषज्ञ। आज हम चर्चा करेंगे शोल्डर जॉइंट्स प्रॉब्लम पर। शोल्डर जॉइंट एक ऐसा जॉइंट है जो बहुत ही मोबाइल जॉइंट है और सबसे ज्यादा मूवमेंट इसी जॉइंट में पाई जाती है। इसकी मोबिलिटी के साथ साथ शोल्डर जॉइंट की स्टेबिलिटी

का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। और इसके लिए शोल्डर जॉइंट की मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए हमें प्रतिदिन क्या जरूरी है, योग करना जरूरी है। शोल्डर जॉइंट की समस्या जैसे शोल्डर पेन, फ्रोजन शोल्डर और बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट्स में भी शोल्डर प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं। शोल्डर जॉइंट की सर्जरी होने के बाद भी शोल्डर जॉइंट मूवमेंट में कई बार रुकावट आ जाती है। इन समस्याओं से निदान पाने के लिए आप योग में शोल्डर जॉइंट के लिए सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास कर सकते हैं। आज मैं आपको एक सूक्ष्म क्रिया का अभ्यास बताऊंगी। उसके लिए सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं। बाएं हाथ की उंगलियों को बाएं कंधे पर और दाएं हाथ की उंगलियों को दाएं कंधे पर रखें। श्वास छोड़ते हुए यानी ब्रीद आउट करते हुए दोनों कोहनियों को वक्षस्थल के सामने मिलाएं। अब श्वास भरते हुए यानी ब्रीद इन करते हुए दोनों कोहनियों को पूरी तरह चक्र आकार घुमाएं। ब्रीद इन करते हुए दोनों कोहनियों को ऊपर की ओर लेकर जाएं और ब्रीद आउट करते हुए नीचे की ओर लेकर आएं। दोनों कोहनियों को चेस्ट रीजन के सामने स्पर्श करने की कोशिश करें। पीछे की ओर भी कोहनियों को खींच कर घुमाएं। इस प्रकार पूर्ण रूप से दोनों कोहनियों को पहले 4 से 5 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएं, यानी घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएं। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यानी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में भी 4 से 5 बार घुमाएं। श्वास भरते हुए दोनों कोहनियों को ऊपर ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर लेकर आएं। इस योगिक क्रिया के अभ्यास में शोल्डर जॉइंट की मांसपेशियों में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और उसमें होने वाले रक्त संचालन भी बढ़ता है। अगर आप यह अभ्यास प्रतिदिन मॉर्निंग में करते हैं तो आपके शोल्डर जॉइंट हेल्दी रहता है और उसमें होने वाली रुकावट से भी छुटकारा पाया जा सकता है। तो आज हमने शोल्डर जॉइंट की मोबिलिटी को, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को, उसकी मांसपेशियों को आप किस प्रकार मजबूती प्रदान कर सकते हैं एक सिंपल छोटी सूक्ष्म व्यायाम क्रिया के साथ, जिसको हम शोल्डर मूवमेंट्स कहते हैं। तो आज के लिए हमारी सूक्ष्म व्यायाम क्रिया थी शोल्डर मूवमेंट्स। नमस्कार।

नमस्कार, मैं योगाचार्य सुनील गौतम हापुड़िया। आज हम करेंगे सबसे सरल व सुखद आसन ताड़ासन, जिसे कहीं भी ऑफिस में, घर में, किसी भी प्रकार के कार्यस्थल पर सावधानी से किया जा सकता है, जिसको करने से पैर के तलवे से लेकर सर की चोटी तक समस्त मांसपेशियां स्वस्थ होती हैं, विशेष रूप से हमारी पसलियां एवं विष्ठ की मांसपेशियां। जानते हैं इसे करने का तरीका। दोनों पैरों को मिलाकर सीधे खड़े हो जाएं, दोनों हाथ की हथेलियों को साथल से जंघा से मिलाकर रखें, धीरे से श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथ की हथेलियों को आपस में फंसाएं और श्वास भरते हुए सामने की ओर से ऊपर की ओर ले जाएं, ऊपर की ओर थोड़ा खिंचाव दें, धीरे धीरे एड़ियों को ऊपर उठाएं, समस्त भार अपने पैर के पंजों पर ले आएं। तीन लंबे गहरे श्वास लें और प्रत्येक

0: श्वास के साथ शरीर में और ऊपर और ऊपर और ऊपर स्ट्रेच करें, खिंचाव दें। फिर सांस छोड़ते हुए वापस पुरानी स्थिति में आ जाएं। दोबारा इस आसन को करने के लिए अपनी उंगलियों को आपस में फंसाएं, श्वास भरते हुए पुनः ऊपर की ओर ले जाएं। इस बार एड़ियों को ना उठाएं, पूरा ऊपर की ओर खिंचाव दें। श्वास छोड़ते हुए शरीर को दाहिनी ओर झुकाएं, कुछ देर रुकें, श्वास भरते हुए फिर ऊपर की ओर खिंचाव दें और श्वास छोड़ते हुए शरीर को बाईं ओर झुकाएं, पूरे शरीर में खिंचाव अनुभव करें। श्वास भरते हुए फिर बीच में आएं और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे लाएं, पुरानी स्थिति में वापस आ जाएं। इस आसन को 2 या 3 आवृत्ति दोहराएं, रिलैक्स अनुभव करेंगे। कहीं भी इस आसन को कर सकते हैं अपने शरीर के तनाव को दूर करने के लिए, अपने को स्वस्थ अनुभव करने के लिए तनाव अथवा थकान की अवस्था में। धन्यवाद। और विशेष रूप से यह आसन बच्चों के लिए और भी ज्यादा लाभकारी है उनकी लंबाई बढ़ाने में। विशेष रूप से 25 वर्ष तक की उम्र के लोग इस आसन को रोजाना 2-3 बार करेंगे तो निश्चित रूप से उनकी लंबाई भी बढ़ने की संभावना है। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आओ योग करें।

0: जलता का ग्रैंड वाटर। कैसे हैं आप सब? आपकी मशीनें यहाँ धरती में इतने नीचे भी मुझे चैन से नहीं रहने देती। हर साल मेरा ठिकाना धरती में और नीचे हो जाता है। इस वर्ष 2040 में धरती में कितना और नीचे आ गया हूं मैं। क्या लिखूं अपना दर्द, अब तो कलम में बस बूंदे ही बची हैं। अपनी फोटो भेज रहा हूं, खुद ही देख लीजिए मेरी सेहत। क्या पता अगली चिट्ठी लिख भी पाऊंगा या नहीं। आप कर सकते हैं मेरी सहायता, बस दो शब्द याद रखिए, कंट्रोल और सेव। और हाँ, अपना ख्याल रखिएगा।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। लीजिए सुनते हैं देशभक्ति गीत।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। रात 5:30 हो चुके हैं। ये वक्त है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर रंजनी का। आज के स्वर रंजनी कार्यक्रम में आप सुनेंगे श्री फैयाज वसीफुद्दीन डागर का राग भटियार में गायन।